0: बिखरे हुए परवानों की तरह और पहाड़ रंग बरंग के धुमके हुए ऊन की तरह होंगे। फिर जिसके पलड़े भारी होंगे वो दिल पसंद ऐश में होगा और जिसके पलड़े हल्के होंगे उसकी जाय करार गहरी खाई होगी। और तुम्हें क्या खबर कि वो क्या चीज है? भड़कती हुई आग। अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। तुम लोगों को ज्यादा से ज्यादा और एक दूसरे से बढ़कर दुनिया हासिल करने की धुन ने गफलत में डाल रखा है, यहां तक कि इसी फिक्र में तुम लबे गोर तक पहुंच जाते हो। हरगिज नहीं, अनकरीब तुमको मालूम हो जाएगा। फिर सुन लो, हरगिज नहीं, अनकरीब तुमको मालूम हो जाएगा। हरगिज नहीं, अगर तुम यकीनी इल्म की हैसियत से इस रविश के अंजाम को जानते होते तो तुम्हारा यह तर्ज अमल ना होता। तुम दोजख देख कर रहोगे। फिर सुन लो कि तुम बिल्कुल यकीन के साथ उसे देख लोगे। फिर जरूर उस रोज तुमसे इन नेमतों के बारे में जवाब तलबी की जाएगी।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लास्र इन

अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। तुमने देखा उस शख्स को जो आखिरत की जजाओ सजा को झुटलाता है, वही तो है जो यतीम को धक्के देता है और मिस्कीन का खाना देने पर नहीं उकसाता। फिर तबाही है उन नमाज पढ़ने वालों के लिए जो अपनी नमाज से गफलत बरतते हैं, जो रियाकारी करते हैं और मामूली जरूरत की चीजें लोगों को देने से गुरेज करते हैं। अल्लाह के नाम से तो बे इंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हें कौसर अता कर दिया, बस तुम अपने रब ही के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो, तुम्हारा दुश्मन ही जड़कटा है। अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। कह दो कि ऐ काफिरों, मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी इबादत तुम करते हो, न तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूं, और न मैं उनकी इबादत करने वाला हूं जिनकी इबादत तुमने की है, और न तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी इबादत मैं करता हूं। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और मेरे लिए मेरा दीन। अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। जब अल्लाह की मदद आ जाए और फतह नसीब हो जाए, और ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम देख लो कि लोग फौज दर फौज अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे हैं, तो अपने रब की हम्द के साथ उसकी तस्बीह करो और उससे मगफिरत की दुआ मांगो, बेशक वो बड़ा तौबा कबूल करने वाला है।

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهد

0: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا، اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
2: साथियों, जिंदगी के सफर के लिए एक सही डायरेक्शन चाहिए, और जब बात हो पैसे की तो सही गाइडेंस भी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। सेविंग, बजटिंग, फ्यूचर प्लानिंग या स्मार्ट इन्वेस्टिंग, इंट्रोड्यूसिंग प्रोग्राम मनी नेविगेटर, एक ऐसा गाइड जो आपको लेके जाता है फाइनेंशियल अवेयरनेस के सफर पर। बिल्कुल प्रैक्टिकल, बिल्कुल रियल लाइफ। सुनिए प्रोग्राम मनी नेविगेटर, मनी नेविगेटर, एवरी मंडे 10 AM ऑनवर्ड्स, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी, योर गाइड फॉर स्मार्टर स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल डिसीजन। सिर्फ सुनना ही नहीं, समझना भी शुरू कीजिए।
3: अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं सपा और आप सुन रहे हैं मनी नेविगेटर ऑन FM 107। और भाई, आज के इस एपिसोड में आपको मैं ढेर सारी खुशामदीद कहती हूं। और आज का ये एपिसोड मैं कुछ मुख्तलिफ तरीके से स्टार्ट करना चाहती हूं, और मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या आपके दिमाग में कभी कभी ऐसे सवाल आते हैं जिनको आप खुद से पूछने से डरते हैं। देखिए भाई, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अलावा भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने आप से ये सवाल पूछने से डरते हैं, जिनको आज मैं हाईलाइट करने लगी हूँ। कतर में बहुत से लोग अपने आप से पूछने से घबराते हैं कि क्या मैं वाकई में वेल्थ बिल्ड कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ स्ट्रेस बिल्ड कर रही हूँ। बाहर से तो भाई जिंदगी बिल्कुल सेट लगती है, अच्छी जॉब, अच्छा अपार्टमेंट, बच्चे अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, पार्किंग में कार खड़ी है, और सोशल मीडिया पर वेकेशंस की तस्वीरें। लेकिन भाई, हम सभी जानते हैं इसके पीछे क्या है। अंदर कहीं ना कहीं प्रेशर होता है, EMIs चल रही होती हैं, क्रेडिट कार्ड्स बढ़ते जा रहे होते हैं, स्कूल फीसेस हर साल बढ़ती जा रही होती हैं, घर वालों की जिम्मेदारियां भी हमारे कंधों पर होती हैं, और रिटायरमेंट अभी तक कल देखा जाएगा कि लिस्ट में कहीं कोने में पड़ी होती है। और फिर खामोशी से अक्सर 40 से 50 के दरमियान कुछ बदलता है। लोग महसूस करते हैं कि आज मैं जिंदगी में सबसे ज्यादा कमा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं फंसा हुआ महसूस करता हूँ। यही वो लम्हा होता है जिसे हम मिड लाइफ फाइनेंशियल क्राइसिस कहते हैं। और सबसे बड़ी सच्चाई ये है साथियों कि ये मिड लाइफ क्राइसिस अचानक नहीं आते, ये आहिस्ता आहिस्ता बनते हैं, डिसीजंस बाय डिसीजंस, ईयर बाय ईयर। हर दफा जब हम सेविंग से पहले लाइफस्टाइल चूज करते हैं ना, हर दफा जब हम फ्यूचर को बाद में पर छोड़ देते हैं, हर दफा जब हम अपने प्लान को रिव्यू

0: क्यों नहीं करते, हम अनजाने में उस क्राइसिस की बुनियाद रख रहे होते हैं। तो भाई आज मनी नेविगेटर के इस एपिसोड में हम इस हकीकत को सीधी और प्रैक्टिकल जबान में समझेंगे, क्यों मिडलाइफ फाइनेंशियल क्राइसिस कतर में इतना कॉमन है, इसके पीछे असल वजह क्या होती है, और सबसे अहम बात, इसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है। भाई देखिए साथियों, एक्सपीरियंस ये बताता है कि 10 में से 9 केसेस में ये क्राइसिस सेल्फ क्रिएटेड होते हैं, और 10 में से 9 केसेस में जब लोग इसमें गिर जाते हैं तो पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाते। इसीलिए आज का ये एपिसोड डर के लिए नहीं है, अवेयरनेस और प्रिवेंशन के लिए है। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी कहानी को यहाँ ही पहचान सकें। शायद आप यंग प्रोफेशनल हो जो अभी तक ग्रोथ के फेज में है, शायद आप पेरेंट हो जिनके ऊपर स्कूल फीस और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज का प्रेशर बहुत ज्यादा हो, या शायद आप वो हैं जो रिटायरमेंट के करीब हैं लेकिन प्लान अभी भी अनक्लियर है। तो भाई साथियों, जो भी स्टेज हो, ये वक्त है रुककर अपनी डायरेक्शन चेक करने का। क्या मैं पैसे सिर्फ कमा रहा हूँ या मैं अपनी जिंदगी को फाइनेंशियली डिजाइन कर रहा हूँ। आज हम कुछ मिथ्स के ऊपर बात करेंगे और उनको कुछ तोड़ मरोड़ कर सीधा करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अक्सर कहा जाता है ना कि सैलरी बढ़ती रहती है तो सब कुछ ठीक हो जाता है, या भाई अभी एंजॉय कर लो, बाद में देखेंगे, जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन जो होता है ना, फिर वो देखा नहीं जाता। और उसी के साथ साथ उन हैबिट्स पर भी बात करेंगे जो साइलेंटली आपको स्ट्रेस की तरफ ले जा रही है। आज तो बहुत अच्छी लग रही है लेकिन वो आपको किसी और डायरेक्शन में लेकर जा रही है। साथ ही हम उन सिंपल लेकिन पावरफुल शिफ्ट्स पर भी बात करेंगे जो आज से आप ले सकते हैं, ताकि आज का कंफर्ट कल की परेशानी ना बने। और जी हाँ, एक और चीज, ये कन्वर्सेशन सिर्फ वन वे नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप भी हमारे साथ पार्टिसिपेट करें, हिस्सा लें इस सफर में। आप हमें फॉलो कर सकते हैं FM 107 कतर के सोशल मीडिया हैंडल्स पर, और अगर आप अपना सवाल, अपनी सिचुएशन या कोई कंफ्यूजन शेयर करना चाहते हैं ना, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 666-222-107 पर। साथियों, यहाँ मनी नेविगेटर पर हम सिर्फ बात नहीं करते, हम आपको अपनी फाइनेंशियल लाइफ को नेविगेट करना सिखाते हैं, ताकि आप सिर्फ जिंदगी में कमाई ना करें बल्कि ज्यादा क्लैरिटी, ज्यादा कंट्रोल और ज्यादा सुकून हासिल करें। भाई मैं हूँ सफा, और आज हम मिलकर ये समझेंगे कि मिड लाइफ फाइनेंशियल क्राइसिस कोई किस्मत का फैसला नहीं होता, ये प्लानिंग से रोका जा सकता है। तो भाई वेलकम टू मनी नेविगेटर विद सफा।
1: साथियों, जिंदगी के सफर के लिए एक सही डायरेक्शन चाहिए, और जब बात हो पैसे की तो सही गाइडेंस भी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। सेविंग, बजटिंग, फ्यूचर प्लानिंग या स्मार्ट इन्वेस्टिंग, इंट्रोड्यूसिंग प्रोग्राम मनी नेविगेटर, एक ऐसा गाइड जो आपको लेके जाता है फाइनेंशियल अवेयरनेस के सफर पर। बिल्कुल प्रैक्टिकल, बिल्कुल रियल लाइफ। सुनिए प्रोग्राम मनी नेविगेटर।
0: वेलकम बैक साथियों, मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं मनी नेविगेटर ऑन FM 107। तो भाई आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं मिड लाइफ फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में। तो साथियों, कतर में मिड लाइफ फाइनेंशियल क्राइसिस इतनी कॉमन इसलिए है क्योंकि यहाँ ज्यादातर लोग बहुत बड़ी उम्मीदों और एम्बिशंस के साथ आते हैं। वो अच्छी कमाई करना चाहते हैं, तेजी से सेविंग्स करना चाहते हैं, एसेट्स बनाना चाहते हैं और अपनी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर देखना चाहते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन सी बात है जो आप में और मुझ में, हम सब में है, और वे शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक ही चल रहा हुआ नजर आ रहा होता है कि भाई जैसा सोचा था वैसा चल रहा है। सैलरी इम्प्रूव होती है, लाइफस्टाइल बेहतर होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और लगता है कि जिंदगी फाइनली सेट हो रही है। लेकिन यहाँ पर एक सटल सा ट्रैप शुरू होता है, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है अक्सर डिसिप्लिन कम होता जाता है, और जैसे जैसे डिसिप्लिन गिरता है लाइफस्टाइल स्टेबिलिटी से तेजी से ऊपर चला जाता है। लोग जाने अनजाने में ये मान लेते हैं कि भाई मैं अच्छी कमाई कर रहा हूँ, मैं सेफ हूँ, जबकि असल में सेफ्टी इनकम से नहीं आती बल्कि स्ट्रक्चर से आती है। जब तक आपके पैसे के पीछे एक क्लियर सिस्टम, प्लानिंग और प्रायोरिटीज ना हो, तब तक प्रेशर क्वाइटली बिल होता रहता है, और आपको तब महसूस होता है जब आप लाइफ के बीच के फेज में फंस चुके होते हैं, जहां जिम्मेदारियां ज्यादा होती चली जाती हैं, ऑप्शंस कम होते हैं और गलतियों को रिवर्स करना मुश्किल होता है। और वे इसी आहिस्ता आहिस्ता बनते हुए प्रेशर की पहली और सबसे बड़ी बुनियाद होती है प्रॉपर्टी का बहुत जल्दी

इमोशनली डिसीजन लेना, क्योंकि भाई सीधी सी बात है कि हमारे कल्चर में प्रॉपर्टी सिर्फ ईंट और सीमेंट का स्ट्रक्चर नहीं होती बल्कि सिक्योरिटी, स्टेटस, स्टेबिलिटी और सक्सेस का सिंबल होती है। इसीलिए पेरेंट्स, रिलेटिव्स और दोस्त अक्सर ये कहते हैं कि भाई अभी खरीद लो, प्राइसेस बढ़ जाएंगी, रेंट पर पैसा ज्यादा हो रहा है। और कतर में जवान प्रोफेशनल्स जो अपने पेरेंट्स से ज्यादा कमा रहे होते हैं अपनी सक्सेस को जल्दी प्रूव करने का प्रेशर महसूस करते हैं। नतीजा ये होता है कि वो बहुत बड़े बड़े होम लोन्स उठा लेते हैं, लंबी टेनर्स चूज कर लेते हैं और हैवी ईएमआईज के नीचे दब जाते हैं। जबकि लाइफ के इस स्टेज पर बच्चे छोटे होते हैं, खर्चे हर साल बढ़ रहे होते हैं, करियर अभी तक फुली स्टेबल नहीं होते और रीलोकेशन का रिस्क भी हमेशा मौजूद रहता ही रहता है। इस तरह जब आपकी सैलरी का बड़ा हिस्सा ईएमआईज में चला जाता है तो आप अपनी सबसे कीमती चीज खो देते हैं, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी। और गल्फ जैसी जगह पर फ्लेक्सिबिलिटी ही सब कुछ होती है साथियों, क्योंकि यहाँ जॉब्स चेंज होती रहती हैं, कंपनीज रिस्ट्रक्चर होती रहती हैं और कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म हो सकते हैं। लेकिन जब ये सब होता है तो ईएमआई नहीं रुकती और उसी वक्त घर के अंदर स्ट्रेस आता है, रिलेशनशिप्स का प्रेशर बढ़ जाता है और नींदें डिस्टर्ब हो जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस टूटने लगता है। जबकि प्रॉपर्टी का मसला ये नहीं होता कि वो बुरी चीज है, बल्कि ये होता है कि टाइमिंग गलत होती है ना। देखिए भाई, बहुत जल्दी खरीदना भी ना मिड लाइफ फाइनेंशियल क्राइसिस का सबसे मजबूत फाउंडेशन बन जाता है। और भाई इस क्राइसिस का दूसरा सबसे बड़ा सबब होता है बच्चों का बहुत करीब करीब पैदा होना बिना फाइनेंशियल प्लानिंग के, क्योंकि बच्चे नेमत होते हैं लेकिन साथ ही एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल कमिटमेंट भी होते हैं साथियों। और कतर में ये कमिटमेंट और भी महंगा हो जाता है क्योंकि इंटरनेशनल स्कूल्स हाई फीस मांगते हैं, कोचिंग और ट्यूशंस फीसेस मांगते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज पैसा मांगती हैं और बाहर की यूनिवर्सिटीज तो और भी कॉस्टली होती हैं साथियों। जब बच्चे बहुत करीब करीब पैदा हो जाते हैं ना तो खर्चे ओवरलैप करने लगते हैं, दो स्कूल फीसेस, दो सेट्स ऑफ बुक, टू एक्टिविटी स्केड्यूल्स एंड टू फ्यूचर एजुकेशन प्लान्स। और पेरेंट्स का क्या हाल होता है? पेरेंट्स तो भाई क्योंकि औलाद से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, तो वो अपनी मोहब्बत में स्ट्रेच होते चले जाते हैं, वो रिटायरमेंट प्लानिंग कट ऑफ कर देते हैं, हेल्थ स्पेंडिंग को पोस्टपोन कर देते हैं और इमरजेंसी सेविंग्स को सेक्रीफाइस कर देते हैं, ये सोचकर कि हम किसी तरह से अपने बच्चों को मैनेज कर लें। लेकिन इसी तरह ये मामलात आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रगल बन जाते हैं, क्योंकि जब बच्चे हायर एजुकेशन के करीब पहुंचते हैं तो पेरेंट्स अक्सर अपनी 40s 50s में होते हैं, उनकी सेविंग्स वीक होती हैं, उनकी एनर्जी कम हो जाती है और उनके ऑप्शंस लिमिटेड हो चुके होते हैं। और फिर वही इमोशनल डिसीजंस जो कभी सिर्फ प्यार और खुशी पर मबनी थे फाइनेंशियल ट्रैप्स बनकर सामने आते हैं। बच्चे मोहब्बत के हकदार होते हैं साथियों, लेकिन मोहब्बत तभी सस्टेनेबल होती है जब उसके बीच प्लानिंग हो। तीसरा और बहुत आम सा सबब होता है क्रेडिट कार्ड्स। भाई देखिए, क्रेडिट कार्ड्स को बेहद और बिना सोचे समझे इस्तेमाल करना, क्योंकि कतर में क्रेडिट कार्ड्स इतनी आसानी से मिल जाते हैं कि लोग उनकी पावर को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। मॉल्स, एयरलाइंस, ऑनलाइन ऑफर्स, बैंक कॉल्स, हर जगह स्वाइप कल्चर प्रमोट हो चुका है साथियों। लोग एक से ज्यादा कार्ड ले लेते हैं, फिर हर चीज स्वाइप स्वाइप स्वाइप पर चलने लगती है, डिनर, शॉपिंग, वेकेशंस, और फिर आता है मामला कन्वर्ट टू ईएमआई के ऑप्शन का, जिससे लगता है कि सब कुछ मैनेजेबल है, जबकि असल में आप अपनी फ्यूचर सैलरी आज ही खर्च कर रहे होते हैं। क्रेडिट कार्ड्स आपकी इनकम नहीं बढ़ाते बल्कि फ्यूचर के पैसे को आज में शिफ्ट कर देते हैं, इसलिए हर स्वाइप असल में स्पेंडिंग नहीं होती बल्कि अपने आप से उधार उठाना होती है, और अपने आप से उधार लेने की कीमत होती है इंटरेस्ट और स्ट्रेस। फिर जब कोई क्राइसिस आता है ना, जैसे कि जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी या फैमिली इश्यूज, तो यही क्रेडिट कार्ड्स चेन बन जाते हैं जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी से महरूम कर देते हैं। और यही

0: आसानी से छोटी छोटी आदतें बड़ी मुश्किलात में बदल जाती हैं। और भाई इसी के साथ इन तीनों बड़ी गलतियों के पीछे ना एक कॉमन पैटर्न होता है। लोग ज्यादा कमाते हुए भी अपने स्ट्रक्चर्स बिल्ड नहीं करते, वो प्लानिंग को कल पर छोड़ देते हैं और प्रेजेंट लाइफस्टाइल को फ्यूचर स्टेबिलिटी पर प्रायोरिटी दे देते हैं। जबकि कतर जैसी जगह पर जहाँ जिंदगी अपॉर्चुनिटी से भरी हुई है लेकिन परमानेंस का यकीन कम है ना, सबसे कीमती चीज प्लानिंग होती है साथियों, ना कि सिर्फ इनकम। इसीलिए मिड लाइफ फाइनेंशियल क्राइसिस असल में किस्मत का खेल नहीं होते बल्कि आदतों, डिसीजंस और प्रायोरिटीज का नतीजा होते हैं। हर दफा जब हम EMI को फ्लेक्सिबिलिटी पर तरजीह देते हैं ना, तो हर दफा जब हम इमोशनल प्रेशर में बिना नंबर्स के प्रॉपर्टी लेते हैं, हर दफा जब हम बच्चों के फ्यूचर के लिए आज अपने रिटायरमेंट को कुर्बान कर देते हैं, और हर दफा जब हम क्रेडिट कार्ड को कन्वीनियंस समझकर यूज करते हैं, हम अनजाने में उस क्राइसिस को दावत दे रहे होते हैं। हम अनजाने में उस क्राइसिस की दीवार में एक और ईंट लगा रहे होते हैं, और जब ये दीवार पूरी हो जाती है तो फिर अचानक से ऐसा लगता है कि हम फंस गए हैं, जबकि असल में हम सालों से उसी ट्रैप को खुद बिल्डअप करते आ रहे होते हैं। यहाँ से निकलने का रास्ता भी इसी समझ से शुरू होता है साथियों कि सेफ्टी इनकम से नहीं बल्कि स्ट्रक्चर से आती है। और स्ट्रक्चर का मतलब होता है क्लियर गोल्स, रियलिस्टिक कैश फ्लो, कंट्रोल्ड डेट, टाइमिंगली इन्वेस्टमेंट करना और लाइफ के हर फेज के लिए प्लानिंग। क्योंकि जब आप अपनी फाइनेंसेस को डिजाइन करते हैं तो आप सिर्फ पैसा नहीं मैनेज करते बल्कि अपनी जिंदगी का प्रेशर भी कंट्रोल करते हैं। और यही वो बुनियादी फर्क है जो कुछ लोगों को मिडलाइफ स्ट्रेस के जाल में फंसा देता है, और कुछ लोग उसी एज पर क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और चॉइसेस के साथ खड़े रहते हैं मजबूती से। भाई देखें, कतर में मिडलाइफ फाइनेंशियल क्राइसिस कॉमन इसलिए नहीं कि लोग कम कमा रहे हैं बल्कि इसीलिए है कि वो ज्यादा कमा कर भी अपनी कमाई को सही डायरेक्शन नहीं देते। और भाई जब डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के नीचे आ जाता है ना, तो फिर बाहर से सब कुछ अच्छा लगने लगता है लेकिन अंदर ही अंदर प्रेशर बिल्डअप होता रहता है। यहाँ तक कि एक दिन लोग ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि भाई मैं आज जिंदगी में सबसे ज्यादा कमा रहा हूँ लेकिन फिर भी आई फील स्टक। और भाई वही लम्हा होता है जहाँ उन्हें समझ आता है कि असल में मसला पैसा नहीं होता बल्कि पैसे की प्लानिंग होती है, और इसीलिए इस क्राइसिस को अवॉइड करना पॉसिबल है साथियों, लेकिन सिर्फ तब जब हम वक्त पर अपनी आदतों को पहचान कर उन्हें बदलने का फैसला करें। क्योंकि जो लोग इस रियलिटी को अर्ली समझ लेते हैं ना, वो अपनी कमाई को सिर्फ लाइफस्टाइल के लिए नहीं बल्कि स्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करते हैं साथियों। और भाई जो लोग इस समझ को लेट डिस्कवर करते हैं ना, वो अक्सर अपनी जिंदगी के सबसे डिमांडिंग फेज में खुद को फाइनेंशियल प्रेशर के नीचे दबा हुआ पाते हैं जहां से निकलना मुश्किल होता है। इसलिए अगर आज आप ये महसूस कर रहे हैं कि आप ज्यादा कमा रहे हैं लेकिन फिर भी सुकून कम है, तो ये कोई वार्निंग नहीं बल्कि इन्विटेशन है अपनी प्लानिंग को दोबारा देखने का, अपनी प्रायोरिटीज को अलाइन करने का और अपनी जिंदगी को इनकम के साथ नहीं बल्कि स्ट्रक्चर के साथ बिल्ड करने का, ताकि मिड लाइफ आपके लिए क्राइसिस नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस का फेज बन सके। तो भाई साथियों इसी के साथ लेते हैं एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आकर आपसे और मजीद डिस्कशन करेंगे मिड लाइफ फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में। फिलहाल के लिए सुनते रहिए FM 107 पर मनी नेविगेटर विद सफा। मुलाकात होती है ब्रेक के बाद।
1: साथियों जिंदगी के सफर के लिए एक सही डायरेक्शन चाहिए, और जब बात हो पैसे की तो सही गाइडेंस भी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। सेविंग, बजटिंग, फ्यूचर प्लानिंग या स्मार्ट इन्वेस्टिंग, इंट्रोड्यूसिंग प्रोग्राम मनी नेविगेटर, एक ऐसा गाइड जो आपको लेके जाता है फाइनेंशियल अवेयरनेस के सफर पर। बिल्कुल प्रैक्टिकल, बिल्कुल रियल लाइफ। सुनिए प्रोग्राम मनी नेविगेटर।
0: वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं सफा के साथ मनी नेविगेटर ऑन FM 107, जहां हम आज के एपिसोड में बात कर रहे हैं मिड लाइफ फाइनेंशियल क्राइसिस की। साथियों गल्फ के फाइनेंशियल एनवायरनमेंट में सबसे पहली और सबसे ज्यादा महसूस की जाने वाली गलती रेकलेस लोन्स और स्मार्ट

स्कीम्स पर यकीन करना होता है, क्योंकि यहाँ लोन मार्केटिंग सिर्फ एग्रेसिव ही नहीं होती बल्कि साइकोलॉजिकल भी होती है। आपको कॉल्स आती हैं, मैसेजेस आते हैं, ईमेल्स आती हैं, जहाँ लो इंटरेस्ट पर्सनल लोन सिर्फ 3 महीने और वो भी 0%, और कहा जाता है कि भाई बैक होम इन्वेस्ट करें, ज्यादा कमाएं। ऐसे लफ्जों के जरिए आपके इमोशंस, लालच दोनों को टारगेट किया जाता है, और जब नया शहर, नया मुल्क, नई जिंदगी के प्रेशर के साथ आप जी रहे होते हैं तो ये ऑफर आसान रास्ता लगती ही लगती है। लेकिन लेकिन हकीकत ये है कि फ्री मनी नाम की कोई चीज इस दुनिया में मौजूद है ही नहीं। हर लोन आपकी आजादी कम कर देता है साथियों, हर इंस्टॉलमेंट आपके फ्यूचर के ऑप्शंस को थोड़ा और बंद कर देती है। और एक और बात बताऊं, गल्फ में लोन्स इसीलिए भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं क्योंकि यहाँ इंटरेस्ट अक्सर फ्रंट लोडेड होता है साथियों, यानी शुरू के सालों में आप ज्यादा इंटरेस्ट चुका देते हैं, अर्ली एग्जिट महंगा होता है, पेनल्टीज, फीस, रिस्ट्रक्चरिंग चार्जेस आपका चेन से बाहर निकलने का रास्ता ही मुश्किल बना दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात ये कि आपकी रेजिडेंसी सीधा आपकी जॉब से जुड़ी हुई होती है, इसीलिए अगर कल को आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू ना हो, कंपनी रिस्ट्रक्चर हो जाए या मार्केट की वजह से आपकी पोजीशन खत्म हो जाए तो जॉब चली जाती है। लेकिन ये जो लोन है ना, ये हमारे गले में लटका ही रह जाता है और फिर वो लोन आपसे सारी बातें छीन लेता है जो एक्सपेक्ट लाइफ में सर्वाइवल के लिए जरूरी होती हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैं थोड़ा ब्रेक ले लूं, मैं बेहतर ऑफर के लिए जॉब चेंज कर लूं, मैं रिलोकेट कर लूं, क्योंकि हर फैसला इंस्टॉलमेंट के साथ बंधा हुआ होता है और जब फ्लेक्सिबिलिटी कैद हो जाए तो स्ट्रेस पैदा होता ही होता है, नींद खराब होती ही होती है, रिश्ते प्रेशर में आ जाते हैं और आदमी अपनी जिंदगी में मेहमान बन जाता है। इसीलिए भी मैं कहती हूँ कि लोन्स को सिर्फ नंबर्स की तरह नहीं बल्कि अपनी आजादी के दुश्मन की तरह समझना जरूरी है। और यहीं से अगला और सबसे अहम नुक्ता शुरू होता है जो बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं, यानी इमरजेंसी फंड का ना होना, जो असल में फाइनेंशियल प्लानिंग का फाउंडेशन होता है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है भाई कि ये जो गल्फ में बहुत सारे प्रोफेशनल्स अच्छी सैलरी के बावजूद भी नो बफर, नो बैकअप, नो प्रोटेक्शन के साथ जी रहे हैं। जिंदगी ठीक चल रही होती है इसीलिए लगता है कि भाई सब कुछ ठीक है, मगर जब कुछ गलत होता है ना, और यकीन जानिए कि ये तो जिंदगी है ना, तो इसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गलत होता ही होता है और भी सबके साथ, तो भाई वहां से आता है पैनिक सेट, हमें पैनिक होना शुरू हो जाता है और पैनिक में लिए गए डिसीजंस हमेशा गलत होते हैं साथियों। कोई सेविंग्स ना हो तो आदमी मजबूरन महंगे लोन्स ले लेता है, गलत इन्वेस्टमेंट्स करता है या फिर अपनी डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज करता है, जबकि कतर जैसे मुल्क में इमरजेंसी फंड कोई लग्जरी नहीं बल्कि जरूरत है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स एंड हो सकते हैं, वीजा स्टेटस अचानक चेंज हो सकता है, फैमिली इमरजेंसीज वापस मुल्क में पैदा हो सकती है जहां आपको फौरन जाना पड़ सकता है, मेडिकल सिचुएशंस खर्चे को ओवरनाइट बढ़ा सकती हैं, और अगर आपके पास इमरजेंसी फंड ना हो तो मसला डिजास्टर बन सकता है, जबकि इमरजेंसी फंड्स के साथ वही मसला सिर्फ एक चैलेंज रह जाता है जो आप अच्छे तरीके से प्लान कर सकते हैं, प्लान के साथ हैंडल किए जा सकते हैं मसले साथियों। इमरजेंसी फंड्स आपको सिर्फ पैसा नहीं देते बल्कि आपको वक्त देते हैं, सोचने का वक्त, सही फैसला करने का वक्त और इज्जत के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाने का वक्त। लेकिन जब ये बुनियादी ना हो तो जाहिरी बात है कि लोग तीसरी गलती की तरफ फिसलना शुरू कर जाते हैं, जो कि आजकल का बहुत बड़ा ट्रेंड है, यानी लेवरेज और फास्ट मनी के साथ खेलना। सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग क्रिप्टो ऑप्शंस और फॉरेक्स को इतना आसान दिखाया जाता है कि लगता है कि जैसे पैसा बनाना बस डाउनलोड करने का नाम है। लोग सिर्फ प्रॉफिट्स, कार्स, लाइफस्टाइल्स और वेकेशंस की तस्वीरें देखते हैं, लेकिन कोई भी लॉसेस, स्ट्रेस, डेट और डिप्रेशन शेयर नहीं करता। लेकिन लेवरेज का मतलब होता है छोटी सी मूवमेंट पर बड़ा रिजल्ट, और थ्योरी में ये बहुत अट्रैक्टिव लगता है साथियों, लेकिन रियलिटी ये है कि लेवरेज दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करता है और ज्यादातर लोगों के लिए ये लॉस को मल्टीप्लाई करता है,
एक ही गलत ट्रेड

0: सालों की सेविंग्स, सुकून और फैमिली का ट्रस्ट वाइप आउट कर सकता है। और भाई गल्फ में बहुत सारे मिड लाइफ फाइनेंशियल कोलैप्सेस एक ही मासूम जुमले से शुरू होते हैं। मैं बस थोड़ा सा ट्राई कर रहा था, जबकि लेवरेज के साथ ये जो थोड़ा सा ट्राई करना है ना, इन्वेस्टिंग नहीं बल्कि गैम्बलिंग होता है, और गैम्बलिंग स्टेबिलिटी को तबाह बर्बाद कर देती है। स्टेबिलिटी जो एक्सपेक्ट लाइफ में सबसे कीमती एसेट होता है ना, क्योंकि जब आप दूर मुल्क में होते हैं, फैमिली सपोर्ट सिस्टम और सेफ्टी नेट लिमिटेड होता है, तो आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ही आपका असली सहारा होता है। लेकिन ये जो फास्ट मनी का नशा लोगों को चढ़ा हुआ है ना आजकल, ये लोगों को चौथी और पांचवी गलती की तरफ घसीटता हुआ ले जाता है, जहां लाइफस्टाइल और स्पेंडिंग कंट्रोल से बाहर हो जाती है। देखिए भाई, मैं एक बात मानती हूँ कि कतर का लाइफस्टाइल वाकई ही में सेडक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगे बेहतर होम्स, बेहतर कार्स, बेहतर ब्रांड्स, बेहतर रेस्टोरेंट्स, बेहतर हॉलीडेज। और जब आप एक दफा अपग्रेड कर लेते हैं ना, तो वो नॉर्मल बन जाता है। फिर उसी सेटिस्फेक्शन को महसूस करने के लिए और ज्यादा चाहिए होता है, और ज्यादा चाहिए होता है, और ज्यादा चाहिए होता है। इस प्रोसेस को लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं साथी। और यहाँ मसला ये नहीं कि आप बेहतर जिंदगी जी रहे हैं, यहाँ मसला ये है कि आप बेहतर जिंदगी बिना स्टेबिलिटी के जी रहे हैं। लोग अपग्रेड कर लेते हैं, अच्छी बात है, कर लेना चाहिए, लेकिन बिना ये चेक किए हुए कि जॉब कितनी सिक्योर है, सेविंग्स कितनी है, और इमरजेंसी बफर है भी कि नहीं है। और फिर जब इनकम किसी वजह से रुक जाती है या कम हो जाती है, लाइफस्टाइल कम नहीं होता साथियों, रेंट, कार पेमेंट, स्कूल फीसेस, सब्सक्रिप्शन, डाइन इन और ट्रेवल सब चलता रहता है, और यहीं से प्रेशर पैदा होना शुरू होता है। रात को नींद नहीं आती, हर कॉल एंजाइटी लाती है, हर बिल स्ट्रेस बढ़ाता है, जबकि रूल बहुत सिंपल है, लाइफस्टाइल को स्टेबिलिटी के बाद आना चाहिए, स्टेबिलिटी से पहले नहीं। क्योंकि जो चीज आपको ऊपर ले जाती है, अगर वो बुनियाद के बगैर हो, तो वही चीज आपको नीचे भी गिराती है। और भाई होता ये है कि जब ये सारी गलतियां मिलकर काम करती हैं ना, तो आखिरी और सबसे साइंटिफिक वार्निंग साइन सामने आता है, जो है हाई कैश बर्नआउट रेशो, यानी कि आप अपनी इनकम का कितना हिस्सा खर्च कर रहे हैं। तो भाई साथियों, इसी के साथ लेते हैं एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आकर आपसे और मजीद डिस्कशन करेंगे मिड लाइफ फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में। फिलहाल के लिए सुनते रहिए एफएम 107 पर मनी नेविगेटर विद सफा। मुलाकात होती है ब्रेक के बाद।
1: साथियों, जिंदगी के सफर के लिए एक सही डायरेक्शन

60 पर भी ठीक है, लेकिन 70 यानी 70 पर डेंजर जोन है और 80 यानी 80 पर ज्यादा क्राइसिस जोन है। लेकिन कतर में इनकम अच्छी होने की वजह से लोग कैलकुलेट ही नहीं करते, उन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक है क्योंकि सैलरी अच्छी आ रही है। लेकिन नंबर्स इमोशन से ज्यादा सच बोलते हैं। 35 साल के बाद अगर आप 70% से ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो आप ट्रबल की तरफ चल रहे हैं, और अगर 90-100% खर्च हो रहा है तो आप ऑलरेडी उसी ट्रबल जोन में खड़े हैं। ये जजमेंट नहीं है साथियों, ये मैथमेटिक्स है। पैसे के अपने कानून होते हैं, उन्हें इग्नोर करना कॉन्सिक्वेंसेस को दावत देना होता है, और यहाँ कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ पैसे का लॉस नहीं होते बल्कि वक्त का लॉस होते हैं, सुकून का लॉस होते हैं, रिश्तों का प्रेशर और जिंदगी के ऑप्शंस का बंद होना होता है। क्योंकि जब कैश बर्न हाई होता है तो आपके पास फ्यूचर के लिए कुछ भी नहीं बचता, आप सिर्फ प्रेजेंट को फाइनेंस कर रहे होते हैं, और प्रेजेंट को फाइनेंस करते करते फ्यूचर को कुर्बान कर देते हैं। जबकि समझदार फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब ये होता है कि आप अपने आज की जिंदगी भी बेहतर बनाएं और कल की जिंदगी भी महफूज करें। देखिए साथियों, इस पूरे सफर का सबसे अहम नुक्ता ये है कि मिड लाइफ फाइनेंशियल क्राइसिस कोई तकदीर नहीं होता, ये एक पैटर्न होता है, और पैटर्न हमेशा छोटी छोटी चॉइसेस से बनते हैं। जैसे पहला लोन जो आपने सिर्फ इस दफा के लिए उठाया था, पहली बार जब आपने इमरजेंसी फंड्स को बाद में कहकर छोड़ दिया था, पहली बार जब आपने फास्ट मनी को इन्वेस्टिंग समझकर ट्राई किया था, पहली बार जब आपने लाइफस्टाइल अपग्रेड को स्टेबिलिटी से पहले रख दिया था, और पहली बार जब आपने अपनी स्पेंडिंग रेशियो को इग्नोर किया। ये सब मिलकर एक ऐसा पैटर्न बना देते हैं जो सालों बाद क्राइसिस की शक्ल इख्तियार कर लेता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि जो चीज पैटर्न से बनती है वो अवेयरनेस से बदल भी सकती है। बस शर्त ये है कि आप अपने आप से ईमानदार हों, आप ये मान लें कि भाई मैं गलती पर हूँ। ये बात कमजोरी नहीं बल्कि स्ट्रेंथ है। आप ये समझ लें कि प्लानिंग बोरिंग नहीं बल्कि फ्रीइंग होती है, क्योंकि जब आपके पास बफर होता है ना, डेट कंट्रोल में होता है, इन्वेस्टमेंट्स रियलिस्टिक होती हैं, लाइफस्टाइल स्टेबिलिटी के साथ अलाइन होता है, और कैश बर्न हेल्दी लेवल पर होता है, तो आप सिर्फ पैसे के मालिक नहीं होते बल्कि जिंदगी के मालिक हो जाते हैं। आप फिर डर के बजाय क्लैरिटी के साथ डिसीजंस लेते हैं, प्रेशर के बजाय कॉन्फिडेंस के साथ अगला कदम आगे रखते हैं, और यही असल मकसद है कि इनकम को सिर्फ खर्च करके खत्म नहीं कर दिया जाए बल्कि उसे स्टेबिलिटी, सुकून और फ्यूचर की बुनियाद में तब्दील किया जाए। क्योंकि आखिर में पैसा सिर्फ नंबर नहीं होता, ये आपकी चॉइसेस, आपकी इज्जत, आपकी फैमिली की हिफाजत और आपके मुस्तकबिल का जरिया होता है। और जब आप ये समझ लेते हैं ना, तो आप गलतियों के इस दौर से बाहर निकल जाते हैं, एक नई डायरेक्शन में चल पड़ते हैं जहाँ आपके फैसले इमोशंस या ट्रेंड्स के बजाय प्रिंसिपल्स पर होते हैं, और यही वो जगह है जहां से फाइनेंशियल पीस शुरू होती है। तो भाई ये थी कुछ बातें मिड लाइफ फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में। भाई आज के इस मनी नेविगेटर के एपिसोड में हमने यही कोशिश की है कि आपको डराया नहीं जाए बल्कि जगाया जाए, आपको गिल्टी फील ना कराया जाए बल्कि क्लैरिटी दी जाए, और ये याद दिलाया जाए कि पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं बल्कि जिंदगी के सुकून का टूल भी है। तो भाई आज के इस एपिसोड से सफा को दीजिए इजाजत। याद रखिए कि अपनी जिंदगी को सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि कल के लिए भी बेहतर से बेहतरीन बनाए रखिए, और हर फैसला इस नियत से करें कि आपका मुस्तकबिल आपका शुक्रिया अदा करे। आप सुन रहे थे मनी नेविगेटर विद सफा और FM 107, दिल से देसी।

0: एहतियात इलाज से बेहतर है। बीमारी को उस वक्त पकड़ लीजिए जब वो दस्तक दे रही है, उस वक्त का इंतजार न कीजिए जब वो घर के अंदर फैल चुकी हो। जिस्मानी बीमारी की मिसाल से बात समझ आती है। बहुत सी बीमारियों में जल्द तशखीस इलाज के इम्कानात और तरीका इलाज पर बड़ा फर्क डालती है। शिफा बहरहाल तो अल्लाह के हाथ में, मगर इंसान को असबाब इख्तियार करने का हुक्म है। कल्बी बीमारियों में भी यही वसीलत चाहिए। क्या अलामत? इब्तिदा में पकड़ लीजिए। दिल अभी सिर्फ थका है तो उसे संभाल लीजिए। हिम्मत में कमी अभी मामूली है तो उसका सबब तलाश कीजिए। नेकी के लिए कुव्वत कम हो रही है तो सिर्फ ये कहकर न गुजरे कि मेरा मूड नहीं है। कभी मूड के पीछे कोई गहरा मसला होता है। और यहाँ सामने किराम, आज के इस सफर और गुफ्तगू के मुख्तलिफ मराहल को समझना अहम होगा। तो चलिए सामने किराम, वाहन के हवाले से, वाहन की हकीकत को जानने के लिए कमजोरी और ईमान के इस खास जाविये से हमें चंद मराहल को सही से समझना होगा।
1: आइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान, सिर्फ एफएम 107 पर।
0: अच्छा, पहला मरहला वहन है, कमजोरी के हवाले से पहला मरहला है वहन। उसके बाद मामला बढ़कर ज़ौफ यानी ज्यादा वाज़े कमजोरी की तरफ जा सकता है, और अगर उसे भी ना रोका जाए तो फिर इस्तिकानत यानी शिकस्ता होकर बैठ जाने और अमली तौर पर पीछे हट जाने की कैफियत तक पहुंच सकता है। तो ये तीन अल्फाज अभी सिर्फ ज़हन में मलहूज रख लीजिए, वहन, ज़ौफ, इस्तिकानत। बिज़्निल्लाह ताला इनकी मुकम्मल तशरीह आगे आएगी। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि बीमारी जितनी इब्तदाई सतह पर पकड़ी जाए वापसी का सफर उतना ही आसान हो सकता है। पहले वहन से निमटना निस्बतन आसान है, उसे छोड़ दे तो ज़ौफ से लड़ना पड़ेगा, ज़ौफ को भी बढ़ने दे तो मसला मजीद गहरा हो जाएगा। अकलमंदी ये नहीं कि इंसान आखिरी मरहले तक पहुंच कर चीखे अरे मेरे साथ क्या हो गया। अकलमंदी तो ये है कि पहली दड़ाड़ देख कर पूछे ये दड़ाड़ आई कहाँ से। सबने कराम, शायद यही ईमान के मामले में हमारी एक बड़ी जरूरत है कि हमें सिर्फ गुनाहों के बाद अपना मुहासबा नहीं करना, कभी गुनाह से बहुत पहले दिल में पैदा होने वाली कमजोरी का भी मुहासबा करना है। और आज की इस गुफ्तगू का मकसद किसी को मायूस करना नहीं, बल्कि बीमारी को उस वक्त पहचानना है जब इलाज का दरवाजा खुला हुआ है। तो सामने कराम, ओवरऑल प्रोग्राम के इस मरहले तक हमने दो अहम खसूसी मरहले पर गुफ्तगू की है वहन से रिलेटेड। पहली ये कि एक खामोश बीमारी है, बस अवकात इंसान के ज़ाहिरी दीनी मामूलात कायम रहते हैं मगर अंदर से ईमान की क़ुव्वत आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो रही होती है। और दूसरी ये कि वहन को इब्तदाई में पहचान लेना ज़रूरी है, क्योंकि बीमारी जितनी आगे बढ़े वापसी का सफ़र उतना ही दुश्वार हो सकता है। लेकिन वहन पर गुफ्तगू की एक तीसरी वजह भी है, और वो शायद इस मौजू को हमारे लिए मजीद संजीदा बना देती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में आने वाले हालात का जिक्र करते हुए फरमाया, करीब है कि दूसरी कौमें तुम्हारे खिलाफ इस तरह एक दूसरे को बुलाएं जैसे खाने वाले दस्तरखान के प्याले की तरफ एक दूसरे को बुलाते हैं। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, तुम उस वक्त तादाद में बहुत होगे, लेकिन सैलाब के झाग और बहते हुए खसु खाशाक की मानिन होगे। फिर फरमाया कि मुखालिफीन के दिलों से तुम्हारी हैबत निकाल दी जाएगी और तुम्हारे दिलों में वहन डाल दिया जाएगा। पूछा गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह, वहन क्या है? फरमाया, हुब दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत से कराहत। सामने किराम, यह हदीस हमें बताती है कि वहन महज किसी एक फर्द की मामूली यानी कल्बी कैफियत नहीं, एक ऐसी बीमारी है जो इज्तिमाई जिंदगी को भी मुतासर कर सकती है। और हुब दुनिया और कराहियत मौत को वहन की नुमाया अलामतों और मज़ाहिर के तौर पर यानी बताया गया है। अब वहन के लुगवी मफहूम तक हम महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि अब सवाल और भी मजीद आगे बढ़ गया है कि ये दिल में पैदा हो तो ज़िंदगी में किस शक्ल में जाहिर होता है। यहाँ एक बड़ी तंबीह है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बीमारी से खबरदार कर दिया तो मोमिन का काम ये नहीं कि हदीस सुनकर सिर्फ ये कहे कि हाँ ये तो आखिरी ज़माने के हालात हैं, बल्कि सवाल तो ये होना चाहिए कि क्या इस बीमारी का कोई हिस्सा मेरे दिल में तो दाखिल नहीं हो गया। क्योंकि बीमारी की खबर देने का फ़ायदा ही ये है कि इंसान उससे बचने का रास्ता तलाश करे। अगर वहन की इब्तदाई अलामत नज़र आए तो उसे वहीं रोक दिया जाए,

वो एक आरजी कमजोरी की तरह आए और अल्लाह की तौफीक से जल्द गुजर जाए, उसे वक्त इतना वक्त न दिया जाए कि वो दिल में जड़ें फैला ले। अगर इस तरह मिजाज बन जाए तो ये फिर ये शख्सियत और अमल दोनों को अपनी गिरफ्त में ले लेगा। सामने कराम, बीमारी का इल्म खौफ पैदा करने के लिए नहीं, हिफाजत की बसीरत देने के लिए है। इसी तरह वाहन पर गुफ्तगू इसलिए भी जरूरी है, या इसको हम चौथी वजह कह सकते हैं, कि हमारे मौजूदा माहौल में उस तक पहुंचाने वाले रास्ते बहुत ज्यादा हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये खतरा सिर्फ उस शख्स के लिए नहीं जो दीन से बहुत दूर हो, बल्कि दीन से करीब अफराद के साथ भी ये बीमारी लाहिक हो सकती है। ये तालिब इल्म को भी लाहिक हो सकता है, दाई को भी, दीनी कारकुन को भी, और एक ऐसे शख्स को भी जो बरसों से बज़ाहिर नेकी और इल्तिज़ाम के रास्ते पर है। क्यों? क्योंकि इल्तिज़ाम यानी पाबंदी बीमारी से दायमी इम्यूनिटी नहीं देता। जिस दिल को रोज़ फितनों, ख्वाहिशात, थकन, नाकामी, मायूसी, दुनिया की कशिश और मुख्तलिफ किस्म के दबावों का सामना हो, उस दिल को मुसलसल ग़िज़ा और निगहदाश्त भी चाहिए। पहले ज़मानों में भी आजमाइशें थीं, दिल भी तब बदलते थे, फितने भी मौजूद थे, लेकिन हर दौर के अपने पेचीदा चैलेंज होते हैं। हमारे ज़माने में इंसान के कल्ब और ज़हन तक असरअंदाज होने वाले ज़राए की कसरत ने इस निगरानी की ज़रूरत मज़ीद नुमाया करती है। इसीलिए अगर आप ये कहते हैं कि मैं दीन से वाबस्ता हूँ, तो इसका मतलब ये बनता है कि आपको दिल की हिफाजत और ज़्यादा करनी है। ऐसा न कहें कि मुझे वहन से क्या ताल्लुक है, मुझे मेरे अंदर वहन कैसे पैदा हो सकता है, कभी भी नहीं। इस तरह अज़म बिल जज़्म के साथ बात न करें। सामिन किराम, इस बीमारी का असर सिर्फ फ़र्द तक महदूद नहीं रहता। अगर एक शख्स वहन का शिकार हो तो एक फ़र्द कमज़ोर होता है, लेकिन अगर यही कैफियत बहुत से अफराद के दिलों में फैल जाए तो फिर इनफरादी कमजोरी मिलकर इज्तिमाई कमजोरी बन जाती है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहन का जिक्र एक इज्तिमाई मंजर के अंदर किया है कि तादाद बहुत है लेकिन वजन कम हो गया, आवाजें बहुत हैं मगर तासीर कम है, लोग मौजूद हैं मगर कुव्वत इरादी बिखर गई। यही गुस्सा, उनका गुस्सा इस सैल के मंजर में हमारे लिए एक सख्त तंबीह है कि सैलाब बहुत कुछ बहाकर ले जाता है, तिनके, पत्ते, छाग और हल्की चीजें। देखने में हजम बहुत होता है लेकिन अपनी सिमत खुद मुतय्यन करने की कुव्वत नहीं होती, पानी जिधर ले जाए वो उधर चलते हैं, और यही इज्तिमाई वहन का एक खौफनाक नतीजा हो सकता है। तादाद मौजूद हो मगर इरादा कमजोर हो जाए, गुफ्तगू बहुत हो मगर अमल कम हो। सभी इकराम, कुरान में वहन से ममानत बाज ऐसे मकामात पर आती हैं जहां अहले ईमान को मुश्किल हालात में साबित कदमी सिखाई जा रही है। अल्लाह फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। कमजोर न पड़ो, गम में न डूबो, अगर तुम मोमिन हो तो तुम ही सरबुलंद होगे। इसी तरह साबिका अहले ईमान का जिक्र करते हुए फरमाया, फमा वहनू लिमा असाबहुम फी सबीलिल्लाह وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين। अल्लाह की राह में जो कुछ उन्हें पेश आया उसके सबब न वो वहन के शिकार हुए, न कमजोर पड़े और न शिकस्ता होकर बैठ गए। तो यहाँ कुरान के अल्फाज की तरतीब महफूज कर लीजिए, वहनु, ضعفوا, استكانوا, यानी पहले वहन, फिर ضعف, फिर استكانت। गोया कुरान हमें सिर्फ आखिरी शिकस्त की बात नहीं कर रहा है, शिकस्त तक पहुंचने वाली अंदरूनी कैफियतों की तरफ भी मुतवज्जे कर रहा है। तो आखिरी मरहले का इंतजार न करें, पहले मरहले से बीमारी को पहचानें। अब सवाल ये बनता है सामने कराम, कि आखिर वहन है क्या, वहन किसे कहते हैं? चूंकि किसी भी बीमारी का इलाज करने से पहले बीमारी को पहचानना जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर सिर्फ आपसे ये नहीं कहता कि आप बीमार हैं, वो पूछता है कि आप बीमारी क्या है, अलामत क्या है, सबब क्या है, कितने अरसे से, और फिर इलाज तय किया जाता है। कल्बी बीमारियों के साथ भी यही तरतीब चाहिए। सिर्फ ये कह देना कि मेरे ईमान कमज़ोर है काफ़ी नहीं, क्या कमज़ोर है, कहाँ कमज़ोर है, क्या ये वहन है, क्या ये महज वक्ती थकन है, क्या मसला ख्वाहिश का है, क्या शुबह का है, दुरुस्त तशखीस दुरुस्त इलाज का दरवाजा खोलती है। इमाम रागिब अस्फहानी रहमतुल्लाह ने अल मुफरदात में वहन की वजाहत करते हुए उसे ज़ौफ से ताबीर किया है, जो खल्क यानी जिस्मानी साख्त में भी हो सकता है और खुल्क यानी बातनी वामली कैफियत में भी। कुरान ने जिस्मानी कमजोरी के माना में भी लफ्ज़ वहन इस्तेमाल किया है। माँ के

0: FM 107 Time Check.
1: आइए आइए हमारे सर्कस में आपका स्वागत है। 6:01 हो चुके हैं। आज हमारे सर्कस में जो व्हाट्सएप पे मैसेजेस नहीं करते मॉर्निंग के, उन्हें आप आग के गोले में से कूदता हुआ देखिए। आइए आइए, प्लीज आइए आइए, पूरे 50 रियाल, पूरे 50 रियाल। आइए आइए भाई साहब, व्हाट्सएप नहीं करोगे तो लाइन में लग जाओ।

काट दो हवाला कबीर हाजिर हूँ जी एफ एम 107 पे। क्या हाल है आपके? बढ़िया चल रहा है भाई सब कुछ, भाई बहन दोनों को ही कह रहा हूँ मैं। और बताइए कैसे हैं आप भाई साहब? मैं आज सवेरे सवेरे देख रहा हूँ मौसम कुछ बदला सा लग रहा है। ये मुझे अकेले को लग रहा है या आपको भी लग रहा है? मैं सुबह सुबह पार्किंग लॉट में खड़े हुए दो मिनट तो मैं हवा को महसूस करने लगा। मैं तो ये व्हाट इज दिस हैपनिंग, व्हाट इज दिस, मजा आ गया भाई। अच्छा मौसम हो रहा है माशाल्लाह। ह्यूमिडिटी 82% थी, है मतलब थी क्या है, मगर हवा इतनी बुरी नहीं थी। 29 डिग्री हो रहा है अभी, 29, वेरी गुड वेदर मैं तो कहूँगा। इससे अच्छा क्या लोगे अभी? ये आपको एक दो डिग्री ऊपर महसूस होगा थोड़ा सा, लेकिन इट इज़ नॉट बैड अभी के लिए। दोपहर में तो गर्मी पड़ेगी लेकिन अभी के लिहाज से अगर कहूँ तो बुरा नहीं है, ठीक है मतलब। और मैं एक बहुत बढ़िया पोस्ट देख रहा था, उसमें था कि आपने देखा होगा आप डोरेमोन, पता है लोगों को? नहीं पता, आई डोंट नो भाई, पता नहीं। वो पहले हम कहते थे ना नोबिता को देख के एक ऐसा बच्चा है कि एक रोबोट को अपनी सारी की सारी परेशानियाँ बता रहा है। आप सब लोग AI से बात कर रहे हैं तो ये वैसे ही हो गया भाई, वो डोरेमोन है, सारे के सारे AI डोरेमोन है, सारी परेशानियां बता रहे हैं। बट एनीवे आप अपनी परेशानी नहीं बताइए, आप मॉर्निंग करिए, आज ये मैसेज करिए 666-22-107 पे, 666-22-107 पे। सवेरे सवेरे जिन्होंने मैसेज कर दिए हैं मैं उनका जल्दी से पढ़ देता हूँ। एक मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग अंकल फ्रॉम लाइबा एंड नाहयन, दोनों को बहुत बहुत बहुत बहुत सारा प्यार, मॉर्निंग स्वीट हार्ट्स। आज ये मैसेज आया है हमें भारी सारे माशाल्लाह। फरद भाई वालेकुम सलाम भाई, मैं बढ़िया भाई, आप सुनाइए क्या चल रहा है? रिजवान भाई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? मैं बढ़िया रिजवान भाई, एकदम शानदार। और एक मैसेज है, गुड मॉर्निंग, अल्लाह आपको खुश

0: रखे। वालेकुम सलाम मेरे भाई, अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, डबल खुश रखे दिशान भाई। और तौफीक भाई वालेकुम अस्सलाम, अलवकरे से मैसेज किया उन्होंने। और मोहसिन भाई कहते हैं गुड मॉर्निंग, कैसे हो जी, रोल नंबर 2 के अटेंडेंस लगा दो भाई, आज तो आलिया भाई है। और आसिफ भाई टाइप करें, आसिफ भाई वालेकुम अस्सलाम, पहले ही मुझे पता है आप सलाम करने जा रहे हैं दूर से देख लिया मैंने आपका मैसेज दूर से, तो गुड मॉर्निंग भाई और बहुत बहुत सारा प्यार। अच्छा आज मेरे पास एक बहुत अच्छी कहानी है, मतलब लिटरली बहुत अच्छी कहानी है, मेरी पर्सनल फेवरेट है इस कैटेगरी की, जिस कैटेगरी में आज कहानी सुनाऊंगा आपको, सो यू विल डेफिनेटली लव इट। कुछ देर में आएगी वो तो आपको पता ही है, बाकी सवाल बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें करेंगे बुरबुर की। एक मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम, टुडे ओवर एक्टिंग फ्रॉम वकरा टू मसईद, ओवर एक्टिंग फ्रॉम वकरा टू मसईद, जब 12वीं में इसका मतलब को नहीं समझा भाई, लेकिन जो भी अल्हम्दुलिल्लाह। एक मैसेज है, गुड मॉर्निंग, ये मोहम्मद इकरम साहब का मैसेज, टुडे मॉर्निंग सो नाइस, है ना इकरम भाई, मुझे भी ऐसे लग रहा भाई, टुडे मॉर्निंग इज रॉ सो नाइस वेरी रॉ। तो तमाम बच्चों को जो स्कूल की तरफ निकल चुके हैं और माँ बाप जो स्कूल की तरफ तैयार कर रहे हैं उन सबको मेरा प्यार। मिलते हैं पूरे 10 मिनट 33 सेकंड के बाद, सीधा सुबह की अदकार इंशाल्लाह, उसके बाद होगी मुलाकात, जाना आपने नहीं, आपको तो पता ही है भाई, बेस्ट जगह पर हो यार, है ये तो मानना पड़ेगा आपको, स्टे ट्यून्ड।
1: एक पुरसुकून और खामोश सुबह फजर की रोशनी से शुरू होती है, इन्हीं पाकीज़ा लम्हों में दुआएं कबूल होती हैं, बरकतों का नुज़ूल होता है और अल्लाह की रहमतें उनकी तरफ मुतवज्जे होती हैं जो उसे याद रखते हैं। इरशादे खुदावंदी है, वज़्कुर इस्मा रब्बिका बुकरतन व असीला, और सुबह शाम अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र किया करो। और अब समाज फरमाइए सुबह के अज़कार FM 107 पर।

भाई कहाँ गया मुझे, ये इंडिकेटर कैसे चलता है, वाइपर किधर है, गियर, एकदम से सब भूल जाता हूँ मैं। मगर कुछ लोग माशाल्लाह बहुत बढ़िया होते हैं, वो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देते हैं पूरी तरीके से। उनका जो ब्रेन होता है इतनी बढ़िया मसल मेमोरी वाला होता है कि जैसी राइट हैंड साइड पर बैठते हैं ऑटोमेटिकली वो लोग एकदम से क्या कर लेते हैं, उसको ऑन कर लेते हैं कि भाई अरे तो पता नहीं कब से चला रहा हो गाड़ी। आज एक सर्वे कर लेते हैं, क्योंकि एक सर्वे किया गया था ऑलरेडी 2018 में। तो ये जो 2018 में सर्वे किया गया था, हालांकि ये दुबई में किया गया था, अब हम उतने मेजर स्केल पे नहीं कर सकते, 40,000 लोगों का डेटा था वो, मगर हम शो में तो कर ही सकते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, राइट हैंड ड्राइव या लेफ्ट हैंड ड्राइव, ये बता दो भाई आप, और उसमें आप इंक्लूड करना चाहें तो बता दीजिएगा कि ऑटोमेटिक या मैनुअल। पर मेजरली जो हमारा आज का सवाल है वो बड़ा सिंपल है, आज हम एक छोटा सा सर्वे कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड ड्राइव और राइट हैंड ड्राइव, ये चूज कर लीजिए आप, रीजन हो या ना हो

मैं गाड़ी ही ठोक दूंगा। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये अब्बास मैंने मैसेज किया है भाई। जिन्हों देखो फर्क पता क्या है, जिन्होंने यहाँ पर ही सीखी गाड़ी, उससे पहले कभी जिंदगी में नहीं चलाई गाड़ी, अगर उनको एकदम से राइट हैंड ड्राइव मिल गई ना तो दिमाग के सर्किट एकदम से इधर उधर तारे फटने लगते हैं। आई नो ये करंट वाली आवाज़ नहीं थी, सॉरी फॉर माई बैड साउंड इफेक्ट्स, इतने में इतना ही मिलेगा, बट वो समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक मैसेज है सलमान भाई का, कहते हैं कि लेफ्ट हैंड ड्राइव बिकॉज 10 साल से आदत हो गई है। चलो एक वोट आ गया है लेफ्ट हैंड ड्राइव को। सुम्बुल भाई कह रही है ड्राइव होनी चाहिए, डजेंट मैटर राइट और लेफ्ट। टीचरों वाला रिप्लाई रहता है इनका, मुझे नहीं फर्क पड़ता लेफ्ट है राइट है। तो बहन एक एक तो चूज़ कर लो प्लीज़, ऐसे नहीं हो सकता ना कि आप इधर भी उधर भी। सी सौ नहीं खेलो मेरे साथ, एक एक जब एक बताओ लेफ्ट हैंड ड्राइव या राइट हैंड ड्राइव। आसिम भाई कहते हैं गुड मॉर्निंग कबीर भाई, आपकी सूरत मेरे दिल में ऐसी बस गई है जैसे छोटे से दरवाजे में भैंस फंस गई है। अरे भाई भाई इनके लिए तो एयर हॉर्न निकाला भाई ने, क्या बात बोले यार, दिल जीत लिया भाई। तो मतलब मैं वो भैंस हूँ, वैसे आजकल तो हो ही रहा हूँ भाई मैं उस टाइप का। ये लो आसिम भाई, और आसिम भाई साथ में मेरा साउंड इफेक्ट ले लो। अभी सही है, दरवाजे में फंस गया ना इसलिए। लव्ड इट आसिम भाई, लव्ड इट भाई। और राइट हैंड साइड चूज करिए संबुल बहन ने। अच्छा यहाँ रहते हुए राइट हैंड साइड। एक मैसेज है, मुझे तो क्या है, मुझे तो चलना ही इधर स्टार्ट की है और अभी एक साल ही हुआ। अच्छा इधर ही, ओ आपने शुरू ही गल्फ में करी गाड़ी, उससे पहले चलाई भी नहीं है भाई। तो आप राइट चला के देखना चला पा रहे हो कि नहीं, और खुले मैदान में करना, ट्रैफिक में नहीं। एक मैसेज है कबीर भाई, मैं तो राइट हैंड साइड के साथ हूँ, जाना चाहूँगा, 15 साल से चला रहा हूँ। नौशाद अहमद साहब ने मैसेज, नौशाद भाई तो यहाँ नहीं चला रहे क्या, मतलब आई मीन चूँकि आपका कतर का नंबर है तो आप यहाँ बिल्कुल नहीं चल रहे गाड़ी। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपनी बड़ी बात नहीं करता हूँ, मैं दोनों ही साइड चला लेता हूँ, इधर हो तो उधर हो, घर पे जाने के बाद अपनी खुद की गाड़ी चला लेता हूँ। बहुत बढ़िया भाई, पर एक प्रेफरेंस की बात है मुदस्सर भाई, एक फिर भी चूज़ करनी पड़ेगी सर्वे के लिहाज से। एक मैसेज है, इतने में इतना ही चल रहा है, ये बढ़िया भाई है ना, सभी मेरा। नसीम भाई कह रहे हैं भैंस की आवाज़ निकालो, अरे यार ये वो मैंने आसिम भाई के ना शेर व शायरी पर, चलो निकाल देता हूँ मैं। आसिम भाई का शेर पता क्या था, वो कह रहे हैं कि आपकी सूरत मेरे दिल में ऐसे बस गई है जैसे छोटे से दरवाजे में भैंस फंस गई है। तो मैंने आवाज़ निकाल दी थी उस पर, ये थी आवाज़। निकालो 5 रियाल निकालो, फ्री में थोड़ी दूंगा मैं बार बार। एक मैसेज कबीर भाई, क्या मैसेज है, सेंटर ड्राइविंग भी होनी चाहिए। अरे मेरा भाई ये जो है मैसेज किया, मैसेज मैंने कह रहे सेंटर ड्राइव होनी चाहिए ऑटो रिक्शा वाली। हाँ बस देखो फिर भी एक चूज़ कर लो, कर लेना मजाक, एक तो जवाब दे दो। एक मैसेज, इंशाल्लाह जब जाएंगे पाकिस्तान तो ट्राई करेंगे अगर मौका मिला। मोहसिन भाई खाली जगह पर चलाना भाई, मुझे डर लग रहा है, आपने कभी राइट हैंड साइड चलाई नहीं है और आप पाकिस्तान जाके सीधा ट्रैफिक में अगर राइट हैंड साइड चलाएंगे तो लोगों को दिक्कत हो सकती है। एक मैसेज है भाई कबीर, आमिर भाई फ्रॉम मसीद, कैसे मेरा भाई। एक मैसेज, आफ्टर गोइंग बैक टू माय होम कंट्री आई ट्राइड ड्राइविंग ऑन द राइट हैंड साइड, आई फेल्ट लाइक आई वाज लर्निंग टू ड्राइव ऑल ओवर अगेन। यही मेरी परेशानी है अबू अहमद भाई, तभी तो ये सवाल है। मैं जब इंडिया जाता हूँ और मुझे एकदम से राइट हैंड साइड की ड्राइव मिल जाती है, मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। अरे कैसे होता है, और एक अलग सी नर्वसनेस आ जाती है। एक तो मैं रहता भी ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पे गाड़ियों का ट्रैफिक नहीं है, लोगों का ट्रैफिक है, तो वैसे भी मन नहीं करता ड्राइविंग करने का, मगर दैट्स हाउ इट इज़। आई थिंक अभी तक जितने वोट्स मिले हैं वो लेफ्ट को मिले हैं और राइट को एक दो वोट और मिले, इक्वल चल रहा है अभी मामला भाई, राइट साइड ड्राइविंग और लेफ्ट साइड ड्राइविंग को। पर देखते हैं एंड ऑफ द शो कहाँ तक पहुँचेगा ये मामला। और हफ्सा बहन ने मैसेज किया है, अभी मिला सिग्नल, लेफ्ट एज लेफ्ट पे ही सीखा है। देखो ये है ना, कुछ लोगों ने जिन्होंने लेफ्ट पे ही सीखा है, कभी राइट नहीं चलाई है, तो और भी ज़्यादा मुश्किल है, वो मुश्किल डबल ट्रिपल हो जाती है क्योंकि सब कुछ अलग हो गया ना। वाइपर जो है वो इधर का इधर आ गया, इंडिकेटर इधर का इधर आ गया, लेन पूरी समझने में देर लगती है, वो होता है। एक मैसेज है, अगर मैनुअल गाड़ी हो तो लेफ्ट साइड ड्राइविंग करना बहुत ही मज़ा आएगा। टू थिंक ऑफ इट, मुदस्सर भाई की बात एक्चुअली में बढ़िया तो लग रही है भाई। हाँ वैसे मज़ा तो आएगा, ये अब मैनुअल अगर लेफ्ट साइड ले सकते हैं ना कतर में, तो क्या टेंशन है।
ये ट्राई करने वाली चीज है। एक मैसेज है, सॉरी कबीर भाई, लेफ्ट हैंड लिखना था कतर वाला, अच्छा लेफ्ट हैंड तो आपका एक वोट फिर मैं राइट से काट के लेफ्ट में कर देता हूँ। एक मैसेज है, वैसे तो बोथ लेकिन लेफ्ट इज प्रीफर्ड। ओके, समी भाई ने लेफ्ट हैंड साइड को वोट दिया भाई। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, लेफ्ट

0: हैंड साइड शोली, राइट हैंड साइड में इंडिकेटर में वाइपर और वाइपर में इंडिकेटर चलता है, यही मेरे साथ है भाई खाजा भाई। हालांकि कुछ गाड़ियां हैं जिनमें फंक्शन चेंज नहीं होता, मगर बहुत एक दो कंपनी है। और एक मैसेज क्या है हमारी इसरा बहन ने, हफ्सा बहन ने, वो लिखती हैं यस एग्जैक्टली आई ट्राइड इन पाकिस्तान एंड नहीं हुआ राइट पे। वही ना, एक बार अगर लेफ्ट सीख लिया ना और लेफ्ट पे ही सीखा है और फिर आपको कोई कह दे कि राइट हैंड साइड ड्राइव है, दो भाई तोते फेल हो जाते हैं, फिर नहीं हो पाता। मैं तो समझ नहीं पाता कि राइट में अच्छा लेफ्ट अच्छा, ओ अब राइट हैंड फास्ट है, जैसे इंडिया में लेफ्ट की जगह अब राइट जो है फास्ट लेन हो जाती है, सो दिमाग वो रजिस्टर नहीं कर पाता कि अच्छा ओ ये फास्ट लेन है, तो वही रजिस्टर करने में टाइम लग जाता है। ड्राइविंग तो दूसरी बात है। अगर कोई राइट में चला रहा तो मैं कहता हूँ भाई लेफ्ट में लो ना, फास्ट लेन है, तो बोला ओ इंडिया इंडिया है, सही जा रहा है सही जा रहा है। आसिम भाई कह रहे हैं राइट हैंड पाकिस्तान में और लेफ्ट हैंड सऊदी अरब में। भाई ये चॉइस नहीं है, ये ये रूल है आसिम भाई, चॉइस थोड़ी है ये, मैं आपकी चॉइस पूछ रहा हूँ आसिम भाई, अगर चॉइस मिलती तो क्या करते हैं आप, दैट इज़ व्हाट आई एम आस्किंग। कादिर भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कादिर भाई, क्या हाल है भाई के, आई कांट फॉरगेट रूट्स, ओफ सुंबल बहन क्या जवाब, आई कांट फॉरगेट माई रूट्स, आई जस्ट डोंट या। एक मैसेज है लेफ्ट हैंड साइड नंबर वन, फरहत भाई लेफ्ट हैंड साइड नंबर वन, बड़ी मोहब्बत है, क्यों भाई लेफ्ट हैंड साइड पे इतनी मोहब्बत। और ज़रा एक भाई इन्हें कॉल कर लेते हैं, ये क्या रही हैं, हाँ तो भाई लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड ड्राइविंग के लिहाज से ये आपको बताना है, क्योंकि आज हम एक छोटा सर्वे करें, लेट्स सी के खतर में कितने लोग हैं, अभी तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लोग ज़्यादा हैं। फरहत भाई कह रहे हैं प्यार हो गया, अरे वीरा भाई अस्सलाम वालेकुम, हेलो हाँ जी आ तो रही है आवाज़, लेकिन मेरा भाई बहुत दूर से आ रही है। हाँ हाँ कार में तो बैठे हैं लेकिन बहुत फिर भी दूर से आ रही है मेरा भाई।
1: आज जो टॉपिक दिया ना ये आपको दोनों लोगों के बीच में बैठ के यानी पाकिस्तान बांग्लादेश जहाँ वो राइट में चलाते हैं और मिडिल लिस्ट में जो लेफ्ट में चलाते हैं, इन लोगों के बीच में रह के सवाल करना चाहिए था।
0: अच्छा
1: अक्सर लोग तो कतर में आप सवाल किया सब तो लेफ्ट ही है तो लेफ्ट की तरफ जाएगा।
0: नहीं नहीं ऐसा नहीं है, पता है राइट वाले भी क्यों आ रहे हैं मैं बताता हूँ आपको, कुछ लोगों को देसी स्टाइल में गाड़ी चलाने में मजा आता है तो अभी राइट हैंड साइड वाले भी बहुत सारे भाई, वो कह रहे हैं उनको राइट हैंड साइड पे सच में मजा आता है।
1: मैं कोशिश किया था बहुत जल्दी,
0: कोशिश किया आपने,
1: मैं मुल्क जाके कोशिश किया था लेकिन वो पैडल किस में दबा वो भी भूल गया मैं।
0: भाई यही तो परेशानी है भाई, आती अच्छा लोग इंडिया से सीख सीख के आए, 15-15 साल चला के आते हैं लेकिन फिर यहाँ आके एक बार लेफ्ट चला लेते हैं तो फिर उन बत्ती गुल हो जाती है कि करना क्या है, एकदम से शिफ्ट नहीं हो पाते। तो वही आपने सीखी कहाँ गाड़ी, यहाँ पे सीखी या इंडिया में सीखी?
1: मैं सीखे कतर में।
0: आपने कतर में ही सीखे, तभी तो मेरा भाई, तब तो परेशानी आएगी, ये अच्छी बात भी बुरी बात भी है, बट ठीक है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड चूज करें या राइट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड राइट, कभी मैनुअल गाड़ी चलाई है आपने?
1: नहीं नहीं मैंने लेफ्ट।
0: अरे भाई मैं
1: आपको इधर था उस वक्त चलाया था लेकिन
0: अरे भैया मैनुअल का देखो मजा तो है, ये बात है मैनुअल गाड़ी में मजा तो है, बट ठीक है मेरा भाई
1: हमेशा हाथ घुमाते रहते हो, इधर घुमाओ उधर घुमाओ, दोनों पैर काम पे लगा दो
0: भाई। लेकिन ये बताओ यहाँ पे अगर ट्रैफिक जब कम होता है ना तो उसमें मैनुअल का बहुत मजा आता है भाई, सच्ची बता रहा हूँ मैं, ट्रैफिक हो तो मैनुअल फिर जहर हो जाता है, फिर मतलब समझ लीजिए आपका गाड़ी के अंदर बैठे बैठे कार्डियो हो जाएगा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया भाई, और बताइए क्या चल रहा है सुबह सुबह?
1: मेरा ड्यूटी तो हर रोज यही होता है कि दो बच्चे दो तरफ एक बिनोमरन की तरफ एक फलत जदीदा में बीच में मेरा एक घंटा गुजर जाता है।
0: हाँ चलो अल्हम्दुलिल्लाह इस बहाने मैं आपको और आप मुझे मिल जाते हैं, अच्छी बात है मेरा भाई, थैंक यू सो मच भाई, बहुत प्यार बहुत प्यार भाई, थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए अपना। ओके भाई वालेकुम सलाम। तो भैया ना अगर आपने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पहली मरतबा सीखा है ना तो फिर आप राइट पे जा नहीं सकते, आप बहुत दिक्कत आ जाती है। एक मैसेज अस्सलाम वालेकुम भाई, इट्स नॉट योर चॉइस इट्स बाय लॉ सो वी नीड टू फॉलो नेवर द लेस आई एम कंफर्टेबल। नहीं नहीं मैं अरे बाबा वो तो मुझे पता है लॉ के हिसाब से अली भाई, नेवर द लेस आई एम कंफर्टेबल ऑन बोथ साइड्स, व्हेन गो आउट ऑफ कतर आई ड्राइव राइट हैंड फ्रॉम एयरपोर्ट डिपेंडिंग ऑन कंट्री रूल, वैसे पर्सनल चॉइस इज लेफ्ट। हाँ ये बात है लास्ट वाला पूछा था मैं, पर्सनल चॉइस क्या है, अभी भाई लेफ्ट हैंड साइड वाले बहुत मिल रहे हैं। एक मैसेज कबीर भाई लेफ्ट हैंड सही है, राइट हैंड ड्राइव सीट पर बैठ के कहाँ ना पड़ता है ड्राइवर कहाँ है, ये है क्या? साथ में क्या कह रहे हैं? दोबारा पढ़ता हूँ, कबीर भाई लेफ्ट हैंड साइड सही है, राइट हैंड ड्राइव सीट पर बैठ के कहना पड़ता है कि ड्राइवर कहाँ है। अरे यार ये क्या बात है, ये कौन सी बात है? जिसाद भाई, फरद भाई के बाद एक मैसेज है राइट हैंड साइड, चलो राइट वाले भी आ रहे हैं भाई। रिजवान भाई ने मैसेज किया, रिजवान भाई बहुत सारा प्यार किया। एंड इसरा बहन ने मैसेज किया, वो कहती है व्हेन आई वेंट टू पाकिस्तान आई थॉट टू गेट अ रेंट अ कार। जब मैंने पाकिस्तान की पब्लिक एंड राइट हैंड साइड ड्राइविंग देखी, मैंने यही सोचा अगर मैं चलाऊंगी आधी पब्लिक जो है सबके टिकट कट जाएगी। ये यही सोच के बहन मैं भी नहीं चलाता बिल्कुल नहीं, रिक्स अपने को लेने के नहीं, नो रिक्स। तो आपने जो प्लान अपना कैंसिल किया है पाकिस्तान में राइट हैंड साइड नहीं चलाने का, इट्स अ वेरी गुड चॉइस, प्लीज स्टिक टू इट। एक मैसेज है, आई गेट मोस्ट कंफ्यूज एंड राउंड अबाउट्स इन पाकिस्तान। सईद अली भाई थैंक यू सो मच फॉर मेंशनिंग इट। ये दोनों के लिए हूटर बजाया मैंने, इसरा बहन के लिए भी और भाई के लिए भी। मैं बताऊं ये मेजर कंफ्यूजन मोड़ वोड़ पे नहीं आती भाई, मेजर कंफ्यूजन है राउंड अबाउट की, एंटर किधर से करना है। ये जो दिमाग एकदम से ग्लिच खा जाता है ना, ये होता है, ये मेरे साथ तो होता है। मैं कहता हूँ कुछ लोग बहुत माहिर हैं इस मामले में जो दोनों जगह ड्राइविंग कर लेते हैं। एक में से भाई मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ, मुझे राइट में मजा आता। मेरा भाई रीजनिंग दी है भाई ने, बिलाल भाई बहुत बढ़िया, वालेकुम अस्सलाम। एक मैसेज है, पाकिस्तान जब ड्राइव कोई और कर रहा हो तो हमको ऐसा लगता है अब मारेगा ये कार, तब मारेगी, इसलिए हमारा पैर ब्रेक मारने लग जाता है खुद ब खुद। अरे मेरा भाई, अरे बट ये प्रॉब्लम डे वन को ही होती है, फिर नॉर्मल हो जाती है। मेरे साथ ये नॉर्मल नहीं होती भाई ये दिक्कत। आई रियली फील आमिर भाई के ऐसा लगता है भाई मेरे पास ब्रेक क्यों नहीं है, ये कहीं ठोक ना दे। और लोग इतना चिपक के चलाते हैं भाई, हमारे मुल्कों में इतना चिपक के गाड़ी चलाते हैं और फुल कॉन्फिडेंस। एक मैसेज आसिम भाई के लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बिकॉज आई एम ड्राइविंग फ्रॉम 29 ईयर्स। तब तो आसिम भाई बात ख़त्म हो गई भाई। बात ही ख़त्म हो गई। एक मैसेज है, मैनुअल में स्लोप मिल जाए तो मज़ा आ जाता है, मैनुअल में स्लोप मिल जाए तो मज़ा आ जाता है। फैजान भाई खतरों के खिलाड़ी सीजन जो अगला आएगा उसमें आप जाइए भाई। एक और मैसेज है, मैनुअल ड्राइव क्या, राइट हैंड ड्राइव इज़ अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज only selective countries I prefer left hand drive is best preferred. I have cars in both countries, India as well as Qatar. For your information, I drive manual car from 2008 until 2020 in Qatar and I also drive manual in Dubai in Saudi Arabia. काफी international type की बंदी हैं भाई आप। Manual driving is also attentive rather than automatic. भाई ये मैंने कभी सोचा नहीं था खादिर भाई आपके एंगल से करें, attentive ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है नदीम भाई के? जी भाई
2: बताएगा।
0: बढ़िया भाई एकदम शानदार, क्या कहना चाहोगे?
2: ये लोग इतना लेफ्ट राइट का अपना चॉइस तो बता रहे हैं भाई, मैं तो वहाँ जाके बाइक चलाता हूँ तो मैं उल्टी लेन पे चला जाता हूँ।
0: वही ना, वो बुरी लेफ्ट
2: लेके गलत ट्रैक पे चल रहा होता हूँ, फिर बाद में याद आता है ये तो यहाँ पे तो साहब गाड़ी आएगी।
0: हाँ ये तो और परेशानी है भाई, ये तो और भी ज्यादा परेशानी है मुझे, तो मेजर परेशानी राउंड अबाउट पे आती है भाई।
2: मेरा तो सबसे ज्यादा इशू ये होता है कि मैं हमेशा गाड़ी जब टर्न वन मार रहा हूँ तो चल, अगर सामने गाड़ी नहीं खड़ी है ना, खाली है रोड, तो मैं तो रॉन्ग साइड चला जाता हूँ।
0: यही तो परेशानी है। गाड़ी वाड़ी चलाते हैं अब? नहीं चलाते हैं, बाइक पे चलाते हैं।
2: मैं यहाँ पर, मेरे को हो गया है करीबन 11-12 साल चलाते हुए। हाँ। मैंने इंडिया में एक बार भी नहीं चलाई।
0: क्या बात कर रहे हो यार,
2: एक बार भी नहीं चला। मैं मेरे कजिन लोग के साथ बैठता हूँ, वो लोग बोलेंगे कार जाए ना भाई, मैं बाइक से, तुम लोग जाओ कार से। क्योंकि जैसे अभी यहाँ पे कैसा है, अभी आपको 100 किलोमीटर जाना है।
0: हाँ।
2: आपको पता है 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा।
0: हाँ।
2: वहाँ पे 100 किलोमीटर जाना है, 4 घंटे चाहिए।
0: हाँ वो तो है,
2: तो बाइक 1 घंटे में पहुंच जाती है।
0: हाँ वो फुटपाथ पे चला के
2: वो कहीं भी चला दो लेकिन। हाँ। वो पहुंच जाएगी। तो ये जो है ना, मतलब अभी मेरे समझ लो रिलेटिव के घर जाना है तो इट्स लाइक 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर, एक एक घंटा सवा घंटा लग जा रहा है गाड़ी में। तो वो बैठ, ऊपर से वो वहां पे ज्यादातर आपको पता है गाड़ियों में एसी बहुत कम चलते
0: हैं। हाँ।
2: तो वो बैठे बैठे एकदम बंदे को स्ट्रेस हो जाता है, सर दर्द और एकदम गर्मी।
0: तो आपने मतलब इंडिया में सीखी नहीं कभी गाड़ी, या फिर क्या सिस्टम है वहाँ, कभी लाइसेंस?
2: मैं एक्चुअली कॉलेज में मैंने चलाई है, मतलब 2-4 बार ऐसे चलाई है रोड।
0: हाँ।
2: बट मैंने मैनुअल चलाई है वहां पर, बट मैंने कभी कंटिन्यू नहीं किया बिकॉज एक तो था टाइम की वजह से, और दूसरा ये था मैं आपको बता दूं, मैं मेरे कजिन के साथ जाता हूँ इंडिया में, तो वो गाड़ी चलाता है, तो वहां पे कैसा है मालूम है, अभी ऐसे आप सिग्नल पे खड़े हो, साइकिल वाला आएगा आपका आईने को मार के चलाया थार। वो आईने को डैमेज हुआ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ सॉरी करके वो गया। बाइक वाला आएगा आप सिग्नल पे खड़े हो, पीछे से ब्रेक लेट लगाएगा थार करके आवाज आएगी, आप गाड़ी से उतर के देखोगे वो सॉरी बोल देगा। कुछ क्योंकि वहां पे कुछ वही नहीं है, हाँ, जो आ रहा है मार के जा रहा है
0: भाई, वहाँ खौफ थोड़ी है इस बात का, आगे लग गई गाली तो लग गई, कोई बात नहीं, सॉरी भाई साहब चले आगे।
2: कुछ और गाड़ी वाला भी कुछ नहीं बोल रहा, लग गए तो लग गए, और कुछ कुछ होते हैं जो लड़ झगड़ के पैसा वैसा ले लेते ज्यादा डैमेज में, बट वो होया एक बार तो मेरे जीजू का आईना तोड़ के साइकिल वाला चला गया है
0: यार। ये तो मुझे लग रहा था दिल्ली दिल्ली वाली चीजें हैं, सब मुंबई में भी हो रहा है, ये क्या बात है भाई।
2: मुंबई में बहुत, और इतना मतलब ऐसा ड्राइविंग है तो मेरा दिल ही नहीं करता, मैं चलाता ही नहीं हूँ, मैं बाइक अपनी है, बाइक भी क्या है आजकल तो स्कूटी है, स्कूटी लेके निकल जाओ जा जा रहा है
0: भाई। आपने तो मुझे डरा दिया ये बता के, मैं तो वैसे अब मैं तो बाइक भी नहीं चलाऊंगा अब।
2: मैं कुछ नहीं भाई, स्कूटी तो वो जरूरत पड़ ही जाती है वहां पे जाने आने के लिए, क्योंकि अब तो मुंबई में तो कबीर भाई ऐसा है कि आप टैक्सी के लिए एक एक घंटा खड़े रहो, टैक्सी भी नहीं मिलती है
0: भाई, आपके यहाँ तो फिर भी मिलती नहीं है, हमारे यहाँ तो कॉल पे पूछते हैं दिल्ली में कहाँ जाना जी, एयरपोर्ट, ठीक है नहीं जाऊंगा। उससे बोलो कैंसिल कर दो, मैं नहीं कर रहा। तो ये सिस्टम है हमारे। ये पूछ रहे हैं आसिफ भाई, मुंबई में कहाँ से हैं आप?
2: मैं मेन मुंबई से हूँ, मैं मसगांव एरिया से हूँ।
0: कौन सा एरिया?
2: सेंट्रल सिटी मसगांव।
0: अच्छा ओके, ये मैंने नाम इतना सुना नहीं है इस बात का, ये किधर पड़ता है?
2: मुंबई सेंट्रल, मेन मुंबई सेंट्रल स्टेशन से।
0: अच्छा ओ भाई, बड़े बड़े साहब हैं। चलने दे मैं, ठीक है समझ गया, मायने रोला पा दिया
2: वहां पे बोलने के लिए बड़े हैं, मैं बता रहा हूँ सिर्फ बोल के बड़े बोलते।
0: अरे मेरे प्यारे मुंबईया भाई, थैंक यू मेरा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, लेकिन कॉल करने के लिए बहुत प्यार भाई को, थैंक यू मेरा भाई, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। तो जैसे नदीम भाई ने कहा ना, ये बाइकों पे तो और दिक्कत है, अलग लेन में चल रहे हैं भाई लोग, लेफ्ट एंड राइट वाले, अभी वोटिंग मीटर चल रहा है हमारा और लेफ्ट वाले लोग जीत रहे हैं अभी। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम कबीर भाई, कैसे हो?
0: मेरा विमलेश भाई, क्या हाल है भाई के?
3: भाई मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, तुम्हारी आवाज सुन के लग रहा है कि तुम अच्छे ही हो।
0: अल्हम्दुलिल्लाह भाई, एकदम बढ़िया भाई। मैं एक दो सुबह में ढूंढ रहा था, मैंने कहा विमलेश भाई को पकड़ के चाय जरूर पीऊंगा भाई मैं, लेकिन जब आपकी सुबह वाली शिफ्ट घर पे हुई तब
3: मुश्किल नहीं, मैंने मैंने प्लान बना लिया है, अब तुम दो तीन दिन के अंदर जो है पकड़े जाओगे।
0: डन डन,
3: ठीक है, डन। शाम दोपहर का मैं पहुंचूंगा, मैं अपनी गाड़ी पे बैठा के छत पे और जाऊंगा चाय।
0: मेरा भाई, मेरा भाई, ये विमलेश भाई पहले हमारी तरफ से ले लो। विमलेश भाई के लिए अब विमलेश भाई क्या क्या कहना चाहोगे भाई?
3: भाई एक तो मेरा एक दोस्त यहाँ पे कतर में आया था, तो मैं ड्राइविंग कर रहा था उसको साथ में बिठा के, तो मैं जब ड्राइविंग कर रहा था ना, तो मैं उसे बता रहा था कि लेन पे यहाँ प्रायोरिटीज होती है, कौन सी गाड़ी जाएगी, राउंड अबाउट पे हमें पता होता है ऑटोमेटिकली, मतलब एक दूसरे के भरोसे चलते हैं ना कतर में, कि भाई वो प्रायोरिटी पता है उसको कि नहीं घुसेगा। तो वो उसने वो देखा और उसने बोला देख सुन बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा तेरे देश ये कतर में आके, लेकिन ये जो तू प्रायोरिटी प्रायोरिटी यहाँ खेल रहा है ना, वहाँ मत खेल लियो। क्योंकि इंडिया में अगर तूने प्रायोरिटी वाला सिस्टम रखा कि सामने वाला नहीं आएगा, वो आएगा और तू प्रायोरिटी के साथ कहीं और मिलेगा, है ना। तो बहुत सावधानी बरतती तुझे प्रायोरिटी में। और जब मैं इंडिया गया, वही दोस्त मुझे उसने बाइक दिया और वो मैं चला रहा था, तो वो ना अपने दोनों टांगों से ना वो गाड़ी कंट्रोल कर रहा है डर से, ठीक है ना, बार बार ना मुझे ऐसे दबा दे रहा है कि डर से, भाई लेफ्ट लेना है राइट लेना है, प्रायोरिटी दी है प्रायोरिटी दी है, ठीक है ना। मैंने बोला भाई कम से कम बाइक सही चला, लेकिन जब गाड़ी की बात आती है इंडिया में कोई माई बाप नहीं है वहां पे, ये मैं भी मानता हूँ।
0: पर आप प्रेफर कौन सी करते हैं विलेज भाई, लेफ्ट हैंड ड्राइव या फिर राइट हैंड ड्राइव, किस तरफ आपको ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है अभी?
3: मैं एकदम यही कतर वाले में एकदम कंफर्टेबल हूँ, राइट वाले में मैं भी घुसता हूँ वहाँ पे, इंडिया में जब मैं जाता हूँ मैं घुस जाता हूँ किसी भी लेन में, तब याद आता कि नहीं भाई तब अपनी प्रायोरिटी याद आती नहीं, इंडिया में आया है तो इंडिया की तरह चलना है ना। तो मैं यहाँ के प्रेफर करता हूँ, मैं इतना कंफर्टेबल हो गया हूँ ना कि मतलब
0: और पता है एक बात से बड़ी करेंगे, इंडिया में जब कोई आदमी बिल्कुल लेन पकड़ के चल रहा हो, स्पीड मेंटेन करके चल रहा हो, तो दूर से आदमी समझ जाता है ये बाहर से आया है। ये अभी बाहर से आया।
3: अगर तुमने रूल्स फॉलो, जैसे रूल्स, मुझे ना मतलब टोकने की आदत हो गई, लेकिन मैं एक दो दिन में सुधर जाता हूँ।
0: हाँ।
3: ज्यादा दिन नहीं लगते मुझे वहाँ का प्रयास करने में।
0: हाँ।
3: मैं दो दिन में जो है सुधर जाता हूँ। पहले हाँ। दो दिन हरे हो भाई, दूसरे दिनों के रहा क्या भाई क्या। मैं नहीं, नहीं, मैं तो बस हाल चाल पूछ रहा था।
0: हाँ।
3: तो वहाँ पे ज्ञान ना बांटे और अपनी प्रायोरिटी को वहाँ के हिसाब से समझे, भूल जाए। जैसे लोग चलते हैं ना, ये मत सोचे कि मेरे पास इंश्योरेंस जा रही है, उसके पास तो नहीं है ना, सामने वाले के पास
0: वहाँ नहीं चलता है सब,
3: वहाँ
0: नहीं चलता है।
3: तो ये मेरी पटरी थोड़ी सी हालत खराब होती है इंडिया में। लेफ्ट राइट का ध्यान रखना है, लेन ये सब नहीं सोचना कि वो उसका लेन नहीं है, इसका लेन नहीं है।
0: भाई ये सवाल पूछ के मैंने ऐसा कर दिया ना, मैं कभी नहीं चला पाऊंगा अभी इंडिया में, मुझे सबने डरा दिया।
3: और दिल्ली में तो, दिल्ली में तुमने कम से कम स्कूटर तो ड्राइव किया होगा।
0: जी किया है, किया है।
3: वो बेस्ट सवारी है यमुना के पुल की, यमुना के ऊपर से लेके चले जाओ।
0: अरे भाई
3: लोग बोले वाह भाई वाह, ये जो ना पहला उड़ता हुआ स्कूटर पानी के ऊपर, यही है, यही है।
0: अरे क्या याद दिलाया यार, क्या याद दिलाया विलेश भाई, ठीक है मेरा भाई। बहुत प्यार मेरे भाई को, थैंक यू सो मच अमलेश भाई। तो विमो भाई ने जो बताया, विमो भाई भी कह रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, एक मैसेज आया, आई कैन ड्राइव बोथ लेफ्ट राइट मैनुअल ऑटोमेटिक इन पाकिस्तान, द एडवाइस आई गॉट प्रोटेक्ट योरसेल्फ, बाकी सब गए तेल लेने। यही एटीट्यूड चाहिए कासिम भाई, दिस इज द एटीट्यूड। इरफान भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, दो हवाले के बी आर 500 mg, ये गोली सुबह लेनी बहुत ज़रूरी है। और भाई कहते हैं हाउ आर यू, आई एम बढ़िया इरफान भाई, बताइए। फराज भाई कह रहे हैं बोथ साइड्स आर ओके फॉर मी, प्रेफर्ड इज लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड को ज़्यादा वोट मिल रहा है, जबकि लोग दोनों साइड चला लेते हैं उसके बावजूद, और कहते हैं लगता है आज की स्टोरी ड्राइविंग साइड से लिंक्ड है। अच्छा, यू नेवर नो। खादिर भाई कह रहे हैं कबीर भाई जो ड्राइविंग स्कूल की गाड़ी किस डायरेक्शन में चलाना चाहिए, समझा नहीं मैं खादिर भाई, मतलब इधर तो लेफ्ट ही होगी और क्या होगी। एक मैं से कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, मैनुअल और ऑटोमेटिक, योर कमेंट मैनुअल में बैठे बैठे कार्डियो हो जाता है इस ट्रैफिक में, इज एब्सोल्युटली राइट। मैनुअल मैंने चलाई दिल्ली में, खाजा भाई ऐसी चीखे मारते हैं ना, पैर समझ नहीं पाते, मालिक क्या कर रहे हो अचानक से मालिक। एक मैं अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, मैं लेफ्ट हैंड ड्राइव प्रीफर करता हूँ, एक दफ़ा पाकिस्तान में ड्राइवर के साथ चलती गाड़ी में सो गया था, जब उठा तो सोचा स्टेयरिंग कहाँ गया। ये बढ़िया था गुरु, ये बहुत बढ़िया था। एक सेकंड कॉल आ रही है भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, कैसे हैं कबीर भाई?
0: मैं बढ़िया भाई, आपका नाम बताइए, आप कैसे हैं?
4: नौशाद अहमद मैं।
0: जी नौशाद भाई, क्या कहना चाहेंगे भाई?
4: कैसे हैं आप?
0: बढ़िया भाई,
4: अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यहाँ चलाता हूँ 15 साल से गाड़ी, लेकिन हाँ। एक रोज जब अभी घर गया था, ट्राई किया था चलाने के लिए गाड़ी, हो ही नहीं पा रहा है बिल्कुल,
0: है ना,
4: बिल्कुल ही ब्रेक, बार बार जो है ब्रेक पे पांव जा रहा है, कभी इस पे इधर उधर जा रहा हूँ। दो दिन ट्राई किया, हो नहीं पाया, आखिर में छोड़ना पड़ा। और खास तौर से कबीर भाई ऐसा है ना, ड्राइविंग की बात कर रहे हैं ना, जैसे दिल्ली में या मुंबई में, दिल्ली में तो खैर मैं रहा हूँ 2 साल
0: जी,
4: आपको अगर ड्राइविंग देखी ना तो काठमांडू की देखिए,
0: क्यों
4: कसम से दिमाग हिल जाएगा आपका।
0: क्यों क्यों क्यों
4: क्यों के वहाँ तो एक तो पहली बात यह है कि गाड़ी बहुत छोटी होती है, सुजुकी वाली छोटी, बहुत छोटी होती है, जब आप बैठेंगे ना तो आपका जो घुटना है वो आगे वाली सीट में अब टच होगा। अगर आप थोड़ा सा लंबे हैं तो अच्छा ये कि जहाँ भी भीड़ लगी हो आप उसको कह दे भाई 50 रुपया ज्यादा ले रहा, कहीं से निकाल दो यार, बस वो आप ऐसी जगह से निकालेंगे, ऐसे रोड से, उसको एक एक गली का पता हो रहा है, ऐसी जगह मत पूछिए। ऐसा ही मेरे साथ हुआ, पूरा रोड जाम है, मैं बस मेरे इंतजार में है, मैंने कहा कि भाई 200 रुपए की जगह तुम 300 ले लो, मुझे निकालो, मुझे पहुंचना है 6 बजे तक वहाँ। कसम खुदा की वो ऐसी जगह से निकाला मैं सोच भी नहीं सकता।
0: भाई मुझे बता नौशाद भाई, मुझे कसम से उन लोगों से डर भी लगता है, और उन्हें देख के मैं सलूट भी करता हूँ, लोग जो गलियों में गाड़ी घुसेड़ देते ना, गलियों से बैक करते हैं भाई सलाम।
4: उन लोगों को पहाड़ पे चलाने का तजर्बा है ना, मैं अपने नेपाली भाई को सैल्यूट करता हूँ कसम से, उनकी ड्राइविंग जो है बहुत ही नंबर वन की है। तो एक दो रुकी नहीं हो सकते।
0: नहीं पहाड़ों में भाई, मैं एक ही मरता मैंने देखा है नेपाल में चलाते हुए गाड़ी, और मैं जानता हूँ वहाँ पे भाई सारे जो है ना एकदम F1 रेसर है भाई। देखा है लोगों को मस्त चलाते हैं,
4: और बहुत ही स्ट्रांग होते हैं भाई कसम से। हम लोग तो बैठने वाले की जो जो है हालत खराब होती है, लेकिन इन लोग क्यों डर रहे हो भाई?
0: तो आप बेसिकली लेफ्ट प्रेफर करेंगे या फिर राइट? लेफ्ट वाले ना, मतलब डर लगता है राइट में?
4: तो नहीं, मैं तो पत्थर में जो चला रहा हूँ वही बस, वही
0: ठीक है बहुत कुछ। लेकिन भाई क्या गलियों में ड्राइविंग याद दिलाई आपने, मजा आ गया नौशाद भाई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नौशाद भाई, बहुत सारा प्यार भाई को, थैंक यू सो मच। और भाई हमें एक बहुत प्यारा सा गुड मॉर्निंग आया है आयशा इकरम की तरफ से, माशाल्लाह माशाल्लाह क्या पोस्टर बनाया है, और बहुत प्यारा पोस्टर है, गुड मॉर्निंग कबीर अंकल लिखा है बाकायदा पोस्टर के साथ, बहुत बहुत सारा प्यार माशाल्लाह, कितनी प्यारी फोटो भेजी है, थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत शुक्रिया इकरम भाई ये फोटो शेयर करने के लिए। और मैसेज क्या है, समीर भाई लिखते हैं अच्छा कबीर भाई इधर मैं ज़्यादातर मैनुअल चलाता हूँ, जब पाकिस्तान गया तो ऑटोमेटिक चलाई मैनुअल नहीं है। ये क्या बात हुई, उल्टा हिसाब के समीर भाई आपने, अरे ये नहीं समझ में आया भाई मेरे। फरहत भाई कह रहे हैं भाई कुछ भी टॉपिक हो आप वो मैं अपना दिमाग लगा नहीं है, भाई ने बोला करना है तो करने का बिल्कुल, पर ये अच्छा था भाई ये जो अभी कुछ देर पहले इन्होंने बोला ना मैं एकदम से आंख खुली मेरी तो मुझे लगा स्टीयरिंग कहाँ गई, स्टीयरिंग कहाँ गई। अगर लेफ्ट की इतनी आदत है ना आपको और आप राइट में कुछ चला रहा है गाड़ी इंडिया में या हमारी कंट्रीज में, लेफ्ट में उठोगे तो यही लगता है अरे मेरी स्टीयरिंग कहाँ गई। एक और मैसेज है आई कैन ड्राइव बोथ, बहुत बढ़िया भाई आपके लिए। और कौन सा मैसेज, बेनिफिट ऑफ लेफ्ट साइड इज कड़क होल्ड करने के लिए राइट हैंड फ्री होता है ड्यूरिंग ड्राइव। देख रहे हैं आप नुस्खे, नुस्खे देख रहे हैं फरस भाई, कह रहे हैं वो चाय पकड़ने में मज़ा आता है भाई, चाय पकड़ने में मज़ा ज़्यादा आता है। इरफान भाई कह रहे हैं कतर में ड्राइविंग करने के बाद आई फॉरगॉट हाउ टू ड्राइव इन पाकिस्तान, आई कांट ड्राइव एट ऑल इन कराची। ओ माय गॉड, डेलिकेट हो गया मामला। एक कॉल और आ रही है हमारे हमारे दौरे, एक सही ना, अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम सलाम, कबीर भाई कैसे हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह भाई जान, आप कैसे मेरा भाई? जी भाई जान बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? बाजी मैं ये पूछ रहा था कि लेफ्ट हैंड ड्राइव प्रिफर करेंगे या राइट हैंड ड्राइव, किधर की तरफ है आपको रुझान ज्यादा?
5: दोनों ठीक है लेकिन लेफ्ट हैंड ड्राइव प्रेफर इस वजह से करूंगा कि लेफ्ट हैंड साइड प्रेफर करूंगा,
0: चाय पकड़ने में आसानी रहती है इसलिए। यही हमारे फराज भाई बोले चाय पकड़ने में आसानी रहती है।
5: नहीं, ये तो मैंने कभी वल्ला गौर नहीं किया कभी।
0: आप गौर करेंगे।
5: दूसरा ये कि मोस्टली आप दुनिया में देखते हैं ना तो लेफ्ट हैंड साइड पर है तो बस ये राइट हैंड साइड ये पाकिस्तान इंडिया वगैरह में ही है, और दूसरा आपको यूके में मिलेगा, बाकी नॉर्मली आपको अगर आप जाते हैं तो वो मोस्टली लेफ्ट हैंड साइड आपको मिलती है, तो उधर भी आपको चलाने में इजी रहता है ना।
0: हाँ वो तो है, पर आपने मैनुअल चलाई है या ऑटोमेटिक पे ही हमेशा से?
5: मैनुअल चलाई है लेकिन पांव सो जाता है।
0: ए भाई मैनुअल वाले इधर जाते
5: हैं, कहता मुझे जगह
0: बताओ, जो मैनुअल में सो जाते हैं ना उनकी नींद का लेवल अलग है भाई, मैनुअल चलाते हुए कोई सो नहीं सकता, बहुत ही अलग कलाकार।
5: हाँ। आदमी नहीं सोता, पाउस हो जाता है।
0: बात तो सही है भाई, आपके लिए भी भाई क्या बात है मैंने याद बोले भाई, एकदम बढ़िया भाई।
5: मैनुअल वाले का तो आदमी को नींद नहीं आती, वो तो हर एक मिनट
0: है ना।
5: इधर तो फिर भी इतना मुश्किल नहीं है, इधर कतर में तो इतना मुश्किल नहीं क्योंकि ट्रैफिक, इधर का ट्रैफिक फ्लो अच्छा है
0: भाई, फ्लो भी बढ़िया है और आराम से एक बार आपने पैर रख दिया एक्सीलेटर पे फिर तो हो गया काम, हाईवे पे बंदा चले
5: जा रही है। जो बंदा प्रॉपर लेन में या स्पीड मेंटेन करके चल रहा होगा ना, दूर से पहचाना जाएगा कि ये बाहर से आया है, वो जो स्नैचर्स है ना उनके लिए आसानी हो जाती है।
0: हाँ
5: करने के लिए ये बाहर से आया लग रहा
0: भाई, यही मैंने कुछ देर पहले बोला, यही होता है अगर कोई बहुत इज्जत से चला रहा है ना गाड़ी, फॉर एग्जांपल मेरे हमारे दिल्ली में चला रहा है कोई बहुत इज्जत से, लोग समझ जाते हैं अरे ये आया बाहर से, इसको धारो भाई। ये है बाहर का आदमी।
5: उधर जाके जब आप इस तरह चलाते हैं ना स्नैचर्स वगैरह, ये चोर चप्पों के लिए आसानी हो जाती है पहचान में, यार ये लग रहा है बाहर।
0: आइडिया दे दिया भाई आपने तो लोगों को। तो भाई अपने अपने मुल्क जाएं तो मुल्क के हिसाब से चलाएं, थोड़ी आड़ी टेढ़ी चलाएंगे चलेगा, लेकिन चोरों को शक नहीं होना चाहिए आप पे। बहुत प्यार भाई, थैंक यू सो मच भाई कॉल करने के लिए, बहुत प्यार। ओके मेरे भाई, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ भाई, एकदम सही कह रहे हैं, अगर कोई इज्जत से चला रहा हूँ ना तो लगता है ये इसमें दिक्कत है कुछ, ये कोई बाहर का आदमी है। अस्सलाम वालेकुम।
6: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। और जनाब खैरियत से हैं?
0: बस भाई बढ़िया, चल लो आपकी तरफ क्या चल रहा है?
6: और कुछ ना, चल रो बस उठाया सवेरे सवेरे उठ के देखा उनका भाई भी है, हाजरी लगाओ चल के।
0: तो भैया ये बता दो कि लेफ्ट हैंड ड्राइव प्रिफर करो या राइट हैंड साइड, कौन सी तरफ चलाना ज्यादा बेहतर लगता है आपको?
6: भाई हमें तो दोनों तरफ बेहतर लगे।
0: अच्छा, मतलब कोई ऐसे स्विच करने में मुश्किल नहीं आती आपको, लेफ्ट चलेगा राइट चलेगा दोनों? वेरी गुड।
6: यहाँ से जैसे यहाँ से निकलने के बाद मैं जाता हूँ ना एयरपोर्ट से, गाड़ी अपने हाथ में ले लेता हूँ।
0: क्या बात है यार, बहुत तेज आदमी हूँ यार, बड़े पीछे रह गए हम आपसे।
6: इसलिए लेता हूँ ना भाई, दूसरे के ड्राइविंग पे भरोसा नहीं, अपनी पर भरोसा रखता हूँ।
0: पर हम आप पे कैसे भरोसा करें भाई?
6: तो मेरे पे भरोसा कर सकते हैं भाई।
0: अच्छा कर सकते हैं। अच्छा पर फिर भी एक अगर चूज करना हो लेफ्ट या राइट तो क्या चूज करेंगे आप? एक अगर चूज करना
6: राइट, नहीं राइट में जो है ना, देखो लेफ्ट वाले में क्या है, लेफ्ट वाले में फायदा इतना है बस अपना भाई साहब पकड़ो स्टेयरिंग और सीधा हाथ में राइट हैंड में जो मोबाइल पकड़ो, रील देखते हुए जाओ, चैटिंग करते हुए जाओ या चाय पीते हुए जाओ।
0: भाई आप राइट ही चलाओ, आप राइट ही चलाओ।
6: यहाँ तो क्या है ना भाई, एक्सीलेटर पे पैर रखा, सनाना पीरी रही बस जा रही है।
0: क्या जा रही है? ये क्या साउंड इफेक्ट था? क्या जा रही है? ये क्या है?
6: मतलब क्या भाई साहब, एक लीटर में पैर रखो और बस भूल जाओ।
0: सिरे रहने पीरी पीरी। बढ़िया भाई भाई भाई, इस बात में क्या साउंड इफेक्ट निकाला भाई, मजा आ गया यार, बहुत बढ़िया। ठीक है जस भाई, तो कुल मिला के आपको ज्यादा ही आराम चाहिए लेफ्ट, मैं लेफ्ट हैंड साइड पे तो सरेने पीरी पीरी।
6: नहीं पहाड़ में अगर भाई मैनुअल का मैनुअल पे चलना है ना, पहाड़ों में चलना है तो मेरे साथ चलो।
0: नहीं नहीं, थैंक यू सो मच भाई, जिस हिसाब से आप चैटिंग करते हुए जाते हैं मुझे जान प्यारी है, अभी तो मेरी औलाद भी नहीं हुई है भाई।
6: अरे ना ना यार,
0: अरे आपके पीछे पीछे आएंगे भाई, क्या दिक्कत है, मैं नहीं बैठ रहा भाई तुम्हारे साथ,
6: चलो यार।
0: अरे मैं पैदल आ जाऊंगा भाई,
6: एक बात बताऊं भाई, इंडिया में ना, मैं पहले इंडिया में जब गाड़ी चलाता था ना, तो हमारे यहाँ है कि वो जिला पंचायत सदस्य बने,
0: ठीक है,
6: अब उनकी मन्नत थी वो चार धाम की यात्रा करेंगे,
0: ठीक है।
6: अब वो हमारे किसी दोस्त ने उनको बता दिया कि यार तुम उसको लेके चले जाओ। मैं उसको बोला भाई देख, पहाड़ में इतना ऊपर नहीं गया हूँ मैं, नीचे नैनीताल अल्मोड़ा रानीखेत इधर तक तो हम ना घूमते रहे, कोई मुश्किल नहीं है, मगर भाई इतनी ऊपर नहीं गए। बोला ना कोई बात नहीं, तो आधे रास्ते तो चलिए, आधे रास्ते में चलाऊंगा, मुझे पता है। मैंने कहा ठीक है भाई। भाई बंदे ने ऋषिकेश पार करा और गाड़ी हाथ में दे दी, करिया भाई मेरे से ना चलेगी।
0: अरे अरे ऐसे लोगों को मत ले जाया करो भाई। क्या बात है
6: भाई, ऋषिकेश पार करने के बाद में बोल रहा है बंदा कि भाई मेरे से अब नहीं चलेगी, मेरे को चक्कर आ रहा है।
0: वाह वाह वाह वाह, फिर
6: मन का भाई देख ले, अपनी जिम्मेदारी कुछ नहीं है, अगर अपनी जिम्मेदारी पे गाड़ी में बैठ रहे हो तो तुम उसके खुद जिम्मेदार होगे, मैं कोई जिम्मेदार नहीं होऊंगा।
0: भाई मुझे आपके सर्कल से कोई भरोसा नहीं रहा, मैं पैदल आ जाऊंगा भाई पहाड़ी पे, लेकिन गाड़ी में नहीं बैठूंगा। नहीं नहीं
6: यार, सब तो चार धाम की यात्रा कराई भाई, साथ खैरियत से चार धाम की यात्रा। एक चीज, एक ट्विस्ट दिया ना बद्रीनाथ में, उनका बद्रीनाथ था ना टॉप पर गाड़ी खड़ी करके भाई ना, मैंने सबको बोला मैंने हाँ एक बात बताओ, शॉर्टकट से चले, शॉर्टकट दिया मैंने कहा हाँ, बोले किधर है कहाँ से है, मैंने कहा देखो सामने है भाई ये गाड़ी खड़ी तो है भाई, यहाँ से नीचे को ढकेलनी है, चले आएंगे मिनट से पहले।
0: जयस भाई थैंक यू सो मच भाई, आपको लाइसेंस किसने दिया भाई, कितने भी लिया लाइसेंस? अरे भाई जयस भाई बहुत बढ़िया, आप आपके साथ आई थिंक मैं ऑटो रिक्शा में बैठ जाऊंगा, गाड़ी में डर लग रहा भाई।
6: नहीं भरोसा रख सकते हो भाई, इतना अच्छा है,
0: ठीक है
6: जी, ये जॉब था पार्ट ऐसा चलता रहता है, नहीं तो बाकी तो भाई कहीं से कहीं तक भी कहोगे तो बात खैरियत मंजिल पे पहुंचाऊंगा, टेंशन मत लो भाई, बात हुक्म करो किधर चलना है,
0: डिपेंड करता है मंजिल क्या है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया जस भाई कॉल करने के लिए, जान
6: ये वो वाली मंजिल नहीं है भाई, ये सफर वाली मंजिल।
0: हाँ मैं देख पा रहा हूँ, यहीं से मुझे सब नजर आ रहा
6: है।
0: ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज
6: भाई,
0: अल्लाह हाफिज। और भाई के बाद जो है कॉल आ रही है हमें दूर दराज से, अस्सलाम वालेकुम।
7: वालेकुम अस्सलाम कबीर भाई, कैसे हैं आप?
0: मैं बढ़िया, मैं सुना है बहरीन में बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है।
7: हाँ बहुत बढ़िया हो रहा है और गर्मी जो है काफी हद तक कम हो गई है,
0: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप क्योंकि इतनी दूर से कॉल कर रहे हैं, हालांकि दूर है नहीं मगर फिर भी
7: ज्यादा दूर नहीं है, बस थोड़ा ही दूर है,
0: ज्यादा दूर यार मैं तैर के जाऊंगा आपको, बस को मोहब्बत में क्या टेंशन है।
7: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो मेरे भाई आप क्या कहना चाहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ड्राइव या राइट हैंड ड्राइव, क्या पसंद है आपको, प्रेफर्ड क्या?
7: राइट और लेफ्ट का इतना मैटर नहीं रखता है, मेन चीज क्या है कि अपने यहाँ रूल्स रेगुलेशन नहीं है, समझ रहे हैं?
8: तो इसलिए हम लोग को लगता है कि यार वहाँ पे जो है राइट साइड में मुश्किल है, ऐसा कुछ है नहीं, समझ रहे हैं?
0: नहीं नहीं, मुश्किल की बात नहीं, आपका प्रिफर्ड क्या है, आपको क्या पसंद है पर्सनली? मुश्किल है तो हटा दो, आपको क्या पसंद?
8: अभी अभी एक चीज और बताऊं, जैसे यहाँ पे लेफ्ट साइड में है तो राइट साइड से जैसे मैनुअल गाड़ी चलाते हैं ना,
0: हाँ।
8: तो राइट हैंड से गियर लगाते हैं, सही है?
0: हाँ।
8: तो जैसे जो राइटी बंदे होते हैं उनके लिए इजी रहता है,
0: ठीक है?
8: और जैसे आप यहाँ से जब चला के इंडिया जाएंगे ना,
0: हाँ, यहाँ से चला के इंडिया क्यों जाऊंगा मैं तो? अच्छा ठीक है, मैं समझ।
8: नहीं नहीं, मतलब जैसे
0: मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा
8: हूँ।
0: हाँ हाँ, इंडिया
8: गए तो गियर जो है, स्टेयरिंग जो है राइट साइड में है,
0: ठीक है?
8: और तो वो क्या होता है, गियर लगाने में थोड़ी दिक्कत होती है।
0: अच्छा,
8: लेफ्ट हैंड से लगाना पड़ता है।
0: हाँ, फिर
8: तो ये मसला
0: तो है, लेकिन आपने अपनी चॉइस नहीं बताई, आपने गिना दिया मुझे कि इधर से राइट से गियर लगता है, लेफ्ट से गियर लगता है, आपकी चॉइस क्या है?
8: मेरी चॉइस तो एक्चुअली ये है कि जहाँ पे रहते हैं बस वही सही है, मतलब यहाँ पे है यही ज्यादा सही लगता है।
0: ये पता है, वैसी कहानी सुनाई है आपने भाई, एक था राजा एक धीरा, नहीं यहाँ पे क्या हुआ, फिर क्या हुआ, कुछ नहीं, दोनों मर गए, खत्म कहानी। ये
8: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, ये होता क्या है ना, जैसे अगर आप यहाँ पे चला रहे हैं तो यहाँ पे अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है,
0: अच्छा
8: सही लग रहा है, जब वहाँ पे चले गए तो थोड़े दिन मतलब लगता है कि जो है सही नहीं है।
0: तो आपकी कोई ऐसी, आपकी कोई जाती ऐसी चॉइस नहीं है, दोनों चलता है आपको, ये कहना चाह रहे हैं आप?
8: हाँ, दोनों सही है, अपनी अपनी जगह दोनों सही है।
0: ठीक है भाई, ओके भाई, मजे लीजिए आप मौसम के, और बाहरीन वालों को हमारा सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा भाई।
8: ओके
0: मेरा भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अब मैं सारे के सारे मैसेज जरा पढ़ दूं भाई, बहुत सारे मैसेजेस हैं माशाल्लाह। तो एक तो हमारी बहन ने मैसेज किया था, बस बहन लिखती हैं कि वो जो काठमांडू के बारे में बात कर रहे थे वो एकदम सही बात कर रहे थे कबीर भाई, मैं खुद तो ड्राइव नहीं करती लेकिन लेफ्ट हैंड साइड ड्राइव सेफ फील होता है, जैसे ही नेपाल के एयरपोर्ट से निकलती हूँ और टैक्सी ड्राइवर के स्टंट्स देखती हूँ मुझे एंग्जाइटी होने लगती है, लो अब ये टकराएगा, अब ये ठोक ही देगा इस वाली गाड़ी को, एंड आई कीप आस्किंग टैक्सी ड्राइवर, भैया ज़रा ध्यान से, अरे भैया। मैं समझ सकता हूँ। एक और मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, इंडिया में एज एन एम्बुलेंस 108 ड्राइवर 3 साल। अच्छा, आपने एम्बुलेंस ड्राइव करी इंडिया में? मेरा भाई इश्तियाक अंसारी लिखते हैं, लेफ्ट राइट दोनों सही हैं मेरे लिए। ओके, एक मैसेज, इस्लाम कबीर भाई, हाउ आर यू डियर, लेफ्ट हैंड साइड इज क्रेजी, वी कैन ड्राइव एज वी वांट इन इंडिया एज रूल्स डोंट वर्क समटाइम्स, लेफ्ट हैंड ड्राइव इज गुड एज पर कंट्रीज रिक्वायरमेंट, माई ओपिनियन इज लेफ्ट हैंड साइड। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड को पूछा भाई, लेफ्ट हैंड साइड अभी तक लो पब्लिक ज़्यादा वोट दे रही है। और हमारे ताहिर भाई कह रहे हैं, हैव यू सीन समवन ड्राइविंग मिडिल ईस्ट कार इन इंडिया एंड पाकिस्तान, सम वन आई नो वाज ड्राइविंग इंपोर्टेड कार, जस्ट इमेजिन द सीन, हस्बैंड सिटिंग ऑन लेफ्ट साइड ड्राइविंग द कार, वाइफ विद वन चाइल्ड सिटिंग ऑन द राइट साइड, ट्रैफिक पुलिस स्टॉप देन आस्ट, सर इट्स ओके कि मैडम ड्राइव कर रही हैं लेकिन बच्चा तो आप संभाल लें। क्या बात कर रहे हैं ताहिर भाई, कह रहे कभी देखा किसी को कि मिडिल ईस्टर्न गाड़ी चलाते हुए इंडिया पाकिस्तान में? कह रहे इन्होंने देखा है, कह रहे वो बंदा जो था वो ड्राइव कर रहा था, हस्बैंड, और जो वाइफ थी वो बच्चे को लेके बैठी हुई थी, ट्रैफिक पुलिस वाला भी उन्हें रोक के पूछ रहा, मैडम देखो आप ड्राइव कर लोगे टेंशन नहीं लेकिन बच्चा तो नहीं संभाले। तो मैंने नहीं देखा इंडिया में ऑनेस्टली किसी को कि बाहर की गाड़ी चलाते हुए, बट जो कच्चा था भाई बहुत बढ़िया। एक मैसेज, ये तला भाई फ्रॉम अनखोर, दोनों चला लेता हूँ बस यहाँ ऑटो की आदत। अच्छा, मैं कहूँ ऑटो रिक्शा की आदत हो गई यहाँ पे नहीं तो अच्छा ऑटोमेटिक की आदत हो गई है, पाकिस्तान में ट्रैफिक इतना होता है कि मैनुअल चलाना आजाब हो जाता है। हाँ, तो भाई इंडिया में अभी आप लेने लगे हैं ऑटोमेटिक। वैसे इरफान भाई के पाकिस्तान भी नंबर प्लेट आए हाय होगा। इरफान भाई, ये मोना बहन पूछ रही है आपका पाकिस्तान का नंबर प्लेट क्या है भाई? सब डर रहे हैं। एक में से फैजान भाई का, इंडिया में जाकर अगर ड्राइवर ना हो, आप अकेले हो रोड पर, तो लगता है गलत लेन में आ गया क्या? फैजान भाई, इसी चक्कर में चलाता नहीं हूँ मैं। एक मैसेज है, मैं तो इज्जत से चला रहा था कि ट्रैफिक वाले ने पहचान कर फाइन ही दे दिया। पहचान कर फाइन दे दिया, समीप भाई कह रहे हैं स्वात में। अच्छा, एक मैसेज, गुड मॉर्निंग, एट वन ऑफ द सिग्नल्स मॉनिटर्ड बाई कैमरा समवन वॉज फाइंड बाई पोरिंग कॉफी टी फ्लास्क कप, ही वॉज टोल्ड You are not paying attention to your surroundings. So behavior oversight करेक्ट पकड़ना आसान होता है। हाँ भाई, ये जैस भाई ने बोला है, अरे भाई यही चाय पी रहे हैं। एक मैसेज है, नहीं फराज भाई कह रहे थे, जैस भाई पर्चा पढ़ दिया। मोहम्मद इसरार भाई कह रहे हैं, भाई माई इंडिया में ड्राइविंग सीट पे बैठना होता है लेकिन मैं भूल कर पैसेंजर सीट पे बैठ जाता हूँ, ये तो मेरी भी कहानी है, लेते हैं लेफ्ट साइड राइट साइड इंडिकेटर की जगह हमेशा वाइपर चला देता हूँ। मुबारक हो, हाई फाइव, हाई फाइव। इसरार भाई। और एक मैसेज है तला भाई का, तला भाई कह रहे हैं अच्छा ठीक है समझ गया। ये परफेक्ट मीम चिपकाया आपने। और सुदीप तो सर कह रहे हैं सारा सारा सारा पीरी पीरी। मॉर्निंग कबीर भाई। ये जैस भाई सिखा के चले गए। लेफ्ट और राइट हैंड डजंट मैटर फॉर मी, बट सिंस 14 इयर्स आई हैवंट ड्रिवन एनी व्हीकल आउटसाइड खतर। तो आपके लिए अलग सीन है। ये सारा पीरी पीरी सिखा के गए ना ये जैस भाई। एंड हैव यू नोटिस, हम देसी लोग चाहे इंडिया हो पाकिस्तान हो, हम लोग साउंड इफेक्ट में बात करते हैं यार। कोई आपसे पूछे कि गाड़ी का क्या हुआ, भाई कुछ नहीं मैं गाड़ी लेके जा रहा था, जूम कर गई, एकदम से बंदा आया और सामने आया पत्थर, धड़ा धुड़ धुड़ धुड़ ऐसी गाड़ी की आवाज आई, मैंने इंडिकेटर भी दिया ठाक ठाक ठाक ठाक ठाक, लेकिन वो बंदा सामने आया डिश करके गाड़ी लगी। हमारे साउंड इफेक्ट इतने खतरनाक है ना भाई। जिंगल के बाद मिलते हैं।

0: FM 107. Time check.
1: भाई घड़ी में हो रहे हैं 7:02 और आप भी मेरा 7:02 एज यू नो. और हम बात कर रहे थे कि भाई लेफ्ट हैंड साइड ज़्यादा प्रेफर करते हैं, राइट हैंड साइड ड्राइव पसंद है आपको, बहुत कमाल के. पर जैस भाई ने जो मुंह पर चढ़ा दिया सबके, सना ना ना पीती पीती पीती पीती पीती, ये जो आपने साउंड इफेक्ट दे दिया है जैस भाई, आज ये सर्वर भाई को भेजना, ये ना कन्फ्यूज़ कर दो उन्हें, सना ना पीती पीती पीती. अच्छा तो एक भाई को कॉल करनी है, भी करता हूँ भाई मैं. इरफान भाई क्या कह रहे हैं, इरफान भाई कह रहे हैं कराची में बाहर के आदमी को ड्राइव करते हुए देखकर ना आदमी बचेगा ना गाड़ी, और चलान अलग मिलेगा. ये जैस भाई तो अभी सोकर उठे थे. जैस भाई हाँ, अचानक इतनी फ्रेश वॉइस कैसे? अरे हमारा शो है भाई, हम एनर्जी खुद ब खुद आदान प्रदान करते हैं भाई, कैसी बात कर रहे हैं इरफान भाई. और पाकिस्तान का नंबर प्लेट तो बता दो. पीरी पीरी पीरी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम मुर्शिद आलम भाई. फराज भाई को भी ये रट गया साउंड इफेक्ट. और एक मैसेज है मेरी क्लास में. अच्छा एक सेकंड, शुरू से पढ़ता हूँ. मलिक भाई कह रहे हैं ये लेफ्ट और राइट साइड पे ब्रेक एंड एक्सेलेटर तो सेम ही रहते हैं, फिर लोग ड्रामे क्यों कर रहे हैं कि पाँव मिक्स हो जाते हैं. नहीं पाँव नहीं मिक्स हो जाते भाई, दिमाग मिक्स हो जाता है. आज लिखते हैं मेरी क्लास में एक बंदा GCC से आया था, वो राइट हैंड से गियर लगाने का आदी था, तो पाकिस्तान में ड्राइव राइट साइड पे करता था और गियर भी राइट साइड से ही लगाता था. कितने साल चला पाया वो गाड़ी. हाथों से कैंची बना रहा पूरे रास्ते. ये आदत पड़ जाती लोग. एक मैसेज है, वट एवर साइड कीप्स मी अलाइव ब्रो. कह रहे हैं जो साइड भाई मेरे को जिंदा रखे मुझे वो साइड पसंद है. फेयर एंड स्क्वायर. इज़ोन भाई कह रहे हैं यस कबीर भाई, यार जॉब इज टू ड्राइव द कार वेदर इट इज लेफ्ट और राइट, मैनुअल और ऑटो. डिप्लोमेटिक पासपोर्ट लीजिए आप. एक मैसेज आए लेफ्ट. यासिर भाई ने अपना वोट दे दिया है. आसिफ भाई का भी मैंने पढ़ा नहीं है मैसेज. और एक मैसेज आया है एक और भाई थे हमारे कहा, हाँ गुड मॉर्निंग. दोनों चल जाते हैं लेकिन लेफ्ट ज़्यादा इजी, बाकी पाकिस्तान में तो मैनुअल भी चले जाते हैं, बस पहले एक दो दिन राउंड अबाउट का मसला बनता है, वाइपर और सिग्नल का कन्फ्यूजन बाकी है. दिल्ली में एक्चुअली में क्या है, एक दो टाइम की आप रिस्क ले नहीं सकते, समझ रहे हैं आप. हमारे यहाँ बहुत धुरंधर लोग हैं, एक गलती आपको अस्पताल पहुंचा सकती है, तो इसलिए मैं रिस्क लेता ही नहीं भाई. एक भाई को पहले कॉल कर लें, उनके यार माज भाई को कॉल करेंगे. माजू डू यू स्टिल वांट टू कंटिन्यू, आई विल कॉल यू, डोंट वरी. एक पहले मैं कॉल कर लूं भाई को, अगर भाई ने उठा ली तो कॉल कॉल कॉल उठा लो भाई, फोन तो चक्को. वीरी वीर जी फोन चक्को. नहीं किधर गए, हाई लो कबड्डी भाई तो फोन ही नहीं उठा रहे. अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम सलाम अलहमदुल्लाह भाई, कैसे हैं आप?
1: मैं बढ़िया भाईजान, आप सुनाइए आप कैसे हैं?
2: अलहमदुल्लाह मैंने तो स्पीकर की आवाज डाउन कर ली है, इधर फोन से बात कर रहा हूँ इसलिए.
1: वेरी गुड भाई, बहुत प्यार. तो भाई बताइए जरा, लेफ्ट हैंड साइड ज्यादा प्रेफर करते हैं राइट हैंड ड्राइव, क्या पसंद है भाई को?
2: भाई मुझे तो जब तक इंडिया में था राइट हैंड पसंद था, लेकिन जब से गल्फ में आया तो लेफ्ट पसंद हो गया.
1: कन्फ्यूजन नहीं होती आपको इंडिया वापस जाके ड्राइव करनी होती है छुट्टियों में, तो कन्फ्यूजन आती ही नहीं आती?
2: अरे एक बार हुआ मेरे साथ ऐसा, जब मैं वापस इंडिया गया तब मैं सऊदी में था, तो ऐसे जुडिशियल कोर्ट से बाहर आ रहा था, तो मेरे साथ भाई बैठा हुआ.
1: हाँ.
2: तो मैं राइट साइड में जा रहा हूँ, मेरे को मालूम नहीं कि मैं रॉन्ग चल रहा हूँ, लेकिन मैं चल रहा सीधा.
1: हाँ.
2: आगे से तीन गाड़ियां एक बराबर आ रही.
1: हाँ.
2: मैंने भाई को बोला ये बेवकूफ है, मेरे आगे से अपोजिट आ रही है.
1: हाँ.
2: कैसी ड्राइविंग कर रही है यहाँ पे इंडिया में? चलो भाई आप जा रहे हो.
1: यही वाली तो कन्फ्यूजन कह रहा भाई, इंडिया में कहाँ से? लेकिन आप,
2: मैं कश्मीर से हूँ.
1: अरे माशाल्लाह मेरा भाई, बहुत बढ़िया यार, बहुत. इस बार मैंने सोच रखा है उधर जाने का, तो भाई मैं आपको याद रखूंगा. बट
2: जरूर भाई है, लेकिन मेरे ये फर्स्ट कॉल है यहाँ पे, इससे पहले मैंने ट्राई की लेकिन ज्वाइन नहीं हो.
1: कोई दिक्कत नहीं भाई, एक बार आप हुकुम कर दिया करें व्हाट्सएप पे कि कॉल करनी है, आपका भाई कॉल कर लिया, टेंशन थोड़ी भाई.
2: जरूर इंशाल्लाह. तो पहले बात कर रहे थे ना हिल एरिया की.
1: जी भाई.
2: तो मेरे माइंड में है कि वो ऐसे लिखते रहते ना जोक्स कि हां एवरीवन इज अ ड्राइवर अंटिल वो कश्मीर में एंटर हो.
1: हां
2: वहाँ की हमारी वहाँ की रोडें इतनी खतरनाक है ना.
1: हाँ.
2: कि वहाँ पे लेफ्ट राइट तो भूल जाओ, बस ये ध्यान रखो कि किसी भी मोड़ में पहुंचो आपको हॉर्न पहले मारना है.
1: हाँ, मैंने देखा है कश्मीर की तरफ ड्राइविंग है वो स्पेशली हिल साइड वाली.
2: आपने हॉर्न नहीं मारा.
1: हाँ.
2: तो समझो कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है,
1: तो आपका हॉर्न बच जाएगा बेसिकली.
2: ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है.
1: तो आप चला लेते हैं पहाड़ी पे, ड्राइविंग कैसी है आपकी? पहाड़ों में ड्राइविंग हो जाती है?
2: पहाड़ में ड्राइविंग मैंने तो एक्चुअली मैं तो 12-13 साल का था, मैंने सीखी पहाड़ में.
1: मेरा भाई
2: मेन कश्मीर से नहीं हूँ, मेन कश्मीर से नहीं हूँ, हिल एरिया से हूँ. आपने पीर पंजाल नाम सुना?
1: बिल्कुल सुनाया भाई, बिल्कुल.
2: PKG
1: हाँ.
2: उस एरिया से हूँ.
1: अच्छा,
2: सबसे खतरनाक है यहाँ.
1: हाँ तो वहां तो भाई मोड़ पे आता हुआ दिखता नहीं ना कोई, उधर से कौन सा आ जाएगा अचानक से, कोई बैग ले रहा होगा, कुछ भरोसा नहीं है भाई।
2: बिल्कुल कोई भरोसा नहीं है। आपको जब टर्न मोड़ मुड़ना है तो इतना ध्यान रख के मुड़ना है कि आगे से आने वाली गाड़ी आप आपके साथ से इजीली क्रॉस हो सके। अगर जरा सा भी आप अपनी साइड हो गए, दूसरी साइड हो गए, तो सोचो काम हो गया आपका।
1: अरे भाई ये आपने बिठा दिया है खौफ, अभी मैं पहाड़ियों पर जाने का सोच रहा था, अब मैं यहीं सड़कों पर ठीक हूँ भाई। थैंक यू भाई। लेकिन आप कभी भी, आपको कॉल नहीं लग रही है, कोई दिक्कत आ रही हो तो एक बार मैसेज कर दिया करें भाई, मैं तुरंत कॉल कर लूंगा आपको, ठीक है?
2: जरूर जरूर।
1: बहुत प्यार भाई को, थैंक यू सो मच मेरे भाई। ख्याल रखिए भाई, हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। और मैसेज कर रहे हैं, फरमा भाई कह रहे हैं कराची में गाड़ी का ही नंबर नहीं प्लेट तो दूर की बात है, कह रहे हैं गाड़ी नहीं नंबर प्लेट कहाँ से लेके आऊँ। नहीं नहीं नहीं इरवान भाई, मेरा जोक आप ख़त्म कर दिया आपने, प्लीज़ नंबर प्लेट लीजिए आप, गाड़ी आती रहेगी, आप नंबर प्लेट लीजिए इरवान भाई। और आगे कहते हैं माज भाई को बीवी की साइड लेना ज़्यादा पसंद है, कह रहे हैं लेफ्ट साइड राइट साइड नहीं, उन्हें बीवी की साइड। माज डू यू रियली वॉन्ट टू कंटिन्यू? माज भाई को कॉल लगा रहा हूँ एक्चुअली मैं, देखते हैं माजू के क्या कहने हैं। माजू हमारा जो मौजू है उस पर क्या कहना चाहोगे बच्चे, मैं कॉल लगा रहा हूँ आपको। कॉल आ रही है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो माज भाई क्या सिस्टम है भाई ये? तो इरफान भाई कह रहे हैं तो आप तो बीवी की साइड लेंगे, लेफ्ट एंड राइट साइड तो नहीं लेंगे।
3: एक छोटी चीज मतलब सही से करेक्ट करना चाह रहा था।
1: करो।
3: आप समझ नहीं पाए जयेश भाई ने जो आवाज दी है वो क्या है, वो जब गियर चेंज होता है ना, आप जब एक्सेलेटर देते हो फिर आप क्लच पकड़ के गियर चेंज करते हो, तो जब गियर चेंज करते हो फिर करके वो नीचे उतरता है, समझे आप?
1: थैंक यू फॉर माय
3: अंडरस्टैंडिंग। इमोशन साउंड आप उसको गलत पढ़ रहे होन पर ऊपर जा रहा है।
1: वेरी गुड यार,
3: आरपीएम ऊपर जा रहा है और जो गियर बदलते जो आरपीएम नीचे गिरता है तो फिर करके आरपीएम नीचे गिरता है।
1: जयेश भाई आपके भाई मिल गए हैं, आप प्लीज अपनी रिपोर्ट वापस ले लीजिए, भाई मिल गए हैं आपके, हैदराबाद में ढूंढे हमने। अच्छा ये जो पिरी रि है उसमें सुर नीचे की तरफ रखना है ना,
3: तो
1: वेरी गुड, अब क्लियर हुआ, अब क्लियर हुआ, थैंक यू यार। थैंक यू सो मच भाई, ये मेरे बहुत काम आएगा। मैं सही बताऊं,
3: वाले भाई कॉल किए थे ना, उन्होंने बात बिल्कुल क्लियर रखी कि भाई लेफ्ट हैंड ड्राइव राइट हैंड ड्राइव मतलब आप मतलब कंट्री वाइज पूछ रहे हो या एनीवेयर
1: ब्रो, एनीवेयर।
3: गाड़ी अगर आप गाड़ी देखो तो गाड़ी बनी ही लेफ्ट हैंड के लिए, गियर में जो वन पड़ता है वो आपकी तरफ पड़ता है।
1: अच्छा ये किसने कहा आपसे?
3: मैनुअल गियर जो होता है वो लेफ्ट की तरफ पड़ता है।
1: अच्छा
3: राइट, फर्स्ट गियर लेफ्ट की तरफ पड़ता है, रिवर्स फिर दूर जाके पीछे पड़ता है।
1: ठीक है,
3: तो आप जब राइट हैंड चलाओगे तो वो गियर डालने में बहुत तकलीफ होती है, आप गियर को दूर ढकल रहे हो फिर करीब ले रहे हो।
1: ओ, इतना सोचा आपने सुबह सुबह, मास गाड़ी रो देगी मेरा भाई।
3: मतलब मुझे जो ख्वाहिश है वो किसी ने बोला था ना, वो बीवी बच्चे को संभालते चला रही थी, मुझे वो ख्वाहिश है कि मुझे लेफ्ट हैंड वाली गाड़ी इंडिया में चलानी।
1: हाँ मुझे लगा बोले कि मेरी ख्वाहिश है मैं बीच बीच में बैठ के चलाऊं गाड़ी।
3: S1 थोड़ी चला रहा हूं जो बीच में बैठ के चलाऊंगा।
1: वाह वाह वाह। पर आपके लिए मैसेज आया एक, और भाई कह रहे हैं डू यू रियली विश टू कंटिन्यू?
3: यस, स्टिल वांट टू कंटिन्यू, अल्हम्दुलिल्लाह 8 इयर्स एंड स्टिल गोइंग कंटिन्यूस टू कंटिन्यू।
1: भाई का डर खत्म हो गया है बिल्कुल, अब कोई फायदा नहीं है। हमारी मोना बहन गाड़ी में है तो उनको बोलिए कुछ नया डालो लेके।
3: कल मैंने रोते हुए सॉरी बोला है बेगम को।
1: हां कल ही सॉरी बोला आपने?
3: कल ही दोपहर में शाम
1: तो कोनी छिली आपकी मतलब, हैं
3: सॉरी गलती हो गई।
1: वेरी गुड,
3: मोना बोली ना बोले।
1: हां
3: बोलो
1: आपकी हो चुकी है भाई, आप समझा रहे हैं हमें कोर्ट के बाहर, मामला सॉल्व हो गया, पेशी तो हो गई आपकी, क्या बात कर रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड माज भाई, बट प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू, थैंक यू सो मच मेरे भाई। आपके चक्कर में पता क्या हो गया, मैं गाड़ी में बैठ के अकेले घर जाता हूँ, ये कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ यू।
3: सही बोला,
1: सही बोला ना, मैं समझ गया। सरा ऊपर जाएगा फिर ये नीचे की तरफ आएगा। मेरे दुश्मनों थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके अल्लाह हाफिज भाई, अल्लाह हाफिज। तो ये है परेशानी, समझ रहे हैं आप। अच्छी दोस्ती ना, अच्छी दोस्ती ऐसी होती है, ये जो सारे मेरे भाई लोग हैं ना, ये इनके चक्कर में मैं गाड़ी में अकेले बैठ के ही कर रहा हूँ। और गलती से शीशा अगर जरा सा नीचे रह गया तो सोचिए साइड वाला क्या बोल रहा होगा कि आज मैंने एक बंदे को देखा, उसका शीशा नीचे हुआ था, गाड़ी में बैठा हुआ जरा सा था, पीती सीधी कर रहा था, पता नहीं क्या क्या हो गया है लोगों को, काम की टेंशन लेके कैसे कैसी हरकतें कर रहे मुझे यही डर है। तो आज मैं आई विल मेक श्योर कि गाड़ी के शीशे चढ़े हुए हैं, उसके बाद ही मैं ये सब करूँगा। ये दिमाग में अटका दिया मेरे। अभी मैं ज़रा एक कॉल कर रहा हूँ, ये हमारे एक और धुरंधर हैं, इनको भी ज़रा कॉल लगाई जाए, और फिर कहानी भी है कुछ देर में। तो सर नहीं कभी नहीं कंट्रोल। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम
1: वरहमतुल्लाह
3: वरकातुहु। भाई क्या हाल है आपके?
1: तो तरह भाई क्या कहेंगे आप, मेरा भाई
3: बताइए क्या बोले हैं, तुम सुनते नहीं हमारी।
1: क्या क्या ऐसे क्या बोला जो मैंने नहीं सुनी मेरा भाई?
3: देखो जो मैं यहाँ बोल नहीं सकता लाइव पे लोग सब सुन लेंगे।
1: अच्छा तो वो तो ठीक है, पर आपका प्रिफर्ड साइड क्या है भाई?
3: भाई लेफ्ट बेहतर है।
1: लेफ्ट बेहतर है। तो आपने कभी कराची में चलाई है गाड़ी? मतलब है हिम्मत आप में, है बनोगे रोटी?
3: भाई चलाते हैं, बेहतरीन चलाते हैं, लेकिन सीने पे दो एक हफ्ता या तकरीबन तीन चार दिन तो ना स्टेयरिंग सीने पे होता है और आके बोनेट के बाहर होती है। अभी लगी।
1: यही तो मैं, क्योंकि मैं जानता हूँ ये कराची में, मुंबई में, दिल्ली में चलाना कोई आसान काम नहीं। ये लोग हैवी ड्राइवर है भाई, जो यहाँ से जाके वहाँ चला रहे हैं ना, सलूट है भाई, सलूट सलूट। कभी
3: एक हफ्ता तो बिल्कुल बैठती नहीं है, बैठती भी ना तो वसीयत लिख के बैठती है
1: ये तो सही है। ये आप पे भरोसा कोई करे भी क्यों मेरा भाई, क्यों करे कोई आप पे भरोसा यार? तेरा भाई इस लायक
3: ये इसमें इसका एक और वोकैबुलरी
1: क्या है,
3: सनन करके निकल जाओ,
1: सनन
3: करके निकल जाओ।
1: ये वही मैं सनन करके जा रहा था, फिर सर फिर मैं आज जो है आज गाड़ी ऐसी ही चलेगी जैसे बताई जा रही है, बिल्कुल वैसे ही इंडिकेटर की आवाज़ से उन्होंने बताया, ठाकटा ठाकटा ठाकटा ठाकटा, फिर टाप मारा, फिर सरन करके सरा पीरी। ये पता किसी को पता नहीं है, पर ये गाड़ी बेचने का बहुत बढ़िया तरीका है ये। इट कैन बी टर्न इनटू अ मार्केटिंग आइडिया, मैं सही बता रहा हूँ। क्या कहते हो
3: आप, लोकल किसी पाकिस्तान या लोकल मार्केट में चलेगा, अरे भाई तुम टाप मार के देखो ऐसी जाती सनन करके, तुम्हें पता भी नहीं चला गाड़ी कब कब 120 टाप कर गई। ले अबे पीछे भाई लोकल कसम से,
1: मैं सही बता रहा हूँ। जस्ट इमेजिन थला भाई कि यहाँ कतर में लोग गाड़ी की मार्केटिंग ऐसे करने लगे कि आप हमारी गाड़ी लीजिए, टाप मारिए और सनन करके निकल जाएगी, फिर पूरे सड़क आप सर पीते।
3: वैसे
1: मैं
3: बताऊँ, अगर हम करें ना ये वाला बिजनेस ये लोकल लैंग्वेज के साथ ना, वैसे हमसे कोई लेना लेना अपने भाई बंधु तो अपने से गाड़ी ना मोहब्बत में ले लेंगे जबान पे।
1: हाँ ये तो है
3: यार, ये टाप मारा इसको तुम गाड़ी दे दो।
1: अरे डिस्काउंट रहने दो यार, तुमने टाप जो बोला है ना उस पे फील आ गया मुझे, गाड़ी दे दो मुझे।
3: टाप मारा ना ये गजर दे दो, मैं सनन करके निकल जाऊं यहाँ से।
1: अरे यार आपने बता, आपने पिक्चर कंप्लीट कर दी यार, क्या स्क्रिप्टिंग करी है एंड में, ये टाप बता के ना आपने एक मैसेज यार, टाप करके सनन से ले गया। ये अग्री विद तला भाई लिखा है फराज भाई ने, ऐसा ही होता है कराची में, तो ये आपके लिए मैसेज आ गया। भाई काश भाई जल्दी से रस्ते से खुल जाए, मैं तो घूमने को तैयार हूँ भाई, टेंशन को नहीं भाई। पर ठीक है भाई, ये सेकंड सेंटेंस के बाद मेरी हिम्मत टूट गई आने की। ठीक है तलावे उधर ही रहो भाई, कोई जरूरत नहीं भाई। अरे यार
3: इरफान की नंबर प्लेट दिखाऊं, आओ।
1: इरफान भाई कह रहे हैं गाड़ी ही नहीं है, नंबर प्लेट कहाँ से लेके आऊं बताइए। इरफान भाई अलग चल रहे,
3: तुम एक्सेसरीज खरीदो,
4: गाड़ी हम अरेंज करके देंगे तुम्हें स्टाफ करके।
1: अच्छा इरफान
4: तुम एक्सेसरी शॉप से भी
1: इरफान भाई रेडी हो जाओ, गाड़ी हम दिलाते हैं आपको, टेंशन नहीं है। ठीक है
4: मसला नहीं,
1: ठीक है तला भाई, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत प्यार, सनन करके निकल जाओ अभी कहानी सुनिएगा भाई लेकिन
4: इंशाल्लाह।
1: ठीक है मेरा भाई, ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़ भाई, अल्लाह हाफिज़। तो तला भाई के बाद जो है एक मैसेज आ रहा है हमारे हमजा भाई, क्या कह रहे हैं, वाह क्या सुर लगाए दोनों आप दोनों ने, थैंक यू सो मच भाई, लिखते हैं आई डोंट गेट द टॉपिक बट स्टिल एंजॉयिंग द शो एंड स्माइलिंग विद ऑल द कॉलर्स, टाप के सरन कर गए, यही तो है हमजा भाई। हमजा भाई मैं ये कह रहा था लेफ्ट साइड प्रेफर करते हैं ड्राइविंग की या फिर राइट हैंड ड्राइव ज़्यादा पसंद है, ये पूछ रहा था मैं, एक ऐसी सर्वे कर रहे थे हम, एक ऐसे आप लोगों के चक्कर में दो तीन बार मैंने सररर तररर कर दिया नहीं है भाई इस पर गलत है, ये अरे भाई आप भी करें ना गाड़ी में अकेले बैठ के, मुझे पता है ये सुन के लोग गाड़ी में अकेले बैठ के कर रहे हैं, शर्मा होनी, मैं भी करूँगा अभी। एक मैसेज, सलाम अलैकुम कबीर भाई, आपको ना लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम है ना राइट साइड में प्रॉब्लम है, इंडिया में तीदी दीदी और कतर में लिमोजिन के बीच में रहना है, मैं समझा नहीं, बड़ा साइंटिफिक चले गए आप। इरफान अली भाई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, होप ऑल वेल भाई, हर रोज़ दो घंटे के लिए रियाज करना पड़ता है तभी तो सुर और ताल मिलता है, भाई कहाँ से लेसन लेना है बताइएगा, डिस्काउंट करवा दूँगा। अरे आप हमसे सीख लीजिए इरफान भाई, कैसी बात कर रहे हो। रियाज भाई कह रहे हैं भाई मुझे तो कतर में जो चलाता हूँ वही सही है, इस बार छुट्टी पर गया फादर ने कहा गाड़ी ले लो, मैंने कहा ना जी मुझे सही सलामत अपने वतन वापस जाना है, अब बस जान दो मुझे। एक मैसेज है, पीक आर्स में बेंगलुरु के तीन रोड्स पर आपका पूरा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कन्फ्यूजन क्लियर कर देंगे, वो तीन रोड है सिल्क रोड, मैसूर रोड, तैनरी रोड, जान बची तो लाखों पाए, इतने रोड्स पर सोचो हॉर्न और सब्र चाहिए। बेंगलोर का ट्रैफिक मैंने देखा है तनवीर भाई, आप लोगों ने हमारे दिल्ली को पीछे छोड़ दिया है, अब ये प्राउड मोमेंट नहीं है बट ठीक है। एक मैसेज है, लेफ्ट और राइट इसमें दोनों ही हैं, ट्रैक्टर की बात कह रहे हैं, मैं तो ट्रैक्टर चलाऊंगा मोहम्मद भाई, सही है, अब आपसे कौन बहस करे। सुभाष भाई कह रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड इज़ द बेस्ट, तो ज़्यादातर लोगों ने लेफ्ट को वोट दिया है। एक मैसेज है, मेरा तो राइट लेफ्ट का ही इतना मसला है माज, क्या है, राइट लो कहते हैं मैं गाड़ी लेफ्ट ले लेती हूँ, तो यहाँ तो पूरा ड्राइवर ही अलग साइड आ जाए तो भाई आई कांट इवन इमेजिन। मोना बहन डू यू स्टिल वॉन्ट टू कंटिन्यू, माज भाई मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, इनको गाड़ी मत दो, और जब दे दो तो आपको पता क्या करना है, घर पे बैठना है। एक मैसेज है, याद आकर लिखते हैं भाई, टाप मार के कतर में स्केलिंग से निकले तो टिंग करके फाइन आ जाएगा करें टाप मार के टिंग करके फाइन आ जाएगा। वैसे तला भाई क्या है, कोच के साथ बम्पर टू बम्पर जाएगी, ये मैसेज किया है मुझे राणा जी ने, मैं राणा जी माफ़ करना शुरू कर दूंगा अभी। लास्ट मैसेज, डिप्रेशन क्या हो गया, डिप्रेशन लेके घूम रहा आज। एक मैसेज, सरारा पीरीरी के चक्कर में दो रेड लाइट क्रॉस कर दी, क्या बात कर रहे हो। वैसे भाई लाहौर की ड्राइविंग बहुत मुश्किल है, आओ कभी हवेली पे। मेहर अजीज़ भाई कह रहे हैं अगर क्या है, अगर गियर फंस गया तो उसका साउंड

एक अब्दुल करीम भाई कह रहे हैं मेरा तो लगता है इधर ही अच्छा है, राइट हैंड साइड में गियर है वही अच्छा है। एक मैसेज है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई, आप बड़े स्टार हैं भाई, क्या बात हो गई। कहे जब स्टार कदर के ऊपर से जाएगा ह्यूमिडिटी ले जाएगा। वारे साइंटिस्ट एक मैसेज कर रहा है ये सररर के चक्कर में रॉन्ग टर्न, क्या बकवास है यार सररर पीरी के चक्कर में रॉन्ग टर्न ले लिया अरफान भाई ने। और एक मैसेज है अस्सलाम वालेकुम, लेफ्ट हैंड या राइट ड्राइव के लिए सेम है और हमारे कानपुर में टाप मार के सररा निकल जाते हैं। आर से बंसारी भाई यूपी की तो ड्राइविंग अलग है भाई। तो मैं भी भाई इंडिकेटर दे दूं, मैं ठाकटा ठाकटा ठाकटा ठाकटा और गाना चला दूं, मैं गाना आएगा आपकी गाड़ी पर आपके स्टीरियो सेट पर सररा पीरी थी। अभी गियर के अटकने का साउंड भेजा है लोगों ने भाई, क्या पब्लिक है अपनी भाई सुबह। बढ़िया जा रहा हूं भाई, बढ़िया जा रहा हूं। चरणप्रीत और बादशाह बढ़ जा तू मेरे बुला के नाले तेरे आवा मैं ता 7:22 होगी। मैं ता जग तो सरारा पीरी दीदी जैस भाई ने दे दिया आज 1:30 बजे के शो में मैं ये करने वाला।

0: मॉर्निंग मेगा जी, गुड मॉर्निंग,
1: सुबह सुबह
2: वेक अप
0: भाई। देखो हमारा सर्वे तो सक्सेसफुल रहा है, ज्यादा लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड चूज करी है और बाकी हमारी बात कहीं होने लगी पे चली गई ये बात। और बाकी एक भाई ने पूछ लिया था कि गेयर अटकने की आवाज क्या होती है, तो उसमें भी रिप्लाई आ गया भाई। ये दुनिया का वाहिद ऐसा शो होगा ना जिसपे आप कुछ भी पूछ लीजिए, पब्लिक रेडी है जवाब देने के लिए। तला भाई, तौफीक भाई और यहाया भाई सब ने जो है साउंड बताया, और तौफीक भाई ने तो निकाल भी दिया था साउंड, ऐसी आवाज है, मैं निकाल भी नहीं पा रहा हूँ। भाई जनता को सलाम, भाई सुबह की जनता को सलाम, कमाल ही पब्लिक है भाई। क्या है भाई, एक बार फिर सुना दो। उसमें नीचे वाला सुर है भाई, यू हैव टू बी रेडी रेडी फॉर इट। एक मैसेज है, विद लव जिदान, थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत प्यार जिशान भाई। और ये बता रहे हैं कि और ये ऐसी आवाज़ जो इनकी ताई निकालती है। इरफान भाई, इरफान भाई आप भाई थिएटर करे थे अगर भाई, तो आप बता रहा हूँ अलग ही लाइन में होते हैं, आपके अंदर थिएटर मौजूद है। जैस भाई ने सोचा भी नहीं होगा उनका ये जो डायलॉग छोड़ा गया सुबह सुबह ये इतना फेमस हो जाएगा। तो आज सरर भाई को आप सब यही मैसेज कीजिएगा, सरर पीरी। ओके तो आप क्योंकि सारे मैसेज मैंने कवर कर लिए, जिशान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमजा भाई ये कह रहे हैं अब तो लेफ्ट हैंड की बहुत आदत हो गई है, ऐसे ही कहीं में ड्राइविंग बहुत मुश्किल है, राइट हैंड ड्राइव समटाइम्स मैनुअल, और टॉप गियर लगे ना लगे बाइक वाले सलन करके निकल जाते हैं। भाई बाय बाय बाय बाय, कंप्लीटली अग्री। क्या बात बोली हमजा भाई, क्या बात बोली। एक मैसेज है अमन भाई का, गुड मॉर्निंग कबीर भाई, गुड मॉर्निंग भाई। याया भाई कह रहे हैं अब इन सुर पे टाप मार के रैप बना दो। मुझे लगता है कि अगला जो रैप बनाऊंगा ना मैं उस पे यही बनाऊंगा, वह सरा दादा पीरी करके। मुझे राइट साइड इज द बेस्ट, अबू साद साहब लेफ्ट हैंड साइड वाले जीत गए भाई, राइट पे बहुत कम आया भाई वोट, पर कोई गल नहीं भाई। मैं आपको जो आज की कहानी सुनाने वाला हूँ उसके तरफ बढ़ रहा हूँ। सो अगर आप लाइव सुन रहे वाले हैं आज की कहानी तो मोस्ट वेलकम जी, आ जाओ, कोई दिक्कत को नहीं भाई। तो उसके लिए मैसेज कर दीजिएगा 6622107 पे, 6622107 पे। एक मेरे पास बड़ा ऑड मैसेज आया है, कह रहे हैं भाई आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहेंगे। सॉरी ऑफ टॉपिक बात कर रहा हूँ लेकिन आई एम रियली इंटरेस्टेड टू नो। भाई अभी तो बच्चे हैं नहीं, इंशाल्लाह होंगे तो मेरा ऐसा है ना भाई कि उनकी मर्जी भाई जो बन जाए, लेकिन मैं उनको बहला फुसला के इस तरफ ज़रूर ले जाऊंगा, जर्नलिज्म की तरफ ज़रूर ले आऊँगा बहला फुसला के। उन्हें थोड़ी पता लग रहा है उनका बाप क्या कर रहा है। पर बाकी उनकी मर्जी है, मैं भी ऐसी डायलॉग बोलूँगा, उनकी मर्जी है जी, मैं कुछ रोकता टोकता थोड़ी हूँ, पर मैं उन्हें इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ इस तरफ आने के लिए, समझ रहे हैं आप। बहुत तेज है आपका भाई। एक मैसेज है किरण। ओके तो यस क्या भाई, लाइव ही सुनेंगे, अनलाइव कैसे सुनेंगे। जोक तो फैजान भाई आपने अच्छे ट्राई किया, अटेम्प्ट बढ़िया था, लेकिन क्या होता ना फैजान भाई, कुछ लोग बाद में रिकॉर्डिंग सुनते हैं। मेरे कहने का मतलब वो था फैजू। बहुत क्यूट हो तुम, मेरी बात को समझे नहीं तुम फैजू। अच्छा तो कहानी जो आज की, इट्स नॉट दैट लॉन्ग ऑफ अ स्टोरी, लेकिन है बड़ी कमाल की, और ये काफ़ी फेमस स्टोरी है। अगर आपने अभी तक नहीं सुनी है तो बहुत ही बढ़िया है, सुनी भी होगी तो उसकी रीटेलिंग आज उर्दू में, हिंदी में तो आपको अच्छी लगी, आई रियली होप सो। तो तैयार हो जाइए एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनने के लिए, एक गाने के बाद मैं सब स्टोरी सुनाने वाला हूँ। एंड 6622107 नंबर है अगर आप मेरे साथ लाइव रहने वाले हैं इस कहानी के दौरान, तो जस्ट लेट मी नो जी, 6622107 नंबर है जी मारा, और आपके इंतज़ार में इधर ही बैठा हूँ मैं, तो मैसेज कर दें। बाकी एक गाने के बाद मिलते हैं, ठीक है, ओनली वन सॉन्ग इन बिटवीन, उसके बाद हो रही है आपसे मुलाकात। पर एक सेकंड, मैं एक चीज़ जो है चेक करना चाह रहा हूँ, अगर मुझे मिल जाए, नहीं मिल रही भाई चीज़ जो मैं ढूंढ रहा हूँ। ओके कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, एक गाने के बाद सीधा आ रही है भाई स्टोरी, ठीक है। 7:30 ऑन द क्लॉक, प्यार तेनू कर दे गबरू, और दिल्ली का ये गबरू मिलता जी आपसे गाने के उस पार।

भाजी मैंने लगता ओरिजिनल वाला जो गाना है ना वो भी बहुत ही बढ़िया है, ये भी बढ़िया है, ये बॉलीवुड वर्जन। बट एनीवे हम कहानी की तरफ बढ़ रहे हैं, सो आप वॉल्यूम बढ़ा लीजिए नहीं तो सररा पीरी रीरी कर दूंगा। तो ये कहानी आपकी तरफ आ रही है एंड इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट स्टोरी। अब किसी किसी ने सुनी भी होगी पर कोई दिक्कत नहीं, जिसने नहीं सुनी है भाई तो हम उसके लिए आए हैं, ठीक है, साफ सीधी बात है। बाकी डिस्क्लेमर, इस कहानी का मकसद किसी की जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं, कहानी किसी किस्म के जेंडर प्रोपेगेंडे को प्रमोट नहीं करती, एफएम 107 किसी भी किस्म के सुपरस्टिशन को ना तो बढ़ावा देता है ना ही कभी देगा, लेकिन आज का किस्सा भी एकदम असली है और वही चीज इसको और भी हैरत अंगेज बना देती है। सो ये असली किस्से के लिए वॉल्यूम बढ़ा ली जाए और शुरू करते हैं। ओके, आपको आज के किस्से के लिए मैं काफी साल पीछे ले जाना चाहता हूं, 1918 की बात है। ये जगह एल्टन इलिनॉय, तारीख 22 फरवरी। वॉडलो परिवार के घर पे एक बच्चा पैदा हुआ, एडली वॉडलो ने जन्म दिया एक बच्चे को जिसका वजन जो था वो था 8.7 पाउंड, तकरीबन 4 किलो के आसपास, और उसका नाम रखा गया रॉबर्ट पर्शिंग वॉडलो। ये बच्चा जो था काफी हेल्दी, काफी नॉर्मल था और कुछ ऐसा अलग नहीं था रॉबर्ट में, एवरीबॉडी वाज रियली रियली हैप्पी। लेकिन फिर धीरे धीरे धीरे धीरे रॉबर्ट वॉडलो को जो लोग नोटिस कर रहे थे आसपास, रिश्तेदार दोस्त अहबाब, उन्हें दिख रहा था कि कुछ तो अलग है इस बच्चे में, और वो अलग दिखना 6 महीने में ही शुरू हो गया था। जब रॉबर्ट वॉडलो 6 महीने का हुआ तो वो 14 किलो का हो चुका था, 14 kgs, और जब उसका फर्स्ट बर्थडे आया जब वो महज 1 साल का था तो वो 20 किलो का हो गया था, 20 kgs, और हाइट जानते कितनी थी 1 साल की इस बच्चे की, 3 फुट 3 इंच। मां बाप थोड़े कंफ्यूज थे, उन्हें लगा कि कुछ तो ऑड है, मगर वो एनवायरमेंट को नॉर्मल रखना चाहते थे क्योंकि रॉबर्ट वॉडलो जो था वो सबसे बड़ा बेटा था उनका, और बाकी रॉबर्ट वॉडलो के 2 छोटे भाई और 2 छोटी बहनें थी, तो सबको आपस में खेलने में दिक्कत ना आए, अलग अलग थलग ना फील हो, इसलिए रॉबर्ट को उनके बीच में ही रखा जाता था कि खेलो कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्वियसली बाकी भाई बहन मुकाबले में छोटे थे और दिखते भी बहुत छोटे थे, मगर जस्ट टू मेक श्योर कि एनवायरमेंट ठीक ठाक है तो मां बाप की कोशिश रहती थी कि इन्हें अलग ना लगे चाहे कितनी भी मुश्किल हो। लेकिन रॉबर्ट वॉडलो, उसे थोड़ा ऑड फील होने लगा था जब वो 5 साल का हुआ ना, सिर्फ 5 साल का, तो रॉबर्ट वॉडलो ऑलरेडी 5 फुट 4 इंच लंबा हो चुका था। आप जरा सोच के देखिए, एक 5 साल का बच्चा और मैं बोलूं 5 फीट का है। अब दिक्कत जाहिर है कपड़े पहनने में आ रही थी उसे, जो वो कपड़े पहन रहा था वो टीनेजर्स के साइज के कपड़े थे, उसके साइज के तो कैसे, 5 साल का बच्चे के कपड़े के साइज क्या होता है आप खुद जानते हैं मुझसे बेहतर। जब वो 8 साल का हुआ ना रॉबर्ट वॉडलो, तो अपने बाप हैरल्ड वॉडलो की हाइट के ऊपर चला गया था। 8 साल की रॉबर्ट वॉडलो की हाइट हो चुकी थी 5 फुट 11 इंच, 5 फुट 11 इंच, और कुछ डॉक्यूमेंट्स में तो यह भी आता है कि वो अपने बाप से भी 3 इंच ऊपर चला गया था। पर डिफिकल्ट क्या था उसके लिए, स्कूल जाना, जब स्कूल में एडमिशन उसको हो ही चुका था और इस दौरान स्कूल वाले नोटिस कर रहे थे कि बच्चा बड़ा अलग है, होता ना लंबी हाइट वालों को लाइन में सबसे पीछे खड़ा किया जाता है, तो वैसे ही रॉबर्ट वॉडलो के साथ था, एवरीथिंग वॉज लुकिंग नॉर्मल कि चलो एक लंबी हाइट का बच्चा है जी हमारी क्लास में, कोई टेंशन नहीं, सबसे पीछे खड़ा हो जाएगा। मगर जैसे जैसे एलिमेंट्री स्कूल में उसकी पढ़ाई आगे जाती रही, उसका जो बॉडी का फ्रेम था वो फिट नहीं हो पा रहा था, एंड ये बहुत मुश्किल बात थी क्योंकि उसके लिए डेस्क बनाना बड़ा मुश्किल था, उसका बॉडी फ्रेम फिट ही नहीं आता था, वो टांगे कैसे फैलाए बेचारा, मोड़ तो सकता नहीं, बेंड हो नहीं पा रही है, तो वो क्या करे। तो इस रियल लाइफ जायंट के लिए ऑफकोर्स बच्चे मजाक उड़ाते थे, लेकिन पढ़ाई का थोड़ा जो उसे शौक था उसके लिए वो स्कूल तो जाता था, उड़ाने दो मजाक, और उसके हिसाब से एक डेस्क बनाई गई जिसपे सिर्फ और सिर्फ वही बैठ सकता था। एंड धीरे धीरे बच्चे जो मजाक उड़ा रहे थे वो उसके फैन होते चले गए, यानी ही बिकेम अ सॉर्ट ऑफ सुपरस्टार इन द स्कूल और अपनी फ्रेटर्निटी में जो स्कूल के टीचर्स वगैरह थे, तो भी स्कूल का तो सेटल हो गया मामला, लेकिन घर पर मामला थोड़ा अलग था। घर पर जो उसके भाई बहन थे उनको लोग अपनी गोदी में उठा रहे थे और रॉबर्ट वॉडलो
अपने बाप को गोदी में उठा सकता था, वो भी सीढ़ियों पे ले जा सकता था। उसके फादर उस वक्त 68 किलो के थे, 68 kgs। तो बाकी बच्चे तो माँ बाप उठा रहे थे और रॉबर्ट वॉल्डो अपने माँ बाप को उठा रहे थे और सीढ़ियों पर चल पा रहे थे। जब 13 साल का हुआ रॉबर्ट वॉल्डो, उस वक्त बॉयज स्काउट टीम्स बनाई जाती है ना, तो स्काउट टीम्स में सबसे लंबा बच्चा था रॉबर्ट वॉल्डो। 13 साल की उम्र में वो 7'4" का था, 13 साल की उम्र में। बाकी जो बच्चे थे ऑफकोर्स पार्टिसिपेशन कर रहे थे, तो बाकियों के माँ बाप कहते थे नहीं है ये बच्चा ऑड सा है, दिक्कत है, पता नहीं क्या, क्योंकि माँ बाप डर जाते थे। इट वॉज बैक इन द डे, उस टाइम लोग अपना दिमाग ही अलग चला रहे थे। लेकिन जो स्काउट लीडर्स होते थे वो कोशिश करते थे कि पार्टिसिपेशन बना रहे, कोई भागे नहीं, सब में दोस्ती बनी रहे। और कस्टम मेड यूनिफॉर्म बनवाई जाती थी रॉबर्ट वॉल्डो के लिए, कि उसके लिए ना सिर्फ कस्टम मेड टेलर्ड कपड़े हो बल्कि टेंट भी हो, स्लीपिंग बैग भी हो। जस्ट इमेजिन, स्लीपिंग बैग 7'4" के बंदे के लिए आपको लिटरली अच्छा खासा बड़ा चाहिए। मगर ये परेशानी तो चलो ठीक है, नॉर्मल है, कपड़ों की परेशानी है, ये भी कस्टम मेड बन जाएगा। लेकिन परेशानी जो मेन थी वो थी खाने पीने की। अब ऐसा नहीं कि रॉबर्ट वॉल्डो के घर वाले बहुत पैसे वाले थे, ठीक ठाक पैसा था, मगर जो राशन पानी एक बच्चे पे लग रहा था वो बहुत ज्यादा था। खाने पीने के मामले में रॉबर्ट वॉल्डो 5 गुना ज्यादा कैलोरीज खा रहा था बाकी नॉर्मल बच्चों से अपनी उम्र के, डेली। अब ये लोग वो समझ रहे होंगे जो रनिंग वगैरह करते हैं, डेली 8000 कैलोरीज लगती थी रॉबर्ट को, खाता ही खाता था वो। उसका टिपिकल ब्रेकफास्ट जो रॉबर्ट को चाहिए होता था वो बढ़ता ही चला जा रहा था। जब वो 13 साल का था तो वो 8 अंडे खाता था, 12 स्लाइस ऑफ टोस्ट ब्रेड, बहुत सारा ऑरेंज जूस, 5 कप 6 कप कॉफी और बहुत सारा सीरियल खा के ही वो टकार लेता था, उससे नीचे बात ही नहीं। घर वाले जैसे जैसे मैनेज कर रहे थे, क्या कर सकते हैं, घर का बच्चा है। रॉबर्ट की हाइट लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रही थी, जब लग रहा था कि अब अभी बहुत हो गया, लेकिन रॉबर्ट की हाइट बढ़ती जा रही थी। रॉबर्ट जब 17 साल का हुआ इन 1935 तो वो 8 फुट क्रॉस कर चुका था, टॉलेस्ट टीनेजर एवर बन चुका था। रॉबर्ट वॉडलो की आवाज अब सुन सकते हैं, इंटरनेट पे अवेलेबल है, इस कहानी के बाद सुनिएगा। आई विश मैं आपको यहां सुना सकता, मगर आप सुनिएगा, आपको पूरा उसकी आवाज में उसका इंट्रोडक्शन देना सुनाई दे जाएगा, एंड यू विल बी शॉक्ड टू हियर हिज वॉइस। वो बच्चों के साथ, अपने उम्र वाले बच्चों के साथ बास्केटबॉल बेसबॉल खेलने की कोशिश करता था। आप इमेजिन कि बच्चे उसकी उम्र के 17 साल के 16 साल के जो बास्केटबॉल खेल रहे थे,

उनका खेलना और रॉबर्ट वडलो का खेलना, जाहिर सी बात है बहुत फ़र्क है। तो उसे बास्केटबॉल खेलने से रोक दिया गया। स्कूल वालों ने बोला कि भाई तुम तो ऑलरेडी 8 फुट के हो, तुम्हारे लिए बास्केटबॉल का क्या ही मतलब है। तो उसे बास्केटबॉल से हटा दिया गया। बेसबॉल उसके हाथ में, जो बेसबॉल बैट पकड़ा था तो लगता था जैसे कोई टूथपिक पकड़ी है उसने हाथ में, एंड इट लुक्ड वियर्ड। तो उसे जितने भी खेल पसंद थे उन सब से उसे रिश्ता नाता तोड़ना पड़ा। रॉबर्ट वॉडलो कोई फेमस होना नहीं चाहता था, लेकिन ये बात फैल चुकी थी। और ऐसे में कुछ डॉक्टर्स, एक टीम ऑफ डॉक्टर्स फ्रॉम बार्न्स हॉस्पिटल सेंट लुई, वो पहुंचे थे रॉबर्ट के पास और 1929 में आ गए थे। और उन्होंने बता दिया था उसे कि ये हाइट बढ़ना, इतना लाइम शेम होना, ये एक बीमारी है, हाइपरप्लेजिया ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। यानी कि इस कंडीशन में होता यह है कि रैपिडली, बहुत स्पीड से, लगातार इंसान को बढ़ाने वाले जो हॉर्मोन्स हैं वो रिलीज होते रहते हैं, जरूरत से ज्यादा। इसका शॉर्ट फॉर्म भी है HGH। अब इसका कॉमन कॉज क्या है, ऐसा होता क्यों है, ओवर एक्टिव पिट्यूटरी ग्लैंड क्यों होता है? इसका रीजन है दिमाग के हिस्से में एक ट्यूमर का होना, जिसे एडिनोमा कहते हैं, जिससे ग्रोथ हॉर्मोन्स जो हैं वो बढ़ते ही रहते हैं, बढ़ते ही रहते हैं, बढ़ते ही रहते हैं। आज की तारीख में सर्जरी करके हटा दिया जाता है, कोई मुश्किल नहीं है आज, इट इज़ स्टिल एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली ईजी। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, रॉबर्ट वॉडलो उस टाइम का इंसान है जब किसी ने ये सब देखा भी नहीं था, सुना भी नहीं था। तो इट वॉज क्वाइट न्यू फॉर एवरीबॉडी, किसी को नहीं पता था कि ऐसा भी होता है, इतना लंबा आदमी। उस वक्त लोग ये नहीं सोच रहे थे कि ये मेडिकल कंडीशन हो सकती है, लोग सिर्फ ये देख रहे थे बाप रे भाई इसकी हाइट देखो भाई। और जब ये पता लग गया था कि ये बीमारी है, तो रॉबर्ट वॉडलो के माँ बाप के पास बहुत सारे लोग आए, जिनको रॉबर्ट वॉडलो के खानदान ने बुलाया था कि आप प्लीज सर्जरी करिए, सर्जरी कीजिए। लेकिन डॉक्टरों की जमात जो घर पे पहुंचती थी, उनमें से कोई भी सर्जन कॉन्फिडेंट नहीं था सर्जरी करने के लिए, नोबडी वाज रेडी। एंड उनके रीज़न भी अलग अलग थे, किसी का रीज़न ये था कि हमारे जी हॉस्पिटल में इनको कहाँ लिटाएं, जगह ही नहीं है, अजीब गरीब बहाने देते थे। लेकिन किसी ने भी सर्जरी करने के लिए हामी नहीं भरी। रॉबर्ट वॉडलो को बचपन से एक मजाक सुनने को मिलता था, और उन्होंने इंटरव्यू में कहा भी कि भाई मैं इस मजाक से ऊब चुका हूँ। लोग उनसे कहते रहते थे और रॉबर्ट भाई ऊपर मौसम कैसा भाई, बादल कब आएंगे, और ये वो सुन सुन के रॉबर्ट थक चुका था। जब वो 18 साल का हुआ तो उन्होंने एक मेमोआर भी लिखा, उसमें उन्होंने मेंशन किया कि प्लीज़ कोई नया मजाक लेके आओ, मैं थक चुका हूँ इस मौसम वाले मजाक से, आई एम डन विद इट। लेकिन रॉबर्ट वॉडलो, बावजूद इसके कि लोग कह रहे थे कि तुम बीमार हो, ही वाज क्वाइट हेल्दी। ऐसी कोई खास परेशानी थी नहीं, सिवाय एक परेशानी के, उनकी हाइट की वजह से उनके जो लोअर लेग्स थे, टांगों के पूरे नीचे तक खून का दौरान नहीं पहुंच रहा था, जिस वजह से वो सुन बढ़ जाते थे और वो टिंगलिंग होता ना, वो नीडल पोक करने वाली जो अजीब सी फीलिंग होती है, वो फीलिंग आती थी। मतलब वो इस कदर लंबे हो चुके थे कि दिल भी उनका इतना पंप नहीं कर पा रहा था खून कि पैरों के बिल्कुल नीचे तक पहुंचा सके, इतनी सप्लाई नहीं हो पा रही थी। इसके लिए भी एक मेडिकल टर्म है जिसे साइकोटोनिक कहते हैं, ये अननेचुरली ब्लू पड़ जाते हैं पैर और इंसान को महसूस होना बंद हो जाते हैं। मगर रॉबर्ट वॉडलो फिर भी चैन से बैठने को राजी होता नहीं था। रॉबर्ट वॉडलो को कहा गया व्हीलचेयर में बैठ जाइए, बाज आ जाइए, लेकिन रॉबर्ट वॉडलो नहीं बैठता था। जब वो 14 साल के थे तो एक बार वो अपने दोस्त के साथ खेल रहे थे, और खेलते खेलते उन्होंने उसे धक्का दिया, वो तो गिर के बच गया। रॉबर्ट वॉडलो जो थे, क्योंकि भाग के धक्का दे रहे थे तो वो गिरे और उनकी हड्डी टूट गई पैर की। अब उनको आयरन लेग ब्रेसेस, लोहे के बने हुए ब्रेसेस पैरों को जकड़ने के लिए, सपोर्ट के लिए दिए गए। पर इससे भी एक परेशानी थी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बहरहाल, रॉबर्ट की पढ़ाई कैसे चल रही है, क्योंकि अब तो वो स्कूल में पढ़ लिख के आगे बढ़ चुके थे। रॉबर्ट वॉडलो ग्रेजुएशन कर चुके थे अपनी एल्टन हाई स्कूल से 1936 में, और तब उनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया एज वर्ल्ड्स टॉलेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे लंबा आदमी। उस टाइम रॉबर्ट वॉडलो की हाइट थी 8 फुट 7 इंच, एंड माइंड यू रॉबर्ट इस वक्त सिर्फ 19 साल का था, सिर्फ 19 साल का। अब देखिए, हर किसी का सपना तो होता है, आप किसी के सपने को रोक नहीं सकते। रॉबर्ट वॉडलो का भी एक सपना था जो लोग उससे पूछते नहीं थे, सिर्फ माँ बाप को और एक दो दोस्त को पता था।
रॉबर्ट वार्डलो वकालत करना चाहते थे. जस्ट इमेजिन रॉबर्ट वार्डलो अगर किसी के वकील हों और अदालत में खड़े हों, एक 8 फुट 7 इंच का शख्स खड़ा हुआ है और आपके लिए वकालत करा, जस्ट इमेजिन. मगर काश ये सच हो पाता, क्योंकि शर्ट लेफ्ट कॉलेज में उन्होंने एनरोलमेंट तो दिखाई, लेकिन एक सेमेस्टर के बाद ही बेचारा रॉबर्ट वार्डलो आगे वकालत परसों नहीं कर पाए. प्रॉब्लम पता क्या है, प्रॉब्लम उनकी हाथ थे. ऐसा नहीं कि उन्हें पढ़ाई में मन नहीं लगता था, रॉबर्ट वार्डलो वॉज रियली गुड इन स्टडीज, बाद में जाके उनका पढ़ाई में और मन लगने लगा था, लेकिन उनके जो हाथ थे वो 32.3 सेंटीमीटर लंबे थे, कलाई से लेकर अगर मैं ये मिडिल वाली फिंगर तक की बात करूं, 32 सेंटीमीटर कलाई से लेकर रिस्ट से लेकर बीच की उंगली तक. तो उनके लिए क्या था, पेन पकड़ना बड़ा मुश्किल था. वो ना पेंसिल पकड़ पा रहे हैं ना पेन पकड़ पा रहे हैं, बेचारा लिख ही नहीं पा रहा है, नोट्स ही नहीं बन पा रहे, तो कहां से करेगा पढ़ाई. ही रियली ट्राइड हिज लेवल बेस्ट, लेकिन नहीं हो पा रहा था. एक तो उनके लिए जो कॉलेज में बैठने का सिस्टम भी था वो नहीं कर पा रहे थे वो, क्योंकि उन्हें पैर सीधे रखने पड़ते थे, चाहे वो रेस्टोरेंट हो चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, और पैर टेबल के नीचे से निकाल के आगे करने पड़ते थे तो क्योंकि बैंड नहीं कर सकते और लोग गिरते थे. तो वो तंग आ गए, उन्होंने पढ़ाई को छोड़ दिया, उनका ये वाला सपना अधूरा ही रह गया, बिकॉज इट वॉज इम्पॉसिबल कि वो एक पेन पकड़ के लिख सके. मगर रॉबर्ट वार्डलो की किस्मत में कुछ और लिखा था, ये सपना तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन कुछ और दरवाजे खुल गए, क्योंकि रॉबर्ट वार्डलो भर भर के फेमस हो चुके थे, उन्हें पब्लिसिटी पूरी पूरी मिल रही थी चारों तरफ से. ऐसे में वो नजर में आए दो भाइयों के, द रिंगलिंग ब्रदर्स. रिंगलिंग ब्रदर्स सर्कस चलाते थे और ट्रेवल करते थे अपने सर्कस के साथ, और जानते ना पहले सर्कस की बहुत बहुत कदर हुआ करती थी. तो रिंगलिंग ब्रदर्स का जो सर्कस था वो ऐसा था कि एक तो बड़ा एक्ट होता था जो बिल्कुल फाइनल होगा, और छोटे छोटे लोगों के साथ भी वो लोग एक्ट करते थे. छोटे छोटे लोग माने जिनके साथ मेडिकल कंडीशन है, वो ट्रैवल करते थे अपने कार्निवल के साथ. और इसमें रिंगलिंग ब्रदर्स बड़े बड़े नाम थे, PT Burman, डॉबरेज इंटरनेशनल, बड़े बड़े नाम थे सर्कस में. तो मेन शो और साइड शो, साइड शो में क्या होता था, भाई कोई औरत है वो उसकी दाढ़ी है उसको ले लिया, जुड़वा बच्चे हैं साथ में जुड़े हुए भी हैं ले लिया, एक बंदा है जो हड्डियां मोड़ सकता है उसकी हड्डियां ऐसा लगता है ही नहीं मसल पूरे मोड़ रहा है उसको ले लिया. ये सारे लोगों को मौका मिलता था पैसे बनाने का, और ऐसे लोगों की तलाश में सर्कस वालों की नजर पड़ गई रॉबर्ट वार्डलो पे कि एकदम परफेक्ट चॉइस है भाई, इसको हम खड़ा कर देंगे, तालियां बजना शुरू हो जाएंगी. तो सर्कस में इंट्रोड्यूस किया गया रॉबर्ट वार्डलो को एज एल्टन जायंट, जायंट ऑफ इलिनॉय, बहुत फेमस हुए वो. और साइड शो नहीं, पूरा सेंटर स्टेज दिया गया उन्हें. पूरे के पूरे कंट्री में एक ही आदमी का सिक्का चल रहा था, हर कोई चाहता था रॉबर्ट वार्डलो उनकी तरफ आ जाए बस. पर रॉबर्ट वार्डलो सर्कस में जब थे तो उन्हें कलाकारी का शौक नहीं था, कोई रंगारंग कार्यक्रम करने का उनका मन भी नहीं था. वो एक ही शर्त पे काम करने को तैयार होते थे. वो सर्कस वालों से कहते थे, देखो मैं अपने अब्बा के साथ आऊंगा, साफ सीधी बात है, और हम दोनों को एक होटल स्वीट में एक बढ़िया सा कमरा चाहिए और सारा एक्सपेंस आप लोग उठाएंगे, ये वाली शर्त होती थी. तो सर्कस वाले मजबूर थे, देना ही पड़ते थे, कंडीशन पूरी करनी पड़ती थी. और जो परफॉर्मेंस थी उसके दौरान रॉबर्ट वार्डलो को कहा जाता था, सर आपको ये हैट पहनना पड़ेगा, थोड़ा चाहते थे कार्टून की तरह दिखे, लेकिन रॉबर्ट वार्डलो ना वो एक बिजनेस सूट पहन के आते थे और बोलते थे मैं नहीं पहनूंगा, मेरी भी कोई इज्जत है, और डटे रहे वो इस बात पे. और रॉबर्ट का ये डटे रहना और अपनी इज्जत को संभाल के रखना बहुत फायदे का सौदा रहा, क्योंकि फिर रॉबर्ट वार्डलो पे नजर पड़ी एक जूता बनाने वाली कंपनी की, पीटर शू कंपनी 1938 में. और उन्होंने कहा, जी आप हमारे लिए बढ़िया हैं, आप ही हमारे जूते का प्रमोशन करेंगे. अब ये बहुत खूबसूरत बात इसलिए थी क्योंकि रॉबर्ट जो थे वो बेचारे परेशान थे अपने शू साइज से, 47 सेंटीमीटर, दुनिया का सबसे बड़ा पैर. कंपनी ने कहा, देखो रॉबर्ट हम तुम्हें लाइफ टाइम जूतों की सप्लाई देंगे. और ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ा बोनस था, क्योंकि रॉबर्ट के जो जूते बनते थे रॉबर्ट वार्डलो के, उन्हें बनाने में $1,000 लगते थे, तो $100 लगते थे सॉरी, और आज के $2,000. तो ये तो फ्री में जूते मिल रहे हैं,
तो रॉबर्ट ने कहा कि सर्कस को करो साइड में, मैं नहीं कर रहा सर्कस, और ऑब्वियसली वो शिफ्ट हो गए इस जूते की कंपनी के साथ। पूरी कंट्री में डिमांड बढ़ गई थी रॉबर्ट वॉडलो की, और बाप हेनरी वॉडलो, इन दोनों ने मिलकर बहुत रौला पाया पूरी कंट्री में। जो फादर थे हेनरी वॉडलो, अपने बेटी के लिए गाड़ी को जो है मॉडिफाई करना चाहते थे, क्योंकि उनका बेटा गाड़ी में बैठ नहीं पाता था। तो उन्होंने क्या किया, पैसेंजर सीट जो आगे वाली होती है उसे हटा दिया, और रॉबर्ट को कहा तुम आराम से पीछे बैठ सकते हो। तो पीछे बैठ के रॉबर्ट के पैर आगे तक आते थे, तो वो सीट हटाने से उसके लिए थोड़ी आसानी हो गई। बाप बेटे ने माइंड यू 800 टाउन घूमे साथ में कंपनी के साथ, 41 स्टेट्स प्रमोट करते हुए शू कंपनी को, कुल मिला के 500,000 किलोमीटर दोनों घूमे। 500,000 एक कंपनी आ गए, उन्होंने तो ये कह दिया कि हम जो है $7 का अपना इलेक्ट्रिक क्लॉक लैंप देंगे सबको जो जो रॉबर्ट को ग्रीट करेगा। उन्होंने टाइटल भी रख दिया कि वी विल लेट द वर्ल्ड्स बिगेस्ट बॉय गिव यू द बिगेस्ट फ्री गिफ्ट। सब चाहते थे कि रॉबर्ट वॉडलो उसका प्रमोशन करे, बल वो भूल गए थे अभी बच्चा है वो दिखता बहुत बड़ा है। अगर बिहेवियर की बात की जाए तो कभी उसके सर पे सुपर स्टारडम नहीं चढ़ा। आसपास के लोग भी हमेशा कहते थे कि बहुत ही प्यारा बच्चा है, बहुत अच्छे से बात करता है, अखलाक की तौर पे भी काफी अच्छा है। तो उसे नाम भी दिया गया द जेंटल जायंट। लेकिन इस जेंटल जायंट के लिए बेसिक चीजें बड़ी मुश्किल होती जा रही थी। सब कुछ उसके साइज का बनाना पड़ता था, टेबल पे खाना खाना नामुमकिन है क्योंकि वो बैठ ही नहीं सकता, सब कुछ कस्टम मेड। 3 गुना ज्यादा कपड़ा लगता था उसके कपड़े बनाने में, 10 फुट का बेड बनाना पड़ता था। और जब भी रॉबर्ट वॉडलो को होटल में स्वीट दिया जाता था तो 3-4 बेड आपस में मिलाए जाते थे तब जाके वो उस पर लेट सकता था, अदरवाइज इट वॉज इम्पॉसिबल। 1937 में उसके रॉबर्ट वॉडलो के फादर ने डिसाइड किया कि भाई अपने बेटे के लिए मैं एक घर बनाऊंगा जो सिर्फ उसके लिए होगा। 9 फुट की सीलिंग होगी, 11 फीट की, मतलब सॉरी 9 फीट का तो दरवाजा होगा, 11 फीट की सीलिंग होगी, सीढ़ियां होंगी 2-2 फुट चौड़ी, और फर्नीचर भी होगा मेरे बेटे के हिसाब से। उन्होंने 10 फुट का बाथ टब भी बनवा लिया $1,000 खर्च करके उस टाइम के, पर ये सब हो नहीं पा रहा था क्योंकि प्रैक्टिकली खर्चा बढ़े जा रहा है, वो घर लग ही नहीं रहा, कुछ और ही बन रहा है। तो उन्होंने बीच में इसे हॉल्ट कर दिया। रॉबर्ट वॉडलो चाहते थे कि पब्लिक उनको ना जाने, लेकिन कैसे ना जाने, अगर आप एक भीड़ में से आ रहे हैं और कितना भी दूर हो आपको एक ऊपर एक मुंडी नजर आ ही जाएगी अगर रॉबर्ट वॉडलो सड़क पे हैं। यू कैन नॉट इग्नोर हिम, और रॉबर्ट वॉडलो चाहते थे कि लोग उनको इग्नोर करें, मगर एवरीबॉडी वांटेड अ पीस ऑफ हिम। एक डॉक्टर साहब थे चार्ल्स हम्बर्ट करके, वो रॉबर्ट वॉडलो के घर गए रिसर्च पेपर लेके कि मैं इस पर रिसर्च करूंगा, पर क्योंकि रॉबर्ट ने कहा कि आप थोड़े रूड हैं, आपके सवाल ऐसे हैं जैसे मैं कोई चूहा हूं और आप मुझ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो डॉक्टर साहब जो हैं वो चढ़ गए और उन्होंने बाहर जाके रॉबर्ट वॉडलो के खिलाफ बहुत कुछ कहा कि ये कोई जेंटल जायंट नहीं है, बड़ा घमंडी है, कुछ अकलमंद नहीं है, ये सब उन्होंने बातें अखबार में कह दी। जाहिर सी बात है रॉबर्ट वॉडलो की फैमिली को बहुत बुरा लगा, उन्होंने केस भी किया, सू कर दिया $1,00,000 के लिए, मिजोरी हाई कोर्ट में केस भी गया, लेकिन रॉबर्ट वॉडलो ये केस हार गए। जज साहब ने कहा कि कैसे प्रूव करोगे कि डॉक्टर साहब से तुम्हारी लड़ाई हुई, डॉक्टर साहब गलत कह रहे हैं, उस टाइम पे ये प्रूव नहीं हो सकता था, एंड अनफॉर्चुनेटली ये केस हार गए वो। बहरहाल 1940 में 22 साल के रॉबर्ट वॉडलो चलने में बहुत तकलीफ आ रही थी इनको, तो आयरन लेग ब्रेसेस, वो लोहे के ब्रेसेस टांग में तो थे ही, और एक लाठी लेके खेन लेके चलते थे अपने सपोर्ट करके खुद को। उन्हें लेकिन अंदाजा नहीं था कि जो ब्रेसेस उन्होंने पैरों में लगा रखे हैं इसकी घिसड़ उनको लग रही है। रॉबर्ट वॉडलो इस बात से बिल्कुल अनजान थे। वो मिशिगन पहुंचे मैनिस्टी नेशनल फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट फेस्टिवल में, शू कंपनी को फिर से प्रमोट करने के लिए, और इसी दौरान उनके पैर में एक छाला पड़ गया, ब्लिस्टर हो गया, और वो इन्फेक्शन में बदल गया, और उन्हें पता भी नहीं लगा क्योंकि उनके पैर उन्हें महसूस नहीं होते थे। जब पता लगा तो हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल वालों ने सबने मना कर दिया, बोला कि आपका इलाज करने के लिए हमारे पास ना तो बेड है ना मैनिटीज हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, और उन्हें वापस भेज दिया। नतीजा इन्फेक्शन बढ़ता चला गया,
और रॉबर्ट की हाइट की वजह से उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक था, बहुत वीक। जब इन्फेक्शन हुआ तो उन्हें बुखार चढ़ गया 106 डिग्री। डॉक्टर्स को फाइनली कहा गया कि अब तुम्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। डबल ट्रिपल बेड्स लगा के उनका इलाज करने के लिए डॉक्टर उतरे तो सही, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की भी कोशिश करी लेकिन कुछ नहीं हुआ। सिर्फ खबर आई, जुलाई की 15 तारीख थी, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट मैन डेड, ये अखबार में छापा गया। महज 18 दिन के इन्फेक्शन के बाद रॉबर्ट वॉडलो ने दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन जब उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा उस वक्त भी उनकी बॉडी को नापा गया। जिस वक्त उनकी डेथ हुई ही वॉज 8 फुट 11 इंचेस, 8 फुट 11 इंच की थे उस टाइम पे और 200 किलो के। वही लेग ब्रेसेस जिसकी वजह से वो चलने की कोशिश कर रहे थे, उन्हीं लेग ब्रेसेस की वजह से उनकी जान गई। अगर वो 1-2 साल और जिंदा रहते तो 9 फीट क्रॉस कर चुके होते फॉर श्योर। उनको एल्टन इलिनॉय में ही दफनाया गया, इन ओकवुड सेमेट्री, मेडिसन काउंटी। उनके फ्यूनरल में सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या रही थी कि दफनाना भी तो है बंदे को, अब दफनाने के लिए कैस्केट कहाँ से लेके आए। जो कैस्केट लेकर आ रहे थे, जो ताबूत था वो 10 फीट का बनाया गया, 10 फीट 9 इंच का, और इसका वजन था 450 किलो। अब उनकी बॉडी को कैरी करके ले जाना सेमेट्री तक कोई आसान काम तो है नहीं। इसमें दर्जनों लोग लग गए उस कैस्केट को उठाने में, उनकी जान निकल गई लोगों की जो कंधा देने के लिए वहां पर आए थे, गाड़ी तक रखने तक ही उनकी जान निकल गई। लेकिन उनके फ्यूनरल में रॉबर्ट वॉडलो के 46,000 से भी ज्यादा पब्लिक पहुंची थी, 40,000 से ज्यादा लोग उनके फ्यूनरल में पहुंचे थे। डेफिनेटली ये 22 साल का लड़का पीछे बहुत कुछ छोड़ के गया था, एक बहुत बहुत बड़ी लेगेसी। 1985 में रॉबर्ट वॉडलो का एक लाइव साइज ब्रॉन्ज का बना हुआ स्टैचू भी इंस्टॉल किया गया उन्हीं के हाई स्कूल में, एल्टन कैंपस ऑफ सदरन इलिनॉय यूनिवर्सिटी में। और 3 और स्टैचू लगाए गए अलग अलग जगहों पे। रिप्लीज बिलीव इट और नॉट का जो म्यूजियम है उनका, वहाँ पे वैक्स म्यूजियम भी है। इनफैक्ट एक और वो बनाया गया पुतला, जहाँ पे जब आप खड़े होते हैं तो वो गुब्बारे का बना हुआ है, जब आप खड़े होंगे तो पुतला एकदम से फूल के बड़ा हो जाएगा ताकि आप अपनी हाइट उनकी हाइट से मैच कर सकें। इनफैक्ट एक म्यूजियम है जहाँ पे उनका पूरा एग्जिबिट आपको मिल जाएगा, एल्टन म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री एंड आर्ट में, जहाँ पे उनके फोटोज मौजूद हैं और रॉबर्ट वॉडलो का जो जूता है वो मौजूद है, तीसरी क्लास में जो उनके लिए डेस्क बनाई गई थी वो भी मौजूद है, ग्रेजुएशन के टाइम पे जो उन्होंने केप और गाउन पहना था वो भी मौजूद है। मगर एक काम जो उनकी माँ ने बहुत बढ़िया किया, रॉबर्ट वॉडलो की माँ ने, उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को लेकर लोग बाकी चीज़ें, बाकी कमाई करते रहेंगे सालों सालों तक, तो उन्होंने रॉबर्ट वॉडलो की बाकी चीज़ों को जला दिया ताकि दुनिया इससे और प्रॉफिट करने का ना सोचे, विच वॉज़ अ वेरी गुड डिसीजन। तो इतना ही है जो म्यूजियम को दिया गया, वॉलंटरीली दिया गया। और एक ऑर्डर था उनकी माँ को, उनको पता था कि जहाँ पे रॉबर्ट दफनाए गए हैं तो आने वाले वक्त में लोग अपने आप को साइंटिस्ट बताकर वापस इस कब्र को खुदवाएंगे और उनकी बॉडी को एग्ज्यूम कर लेंगे। तो उन्होंने उनकी बॉडी को भी निकाल कर एक अननोन जगह पे कॉन्क्रीट वॉल्ट में दफनाया है। हालांकि वो अननोन जगह बाद में उन्होंने बता भी दी थी, बट वो कॉन्क्रीट वॉल्ट है, इतना हार्ड, इतना सॉलिड कि कोई ट्राई भी नहीं करेगा। ये कहानी थी रॉबर्ट वॉडलो की, उनकी लेगेसी अभी भी जिंदा है। इफ यू टाइप वर्ल्ड्स टॉलेस्ट मैन तो रॉबर्ट वॉडलो का ही नाम आता है। तो इनके बारे में जरूर पढ़िएगा, एंड इफ यू हैवंट सीन इट, इन पे एक दो डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी है और उनकी रिकॉर्डिंग भी है। रॉबर्ट वॉडलो एक 22 साल के बच्चे की आवाज़ कैसी हो सकती है वो आपको दिख जाएगा, बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स हैं इनकी, एंड ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट। मुझे लगता है रॉबर्ट वॉडलो अगर आज की तारीख में जिंदा अगर होते तो वो कुछ टाइम तो और जिंदा रह जाते, बिकॉज जिस कंडीशन में उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट कि बस इलाज नहीं था। बहरहाल ये था आज का किस्सा, अब आपके हवाले है। 666-22-107, 666-22-107, डू लेट मी नो कि आपका क्या कहना है। स्टे ट्यून्ड।

0: हाँ जी, साल साथ ही हो गया। और एक भाई कह रहे हैं बोहिमिया की आवाज में वो कर दो सर हर सर पीरी थी थी क्या क्या करवाते रहते हो मुझसे कैसी कैसी रिक्वेस्ट है भाई। एक कॉल आ रही है, रुको। अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम भाई।
0: बढ़िया भाई, आप सुनाए मेरा भाई, किधर हो मेरा भाई, क्या चल रहा है?
1: अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह
0: का जी भाई, क्या
1: आज थोड़ा लेट स्टार्ट किया सुनना मैंने, बस तकरीबन 10 मिनट हुए और स्टोरी अच्छी लगी मुझे। एंड पे थोड़ा बात सुनी जहाँ पे वो शो की जो है ना वो कर रहे थे एडवर्टाइजमेंट और कंप्लेंट कर रहे थे।
0: जी जी जी जी जी।
1: लेकिन उसके बाद मैंने सर्च करके और एक दो वीडियो देख भी ली, तो रियली ह्यूज मैन, मैं इसके बारे में नहीं जानता था
0: भाई। मैं सोच रहा हूँ 8 फुट 11 इंच सामने कैसे दिखेगा आदमी भाई, मैं तो यही सोच रहा हूँ। बहुत हो गया।
1: हमारा जो देखिए ना, हमारा तो आलम चन्ना मशहूर थे ना पाकिस्तान में, उनका नाम था आलम चन्ना, आप सर्च कीजिएगा उसको भी।
0: क्या क्या स्पेलिंग, क्या स्पेलिंग है बताइए आपने? आलम,
1: आलम लिखे ALAM।
0: अच्छा,
1: CHANNA।
0: ओके ओके, कौन है भाई साहब
1: ये भी जो है ना टॉलेस्ट मैन है। अब मुझे नहीं पता ये एशिया में रहे या पाकिस्तान में रहे या सिर्फ मतलब, लेकिन ही वाज कितना, इनका हाइट कितनी बता रहे?
0: 8 फुट 11 इंच की तो उनकी हाइट थी ये, जिनकी मैंने कहानी सुनाई आपको।
1: हाँ वो तो उनकी हाइट है।
0: इनका पता नहीं, इनका चेक करना पड़ेगा मुझे, एज सच कुछ अभी मेंशन नहीं किया, मुझे चेक करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा इनके बारे में।
1: अच्छा चले मैं चेक करके बताता हूँ। तो ये हमारे पास जो है वो सबसे टॉलेस्ट रहे हैं पाकिस्तान में, और ये भी इसी तरह ना जैसे एडवर्टाइजमेंट कंपनीज लेके जाती हैं, तो ही वाज यूज्ड टू लाइक ट्रैवलिंग अराउंड पाकिस्तान।
0: ओके ओके,
1: तो इनसे मिलने का भी इत्तेफाक रहा ही उस टाइम पर। अभी तो खैर अभी वफात पा गए, लेकिन उस वक्त जिंदा थे। 90s की बात बता रहा हूँ, 90s और अर्ली 2000 की बात बता रहा हूँ।
0: ओके हाँ, इन इन इनका हाइट, इनकी हाइट लिखी आ रही है 7 फुट 8 इंच के थे ये।
1: 7 फुट 8 इंच, बस 1 फुट का ही फर्क रह गया ना।
0: हाँ हाँ, यस यस यस यस। तो
1: ये अच्छे खासे ये भी टॉलेस्ट थे ये, लेकिन आप एशिया में आते हैं या उस वक्त के लिविंग टॉलेस्ट थे दुनिया में ये।
0: इसमें लिखा है एज अ टॉलेस्ट मैन इन द वर्ल्ड फ्रॉम 1982 अंटिल हिज डेथ। ओके हाँ, तो वैसे तो टाइटल उन्हीं के हाथ में है, लेकिन बाद में एशिया में जो है इनका नाम है।
1: हाँ, हाँ,
0: बहुत हो गया यार, 7 फुट 8 इंच भी बहुत हो गया भाई, बहुत ज्यादा हो गया था।
1: हाँ, हाँ,
0: वाह भाई,
1: अच्छा खासा
0: है। हाँ ओके,
1: तो बाकी आज का टॉपिक क्या था आज का, मुझे आईडिया
0: भाई टॉपिक क्या, हम डिस्कस कर रहे थे कि लोग क्या प्रिफर करते हैं पर्सनली, लेफ्ट हैंड साइड ड्राइव या राइट हैंड साइड ड्राइव, ये पूछ रहा था मैं लोगों से। एक ऐसी हमने सर्वे चलाया था, तो ये था
1: पर्सनली अगर होता तो आई
0: ब्रॉट
1: कुछ भी चलेगा पर्सनली। देखिए जब जहाँ से आपने स्टार्ट किया तो आपको वही फील आएगी ना कि यार अच्छा राइट हैंड ही होना चाहिए, क्योंकि स्टार्ट वहां से किया ना हमने।
0: अच्छा तो आप भाई, अगर पब्लिक ने ज्यादा वोट दिया है भाई लेफ्ट को, जानते हैं आप?
1: हाँ लेफ्ट को मैं वोट, अब मुझे साल हो गया तकरीबन, लेकिन मुझे ये आसान लगती है। सही कह रहे हैं आप,
0: ज्यादा आसान लगता है,
1: ये इजी लगती है लेफ्ट हैंड मुझे इजी लगती है स्पेसिफिकली जब, लेकिन खैर यहाँ पर इजी इसलिए भी लग रही है कि इन्होंने ना काफी उसको क्या कह सकते हैं, तो काइंड ऑफ इजी इस तरह से किया हुआ है कि काफी ज्यादा ना एरोज वगैरह सिंबल और ये सब डायरेक्शन
0: अभी वो रटा हुआ है ना। हाँ, तो एकदम सब्जेक्ट वो एक्चुअली में सिलेबस चेंज हो जाता है ना, तो दिक्कत हो जाती है जब तक लेफ्ट ठीक है वो वाला सीन है।
1: जहाँ पर एरोज मिस होंगे कुछ रोड्स, अगर मैं भाइयों को अगर मैं भेजूँ वहाँ पर तो लग पता जाएगा
0: आपके लिए। मैं तला भाई कह रहे हैं कि माजिद भाई को बोलो टाप लगाओ और सना नन्ना करके निकल जाओ, ये मैसेज किया आपके लिए
1: ऐसा ही है ऐसे ही है। तो ठीक है, लेफ्ट हैंड मैं भी वोट दूंगा लेफ्ट को, मुझे आसान लगती है। यूएस मैंने विजिट किया, मुझे वहाँ पे भी घूमने का इत्तेफाक हुआ, ऑल्दो खुद ड्राइव नहीं किया, बट इट लुक्स डिफिकल्ट अर्लियर, बट काफी इजी लगा बाद में वहाँ पर भी।
0: भाई मारे बस का तो कुछ नहीं है भाई, मेरे बस का तो नहीं है
1: यहाँ पर, तो ये
0: यही का सीन हो गया हमारा तो। भाई बाहर तो नहीं होगा भाई हमसे, अभी यही बस के रह गए भाई जी।
1: नहीं बेहतरीन है, ये सऊदी की तरफ जाते हैं वहाँ पे भी आपको लेफ्ट मिलता है, तो मैंने अपनी गाड़ी पे कई दफा गया हूँ तो आसान रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह सही रहा है।
0: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: कैमरे पड़े
0: हैं,
1: स्पीड कैमरे तो पड़ते हैं।
0: अरे आप
1: लेकिन
0: पैसा हाथों का मैल है भाई, क्या दिक्कत है, पढ़वा ली तो क्या नहीं भाई, लेकिन
1: नहीं यहाँ पे बचत हो जाती है। सऊदिया में पड़े खतरनाक पड़े, लेकिन वो अल्लाह के शुक्र है कि उन्होंने लिए नहीं पैसे हमसे कुछ अभी तक, तो
0: ये आप क्या मतलब अलग ही चल रहे हैं, यहाँ नहीं लूंगा, मुझे वहाँ वाला जुर्माना चाहिए, यहाँ मजा नहीं आ रहा है। ये क्या है भाई? अच्छा
1: नहीं, आप देखिए ना यार, वहाँ पर अगर जाए ना तो वो उनके स्पीड कैमरा डिफरेंट जगहों पे बड़े छुपे हुए करके ना छोटे छोटे लगे हुए, यहाँ तो पोल प्रॉपर पोल है ना, और वो आपको बता भी देता है।
0: आप बेचारा बनना चाह रहे हैं लेकिन मुझे फील नहीं आ रही भाई। कह रहे मम्मी क्या करूं, छोटे छोटे कैमरे लगे हुए, चीटिंग करते हैं लोग।
1: हाँ ना, छोटे यार। अच्छा शुरू मैं पहली दफा जब गया ना, हाँ, तो डब्बे आ रहे हैं, कुछ अर्से बाद डब्बे आ रहे हैं, मैंने कहा यार ये क्या सीन है, ये बॉक्सेस किस चीज के हैं? मैंने पूछा फिर कॉल करके एक बंदे को, मैंने कहा ये जो बॉक्सेस लगे हैं ये स्पीड कैमरे हैं क्या?
0: हाँ,
1: वो भाई भी कतर से थे और वो जाते रहते थे। उन्होंने कहा हाँ भाई यही तो है, तो तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं तो मारता रहा
0: यार, अब तो बहुत देर हो गई, अब तो बहुत देर हो गई, पहले पूछना चाहिए था।
1: वापसी पे पकड़ेंगे तो फिर देखेंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो पकड़ाई नहीं हुई अभी तक तो।
0: अरे भाई भाई भाई भाई, थैंक यू सो मच इस ज्ञान के लिए भाई, लोगों का काम आएगा, अभी डब्बे देख के जाएंगे भाई। थैंक यू सो मच माजिद भाई।
1: ओके
0: मेरा भाई, बहुत प्यारा, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और माजिद भाई के पास एक मैसेज आया, हेलो कबीर भाई, लेफ्ट एंड हैंड ड्राइव कंफर्ट विल डिपेंड वेदर यू आर राइट हैंडर लेफ्ट हैंडर एंड द कार इज ऑटो गियर और नॉट। सारी कंडीशन ले लिया आपने अनंत भाई, अनंत हो गया ये तो। एक और मैसेज आया है, कहानी पर मैसेज किया है तबस्सुम बहन ने, वो लिखती हैं बहुत अच्छी लाइफ स्टोरी है, आई रियली लाइक दैट ही वाज नॉट गिविंग अप ऑन एनीथिंग, अपने ऊपर आने वाले मजाक को भी आराम से लिया और लॉ पढ़ने के लिए जस्तजू थी वो भी काबिल तारीफ है, और उनकी माँ ने बहुत सही डिसीजन लिया, एंड आई फील वो सही डिसीजन था, वरना लोग अभी तक जो है ना पीछे पड़े होते रॉबर्ट वॉडलो के और सारा सामान उनका बेचने में लगे होते। दुनिया है ही ऐसी भाई, क्या करें। यूसुफ भाई वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग मेरे भाई। इशाम साहब वालेकुम अस्सलाम, सुपर्ब लिखा उन्होंने, गुड स्टोरी गुड टॉपिक, ये मैसेज किया है मुझे अमजद भाई ने। और मेहर अजीज भाई कह रहे हैं कि आपका मन में तो आ रहा है कुछ करने का, कैसे रहते थे वो साउंड घूम रहा, कर नहीं रहा हूं मैं जानबूझ के, समझ रहे हैं आप। तला भाई ने मैसेज किया है, डर गया भाई, डर रेफरेंस देख रहे हैं तला, ये रेफरेंस एक मैसेज है, लेफ्ट हैंड साइड इन द सेंस लाइक वी आर ड्राइविंग ऑन कतर और इंडिया। नहीं नहीं नहीं अमन भाई, मेरे सवाल को नहीं समझे, मैं कह रहा हूँ पर्सनल प्रेफरेंस, पर्सनल प्रेफरेंस मतलब कि आपको अगर चॉइस दी जाए कि भाई लेफ्ट डालो, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड, तो आप क्या चूज करते हैं विच इज़ मोर प्रेफरेबल? वैसा है, इसमें कंट्री का नहीं है, इसे तो ऑब्वियसली आपको लेफ्ट चलानी पड़ेगी, यहाँ राइट चलाएंगे तो गुद्दी पर टैटू बन जाएगा, समझ रहे हैं? तो प्रेफरेबल, मोस्ट प्रेफरेबल। और बाकी उन्होंने कहानी पे लिखा है, बट रियली सैड दैट ही डाइड 22, नाइस स्टोरी। और लिखते हैं रंगारंग प्रोग्राम इन आर कॉलेज, वी यूज टू लाइक इट, वी आर डूइंग फन, है ना, एंड ही वाज अ चाइल्ड। हाँ भाई भाई, वो बच्चा ही था भाई, लोगों ने ज़्यादा ही क्या कहते हैं, अरे मेरा माइक से ये फ़ोन टकरा गया, आई एम रियली सॉरी, किसी को बूम करके आवाज़ आई है तो, बट एक ज़रा और कॉल कर लेते हैं। भाई कह रहे हैं कॉल करने के लिए, तो मैं कॉल करने जा रहा हूँ, ये मैंने कॉल लगा दी है, और इसी के साथ जब कॉल उठेगी तो बात भी हो जाएगी। 8:14 हो चुके हैं, मेरे साथ हैं लाइन पर आज जस, क्या हाल है?
2: अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया, अस्सलाम वालेकुम।
0: अरे मेरे भाई क्या हाल है आपके?
2: बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप बताइए जनाब, खैरियत से हैं?
0: मैं तो बढ़िया हूँ, आप सुनाओ क्या चल रहा है भाई का?
2: बस कुछ नहीं भाई साहब, उनका देखा है उनका भाई, ये इनकी स्पीड, इनकी हाइट तो भाई सब बचपन से ऐसे बड़ी भाई, सना नाना फिरी रिरी
0: कुछ नहीं हुआ भाई, सीधा भाई 8'11", समझ रहे हैं? मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रहा, ये आदमी सामने खड़ा होगा तो कितना लंबा लगेगा, बहुत हो गया 8'11" तो बहुत हो गया।
2: मैं ये पूछने वाला था भाई साहब, बुर्ज खलीफा की हाइट कितनी?
0: वाह वाह वाह, ये थोड़ा ज्यादा छोड़ दिया आपने जैस भाई, अब चाय भी नहीं पड़ेगी भाई, अब बातचीत नहीं पाई, सॉरी। हाँ ये ज्यादा हो गया, वैसे आपका सना नाना पिरी रिरी मुझे लग रहा है चलता रहेगा आज पूरे दिन, ये फेमस हो गया भाई,
2: भाई आपकी मेहरबानी है आपने फेमस किया।
0: अच्छी बात है, चलो कुछ भी हुआ, कहानी कैसे लेके जैस भाई बताओ।
2: नहीं कहानी बढ़िया भाई सब, मगर लास्ट तो ये चीज भी है कि यार कितनी पब्लिक फ्यूनरल में, कितनी पब्लिक और ये सब भाई।
0: हाँ इमेजिन, बहुत तकलीफ आई है बेचारे को यार, वो अगर टाइम पे व्हीलचेयर पे आ जाते हैं ना ठीक रहते।
2: हाँ वो तो ठीक है, कितनी प्रॉब्लम उन्होंने बर्दाश्त करी होंगी, कितने लोगों के ताने ये लेके बचपन से लेके इस उम्र तक भाई साहब,
0: और उस टाइम पे कोई था भी नहीं उनके ऐसा, पता है अभी तो चलो लंबी हाइट वाले हो जाते हैं, उस टाइम पे इतनी हाइट का कोई नहीं था, तो कुछ ज्यादा ही उनकी हाइट,
2: कोई भी नहीं।
0: हाँ
2: वो तो हमने मूवी में देखा है भाई साहब, उनमें ट्रांसफॉर्म में वो इतने बड़े गेट बना रखे हैं, शायद इनके लिए बनाए गए।
0: पर भाई मैं तो बस मेरा मन कर गया बता उस म्यूजियम जाने का जहाँ पे इनका लगाया गया है, रियली वांट टू सी इन रियल लाइफ।
2: कहाँ पर है
0: इनका भाई? अमेरिका में, इलिनॉय में।
2: वीजा भी नहीं लगेगा हमारा
0: क्यों सनाना पीरीरी करके निकल जाना, क्या दिक्कत है इनसे गाड़ी उठा के
2: ना भाई सर, इतना ग्रीस मिलेगा नहीं
0: तला भाई कह रहे हैं भाई जयस भाई रुलाएगा क्या भाई तला भाई कह रहे हैं
2: तला भाई
0: आ रहे हैं, निकल भी जाएंगे बहुत तेज है भाई, बातों में मत आना इनकी, ये आदमी अपनी टोन बदल के बात करता है हमसे, बड़ा आदमी है ये,
2: बता बता,
0: भाई।

0: की बातों बताना। हाँ तो ये वाला सीजन के साथ जैसे भाई, लेकिन थैंक यू सो मच भाई कॉल करने के लिए, बहुत प्यार
1: भाई,
0: ख्याल रखो भाई। ओके भाई, अल्लाह हाफिज। और जैसे भाई का एक मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम भाई, आई प्रेफर राइट हैंड ड्राइव बिकॉज आई एम अ राइटी। रजा भाई यू आर वेरी राइटी मेरे भाई। और एक मैसेज आया है अमन भाई का, क्या कहन लोग रहा भाई, इन्होंने बुर्ज खलीफा की हाइट भी निकाल ली। भाई बुर्ज खलीफा की हाइट क्यों निकाल ली भाई, क्या जरूरत थोड़ी थी अमन भाई, मुझे भी कॉल कर लीजिए, कर लेंगे, लेकिन इसके लिए बुर्ज खलीफा की हाइट निकालने क्या जरूरत थी भाई। एक कॉल कर लूँ फिर अमन भाई आपको। अस्सलाम वालेकुम। मैं बढ़िया भाई, आप सुनाओ क्या हाल है भाई के।
2: बहुत बढ़िया।
0: जी भाई क्या कहना चाह रहे थे।
2: गया तो फिर था भैया, आज का मैं सुन नहीं पाया
0: भाई। सुनने भाई टॉपिक निकले हुए तो 2-2.5 घंटे हो गए भाई। बहुत लेट आया। हाँ तो मैं ये कह रहा था, लेफ्ट हैंड ड्राइव पसंद है या राइट हैंड ड्राइव पसंद है, अगर ऑप्शन दिया जाए तो, ये पूछ रहा था वैसे मैं।
2: सर अगर गल्फ कंट्री में है तो लेफ्ट हैंड।
0: अरे नहीं मेरे भाई, समझे नहीं मेरे सवाल को। गल्फ कंट्री में तो मजबूरी है, वो तो आपको चलानी पड़ेगी, राइट में थोड़ी चला लोगे। मैं कह रहा हूँ पर्सनल चॉइस पे अगर होता तो क्या चूज करते।
2: तब तो राइट हैंड।
0: क्यों राइट हैंड क्यों?
2: इसलिए कि जब हमें लास्ट तो इंडिया में ही रहना है ना।
0: अच्छा ठीक है, सिर्फ यही रीजन है, मजबूरी, मतलब मजबूरी में राइट हैंड चूज किया।
2: दूसरा ये है कि सर पानीपत से हमारे आदमी आए, जानने वाले, पानीपत से घी आया, भेज दो।
0: क्या भेज दो?
2: अरे घी
0: है। क्या बात हुई है, क्या क्या कहाँ जोड़ रहे, कौन सी बात, क्या? एक सेकंड मुझे बताओ हो क्या रहा है, पानीपत का क्या करना है मुझे?
2: अरे पानीपत में हमारे एक रहते हैं हमारे फ्रेंड, वहां से एक आदमी आया है, ठीक है, रात।
0: हाँ
2: तो उन्होंने बोला आपसे, आपके लिए कुछ भेज दो। हमने भाई भेज दो, तो घी उन्होंने भेजा है। तो आपके लिए भेज दो।
0: नहीं नहीं नहीं भाई, बिस्मिल्लाह करें भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो खुद हरियाणा जाने वाला हूँ भाई कुछ दिनों में। बढ़िया, सोनीपत भी जाएंगे भाई, बहुत जगह।
2: मैं देख रहा हूँ सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, बाबरपुर। जी जी, आप जिस इलाके में रहा हूँ मैं
0: भाई, मैं भी उधर ही भाई, बहुत मेरे बहुत वहाँ पे यार है भाई, घर घर में। टेंशन को नहीं भाई, वहाँ से हम खुद अभी ओरिजिनल जाके खा लेंगे। टेंशन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन भाई, बहुत प्यार कॉल करने के लिए। वालेकुम सलाम भाई। भाई 2 मिनट के लिए मेरा दिल एकदम स्पीड ब्रेकर पे आ गया। मैंने कहा है क्या बोल रहा भाई। एक मैसेज है ये हमारे भाई, अरे रे रे रे रे रे रे रे। एक हमारे अमन भाई, उनको कॉल कर लेते हैं। अमन भाई कॉल उठा लो, एक मैसेज प्लीज को अभी। अस्सलाम वालेकुम।
3: हेलो,
0: हाँ जी भाई।
3: वालेकुम अस्सलाम
0: अमन भाई, एक जोक सुनोगे भाई? बढ़िया हूँ भाई मैं। अमन भाई एक मैसेज आया है, वो कह रहे हैं राजा हिंदुस्तानी का गाना चला दो मेरे शो में, कह रहे हैं। कितने मासूम लोग हैं भाई दुनिया में, राजा हिंदुस्तानी का गाना चला दो। जानते नहीं, नहीं कोई बात नहीं, अब बताइए अमन भाई क्या कह रहे थे।
3: नहीं मैं आपने बोला ना कि मैंने बुर्ज खलीफा की हाइट निकाल दी, वो तो भाई साहब बोल रहे थे ना कि बुर्ज खलीफा की हाइट।
0: मैं वही कह रहा था, मैंने कहा
3: कहां 8 फुट कहां।
0: अमन भाई आज बहुत फ्री है, आज फ्री चल रहे हैं अमन भाई, जैसे बोला भाई ने।
3: मैं आगे बैठ गया बस, इधर ऑफिस में आगे बैठ गया, जो आप बोल रहे हैं मैं सर्च करके मैं पूरी हिस्ट्री निकाल दी उसकी बेचारे की, जो 22 साल में।
0: बहुत प्यार आपको अमन भाई,
3: सीरियसली वो बहुत क्यूट भी था, एकदम बच्चा था वो।
0: हाँ वो एक्चुअली बेचारा बोलने की कोशिश करता, उसकी आवाज ज्यादा निकलती थी, और कोई बात नहीं है।
3: जितनी भी फोटोज हैं उसमें इनोसेंट ही दिखाई दे रहा है, जैसे फोटोज में उसको जबरदस्ती खड़ा करके बोला चलो अपनी हाथ सीधा करो, उसको दिखाओ तुम कितने लंबे हो। हाँ। उसमें दिखा रहा है, दिख रहा है वो।
0: हाँ तो भाई मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे आई डोंट नो कतर में सबसे लंबा इंसान कितनी हाइट का होगा, आई डोंट नो, बट आई थिंक 7 फुट से ऊपर तो मैंने मतलब लाइव शायद ही किसी को देखा। 7 फुट 2 देखा है मैंने, एक बार खली से मिले था मैं, बस खली मुझे लगे थे 7 फुट।
3: अच्छा ठीक है, मैं भी इसी की बात करने लगा
0: है ना।
3: खली तो हमारे जलंधर का है ना।
0: हाँ जलंधर के है ना वो, तो 7 फुट 4 इंच। हाँ। 7 फुट 2 या 3 इंच ऐसे कुछ ना, मुझे पता नहीं, मुझे
3: 7'4"
0: है ना। हाँ आई थिंक उन्हीं को जानते हैं सबसे अभी तो हाइट, लेटेस्ट पता नहीं भाई किसी को देखा ही नहीं देखा।
3: उसकी हाइट की वजह से उसको पंजाब पुलिस में ऑफर आ गया था ना,
0: 10th
3: पास था वो।
0: हाँ हाँ यस उन्हें ऑफर आया था, और काफी उनको भी एक जगह से ऑफर आया था जहाँ पे वो अच्छा हुआ नहीं गए, क्योंकि उनको वो भी लोग वो
3: नहीं 7'1" दिखा रहा है, 7'1" और 7'2" दिखा रहा है हाईएस्ट।
0: हाँ अच्छा,
3: ये खली का
0: इसी के आसपास। हाँ तो उनको भी वो रंगारंग कार्यक्रम जो हम कह रहे थे उसके लिए बुलाया गया था, अच्छा हुआ नहीं गए वो। तो
3: एक तो आपने एक और बात याद दिला दी मुझे, गुदी पे टैटो मैं इतना हंस रहा हूँ ऑफिस में।
0: बहुत बहुत
3: ये डायलॉग आपका एक एवरग्रीन है, एक आर जो आपने सुबह सुनाया ना, तारा रादा
0: सारा रादा पीरी दीदी। हाँ क्या गाना, गाने का नाम क्या?
3: गाड़ी का साउंड है ना।
0: हाँ हाँ

0: 2000 से पहले।
1: डन है भाई, बहुत प्यार भाई, जरूर भेजना मन भाई। ठीक है।
0: और स्टोरी बहुत अच्छी थी जी, बहुत अच्छा, लेकिन सैड फील होता है जब कोई बच्चा, ऐसा बच्चा था और उसके उसने आगे जिंदगी देखनी थी, इंफेक्शन की वजह से उसकी डेथ हो गई।
1: हाँ, मतलब ये दैट वाज सैड यार, क्योंकि 22 साल बहुत कम उम्र में, 22 साल बहुत कम उम्र है एक्चुअली में।
0: हमें तो 35 साल बाद पता चला कि जिंदगी क्या थी, जॉब क्या थी, करते करते 10 साल हो गए, 10 साल बाद पता चला कि जिंदगी भी कोई चीज है। तब हमें 35 साल बाद होश आया।
1: यस, तब तक तो वो बहुत कुछ कर चुका था भाई, 22 साल में भी भाई ने बहुत बड़ी लाइफ जी है, तो वो भी एक फैक्टर है। बट देन अगेन अल्लाह ताला सबको सेहतमंद रखे भाई, यही दुआ है। और बहुत बहुत शुक्रिया मन भाई कॉल करने के लिए, जान बहुत प्यार भाई को।
0: थैंक यू कबीर भाई, टेक केयर।
1: ओके भाई, टेक केयर, टेक केयर। माजिद भाई कह रहे हैं कि पसंद नहीं भाई, पसंद है देसी की तो बहुत ही पसंद है। मैं तो भाई से कह रहा, मैंने कहा अब तो छुट्टी वुट्टी वैसी पड़ जाएगी तो वहीं जाके खा लेंगे भाई, क्यों किसी को तकलीफ देनी कि वो यहाँ ला के घी दे। तो वो वाली बात है माजिद भाई, ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं भाई। एक मैसेज है कराची का बारे भाई, काश आ सकता, खुलवा दो दरवाजे, आ जाएंगे। एक कॉल आ रही है और हमारे पास, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम प्यारे कबीर भाई,
1: क्या बात है आज, बिल्कुल अलार्म लगा के उठे हैं करीम भाई। हैं
2: भाई, हमने क्या प्रॉमिस किया था कल,
1: वादे के पक्के हैं भाई साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या बात है,
2: एक बार किसी ने उठाया तो दूसरा दिन मैं खुद उठूंगा।
1: वाह वाह वाह वाह, करीम भाई आपका फैन हुआ है मैं। और बताइए क्या चल रहा है करीम भाई, अभी तो कुछ भी नहीं सुना होगा आपने।
2: बहुत बढ़िया, मैंने कहा यार भाई को सुनते हैं और हसात, बस क्या यार हंसाते हैं आप, खुश करते हैं।
1: थैंक यू सो मच।
2: सबसे बड़ी मसला ये कहते हैं ना कि अल्लाह ताला जब जिंदगी में किसी को भी मौका दे दे तो उस शख्स को नरम बनना चाहिए,
1: बिल्कुल
2: समझदार नहीं।
1: मैं तो
2: नरमी,
1: हाँ
2: जी जी, आप कुछ,
1: मैं तो गिलावटी कबाब जैसा नरम हूँ भाई इस मामले में।
2: हाँ बिल्कुल,
1: हाँ।
2: तो जब आपको मौका मिले तो बंदा कोशिश करे नरम बने, किसी की मलहम का मतलब मलहम बने, किसी की कोई यानी सख्ती जो है ना इंसान के लिए, क्योंकि सख्त जमीन में खेत बाड़ी नहीं होती ना।
1: हाँ,
2: तो इंसान जितना नरम बनता है ना इतना अगले को जो है ना सुकून मिलता है।
1: क्या तो बात है, उठते की शादी करीम तो, भाई कैसे कर लेते हो यार ऐसी खतरनाक बातें आप, क्या बात है यार।
2: क्या बात है यार,
1: सपने में प्रोसेसिंग यूनिट चलता है भाई का। हाँ क्या,
2: एक एक काम की बात तो करनी चाहिए ना सर।
1: अरे बिल्कुल करीम भाई, यार आपकी बात ही कुछ और है भाई, आपकी बात ही कुछ और है। और अभी चाय वाय पिए, सीधा कॉल लगाई आपने, नाश्ता वाश्ता नहीं हुआ।
2: पराठे ले लिए, 3 कड़क पराठे।
1: और भाई साहब कौन से पराठे हैं, आलू के किसके हैं?
2: नहीं आदि पराठे हैं, इधर एक जगह है, क्या पराठे देते हैं यार कड़क।
1: करीम भाई ऐसा नहीं करो यार, आलू वाले भी खाया करो यार, थोड़े से आलू वाले के लो यार।
2: आलू वाले पराठे सर नहीं खाए इधर, सच बताओ ना।
1: हाँ
2: मुझे बस एक जगह, एक होटल है उधर, लेकिन मौका नहीं मिल रहा। वैसे भी मैं इसका ज्यादा शौकीन नहीं हूँ
1: पराठे का, जो है नहीं नहीं, नहीं, नहीं। करीम भाई अच्छी बात नहीं, शौकीन बनिए भाई, आलू के पराठे खाइए यार, आपकी हमारी जमेगी कैसे यार, ये कोई बात थोड़ी होती है, खाइए
2: आलू पराठे खा लो।
1: हाँ बिल्कुल खाइए यार, कौन रोक रहा है करीम भाई।
2: ये तो फिर साथ करना पड़ेगा ना, तो जाहिर है पता तो आपको है, जिधर आप रह रहे इधर तो सारे सबके सब पराठे है भाई।
1: नहीं भाई मैं आपको बिगाड़ के रहूंगा भाई, आपको पराठे के खिलाफ नहीं जाने दूंगा मैं आपको, आपको आलू के पराठे बिठा के खिलाऊंगा मैं, ऐसे कैसे हो गया।
2: तो आलू के पराठे एक साथ खाएंगे, अभी मैसेज आपकी तरफ से होगी, मैं तो अभी से रेडी हूँ भाई।
1: अरे मेरा भाई यही तो चाहिए, क्या बात है। बहुत बढ़िया, आप अपना ख्याल रखिए मेरा भाई, और आप उठ गए हैं तो पराठे वराठे खाइए, हमारी तरफ से बिस्मिल्लाह कीजिए मेरा भाई, ख्याल रखिए।
2: अल्लाह ताला आपको खुश रखे, मैंने कहा भाई से हाय हेलो हो जाए, बस दिन आपकी अच्छी हो, सेहतमंद रहो, अपना ख्याल रखो, जान है तो जान है मेरे भाई।
1: बहुत प्यार भाई, बिल्कुल
2: हम दुआ में जब हाथ उठाते हैं ना पहले अपने लिए मगफिरत की दुआ मांगते हैं ना।
1: बेशक बेशक बेशक,
2: तो आप हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जिस तरह आप बोलते हैं कि जाते जाते जब आप ये बात करते हैं तो हकीकत में, तो आप भी हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे,
1: जज़ाकअल्लाह,
2: अल्लाह आपको सलामत रखे,
1: आपको भी आमीन आमीन,
2: खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखे।
1: आप मेरा भाई अभी ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। तो करीम भाई ने सुबह सुबह सादे पराठे चुन लिए, मेरा बहुत मन कर रहा भाई आलू के पराठे का, इनकी बात सुन के रहा, या तो गोभी हो या प्याज की हो भाई, मन सा कर गया भाई आज खाने पड़ेंगे। मैसेज है गिलावटी कबाब से कृष्णा और यंगस्टर्स का गाना याद आ गया। हाँ भाई मुझे भी बोलते के बाद याद आया ये क्वारंटीन है ना उस गाने का नाम, साथ भाई हाँ वही नाम है। एक मैसेज है तला भाई का, भाई नहीं नहीं नहीं वो नहीं बोल रहे तला भाई, क्या करें तला भाई का, उठते हाँ उठते के साथ ही देखा नहीं हम, तो बस मैं ये चाबी भरी रहती है करीम भाई की, उठते के साथ ये भी बताऊंगा क्या कह रहा है।

बट या 666-221-07 इज द नंबर. कहानी के बारे में कुछ कहना चाहते हो जरूर कहिएगा. इनफैक्ट ये आप पढ़िएगा भी, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है रॉबर्ट वाड्रो की. एंड इस पर एक तो डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में बनाई गई है, नॉट एक्जैक्टली डॉक्यूमेंट्री बट इट इज मेड रियली रियली रियली रियली वेल. सो जी 666-221-07 नंबर है. और मैं जो हूँ आप ऐसा गाना चलाऊंगा आपकी वॉल्यूम अपने आप बढ़ जाएगी, थोड़ी फील आ जाएगी, पंप मिलेगा भाई पंप सवेरे सवेरे. और अगर गलती से आलू के पराठे खा रहे हैं मुझे फोटो नहीं भेजना भाई, खून मत जलाना भी, क्योंकि मैं अभी क्या कहते हैं उसे मेंटली प्रिपेयर हो रहा हूं, समझ रहे हैं आप, नॉट एग्जैक्टली रेडी बट जस्ट कर हाँ जी. मैं जी 8:28

भाई साहब मजे आ गए, मत सीरियसली मजा आ गया। क्या गाना है यार जे स्टार का, ओहो हो गबरू सुना है हमने जे स्टार का, वो भी सुनाऊंगा जल्दी आपको। 8:31, गुड मॉर्निंग।

0: वेक अप
1: लेट्स गो। हाँ जी भाई, 8:25 हो लिए और एक दो मैसेज पढ़ता हूँ फिर खबर की तरफ बढ़ेंगे। न्याज भाई लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई। वालेकुम अस्सलाम। पराठे दी फोटो भेजी आपने, क्यों किया मेरे साथ आपने यार? एक एक आज मैं

0: सच में ये करने वाला हूँ, आलू का पराठा उस पर मक्खन ऐसे गिरा के उस पर गाल के, भाई साहब ओए होए। नईमुद्दीन भाई आज देखो, आज देखो ये आपने मुझे मोटिवेट कर दिया। एक भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, अभी थोड़े टाइम में गेट पे दे दूँ आलू के पराठे। भाई हमारे गेट पे आना ही नामुमकिन है भाई, यही तो मुश्किल है। पर आपकी मोहब्बत भाई, आपने इतनी इतनी इज्जत से ये बोला मेरे भाई, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। बोलने के नंबर भाई कुछ ना, वो तनसीम भाई क्या होता है, नीयत के भी नंबर होते हैं, सबसे ज़्यादा नीयत के होते हैं। थैंक यू सो मच। एक और मैसेज है, ये हमारे भाई हैं, हमारे अमन भाई कह रहे हैं किधर है, किधर है, क्या किधर है, कौन सा किधर है। पंजाबी समोसा ऑफर करने के लिए शुक्रिया। एक मैसेज है, प्रिफरेबली राइट लेफ्ट हैंडर, मज़ा आ जाता है। सलाम कबीर भाई, लेफ्ट और राइट ऑटोमेटिक होना चाहिए भाई, मैं तो अब मैनुअल चला भी नहीं सकता अब्दुल भाई, हो ना पाएगा भाई। मुबीन बुखारी साहब वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लिसनर्स को भी, उन्होंने प्यार भेजा है। और मकसूद भाई कह रहे हैं वालेकुम सलाम भेज रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। अब ज़रा कुछ खबरों की तरफ बढ़ लेते हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी बातें हैं। तो जी सबसे पहले संडे को एक चीज़ ओपन हुई, उसके बारे में बात करते हैं। तो हिज एक्सलेंसी जो कि कतर के अटॉर्नी जनरल हैं डॉक्टर ईसा साद अल जफाली अल नुआइमी, उन्होंने ओपन किया है 7th क्वालिफाइंग कोर्स फॉर पब्लिक प्रोसिक्यूशन असिस्टेंस फॉर ईयर 2026 एंड 2027। और एक ये शुरुआत है एक एयर लॉन्ग ट्रेनिंग प्रोग्राम की, जो डिज़ाइन किया गया है उन लोगों के लिए जो अभी नए नए अपॉइंट होने वाले हैं एज ऑफिशियल्स फॉर देयर ड्यूटीज़, एंड काफ़ी जिम्मेदारी वाले काम होता है। तो ऑब्वियसली ट्रेनिंग भी एयर लॉन्ग है, एंड काफ़ी ट्रेनिंग के मॉड्यूल को चेंज किया गया ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, एंड इट हैज़ बीन मेड सो सॉलिड। सो कुडोस टू कतर, हर एक फील्ड में कुछ ना कुछ होता रहता है, एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट, यही चीज़ कंट्री को आगे ले जाती है, तो माशाल्लाह। एंड दूसरी बात, ह्यूमन इंटेलिजेंस, इनहेरिटेड नॉलेज और अबिलिटी टू ट्रांसलेट बोथ इन कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन, ये आप देख रहे हैं दुनिया में आ चुका है। आप हर चीज़ देख लीजिए, हर चीज़ को ट्रांसलेट करना ज़रूरी हो चुका है। एंड इफ यू डोंट नो AI, आपको समझना पड़ेगा, एक टाइम ऐसा आएगा इट विल बी इंक्लूडेड एज अ कोर्स अगर नहीं पढ़ेंगे लोग। तो उस जमाने में आप जी रहे हैं और हर चीज़ एक कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन मांगती है, और इसीलिए कतर भी इसी तरफ बढ़ चला है। और कतर का जो डिज़ाइन है, इनफैक्ट ये डिज़ाइन दोहा के डायरेक्टर हैं फहद अल बैदली, उन्होंने इस बारे में बात करी कि इकॉनमी भी इसी तरफ की अब होने वाली है, नॉलेज बेस्ड इकॉनमी, और उसकी तैयारी जारी है। अभी बहुत सारे इवेंट्स आएंगे और आपको खुद नजर आ जाएगा किस तरीके से इकॉनमी जो है 2030 तक किस तरफ बढ़ रही है। सो द डायरेक्शन इज़ वेरी वेरी क्लियर। एंड इसके अलावा दोहा डिबेट्स टाउन हॉल होस्ट करने के लिए तैयार है, एक ओपन सेशन जिसका टाइटल है शुड AI बी शेप्ड बाय फेथ, वेरी इंटरेस्टिंग टाइटल। और ये अक्टूबर की 15 तारीख को है एजुकेशन सिटी सेंटर में, और इसमें फीचर करने वाले हैं बहुत सारे ग्लोबल एक्सपर्ट्स, स्टूडेंट्स और जो रिसेंटली भी ग्रेजुएट हो चुके हैं, फ्रेश ग्रेजुएट बच्चे, वो भी इसमें हिस्सा लेंगे। और जो इवेंट है एक प्लेटफॉर्म है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक इसलिए है क्योंकि ना सिर्फ AI की बात हो रही है, यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ रिलीजन, टेक्नोलॉजी, मोरालिटी, इन तीनों को एक साथ क्या लेके चला जा सकता है, एंड ऑल्सो द आइडिया ऑफ एक्सप्लोरिंग द रोल ऑफ रिलीजियस ट्रेडिशंस, कैसे रिलीजियस ट्रेडिशंस गाइड कर सकते हैं AI को एट अ टाइम जब टेक्नोलॉजी शेप कर रही है लोगों के लाइफस्टाइल को। तो क्या हमारी ज़िंदगी में टेक्नोलॉजी तो है, आप उसको कितना भी क्रिटिसाइज कर लें वो ज़रूरत भी है। यू कैन नॉट जस्ट से अरे हमारा टाइम ही अच्छा, वो ठीक है, अच्छा लगता है बोलने में, बट टेक्नोलॉजी इज़ द नीड ऑफ द आवर और आपको समझना ही पड़ेगा, एंड इट इज़ नॉट अ बैड थिंग एज लॉन्ग एज यू आर टेकिंग इट सीरियसली और आप उतना यूज़ नहीं करें। मगर कितना आप इसके साथ साथ रिलीजियस ट्रेडिशंस को लेके चल सकते हैं, और ये प्लेटफॉर्म उसको डिस्कस करेगा, विच इज़ ब्यूटीफुल। ये सोचने की ज़रूरत थी एंड फाइनली इसके लिए एक प्लेटफॉर्म है। तो ये डिस्कशन जो होने वाला है ये 15 अक्टूबर को होगा एजुकेशन सिटी स्टूडेंट सेंटर में। सो डेफिनेटली वन ऑफ द ग्रेट डिस्कशन, आई थिंक ये तो मैं अटेंड नहीं भी कर पाऊँ तो मैं इसके बारे में पढ़ूंगा ज़रूर। इसके अलावा कतर की जो रैपिडली ग्रोइंग आप देखते हैं इकॉनमी में, रिसाइकलिंग और रिसोर्स, हम कल भी बात कर रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा बन चुका है, तो इसी को इकॉनमी का हिस्सा बनाया जाएगा, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो वेस्ट है उसको ख़राब ना करके रिसाइकल और रीयूज़ करके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर लगाया जाए, एंड दिस इज़ वॉट कतर इज़ वर्किंग टूवर्ड। सो वेरी गुड जॉब, ये भी एक खबर है। तो सारी पॉजिटिव खबरें माशाल्लाह। और ज़रा पॉजिटिव मैसेज भी देख लेता हूँ। कहते हैं ब्रो कैन यू हैं क्या लगा, प्लीज़ ओपन द डोर, आई एम कमिंग विद जलेबी फाफड़ा, विल ब्रेकफास्ट इन योर स्टूडियो। भाई काश ये मुमकिन हो पाता, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है भाई, लेकिन सो स्वीट ऑफ यू टू इवन थिंक लाइक दैट। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत प्यार। एक मैसेज यूसुफ भाई का लिखते हैं, कबीर इतनी सुबह सुबह आलू के पराठे कैसे खा सकते हैं, हैं इतनी सुबह सुबह मतलब है? पहले मैंने शॉकिंग वाला इमोजी दे दूं। यूसुफ भाई हमारे यहां तो सुबह ही से होती है भाई,
1: हमारे यहाँ

0: वही आलू के पराठे से होती है। मैं बताता हूँ, दिल्ली में जब भी मैंने काम किया है जितने साल भी, जो कि बहुत कम किया, लेकिन बचपन से हमारा यही था, सुबह उठते ही आलू के पराठे चाहिए भाई। अगर कहीं जा रहे हैं नोएडा वेडा गुड़गांव गुड़गांव की तरफ भाई, तो सवेरे सवेरे रुक के प्याज के पराठे बहुत ज़रूरी है भाई। प्याज के पराठे, उस पर मक्खन की एक बिल्कुल वो क्यूब डाल के, साथ में हरी मिर्ची, क्या उसके बाद चाय, ख़त्म मामला, ख़त्म, टाटा बाय बाय पैसा वाला। तो इतने शौक क्यों हैं आप, आपकी तरफ नहीं चलता क्या सुबह सुबह? कह रहे इतना हैवी भाई, ऐसे ही है ले। यूसुफ भाई हैरान हो रहे हैं कि सुबह पराठे क्यों खाए जा रहे हैं, सुबह ही खाए जाते हैं हमारे यहाँ तो। काम अलग है क्या? एक मैसेज, सलाम प्यारे भाई, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम प्यारे भाई, राव मुस्तफा भाई, गुड मॉर्निंग मेरे भाई, कैसे हैं आप? कह रहे हैं नो, मुझे नहीं पता था, हाँ 9 बजे के बाद पॉसिबिलिटी नहीं, नहीं नहीं यूसुफ भाई, हमारे यहाँ चलता है भाई, यूसुफ भाई सवेरे सवेरे है भाई, रुक के खाते हम तो ऐसे ही हमारा सीन है। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। ये अफजल उस्मानी भाई ने मैसेज किया है, एकदम प्रोफेशनल कपड़े पहने हुए डीपी में मेरा भाई, कहते हैं यूसुफ भाई को डील करना पड़ेगा। हाँ अफजल उस्मानी भाई, समझाना पड़ेगा इन्हें तो। ये तो गलत होगी, कैसे नहीं पता इनको। यूसुफ भाई डर रहे हैं, ना हैवी होता होगा। नहीं नहीं बहुत ज़रूरी है भाई, दिल्ली में तो सुबह नहीं होती है परांठे ना रखे जाएँ सामने। क्या बात कर दी आपने यूसुफ भाई, आप ज़रूरी है कि आप हमारे साथ चलें भाई, बहुत ज़रूरी है, आपको ले जाना पड़ेगा गुड़गांव में बिगाड़ने के लिए। कॉल आ रही है भाई, अस्सलाम वालेकुम। अरे प्रिंस भाई, आप सुबह से कहाँ थे, आपकी तलाश में मैंने गाड़ियां भेजी हुई थी, कैसे हैं आप?
1: वो गाड़ियां मुझे उठा कर ले आई यहाँ।
0: फाइनली चलो कोई तो काम आया। कैसे प्रिंस
1: भाई? बढ़िया मेरे भाई, आप सुनाएं, आप कैसे?
0: बस बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी भाई बताइए, क्या कहना चाह रहे थे?
1: क्या ही कहें भाई,
0: कुछ तो
1: टॉपिक ऐसा छेड़ दिया कि जिसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता।
0: कौन सा वाला टॉपिक, कौन से वाले टॉपिक की बात है? सुबह वाले सुने तो आप तो लेफ्ट साइड ही चूज करेंगे ना भाई, आप तो ऑब्वियसली यहाँ पर हैं शुरुआत से, तो आप तो कहाँ राइट की तरफ।
1: एक्चुअल फैक्ट क्या है कि आप यहाँ से अगर कोई कहीं जाता है ना, तो उसके लिए लाइसेंस रजिस्ट्रेशन का मसला होता है थोड़ा सा, ये प्रॉपर गल्फ के लोगों के लिए।
0: जी जी।
1: तो यहाँ से एक रजिस्टर्ड लाइसेंस दिया जाता है इंटरनेशनली।
0: जी जी बिल्कुल,
1: आप कहीं भी ड्राइव कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, मैंने यूज किया है वो, मैंने यूज किया है वो।
1: हाँ। तो यूके में प्रॉब्लम ये है कि राइट हैंड ड्राइव है।
0: हाँ हाँ।
1: शायद आप कुछ लोगों को पता हो या ना हो, लेकिन वहाँ राइट हैंड ड्राइव है।
0: हाँ, ऑस्ट्रेलिया में भी है
1: उसके लिए। हाँ भाई, बहुत ज्यादा जरूरी है कि यहाँ से लाइसेंस रजिस्टर करवा के जाया जाए।
0: हाँ बिल्कुल, पर आपकी पर्सनल प्रेफरेंस क्या है, मतलब आप आपने राइट हैंड मुझे लगता नहीं ज्यादा ड्राइव किया होगा, मोस्टली आपने इधर की तरफ ही बिताया ना वक्त तो
1: भाई। मेरा तो मेरा जो भी रुझान झुकाव जो भी कहेंगे वो लेफ्ट हैंड ड्राइव की तरफ ही है।
0: हाँ वही।
1: लेकिन एक बंदा आया था हमारे यहाँ।
0: अच्छा।
1: ड्राइवर।
0: हाँ हाँ।
1: तो उसको पहले फोन पे इंटरव्यू हुआ था।
0: ठीक है।
1: तो आप शेख बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं उनका सेक्रेटरी बात कर रहा हूँ, बताए। मुझे जॉब जिसके पास करनी है मुझे उससे बात करनी है। तो अच्छा ठीक है, चलिए मेरे पास ही करनी है। नहीं आप सही बताएं, आप जब, अच्छा भाई आप ये बताएं, आपने कभी लेफ्ट हैंड ड्राइव चलाई है गाड़ी?
0: हाँ।
1: आपको कोई एक्सपीरियंस है?
0: हाँ।
1: मेरे पास खुद गाड़ी लेफ्ट हैंड ड्राइव रखी है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? अच्छा भाई एलएचडी, आप मैं बोल रहा हूँ गाड़ी नहीं।
0: हाँ।
1: यानी आपने गाड़ी यानी इस टाइप के ट्रैफिक में चलाई है गाड़ी?
0: हाँ।
1: वो कौन सी बड़ी बात है, मेरी जीप खुद एलएचडी है।
0: हाँ।
1: वाह बढ़िया, इंडिया में? हाँ ठीक है, रिजेक्ट।
0: इंडिया में लेफ्ट साइड?
1: उसके पास गाड़ी है लेफ्ट हैंड ड्राइव एलएचडी।
0: अच्छा क्या बात है यार, ये कौन बंदा मिल गया आपको अलग भीड़ में भाई। वाह वाह वाह शाबाश। पर आ, आप ऑटोमेटिक ही प्रेफर करते होंगे ना, मैनुअल मैनुअल प्रेफर करते?
1: हाँ, जब तक समझिए बस नॉर्मल अगर ऐसे ही कहीं आना जाना है तो ऑटोमेटिक प्रेफर करता हूँ, और अगर बर वगैरह में जाना है तो फिर मैनुअल।
0: क्या भाई दोनों रखी हुई है प्रिंस भाई ने, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई बहुत तेज जा रहे हो। ठीक है ठीक है,
1: कितनी रखी हुई बता नहीं सकता भाई, सॉरी।
0: अरे ठीक है। नहीं उसकी कोई दिक्कत नहीं है भाई, धीरे धीरे आप फोटो वोटो डाली देते हैं स्टेटस पे, कभी ना कभी तो गिनी लूंगा मैं।
1: टीम तो आप देख ही चुके हो।
0: हाँ भाई भाई, तो उसके आगे गिनती में मैं नजर रखी हूँ भाई, ऐसी बात नहीं है, मेरा सीसीटीवी कैमरा ऑन है भाई, नजर है मेरी। चौथी जब आएगी जो बता दूंगा आपको, दिस इज द फोर्थ वन। तो प्रिंस भाई बहुत प्यार भाई, थैंक यू सो मच कि आपने कॉल करी भाई, बहुत बहुत प्यार
1: भाई, बस ये चीजें होती है।

0: लोग बिल्कुल ऐसे ना इतना इजी लेते हैं इस चीज को कि हाँ लेफ्ट हैंड ड्राइव कौन सी बड़ी बात है, मेरे पास भी रखी है ऐसी है।
1: फर्क
0: पड़ता है लेफ्ट हैंड ड्राइव गाड़ी होना और लेफ्ट हैंड ड्राइव रोड पे चलाना,
1: सारे रूल बदल जाते हैं ना भाई, सारे के सारे रूल ही बदल जाते हैं। हाँ, तो वो रूल के अकॉर्डिंगली लेफ्ट हैंड साइड ज्यादा सही है।
0: वो बंदा एमपी से था।
1: अच्छा, एमपी से था। क्या बात है, आप पे एमपी वाला टकरा गया, क्या बात है।
0: याद है कि उसने बात ऐसी की थी इसलिए याद है वो।
1: अच्छा,
0: ओ भैये हमारी यहाँ तो भोपाल में हमारी खुद की गाड़ी है लेफ्ट।
1: आप पता है, आप भोपाली बोलने के चक्कर हरियाणवी बोल गए भाई, आप मेरा जो सुन के बिगड़ गए। अरे भाई धीरे धीरे बिगड़ जाएंगे, ठीक है। मैं पूरी हरियाणवी सिखा दूंगा।
0: बिगड़ तो जाएंगे भाई, यानी असल में आपको क्या बताएं कि यानी हर किस्म की लैंग्वेज जो बोल बोल के है ना, प्रॉपर अरेबिक में कभी कभी
1: मैं सोच भी नहीं सकता कि अरेबिक बोलते बोलते कि हरियाणवी में शिफ्ट होता होगा तो कैसा लगता होगा।
0: ये बढ़िया लग
1: है क्या,
0: करके देखिए एक बार, ट्राई कीजिए।
1: मैं ट्राई करूंगा भाई, अभी करूंगा तो मैं थोड़ी, मेरा एम्बेरसमेंट हो जाएगी, मैं थोड़ा शर्मा रहा हूँ अभी, बट मैं जरूर लिख के लाऊंगा ऐसा कुछ जो आधा अरेबिक में और बीच में हरियाणा में डाल दूंगा मैं। ये पक्का करूंगा मैं। पर बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंस भाई,
0: भाई का टचन है भाई का।
1: नहीं, आप मुझे ना कुछ लिख के दो, एंड आई विल टर्न दैट इनटू, नहीं नॉट टर्न दैट इनटू हरियाणवी, बट आई विल पुट सम वर्ड्स इन बिटवीन, तो कुछ तो बनाए।
0: जरूर, आप जो चाहेंगे, आप जैसा चाहेंगे, मैं तो पैरा बना के दे दूंगा मैं आपको।
1: ठीक है, आप मुझे कुछ दीजिएगा जरूर, आई विल वेट भाई, डन हो गया।
0: अब उसको इम्प्रोवाइज आपको करना है।
1: मैं बिल्कुल करूंगा इम्प्रोवाइज भाई, बाकी काम मुझ पर छोड़ दीजिए, दुकान खुली हुई है रात तक, कोई टेंशन नहीं।
0: बढ़िया,
1: आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है भाई, ओके।
0: चलिए भाई, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, और कहानी बहुत ही बढ़िया थी जो मैंने सुनी नहीं,
1: जिसके
0: बाद में सुनूंगा, पता है कहानी बढ़िया ही होगी।
1: मैं भेज दूंगा आपको, भेज दूंगा।
0: सॉरी, मुझे वक्त ही नहीं मिल पाया, बस थोड़ा सा डिस्कशन सुना था सुबह में, उसके बाद में तो लिटरली बिजी हो गया।
1: आप सुनिएगा, मैं आपको भेजूंगा जरूर, डेफिनेटली भेजूंगा आपको, आप सुन लीजिएगा। वालेकुम सलाम। और मैं जल्दी से मैसेज पढ़ दूं, एक तो भाई मेरे घर वाले ने मैसेज कर दिया है, और वो कह रही है कि क्या कह रही है, हमारे पुणे वालों के तो तीखा मिसल पाव चाहिए सुबह सुबह। देखा यूसुफ भाई, सुन रहे हैं आप, ये मिसल पाव खा रहे हैं आप, हमारे पराठे पे डाउट कर रहे हैं, और कह रहे हैं राइट हैंड ड्राइव में मैनुअल एंड लेफ्ट हैंड ड्राइव में ऑटोमेटिक। अरे भाई हमारे घरवाली सब चला लेती है, हमसे बेहतर ड्राइवर है। नदीम भाई कह रहे हैं अरबी हरियाणवी रैप। वैसे भाई मैं इंडिया और यहाँ दोनों जगह रेगुलर चलाता हूँ। आपकी बात हो रही है अफजल उस्मानी भाई, टोरा है भाई का। यासिन मुल्ला भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, मुबारक हो आपको, एक एविएशन की स्टोरी मिल गई। कौन सी स्टोरी मिल गई भाई यासिन मुल्ला भाई, मुझे तो कोई नहीं मिली। और तला भाई कह रहे हैंवी ऑस्ट्रेलिया में है। ओह, अरे तला भाई रेफरेंस मारा भाई। आई कैन इमेजिन हाउ मेनी You will fire after eating आलू का पराठा। नहीं भाई, आदत है, मेरे पेट को पता है कि मालिक आलू का पराठा खा रहे हैं। वैसे अस्सलाम वालेकुम भाई, आलू का पराठा आपको इनवाइट भी कर चुका हूँ, उसके अलावा हमारा मॉर्निंग स्टार्ट नहीं होता। शेख इरफान अल कासमी साहब को बहुत सारा प्यार भाई को, थैंक यू सो मच भाई। अब ज़रा हम आगे को बढ़ेंगे बढ़िया करके। और एक भाई एक गाना था, मैं कल एक्चुअली में क्या हुआ कि वो निकल गया था, मेरे आने के बाद आया था वो गाना, पर आज मैं ये चिल्ला के रहूँगा कि धैर्य किधर गया यार। एक तो टाइम पे मुझे गाना नहीं मिलता है, पहले ढूंढ के रखना चाहिए, लेकिन मैं हाँ चलो ये चला देते हैं, कोई बात नहीं, जो आ रहा है वही चला देते हैं। 8:46 by the clock, दलजीत। तला भाई कह रहे हैं भाभी रॉक्स कबीर शॉक्ड, आप तो बहुत टाइम हो गया शौक होते हुए तला भाई।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa
1: ए बनी आदम क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो दुआ को हकीर समझते हो हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं खता नहीं करते अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है तो दोस्तों प्रोग्राम आज की दुआ इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे सामिन प्रोग्राम आज की दुआ में हम कुरान करीम की उन दुआओं को सुनते हैं जो अहले ईमान के दिल की पुकार हैं आज की दुआ का जिक्र सूरतुल मोमिनून में है जो अहले ईमान की जबान पर थी जब वो अपने रब से मगफरत और रहमत मांगते थे और काफिरों के इस्तेहजा और जुल्म पर सब्र करते थे मतने दुआ यूं है रब

आज हम बात करेंगे इंडियन क्रिकेट के एक ऐसे नाम की जिन्होंने सिर्फ बल्ले और गेंद से ही नहीं बल्कि ड्रेसिंग रूम में लीडरशिप और कोचिंग के जरिए भी अपना नाम बनाया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 107 और स्पोर्ट्स हाइलाइट के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। आपका अंदाजा सही जा रहा है, इवन मैं ये कहूंगा कि सही है। नाम है रवि शास्त्री। 27 मई 1962 को

मुंबई में पैदा होने वाले रवि शास्त्री ने इंडिया के लिए 1981 में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था। शुरुआत में वो लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, लेकिन वक्त के साथ साथ उन्होंने अपनी बैटिंग को इतना बेहतर बनाया कि वो एक मुकम्मल बैटिंग ऑलराउंडर बन गए। इनिशियली वो 10th डाउन पर आते, धीरे धीरे प्रमोशन। न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका टेस्ट डेब्यू हुआ था 1981 में, एंड उन्होंने दिलीप दोषी की जगह ली थी, एंड उस टेस्ट मैच में ही इंप्रेस्ड विथ हिज लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग। लेकिन आगे जाकर पाकिस्तान का दौरा किया 1982 में, और वहां पे 7th या 8th पोजीशन में बैटिंग करने आए थे और एक सेंचुरी भी स्कोर किया था। धीरे धीरे धीरे रवि शास्त्री को प्रमोट किया गया, एंड फाइनली वो ओपनिंग बैट्समैन बने इंडिया के लिए। सुनील गावस्कर के साथ भी ओपनिंग किया, श्रीकांत के साथ भी ओपनिंग किया, एंड धीरे धीरे ही शोड टू द एंटायर क्रिकेटिंग यू नो द फ्रेटर्निटी कि उनके पास ओपनिंग बैट्समैन होने जो वो सलाहियत है वो मौजूद पहले से ही था। बट ओनली थिंग वॉज दैट कि मौका नहीं मिल रहा, एंड जब उन्होंने अपने कंसिस्टेंसी के जरिए रन्स बनाने लगे तो कप्तान ने भी सोचा, टीम मैनेजमेंट भी सोच लिया कि इस बंदे को थोड़ा सा आगे प्रमोट किया जाए। तो उन्होंने इंडिया के लिए 80 टेस्ट और 150 ODIs खेले। टेस्ट मैच में उनके नाम 3,830 रन और 151 विकेट्स हैं, जबकि ODIs में उन्होंने 3,108 रन बनाए और 129 विकेट्स हासिल किए। रवि शास्त्री के करियर का सबसे यादगार हिस्सा 1983 वर्ल्ड कप भी था। इंडिया ने लॉर्ड्स में वेस्ट इंडीज को हराकर पहली मर्तबा वर्ल्ड कप जीता और शास्त्री इस हिस्टोरिक स्क्वाड का हिस्सा थे। हालांकि वो मैच फाइनल में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, टूर्नामेंट में उन्होंने कुछ मैचेस खेले लेकिन ही वॉज नॉट देयर इन द फाइनल स्क्वाड। लेकिन शास्त्री के करियर का सबसे बड़ा इंडिविजुअल अचीवमेंट अगर देखा जाए, 2 साल बाद आया 1985 का वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, और इस टूर्नामेंट में इंडिया ने तमाम मैचेस जीते और फाइनल में पाकिस्तान को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। इस टूर्नामेंट में शास्त्री प्रूव दैट ODI में भी वो उतने ही यू नो बेहतर क्रिकेटर है जैसे कि वो टेस्ट मैच में भी। उन्होंने इस टूर्नामेंट में 182 रन और 8 विकेट हासिल किए और उन्हें चैंपियन ऑफ चैंपियंस का अवार्ड दिया गया। आज भी लोग याद करते हैं कभी कभार उस टूर्नामेंट से, उस फाइनल के बाद वो तस्वीरात जो है वो आज भी पब्लिश होते हैं सोशल मीडिया पर, लोग देखते हैं और याद करते हैं। दैट वॉज रवि शास्त्री। उनकी परफॉर्मेंस के इनाम में उन्हें एक गाड़ी भी मिली थी। 1985 में ही शास्त्री ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक और धमाका किया, एक ही ओवर में 6 sixes का रिकॉर्ड लगाकर गैरी सोबर्स का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था उसको बराबर भी किया, और ये उनके ऑलराउंडिंग क्रिकेटिंग टैलेंट का एक और यादगार एग्जाम्पल था। तिलक राज एक बोलर सौराष्ट्र के थे, एंड आई थिंक ही वॉज फ्रॉम सौराष्ट्र। तिलक राज के एक ओवर पर रवि शास्त्री ने ये रिकॉर्ड कायम किया था। 1992 में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद शास्त्री कमेंट्री और क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ गए, लेकिन उनकी सबसे इंपॉर्टेंट सेकेंड इनिंग्स कोच के तौर पर आई। हर एक्सपर्ट्स उस जमाने में कहते थे कि शास्त्री हैज अ वेरी वेरी यू नो ब्रिलियंट माइंड ऑफ अ क्रिकेटर। सोच वाली बात जो है ना वो रवि शास्त्री के अंदर, इट वॉज अ वेरी गुड कैप्टन, लेकिन उनको मौका ही नहीं मिला बहुत सारे मैचेस में यू नो लीड करने के लिए। एक ही टेस्ट मैच में शास्त्री हैड लेड इंडिया। 2017 में रवि शास्त्री को जब इंडियन क्रिकेट का हेड कोच अपॉइंट किया गया तब एवरीबॉडी वाज इन अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड कि हाँ अब टीम कुछ करके दिखाएगी। उनके कोचिंग टेन्योर में इंडिया ने ओवरसीज टेस्ट क्रिकेट में खास तौर पर अपनी पहचान मजबूत की, और 2018-2019 और 2020-2021 में ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीती, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और दूसरी सीरीज में एडिलेड में सिर्फ 36 रन पर ऑल आउट होने के बाद इंडिया ने जबरदस्त कमबैक करते हुए सीरीज 2-1 से जीती। दैट वाज समथिंग इन रवि शास्त्री जो अपने टीम मेंबर्स को वो यू नो वो स्प्रेड कर सकते थे, वो शेयर कर सकते थे। दैट पेप टॉक्स कुछ तो था उस बंदे में, कुछ तो था जो कि इंडियन टीम को इतने परफॉर्मेंस देने के पीछे जो रवि शास्त्री का एक अहम रोल रहा है। आज हम बैठ के जब एनालाइज करते तो हमें समझ आता है। शास्त्री के टेन्योर में इंडिया 2019 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक पहुंचा और इनॉगरल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी जगह बनाई। 2021 में उनका इंडिया के हेड कोच के तौर पर टेन्योर खत्म हुआ, लेकिन रवि शास्त्री की लेगेसी सिर्फ ट्रॉफीज तक महदूद नहीं। एक प्लेयर के तौर पर वर्ल्ड कप विनर, 1985 के चैंपियन ऑफ चैंपियंस, और कोच के तौर पर ओवरसीज टेस्ट विक्ट्रीज का हिस्सा बनकर उन्होंने इंडियन क्रिकेट के एक इम्पॉर्टेंट दौर पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। रवि शास्त्री की कहानी हमें ये बताती है कि क्रिकेट में सेकेंड इनिंग्स भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट हो सकती है जितनी पहली। एक खिलाड़ी जो खुद प्रेशर में खेला बाद में उसी एक्सपीरियंस को

कोच बनकर एक नई जनरेशन तक पहुंचाता रहा। यदि रवि शास्त्री की कहानी एक ऑलराउंडर, एक कमेंटेटर और एक कोच, जिनका सफर इंडियन क्रिकेट के कई अहम चैप्टर से जुड़ा रहा। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और दिलचस्प स्पोर्ट्स स्टार के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: कंसिस्टेंसी इज द की, ये तो सुना ही होगा आपने। और इसी कंसिस्टेंसी के साथ अगर हमने हमारी दुनिया का ख्याल किया और एनर्जी को सस्टेन करने में आगे हाथ बढ़ाया, तो यूं समझिए कि हमने हमारे कल को एक तोहफा दे दिया। सो सस्टेन द फ्यूचर हर फ्राइडे दोपहर 2 बजे से आरजे सफा के साथ छोटे छोटे कदम उठाएं एक बेहतर और सस्टेनेबल मुस्तकबिल के लिए। Only on FM 107, दिल से देसी।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107, दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हवाला कबीर FM 107 पे एंड वेलकम टू टेक अपडेट। और जी आज भी हम आपको कुछ चीजें बताएंगे, बड़ी कूल सी चीजें बताएंगे, बड़ी काम की चीजें बताएंगे। लेकिन एक और काम है जो आपको कर लेना चाहिए अभी तक, तो आई बिलीव सो, वो है सोशल मीडिया हैंडल्स पे आना। सो FM 107 कतर, FM 107 कतर इस नाम से वैसे भी हर जगह मौजूद है। प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज गेट इन टच विद अस। ठीक है, आते हैं जरा मुद्दे की बात पे। तीन वेबसाइट आपको बता रहा हूँ, बड़े काम। नंबर वन ऑन द लिस्ट, वेबसाइट का नाम है paperanimator.com। पेपर कागज वाला, PAPER एनिमेटर, ANIMATOR animator.com। जब इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो उसके बाद आपको बड़ा ही कमाल का एनिमेशन नजर आएगा। कागज एकदम पलट रहे हैं तेजी से और एक नाम पे फोकस कर रहे हैं। आपने देखा है वो हाई डिटेक्टिव वाले साइकोलॉजिकल मूवीज में अक्सर दिखाया जाता है, एकदम से एक सीन आता है, कैमरा पैन कर रहा है, धीरे धीरे क्लोजली जा रहा है कागज पे, कागज पलट रहे हैं और एक नाम पे फोकस हो रहा है, उस टाइप का एनिमेशन आपको मिलेगा। इसमें ब्लर इफेक्ट क्या चाहते हैं सब कुछ आप देख सकते हैं और बिना वाटर मार्क के उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो यू कैन यूज इट इन अदर प्लेसेस। बहुत कमाल ही है, बहुत कूल चीज है, जरा सी लेकिन इफेक्टिव चीज। ओके, बढ़ते हैं अगली वेबसाइट की तरफ। अगली वेबसाइट का नाम है gamma.app, यानी ऐप। सो GAMMA gamma.app। इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, फिर भी याद दिला देता हूं जिन्हें शायद नहीं पता। इसके जरिए आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो क्या होगा, आप गामा ऐप को चैट जीपीटी से कनेक्ट कर लीजिएगा, सेटिंग्स में जाके समझ में जाएगा, और ना समझ में आए तो वो प्रोसेस फॉलो कीजिएगा जो आपको ये टाइप करने से मिल जाएगा, कनेक्ट गामा ऐप टू चैट जीपीटी, सामने पूरा प्रोसेस हो जाएगा। बट वेन यू कनेक्ट बोथ ऑफ देम टुगेदर, उसके बाद आप जो कॉन्वर्सेशन करेंगे, जो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए देंगे, बहुत खूबसूरती से आपके सामने प्रेजेंटेशन आएगी। आई एम नॉट इन टू प्रेजेंटेशन, हमारा काम नहीं होता प्रेजेंटेशन का, लेकिन मैंने ट्राई किया है और क्या खूबसूरत प्रेजेंटेशन है। इट एक्चुअली आइडेंटिफाई कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या और उसके बेसिस पे एनालिसिस करके। ऐसा नहीं है कि खामखा में तो गाड़ी की बात कर रहे हैं, चलो मैं थोड़ा सा ब्लैक और रेड कलर यूज कर लूँ, थोड़ा डार्क, नहीं ऐसा कुछ नहीं। इट विल अंडरस्टैंड कि आपको चाहिए क्या, एंड अकॉर्डिंगली उसके वो टेम्पलेट सेलेक्ट करेगा और फिर आपको फॉन्ट वॉन्ट सब दिखाएगा, एंड अमेजिंग, एंड यू कैन ऑब्वियसली एडिट एंड ऑमिट लेटर ऑन। तो ट्राई करके देखिएगा, यू विल लव इट, gamma.app। बढ़ते हैं अगली वेबसाइट की तरफ। अगली वेबसाइट का नाम है bestofai.com, BEST, bestofai.com। तो bestofai.com, ये वेबसाइट पे आप जाएंगे तो जैसे कि नाम में है, द बेस्ट ऑफ ऑल द AIs यू विल गेट टू सी। अब आप चूज कर लीजिएगा आपको किस लिए चाहिए AI, क्या करना है, क्या काम नहीं करना है, कौन सा आपको पसंद है, कौन सा नहीं पसंद है, कौन से AI का ऑल्टरनेट आप ढूंढ रहे हैं, सब आपको एक ही जगह पे इकट्ठे मिल जाएगा। एंड कमाल की चीज़ यार, मुझे बहुत पसंद आया, आई लव्ड इट, बिकॉज आई फील ऐसी चीज़ें बड़ी जरूरी होती हैं जहाँ पे आदमी एक जगह बैठ के एक ही छत के नीचे सब मिल जाए, तो ये जरूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं इन टेक न्यूज, क्योंकि खबरें बड़ी कमाल। तो जो पहली खबर आई है वो आई है टेक्नोलॉजी

0: टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की तरफ से तो कहा ही जा रहा है कि अभी आने वाले वक्त में कहा क्या जा रहा है, चीजें शुरू हो चुकी हैं, टेस्टिंग शुरू हो चुकी हैं। तो अराउंड द ग्लोब आप देखेंगे कि ग्रीन हाउस के ऊपर काम चल रहा है, कतर भी सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रहा है। इस बीच रोबोट डॉग्स कुछ जगहों पर इंक्लूड कर दिए गए हैं और ये इनको बिल्कुल सिक्योरिटी टाइट करने के बाद कहा गया है कि जो ये रोबोट डॉग्स होंगे ये खेती बाड़ी भी करेंगे, सिर्फ रखवाली नहीं करेंगे, सिक्योरिटी के लिए नहीं है, ये खेती बाड़ी में भी मदद करेंगे किसानों की। तो अभी टेस्टिंग पीरियड से थोड़ा ऊपर आ चुका है मामला। अगर मैं किसान होता तो क्या मैं इस पर भरोसा करता? एब्सोल्युटली नो, मैं अभी शुरुआत में तो नहीं कर पाता। बट क्या अगर इसका डेमो बढ़िया गया और ये साबित कर पाया तो इससे बढ़िया ऑप्शन कुछ भी नहीं है। मुझे अभी ये बताना मुश्किल हो रहा है कि ये बात अच्छी है कि बुरी है, आई डोंट नो, बट जो है सो है। एंड काफी काफी ज्यादा इसके बारे में पढ़ेंगे तो जानेंगे रोबोट डॉग्स क्या क्या करते हैं। भाई प्रॉपर खेती बाड़ी में मदद कर रहे हैं, दिस इज ह्यूज मैन। एनीवे, ये थी टेक अपडेट, आप भी बताइएगा आपको क्या कहना है। मिलते हैं अगली अपडेट में, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर टेक अपडेट। टेक अपडेट।
1: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है, इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो। यह रस्सी ये हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को संवार दें। हर हफ्ते इतवार से जुमेरात सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर।
2: आप सुन रहे हैं FM 107।
3: FM 107। दिल से देसी।
4: स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एफएम 107 पे इस्तकबाल है आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर हर रोज एक नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में मैं बात करता हूं और आपको आगाह करता हूं कि आप किस तरह से इन फ्रॉड से बच सकते हैं, इन स्कैम से बच सकते हैं। वेल, आज जिस स्कैम के बारे में हम बात करने वाले हैं ये बच्चे और उनके पेरेंट्स के लिए है। ये है टॉयज स्कैम। ये स्कैम काम कैसे करता है और इन स्कैम से कैसे बचना है, इस पर नजर डालें। तो दोस्तों, ये टॉयज स्कैम हमेशा हॉलीडेज या यू नो ऐसे किसी फेस्टिवल, ईद है, बकरीद है या क्रिसमस है, इनकी शॉपिंग के रश और वायरल सोशल मीडिया ट्रेंड्स का फायदा उठाकर किया जाता है। इस फ्रॉड में स्कैमर्स टेम्परेरी ई कॉमर्स स्टोर फ्रंट्स या नकली वेबसाइट्स बनाते हैं, जहां वो साल के सबसे ज्यादा डिमांड वाले और मार्केट में सोल्ड आउट बच्चों के खिलौने ऐड करते हैं। वो SEO का गलत इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का गलत इस्तेमाल करते हैं, ताकि उनकी फेक वेबसाइट सर्च इंजन पर सबसे ऊपर नजर आए। इस वजह से परेशान पेरेंट्स, जो हर हाल में वो खिलौना खरीदना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए ताकि वो बच्चे खुश रहें, उनको ये ऐड दिखने लगती है और वो वेबसाइट जो अनजान है वो सर्च इंजन पे सबसे ऊपर आती है। और जब सर्च इंजन पे सबसे ऊपर कोई वेबसाइट आती है तो उस पे आसानी से भरोसा किया जा सकता है, लेकिन असल में ये एक जाल है जो स्कैमर्स आपको फंसाने के लिए बुनते हैं। जो लोग इन खूबसूरत और झूठे एड्स के चक्कर में आते हैं उनका बहुत बड़ा नुकसान होता है। पैसा देने के बाद या तो उन्हें कुछ भी डिलीवर नहीं होता या फिर उन्हें सस्ते दो नंबर के बेकार या फिर नकली खिलौने मिल जाते हैं जो बच्चों की हेल्थ और सेफ्टी के रूल्स के खिलाफ होते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि हजारों लोगों के क्रेडिट कार्ड्स की डिटेल्स ये चोर रख लेते हैं और चोरी करने के बाद ये मलिशियस वेबसाइट हमेशा के लिए परमानेंटली डीएक्टिवेट हो जाती है। तो ऐसे में आपका पैसा तो जाता ही है, प्रोडक्ट आपके पास आया तो वो आपके बच्चों के लिए बहुत खराब निकलता है, उसके अलावा आपके कार्ड की डिटेल्स भी उनके पास चली जाती हैं और आगे आने वाले वक्त में भी वो आपके डिटेल्स, जो बैंक के कार्ड की डिटेल्स हैं, उनका इस्तेमाल करके आपको फ्रॉड कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के फ्रॉड से बचने के कुछ खास उपाय हैं, खास सॉल्यूशन है जिनके बारे में हम बात करने वाले, और वो है सिर्फ ट्रस्टेड रिटेलर से ही खरीदें। कोशिश करें कि आप किसी स्टोर में जाके या फिर किसी लोकेशन पे जाके उन टॉयज को खरीदें, है ना, उनको सामने से परखें, जांचें, उसके बाद खरीदें, पेमेंट करें, क्योंकि इससे स्कैम होने की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। तो खिलौने हमेशा मशहूर और ट्रस्टेड वेबसाइट या ऑफिशियल ब्रांड से ही खरीदें या स्टोर से जाकर खरीदें। अगर कोई टॉय हर जगह सोल्ड आउट है और अचानक किसी अनजान साइट पर मिल रहा है तो वो स्कैम हो सकता है। वेबसाइट की एज और रिव्यूज भी चेक करें। किसी भी नई साइट से खरीदने से पहले एक अलग से वेबसाइट होती है जिन पर वेबसाइट कब बनी है, उनकी डिटेल्स क्या है, कहाँ की वो वेबसाइट है, वो सब पता चल जाता है। जैसे voice.com, WHOIS.com, इस वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो किसी भी वेबसाइट की डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। अगर वो साइट कुछ ही दिन या हफ्ते पुरानी है तो वहां से शॉपिंग बिल्कुल ना करें और उसको जरा से शक की नजर से जरूर देखें। उसके अलावा क्रेडिट कार्ड या सिक्योर पेमेंट इस्तेमाल करें। हमेशा परचेज के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें। अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाए तो आप बैंक को कॉल करके चार्ज बैक क्लेम कर सकते हैं और अपने पैसे वापस ले सकते हैं। डेबिट कार्ड या डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कभी ना करें। इससे आपके साथ हुए फ्रॉड में आपको सहायता नहीं मिलती है, आप दोबारा उस पैसे को वापस नहीं पा सकते। तो दोस्तों, ये था आज का टॉयज स्कैम, जहां पर आपके बच्चों को, आपके पेरेंट्स को इस तरह से फंसाया जाता है, जहां पर फेस्टिवल के जो टॉयज होते हैं या फेस्टिवल की जो चीजें होती हैं उनकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है फेस्टिवल के वक्त पे, और वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होते हैं, और यहां पर आपके साथ स्कैम किया जाता है, आपको पेमेंट करने को कहा जाता है और फेक वेबसाइट के थ्रू आपको टॉयज भेजे भी जाते हैं, जबकि वो बच्चों के लिए बिल्कुल सेहतमंद नहीं होते, बच्चों के लिए सही नहीं होते। उम्मीद है आपको ये स्कैम के बारे में नॉलेज या इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी कल एक नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में बात करते हुए। दिल से देसी
3: स्कैम अलर्ट। आपके जहन में वजारत दाखिला या उसके मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक कोई सवाल है, वजारत दाखिला की किसी सर्विस के बारे में मालूमात चाहिए, या पुलिस के किसी शोबे की जिम्मेदारियों और खिदमात को जानना चाहते हैं, तो सुनिए प्रोग्राम पुलिस और अवाम, जिसमें हर हफ्ते वजारत दाखिला के मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक नुमाइंदे अपने शोबे की जिम्मेदारियों, खिदमात, कवानीन और अवाम से मुतालिक अहम उमूर के बारे में तफसीली मालूमात फराहम करते हैं। हर पीर रात 8 बजे से तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ पुलिस और अवाम। पुलिस और अवाम, जानिए, समझिए और बाखबर रहिए। ओनली ऑन FM 107।
5: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
6: स्मार्ट मनी।
7: हेलो एंड वेलकम टू अ सेगमेंट कॉल्ड स्मार्ट मनी। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नासिया। आज के सेगमेंट में दोस्तों हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सब्जेक्ट पर जो हर इनकम लेवल और हर एज ग्रुप के लिए जरूरी है। आज का हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये टॉपिक है बिल्डिंग फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस। दोस्तों, जब हम फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस की बात करते हैं तो हम इसका मतलब अमीर होना निकाल लेते हैं। फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस का मतलब है अपने पैसों के बारे में इंफॉर्म्ड और कंफर्टेबल डिसीजंस लेना। बहुत से लोग अच्छी इनकम कमाते हैं लेकिन फिर भी फाइनेंशियल स्ट्रेस में रहते हैं, और वहीं कुछ और लोग बड़ी लिमिटेड इनकम के बावजूद भी फाइनेंसेस को बेहतर तरीके से मैनेज कर लेते हैं। यहाँ पे फर्क पैसों का नहीं, कॉन्फिडेंस और फाइनेंशियल अवेयरनेस का है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस एक दिन में डेवलप नहीं होगा, ये छोटे छोटे फाइनेंशियल हैबिट से बनता है। मिसाल के तौर पे अगर आप हर महीने अपनी इनकम और एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड रखती हैं तो आपको अंदाजा होता है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। जब आप अपने फाइनेंसेस को समझने लगते हैं तो कॉन्फिडेंस नेचुरली बिल्ट होना शुरू हो जाता है। फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस की पहली सीढ़ी है बजटिंग। अक्सर लोग बजट का नाम सुनकर सोचते हैं कि ये सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस का नाम है। नहीं, असल में बजट आपको कंट्रोल देता है। जब आपको पता हो कि कितने पैसे आ रहे हैं और कितने खर्च हो रहे हैं तो फाइनेंशियल डिसीजंस लेना आसान हो जाता है। दूसरी जरूरी चीज है सेविंग हैबिट। चाहे अमाउंट छोटी हो या बड़ी, रेगुलर सेविंग्स फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस को मजबूत करती है। जब आपके पास इमरजेंसी फंड होते हैं तो आप अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में घबराते नहीं हैं। मान लीजिए घड़ी खराब हो जाए, गाड़ी खराब हो जाए, या कोई और चीज ऐसी जो महंगी थी और खराब हो गई, या कोई मेडिकल इश्यू आ जाए, या जॉब से रिलेटेड कोई इशू हो जाए, तो ऐसे में आप फाइनेंशियल प्रेशर कम महसूस करते हैं। वही एक और फैक्टर जो फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस देता है वो है आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी या एजुकेशन। बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट्स, लोन, इंश्योरेंस और रिटायरमेंट प्लानिंग के टॉपिक से दूर भागते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये मुश्किल सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन जितना आप सीखते हैं ना, उतना आपका डर कम होता जाता है। नॉलेज कॉन्फिडेंस को जन्म देती है, इसीलिए फाइनेंशियल बुक्स, पॉडकास्ट, आर्टिकल्स और ट्रस्टेड फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सीखना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस का एक और इम्पॉर्टेंट हिस्सा है रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग। दूसरों को देखकर फाइनेंशियल डिसीजंस लेना अक्सर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जैसे मेरे दोस्त ने नई गाड़ी ली, या मेरे दोस्त ने अपने बच्चे का हायर यूनिवर्सिटी में एक महंगी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा दिया, या मेरे रिलेटिव ने फला जगह इन्वेस्टमेंट कर लिया, उसने कहा तुम भी कर लो। ये सारे डिसीजंस जो हैं बड़े वेग डिसीजंस होते हैं। हर फाइनेंशियल डिसीजन हर एक के लिए सूटेबल नहीं होता। कॉन्फिडेंट लोग कंपैरिजन की बजाय अपने फाइनेंशियल रियलिटी को देखकर फैसला करते हैं। ये आता है अपने पैसों को समझने से, ये आता है प्लानिंग से, ये आता है डिसिप्लिन से, और सबसे बढ़कर ये आता है फाइनेंशियल नॉलेज से। यानी स्मार्ट मनी का आज का हमारा जो पावरफुल लेसन है वो ये है कि फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होगी, बिल्ड की जाएगी, और हर छोटा स्मार्ट डिसीजन आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब लेकर आता है। तो बस अपने पैसों के साथ अपने कॉन्फिडेंस को भी ग्रो कीजिए उसे समझकर। फिलहाल मुझे यानी नासिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते

0: सितारे उतरेंगे मैदान में, अजमत की जुस्तजू में, टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए, और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाया, थमने ना पाया। दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर।
1: FM 107 टाइम चेक। टाइम चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। साथियों, इस वक्त एफएम 107 की घड़ी में बज रहे हैं 10:00, ओए होए 10:02 टक करके यूं करके बज रहे हैं। और भाई, आप सुन रहे हैं सफा और माविश के साथ, शो का नाम है यू मैटर। मिस तो किया होगा मुझे कल, है कि नहीं?
3: Assalamualaikum, आप सुन रहे हैं यू मैटर और 10:02, जैसे कि सफा ने बताया 11 बजे तक हम और आप रहेंगे साथ। अब आपने मिस किया कि नहीं किया ये आपको बताना पड़ेगा 666-22107 पे।
2: देखो 10 रियाल एक्स्ट्रा दूंगी, रियाल नहीं रुपए, 10 रुपए एक्स्ट्रा दूंगी। अच्छी अच्छी बातें बोलना, अच्छी अच्छी
3: सही है। चले जी, तो फिर आप मैसेज कर सकते हैं हमें और हाँ, साथ में कॉल करने के लिए नंबर बता दें।
2: अच्छा जी, हमें आप मैसेज कर सकते हैं 666-22107 पर। 666-22107 इज द नंबर टू मैसेज, और चाहें तो हमें कॉल भी कर सकते हैं। कॉल के लिए नंबर है 443-443-77। क्या नंबर है? 443-443-77। तो भाई, आज मुद्दे पर आए तो हमारा मुद्दा ये कहता है कि आपसे जिस बारे में आपके साथ डिस्कशन होगी वो ये है कि why do we fear taking the first step? हमें हमेशा पहला स्टेप लेते हुए डर क्यों लगता है? आपको क्या लगता है? मेरी एक थ्योरी है जो मैंने माविश के साथ शो से पहले डिस्कस की, बताई माविश को। अब मैं देखती हूँ किस किस की वही थ्योरी है जो मेरी थ्योरी है,
3: वो ही होगी क्योंकि फैक्ट यही है।
2: हाँ,
3: तो आप लोगों ने बताना है हमें कि पहला स्टेप लेते हुए हमें हमेशा जिंदगी में डर क्यों लगता है, चाहे वो किसी भी मामले का हो। और अमूमन ये देखा गया है कि अगर तो मतलब ऐसे ही हो ना, बस ऐवी छोटी मोटी बातें, तो फिर तो हम बड़े ही माहिर है ना। मतलब फर्स्ट स्टेप क्या, हम पूरी मतलब हजारों स्टेप्स कर सकते हैं उसमें, जहाँ पे कुछ ना हासिल होने वाला हो, फजूल की चीज हो। लेकिन जहाँ पे कुछ ऐसा हो ना कि कुछ आप अचीव करने वाले हो, कुछ अलग हो,
2: गोल्स होते हैं ना, गोल्स,
3: तो वहां पे जो है ना आ जाता है मसला। वहां पे पहला कदम उठता ही नहीं है।
2: जैसे हम अपना एक्सरसाइज का ही ले लें, जिम का ही ले लें, अपनी किसी नई जॉब एप्लीकेशन का ले लें। मजे की बात है, अक्सर औकात लोगों को ये भी होता है, मैंने देखा है अपनी आंखों से कि लोगों को एक अलग जॉब मिल रही होती है, लेकिन वो पुरानी जॉब छोड़ने फिर भी हेजिटेंट होते हैं,
3: तैयार
2: पता नहीं क्या।
3: अच्छा, फिर उसके साथ जैसे आप देखो कि वो टेक्नोलॉजी चेंज होती है,
2: स्किल्स
3: के हवाले से आप देख लो, तो उसमें भी ना मतलब शुरू में सब लोग उस चीज को लानत मलामत ही कर रहे होते हैं, ज्यादातर लोग खड़े हुए,
2: कुछ टाइम बाद जो ना उसके बगैर
3: गुजारा नहीं होता। अब जैसे आप AI को देख लो, तो AI जब आया है शुरू में तो सब लोग नहीं, बहुत खतरनाक है, ये है वो है, इस चक्कर में तो पढ़ना नहीं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन जो शुरू से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं उनके लिए वो ठीक हो जाती है, लेकिन अक्सरियत वो होती है जो पहले खड़े होके ना 10 साल तक एक चीज को बुरा भला कहती है, उसके बाद आना उनको वहीं पे पड़ता है।
2: हाँ, exactly. अच्छा, यही काम जो ना, हम लोग जब अपना कोई पर्सनल बिजनेस स्टार्ट करना होता है, उस टाइम पे भी यही कैफियत होती है। सालों तो सिर्फ सोचने में लग जाते हैं माविश, जमा करना, सेविंग करके उसको लुटाना तो एक बहुत दूर की बात होती है। कुछ लोगों के पास सेविंग होगी भी ना, उसके बावजूद भी वो 10 साल सिर्फ सोचने में लगाते थे, तब तक उनका आइडिया मार्केट में ऑलरेडी बिक कर घिस कर खत्म भी हो चुका होता।
3: हाँ, exactly. बिल्कुल ऐसे ही
2: एक होता है ना मार्केट का, एक हम क्या कहते हैं से ट्रेंड होता है, वो ट्रेंड आकर जाकर खत्म भी हो चुका होता है।
3: बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप बाद में देखते हो तो आप कहते हो कि यार ये तो हम भी कर सकते थे, लेकिन
2: मैंने क्यों नहीं,
3: उससे पहले कोई और कर चुका होता है।
2: अक्सर औकात लोगों के दिमाग में ऐसे ऐसे आइडियाज होते हैं, लोग कहते हैं भाई ये तो मैंने सोचा था, अगर मैं स्टार्ट कर लेता तो मैं इसके जितना ऊपर हाइप पे निकल जाता।

0: तो ऐसा क्यों होता है? हमारा सवाल ये ऐसा क्यों होता है? ये जो पहला कदम है जिसको आप रुक रुक कर हिचकिचा रहे होते हैं, ऐसा क्यों होता है? 4434377 इज द नंबर टू कॉल.
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.
0: शहजादा सलीम. नहीं नहीं, रुके रुके रुके रुके रुके रुके, बादब बामलाहिजा होशियार
1: तशरीफ लाए
0: शहजादा सलीम. बिल्कुल, कैसे हैं आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, बहरहाल अभी तो ठीक है कुछ दो दिन से, लेकिन मैं अब तक काफी मतलब तबीयत खराब रही मेरी.
2: ओहो, क्या हो गया था?
0: मौसम की लपेट में आ गए कि जिंदगी की लपेट में आ गए?
1: बुखार बुखार बुखार और खांसी और तरह तरह के पता नहीं जो हो गई जो नहीं होने वाली थी और कैसे हो गई, कहीं हद तक मैं भी जिम्मेदार हूँ इसका. असल में क्या हो गया, एक दिन लास्ट वीक में ना डिनर पे खाना रहे थे तो सेवन अप तो था ही और मैंने केले भी खा गया. अच्छा, वो
0: कीचड़ बन गया पेट में.
1: हाँ, उसके बाद है ना रात को नहाते टाइम है ना ठंडे पानी से नहा लिया. वन टू थ्री
0: वाह वाह वाह वाह वाह,
1: करे ना वो जो होना था वो तो फिर होना ही है.
0: आपके लिए अलग से ना तालियां बजानी चाहिए, आपने सब कुछ एक साथ ही कर डाला. आपने कहा आ बैल मुझे मार.
1: जी जी जी जी, ऐसे ही हुआ. तो काफी हद तक मैं जिम्मेदार हूँ, बाकी बड़ा दुख था लेकिन अब जाके अल्हम्दुलिल्लाह संभली है तबीयत.
0: दुख था, बहुत दुख था.
1: हाँ जी जी जी, सारा कुछ इसके लिए मैंने
0: सारे दुख निकल गए.
1: हाँ, प्रोग्राम में सुन पाया, कहीं प्रोग्राम मिस हुए और ना पार्टी से पेट कर पाया, सारा कुछ उल्टा पुल्टा हो गया.
2: ओहो,
0: चलिए अल्लाह ताला आपको शिफा दे, आप अच्छे अच्छे से रिकवर करें और रिकवरी के बाद भी सेहत दे अल्लाह ताला आपको.
1: बिल्कुल बिल्कुल, वैसे टॉपिक बड़े अच्छे हैं आपका आज का है ना.
0: हाँ जी, और टॉपिक ये है कि जरा बताएं कि आप ये पहला स्टेप लेने से क्यों ना हिचकिचाए कि एक साथ आपने सारे काम कर डाले.
1: जी जी जी, एक तो ये तो जो स्टेप्स है ना, फायदे और नफा नुकसान के भी इसमें चीजें होती है ना कि भाई फायदा होगा या नहीं होगा, यहाँ माइंड सेट नहीं होता है ना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, यानी डाउटफुल वाला एक हिसाब रहता है. और एक तो रहता है एक्सपेरिमेंट, यार चलो एक्सपेरिमेंट कर लेते, अगर हो गया तो चलो ठीक है सक्सेस, अगर ना भी हुआ तो मेरे पास स्टैंड बाय तो पीछे है ही है, तो यहाँ से तो मैं कवर कर ही लूंगा. तो ये सेकंड ऑप्शन आपके पास ऑलरेडी पहले से रहना चाहिए, इनकेस अगर एक्सपेरिमेंट पे अगर कुछ पहला आपने जो स्टेप लिया वो अगर सक्सेसफुल नहीं हो पाया, और उससे बड़ी चीज है ना, आप जो स्टेप लेने जा रहे हो ना, या आप पहले उसको कर चुके हो या पहली दफा करने जा रहे हो, या उसके बारे में आपको कुछ एक्सपीरियंस है, या वैसे ही मतलब अंधेरे में तेल चला रहे हो, ये भी बात हो जाती है ना. तो इसके वजह से कुछ चीजें फिर वो नुकसान भी हो जाती है, और कोई ऐसे होते कि आप अपने ना गुडलक है ना बड़े अच्छे चलते हैं.
2: बहुत बहुत शुक्रिया शहर सलीम, थैंक यू जी, थैंक यू फॉर कॉल, कंटिन्यू टू होल्ड.
0: माविश, मुझे ना ये जो हमारा सवाल है ना, इसको लेकर मुझे आज एक बड़ी मजे की एक मैंने एक सीरीज देखी थी OTT प्लेटफॉर्म पे, और वो ना इंडिया की एक बहुत बड़े वॉच के ब्रांड के ऊपर थी. वो जीरो से शुरू हुआ था, और वो किस तरीके से शुरू हुआ था, और उसका लुब्बे लुबाब यही था कि वो कहता है ये कि इफ़ यू डोंट टेक रिस्क. अभी जैसे शहजादा सलीम बात कर रहे थे ना कि इंसान एक स्टैट्स पे चलता है कि भाई अच्छा मेरा नफा होगा मेरा नुकसान होगा, उसी घबराहट में ना कभी फर्स्ट स्टेप ले ही नहीं पाता. जब जब इंसान बहुत ज़्यादा ओवर वो चीज़ों को क्या कहते हैं बॉसी होना शुरू आता है ना चीज़ों के ऊपर, ओवर फोकस करना शुरू करता है, ओवर थिंकिंग करना शुरू करता है कि भाई नफा होगा नुकसान होगा नफा होगा, फंसा रहता है, तो उस टाइम पर ना लोग पीछे रह जाते हैं. मैंने जो सीरीज देखी थी अब उसकी ना एक बहुत, मैं नाम नहीं लूंगी, अगर नाम ले लिया मैंने तो उसके अंदर ब्रांड का नाम है तो मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाह रही. वो एक वॉच के ऊपर थी, सबको पता है इंडिया की एक बहुत नोन वॉच है, उन्होंने ना दुनिया की सबसे थिनेस्ट वॉच बनाई थी, सबसे थिनेस्ट वॉच.
2: अच्छा,
0: और वो पूरी सीरीज इसके ऊपर है कि वो बंदा कहता है मैं अगर रिस्क नहीं लेता ना, मैं अगर रिस्क नहीं लेता तो इट वुडंट हैव बीन पॉसिबल. गोरों को झुका दिया उसने.
2: अभी इससे मुझे याद आया, अभी AI की हम शुरू में बात कर रहे थे, तो पाकिस्तान में एक लड़का है, आई थिंक मुझे शहर का

0: मतलब छोटा सा शहर है कोई, मुझे याद नहीं, गुजरांवाला है या इसी तरह का कुछ है, तो वहाँ
1: गुजरांवाला छोटा शहर है मेरे शहर का नाम लेते हुए ऐसे
0: तुम्हारा शहर गुजरांवाला भी हो गया?
1: हम चेंज हुए ना इधर से, जब शादी जाती है तो फिर हमारे शनाख्ती कार्डों में चेंज हो जाते हैं ना एड्रेस ऑटोमेटिकली।
0: ओके ओके, तो मतलब शादी के बाद वाला, तो वो पता नहीं गुजरांवाला है फैसलाबाद है कुछ इसी तरह से, मुझे सही तरह से याद नहीं, इतना बड़ा शहर नहीं है फिर भी, जैसे कराची या लाहौर जैसा नहीं है। तो वहाँ से एक लड़के ने अभी रिसेंटली एक मूवी बनाई है द मदर्स मॉन्स्टर, और हाँ, और उसने वो एआई से बना के उसने जो है ना अपने चैनल पे लगा दी।
1: सही।
0: अच्छा, कोई मेरे ख्याल से 28 मिनट्स इस तरह की शॉर्ट फिल्म है, तो उसने वो लगा दी और 72 आवर्स में बनाई थी उसने वो मूवी।
1: सही।
0: और 2 साल से सीख रहा था वो एआई, और उसने वो बनाई है, वो उसके चले गए 50 मिलियन से ऊपर चले गए।
1: अरे भाई।
0: हाँ, और अभी रिसेंटली मैं देख रही थी उसकी, मतलब हर जगह कवर किया जा रहा है उसको, क्योंकि ये पहली एआई मूवी है, आप ये जहन में रखें, ये वर्ल्ड की पहली एआई मूवी है। अभी तक इवन हॉलीवुड ने एआई मूवी नहीं बनाई है, एनिमेटेड होती थी, एआई नहीं होती थी। तो वो बना के उसने लगा दी और अब उसकी मूवी को फ्रांस में स्क्रीनिंग की जा रही है उसकी।
1: अरे भाई।
0: अच्छा, मजे की बात ये, मैंने जहाँ पे देखा था तो वो बंदा कह रहा था कि देखिए, मतलब जो उस बंदे ने डाल दी तो चैनल मोनेटाइज भी नहीं था उसका, और तो वो कमा नहीं सका। तो लेकिन उस बंदे की मैंने फिर खुद की देखी जिसमें वो बता रहा था कि लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आपने कितना कमाया, तो बस मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि मेरी मूवी अब फ्रांस में उन लोगों ने स्क्रीनिंग, जो थिएटर भी सबसे बड़ा है वहाँ का, वो स्क्रीनिंग कर रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैंने कितना कमा लिया होगा। मतलब वो काफी कॉन्फिडेंट और काफी मुतमईन।
1: वाओ।
0: हाँ, अच्छा तुम लड़के को देखो तो वो बिल्कुल सादा सा लड़का है। हाँ, सीधा सादा सा, तो देखो यार, मतलब लगेगा नहीं कि ये एआई है, क्योंकि एआई का यूजुअली मजाक बनाया जाता है, ये हो रहा होता है, तो आप देखो आपको लगेगा नहीं क्वालिटी से।
1: मदर्स मॉन्स्टर।
0: हाँ, द मदर्स मॉन्स्टर, तो जबरदस्त है भाई, मतलब लोग करने वाले इस तरह से करते हैं, और ये मतलब मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने कहा यार चलो, मतलब हमारे पाकिस्तान का एक लड़का है और ये वर्ल्ड की फर्स्ट मूवी है एआई बेस्ड जो किसी ने बनाई है, पूरी की पूरी 72 आवर्स में। तो ये सीन है भाई, पहला स्टेप लेना पड़ता है, और मैं वही देख रही थी उसका दोस्त ने कहा कि जब सब लोग जो है ना, मतलब एमी यूजलेस बातें और ये सब कुछ कर रहे थे, तो मैं उस वक्त जो ना प्रॉम्प्ट सीख रहा था। अच्छा, वो तुमने देखा होगा बिल्लियां बहुत मशहूर है ना, लिटिल टॉट्स, वो भी उसी का था चैनल, शॉर्ट मूवीज से शुरू किया था उसने, तो वो लिटिल टॉट्स और इस तरह के करके
1: स्किल सीखना।
0: हाँ, एग्जैक्टली, तो कह रहे हैं मैंने कुछ सेकंड्स की, वो एक जो नहीं आता रहता म्याऊ म्याऊ म्याऊ म्याऊ, वो उसी की क्रिएटिविटी है। पूरी दुनिया मेरे ख्याल से वो वायरल गया है, लेकिन वो सबसे पहला जो बनाया था वो उसने ही बनाया, उसी का चैनल मिलियंस में।
1: भाई, इसे कहते हैं छोटे स्टेप्स लेकिन बड़ा धमाका।
0: एग्जैक्टली।
1: नाइस नाइस नाइस।
0: अच्छा जी, तो फिर हम आ जाते हैं,
1: देसी लोगों में कितनी क्रिएटिविटी है ना।
0: वही भाई, मतलब वो मैंने उसको देखा ना, मैंने कहा यार, मतलब देखो, मतलब टैलेंट, और देखो यही होता है,
1: नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर।
0: एग्जैक्टली, मतलब वो लड़का को बिल्कुल सीधा साधा लगेगा, कोई ऐसा कुछ वो नहीं है कि मतलब बहुत कोई आपको लगे कि यार वाह भाई, मतलब बड़ा कोई मतलब स्केल पे काम कर रहा था, कुछ नहीं। लेकिन इसके बावजूद आई थिंक जाहिद नाम है, अस्ताना का कुछ नाम है उसका। खैर जी, तो ये होता है कि पहला स्टेप लेने की जरूरत होती है आपको, और वो कोई भी चीज़ हो, किसी तरह का मामला हो, खासतौर पर जो नई आई हुई होती है ना मार्केट में चीज़, उसको बड़े ही कम लोग एक्सप्लोर करते हैं, और जो एक्सप्लोर करते हैं वो फिर देख लो मतलब कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं। खैर जी, हमारे साथ एक कॉलर और हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रही हैं?
2: जी, मेरा नाम फायका है, और मैं भी आपने एक पर्सनल शेयर करना चाहती हूँ बात को।
0: बिल्कुल।
2: अच्छा, अभी आप वॉच के बारे में बात कर रही थी, तो रिसेंटली मैंने स्मार्ट वॉच स्टार्ट की है, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि नाना करते करते अब मैं उसको देख कर, मैं अब अपने स्टेप्स पूरे करती हूँ, अपने स्लीप साइकिल देखती हूँ, कितना सो रही हूँ, तो ये मैंने स्टार्ट किया अपनी लाइफ में, और मैं इसको सबको कहना चाहूंगी कि जरूर यूज करें, क्योंकि हमारी हेल्थ सबसे पहले है। तो ये मैं करना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे बेटे ने मुझे फोर्स किया कि आप करें, तो अब घर में हम सब स्मार्ट वॉच पहन के फिर रहे होते हैं, और सारे एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं आज स्लीप साइकिल तुम्हारी कितनी थी, आज कितने स्टेप तुम्हारे हो गए। तो वैसे मैंने कहा आपसे थोड़ी सी ये बात शेयर करूं।
0: तो चलिए, भी मजे का है वैसे, वाकई मतलब अक्सर लोग इस चीज से भी हिचकिचा रहे होते हैं।
1: अच्छा, ये बड़ी, मैं आपको एक बात बताऊं, स्मार्ट वॉच मैंने काफी टाइम पहले यूज करना शुरू की थी, अब तो छोड़ दिए, लेकिन जब आप वेट लॉस और हेल्थ कॉन्शियस हो रहे होते हैं ना, तो ये आपके लिए बड़े काम की होती है भाई, बहुत काम की।
2: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: और ये आपको वो देती है, मोटिवेशन देती है। अच्छा अच्छा, बस 2-3 और स्टेप्स चल लेता हूँ, अच्छा थोड़ा सा और कर लेता हूँ, अच्छा थोड़े मिनट और कर लेता हूँ।
2: ऐसा ही, और अगर आप घर में अपने साथ कंपटीशन रख लें ना सबको, तो और भी ज्यादा आपको एनकरेज मिलती है और मजा आता है।
0: सही बात है,
2: बहुत अच्छा लगा आपसे बात।
0: चले फायदा, थैंक्स अ लॉट। अच्छा मैंने अभी आपका मैसेज देखा, आपने कहा था कॉल करने का, लेकिन सॉरी आपका देख नहीं पाए थे। चले बहुत ख्याल रखिएगा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। रुई जी, तो हमारे
1: लाया से था लड़का वो जिसके बारे में आप बात कर रही हैं, मूवी जिसने बनाई है,
0: लाया
1: कौन सी, मुझे बिल्कुल नहीं पता। मैंने अभी खुद आपके कहने पर जो है ना, मैंने वो किया है, तो मुझे बस चला लाया
0: है वो पंजाब साइड।
1: मजे की बात ही, मैं पहली दफा नाम सुन रही हूँ, खुद पाकिस्तान में रहते
0: हैं। किसी को मैंने सुना हुआ है
1: कि लाया,
0: सुना हुआ है, लेकिन ये नहीं पता कि क्या मतलब जाहिद इकबाल लाया। ओके,
1: ये हमारे पास नई इन्फॉर्मेशन आई है। लाया कोई कोई कोई जानता
0: सुना तो है लाया मैंने, लेकिन ये नहीं पता मुझे
1: पंजाब प्रोविंस में है लोकेटेड, लेकिन कहाँ है ये नहीं पता।
0: तो चलो भाई, कोई लाया से है या लाया के आस पास
1: डेरा गाजी खान डिवीजन।
0: ओके, सही सही सही।
1: अरे भाई ये तो बिल्कुल इंटीरियर है,
0: वही तो मैं कह रही हूँ,
1: ये बिल्कुल इंटीरियर है।
0: वो मैंने उस लड़के को देखा ना, तो मुझे अंदाजा हो गया था उसको देख के।
1: इफ यू आर सेइंग पार्ट ऑफ डेरा गाजी खान, तो वो बिल्कुल ही इंटीरियर है महावेश।
0: सही,
1: तभी हमें नहीं पता।
0: अच्छा ये असमत आफरीदी का मैसेज आया और कहते हैं द मदर मॉन्स्टर मैंने भी देखी है, एंड यू आर राइट, इट्स अमेजिंग एआई मूवी। वो लड़का मुल्तान के करीब लाया से है, इट्स लाया, लैया
1: लैया
0: लैया, मेरा ख्याल है लैया कह रहे हैं। आप बताएं जरा इसमें मैं सही मुझे खैर मतलब बड़ी खुशी हुई कि यार ये जो चीज है ना, ये लोगों के अंदर होनी चाहिए।
1: और अब तो मुझे और ज्यादा ताज्जुब, सरप्राइज, और आई फील सो प्राउड कि बिल्कुल आप बिल्कुल आप कह रहे हो भाई, बिल्कुल
0: टेक्नोलॉजी
1: इंटीरियर से कोई अब कोई बोल कर देखे हमारे इंटीरियर में कोई नहीं कोई बोल कर देखे कि हमारे इंटीरियर में टैलेंट नहीं है।
0: सबसे बड़ा जो वो गेमर है जो कंपटीशन में जीतता है वो पाकिस्तानी है। फिर उसके बाद इस वक्त जो सबसे ज्यादा देखे जाने वाला एक तरह का जो वो बंदा है जो कि टूरिज्म करता है वो पाकिस्तानी है।
1: अच्छा मजे की एक बात ये कि हमारे देसी लोग है ना।
0: हाँ, और अच्छा मजे की बात ये है कि ये यूजुअली सारे, एक तो मैंने नोट किया पंजाब से होते हैं और यूजुअली इंटीरियर से ही होते हैं, छोटे शहरों से होते हैं।
1: शायद उनको मोटिवेशन वो मावेश, मैंने एक बात सुनी थी, पता नहीं अभी कितनी हकीकत है, लेकिन मुझे इसके अंदर हकीकत नजर आती है। जिस इंसान के पास खोने को ज्यादा कुछ होता नहीं है ना, फिर उसका डर नहीं होता किसी किसी का डर नहीं होता।
0: ये फर्स्ट स्टेप वाली बात यही होती है। मैंने अमूमन ये देखा है कि ये जो फर्स्ट स्टेप है ना, ये वही बंदा लेता है जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता,
1: जो दूसरी चीजों को ना वो अपनी एक प्रायोरिटी लिस्ट होती है। मेरे अब्बा हमेशा ये कहते हैं कि क्या होगा, वो हमारे पास वो एग्जाम्स नहीं होते, वो पाकिस्तान में जो होते हैं, जो गवर्नमेंट के होते हैं, क्या कहते हैं, मैं नाम CSS? भूल रही हूँ। हाँ कुछ ऐसे एग्जाम्स होते हैं CSS के। तो मेरे भाई ये कहते क्या जाएगा लाइफ टाइम में आपके पास एक एज के अंदर अंदर आप दो से तीन दफा वो एग्जाम दे सकते हो, क्या होगा, ज्यादा फेल हो जाओगे या पास हो जाओगे, क्या
0: लेकिन आप अगर फेल भी हो जाओगे तो आप उससे कुछ सीखोगे। ये आपको याद रखना चाहिए, कल हमारा यही टॉपिक था बेसिकली। तो अगर आपने जिंदगी में कभी भी, मैं अपने बच्चों को यही बात बोल रही होती हूँ कि करो पार्टिसिपेट, फेल हो जाओगे इट्स ओके, फेल हो जाओगे ये नहीं होगा कि तुम कुछ नहीं सीखोगे, तुम सीखोगे,
1: आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है।
0: एग्जैक्टली,
1: और कुछ नहीं तो आपको वहां पे खड़े होकर एटलीस्ट देखने को मिलता है कि लोग कैसे हैं, क्या है क्या नहीं है, सिनेरियो क्या है, सिचुएशन क्या है, बहुत कुछ आप सीख सकते हो।
0: मेरे बड़े बेटे का साथ अभी पिछले दिनों तुम्हें पता ही, उसको एक फेलियर का बहुत ज्यादा खौफ है, मतलब एक वो नहीं हो सकता फेल, और मतलब फेल से मुराद ये कि वो अपने मार्क्स इतना वो एक्सपेक्ट करता है उससे थोड़े से कम आते हैं तो वो नहीं बर्दाश्त कर सकता।
1: ये मेरी अपनी औलाद का मुझे लगता है, जो पहला फर्स्ट बॉर्न होते हैं ना उनका ये प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि दुनिया भर की रिस्पांसिबिलिटी उनके कंधे पर है या एक्सपेक्टेशन उनसे ज्यादा है।
0: मैं भी फर्स्ट बॉर्न हूं लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है, मतलब मैं रिस्क लेने के लिए बहुत इजीली तैयार हो जाती हूँ, जो भी रिस्क हो कुछ भी हो, और मैं एक्सेप्ट भी बड़ी जल्दी कर लेती हूँ। नेचर मेरे ख्याल से होती है, मेरे हस्बैंड इस नेचर के शायद मतलब कह सकते हैं कि वो इस तरह के शायद किसी हद तक।
1: मैं बहुत रोलू पोलू बच्चा हूँ, बहुत ज्यादा रिस्क टेकर हूँ, मुझे कहो कि पहाड़ से छलांग मार दो, मार भी दूंगी, पैराशूट बाद में देखेंगे।
0: एक ही जैसे लोगों को एक साथ बिठा दिया ये
1: पैराशूट बाद में देखेंगे, पहले छलांग मार दो। तो بھائی آپ بھی اگر ہم سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 4443477 پر اور اگر چاہیں تو ہمیں میسج کر سکتے ہیں 6622107 پر دا نمبر فار میسجنگ از 6622107
0: میں دیکھ لیتی ہوں کوئی میسج اگر آیا ہے تو بالکل ہم شامل کر لیتے ہیں دیکھو فون ادھر پڑا میں اپنے فون سے میسج چیک کرنے والی تھی رویج تو خیر جی ہمارے پاس ایک میسج ہے یہ کس کا ہے یہ انہوں نے بھیجا ہے لیا لیا یہ ایک اور بھائی نے بتایا کس نے بتایا یہ محمد شہزاد صحیح بہت بہت شکریہ اور اس کے ساتھ ہی جی ہمارے پاس ہے السلام علیکم
1: اچھا لیا ہے لیا نہیں ٹھیک ہے اوکے
0: ہاں لیا ہے اور جب انسان کوئی کام پہلی بار کرتا ہے تو عموماً اس لیے ڈرتا یا گھبراتا ہے کیونکہ وہ کام اس کے لیے نیا اور نامعلوم ہوتا ہے نامعلوم چیز کا خوف دماغ کو معلوم نہیں ہوتا کیا ہوگا اور ناکامی کا خوف انسان سوچتا ہے اگر میں کامیاب نہ ہوا تو کیا ہوگا لوگوں کے رد عمل کا خوف کبھی ہم اس بات سے بھی گھبراتے ہیں کہ دوسرے لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے اور لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ ڈر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کمزور ہے اکثر ڈر صرف اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ انسان کوئی نئی چیز آزما رہا ہے اور جب انسان وہی کام بار بار کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اعتماد بڑھتا ہے گھبراہٹ کم ہو جاتی ہے تو یہ ہے بھائی اور یہ میسج کس نے کیا ہمیں یہ سبحان نے میسج کیا تھا ہمیں
1: اچھا یہ کتنی تو کوئی انٹر کنیکٹڈ بات ہے چاہے پازیٹیو چیز ہو کوئی چاہے نیگیٹو چیز ہو کوئی دونوں میں یہ رول امپلیمنٹ ہوتا ہے ماوش کہ اگر آپ کو کچھ لائف میں اسکلز سیکھنی ہوتی ہیں یا کچھ پازیٹیو کرنا ہوتا ہے نا تو ہمیشہ فرسٹ اسٹیپ لیتے ہوئے آپ کے پاؤں ڈگمگاتے ہیں کانپتے ہیں آپ کے پاؤں آپ کہتے ہو ہاتھ پاؤں کانپتے ہیں آپ کہتے ہو نہیں بھائی ہوگا نہیں ہوگا جب انسان کوئی نیگیٹو کام کرتا ہے نا تب بھی یہی ہوتا ہے میرا بھائی مجھ سے ہمیشہ کہتا ہے صفا اللہ تعالیٰ نے ایسا تو کوئی انسان کا انسٹنکٹ رکھا ہے خاص طور پہ جب کوئی برا کام کرنے لگتا ہے نا تو کم سے کم دو تین دفعہ تو انسان اندر سے روح کانپ جاتی ہے کہ نہیں بھائی نہیں نہیں دو تین دفعہ انسان کے دماغ میں نوک ضرور ہوتا ہے دھماکہ ضرور ہوتا ہے دماغ میں کہ نہیں نہیں نہیں کچھ غلط ہے کچھ غلط ہے
0: یار مجھے لگتا ہے مسلسل ہوتا ہے مسلسل ہوتا ہے کل ہم لوگ
1: کچھ لوگوں کا ضمیر مر جاتا ہے کچھ لوگ اپنا زمین مار دیتے ہیں
0: جیسے
1: آپ چھوٹی
0: سی بات دیکھو کہ میرے ساتھ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا یوز مطلب ایک حد تک بھائی فون ہاتھ میں آتا ہے تو کسی حد تک کوئی ویسے تو میں نے نوٹیفیکیشنز بند کیے ہیں لیکن پھر بھی ہوتا ہے یار چیک کر ہی لو مطلب ایسے ہی بیٹھے بیٹھے آپ نے دیکھ لیا تو ہوتا ہے یہ 10 منٹ کے بعد آپ نوٹ کرو کہ آپ کے دل میں ایک عجیب سی خلش ایک عجیب سا جو نا وہ ہونے لگتا ہے
1: عادت ہوتی ہے نا
0: ہاں اور وہ اندر سے نا کچھ آپ کو محسوس کروا رہا ہوتا ہے یار یہ کیا ہو رہا ہے تو میں کل یہی ہم لوگ گھر پہ بیٹھ کے بات کر رہے تھے کہ یہ ایک طرح سے بری چیز ہے اور ایک طرح سے اچھی چیز ہو سکتی ہے کیونکہ جہاں آپ کو یو مطلب محسوس ہو رہا ہو نا کہ یار آپ ٹائم ضائع کر رہے ہو تو وہاں پہ اس ٹائم کو کسی طریقے سے آپ کوشش کرو کہ چیز کو ڈائیورٹ کر دو اگر آپ نے فون پہ ہی کچھ کرنا ہے تو کچھ اچھی چیز پڑھنا شروع کر دو کچھ اور ایسا کر لو جس سے آپ کا یہ والا جو گلٹ آتا ہے نا بار بار مجھے مطلب

0: और इसके अलावा जी मोहम्मद यूसुफ खान का मैसेज है और ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, गुड मॉर्निंग मावा जी, सफा जी, कैसे हैं आप दोनों?
1: बिल्कुल ठीक ठाक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक
0: हूं। वेलकम टू यू मैटर।
1: वेलकम जी, वेलकम तो आड़ा भी वेलकम।
0: हैप्पी मंडे मॉर्निंग, कान खोल के सुन लीजिए, हेडफोन हटा के सुन लीजिए,
1: मंडे है
0: आज। मैं आपको रोजाना टिका के दिन बताऊंगी
1: ताकि आपको, लेकिन फिर भी मैं थर्सडे वाले दिन बोलूंगी फिर आ गया
0: और ये बीच के दिन कहाँ चले गए।
1: हाँ,
0: ड्रामा क्वीन बनना तो जरूरी है ना,
1: मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ शॉर्ट हो जाता है।
0: देखो और श्योर मिस किया सफा जी, वेलकम। अब कोई पूछेगा तो फिर अखलाकन बोलना ही पड़ेगा कि मिस किया।
1: अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह,
0: ये तो
1: जलने वाले तो यही कहेंगे।
0: कोई भी पूछे तो फिर आगे से बंदा ये तो नहीं कहेगा ना नहीं मिस किया, यही बोलेगा कि हाँ मिस किया। तो सफा
1: चूल्हे की आग कम कर दी जाए
0: और ये इंसान की नेचर में है जलना नहीं,
1: इंसान नेचर में जलना ठीक है ओके
0: ये इंसान की नेचर में है, पहले कोई अलग स्टेप लेता है तो डर जाता है और के कहीं फेलियर ना मिले, तो एक्स्ट्रा केयरफुल रहते हुए नए स्टेप्स या इनिशिएटिव लेना एक स्ट्रॉन्ग और ब्रेव स्टेप होगा। लेकिन वही काम जो एक बार या कई बार कर चुके हैं तो बंदा आराम से कर लेता है विदाउट एनी हेजिटेशन, तो वहाँ डर का सवाल ही नहीं आएगा। तो मैं भी यही कहता रहता हूँ अपनी बच्ची से कि प्लीज़ कोई भी इवेंट में पार्टिसिपेट करो, सक्सेस और फेलियर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। वो कहती है अब्बू मैं फेल हो जाऊँगी, लेकिन मैं उसको हमेशा इनक्रेज करता हूँ तो वो करती है। अच्छा हाँ, पता है क्या, इनक्रेज भी मुझे तो लगता है, मैं तो भाई प्रेशराइज करती हूँ, इनक्रेज नहीं करती।
1: मैं पता क्या करती हूँ मावेश, मैंने एक चीज़ देखी है खासतौर पर बच्चों के मामले में ना, बच्चे देखिए हम लोग फिर भी हमारा जो फ्रंटल लोब है ना वो बन चुका है, हमारा दिमाग फिर भी मजबूत है, बच्चे भी जिंदगी का स्टार्ट ले रहे होते हैं ठीक है। खासतौर पर जो टीनएजर्स होते हैं उनको तो पता ही नहीं होता उनके हार्मोन्स कहाँ जा रहे हैं, तो उनके साथ एंगेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंगेज होना इन द सेल्फ कि उनकी एक्टिविटीज को आप ज्वाइन करो। अब मेरे बच्चों का एक प्रोजेक्ट था, मैंने आपको बताया था ना प्रोजेक्ट, उसके अंदर खुद आपको घुसना पड़ता है, आपको करना पड़ता है, आपको उनकी लाइफ में जबरदस्ती इंटरफेयर करना पड़ता है। अच्छा ठीक है, इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, इसको ये कर लो, इसको कर लो,
0: प्रेशराइज करो, धक्का दो उनको बकायदा कि भाई ये तुम्हें करना पड़ेगा, ये तुमने करना है और किसी भी तरह से करना है। अच्छा मेरा अपना ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जिस चीज़ के लिए भी बच्चे पहले शुरू में नहीं करना ये सब कुछ कर रहे होते हैं ना, आखिर में कर आते हैं, पर बाद में कहते हैं कि बहुत इंजॉय किया।
1: हाँ,
0: तो ये मतलब सीन क्या है कि उनको पहला स्टेप लेने से डर लग रहा है, आपने उनको स्विमिंग पूल में धक्का दे देना है, तैरना वो खुद सीख जाएंगे। हमारे साथ कॉलर, हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम, दोनों इकट्ठी हैं, बात करने का भी मज़ा आता है और आर्गुमेंट्स भी अच्छे डेवलप करते हैं और हमेशा एक से ज़्यादा, वैसे तो आप दोनों अकेले भी अच्छे प्रोग्राम करती रही हैं लेकिन एक से ज़्यादा होना, आपके ओपिनियंस पे ओपिनियन बड़े पॉइंट आते हैं जब दूसरा आप बात कर रहे हो और ये जो एक्सपीरियंस अभी बात कर रहे थे कि आप कोई करने से पहले, अच्छा किसी से मशवरा लेने से पहले उसकी पर्सनैलिटी को भी देखें। हाँ सर भाई, ये कि वो खुद आपको राय देने से पहले उसकी अपनी पर्सनालिटी क्या है, हेजिटेंट है, वो हर चीज़ में जो कहते हैं ना मैं इस मुझे शर्म आती है, तो ये वो है। हर सुबह बच्चों में भी, अच्छा इसमें ना बच्चों को धक्का देने के बजाय उनके लिए आप सिचुएशन क्रिएट करें
1: कि वो
2: इस क्रिएशन में रिएक्टिव हों। अब मिसाल के तौर पे जैसे हमें याद है कि हमारी एक टीचर थी, देखें टीचर या जिनका बच्चों के साथ जितना इंटरेक्शन होता है ना उतने उनके पास आइडियाज़ बड़े होते हैं, तो ऐसे जो बच्चे ना पढ़ते हुए आता भी है तो नहीं हम पढ़ नहीं सकते या इस तरह है, तो उन्होंने कहना वो उसने तो पढ़ लिया है, तो वो कह रहे हैं इसको तो बिल्कुल नहीं आता, नहीं आता है, नहीं तुमने पढ़ के बताना, वो तो इस तरह बात कर रहे थे जैसे उसे ही सब कुछ आता है। मैंने कहा नहीं, उसने बहुत अच्छा किया है, इस तरह है, ज़रा करके बताओ, सबको पता चले, जब सबको पता चले तो वो एक चीज़ जो है ना उन्होंने डेवलप की कि वो जब सबको वो इस तरह ऐसा ऐसा उनमें कॉन्फिडेंट डेवलप हो गया।
1: सही,
2: तो कई चीजें आपको तरीके से, आप और भी कई जगह देखें कि उनको कोई अच्छा टीचर या जिसको मेंटोर कहते हैं वो मिल गया और उसने आपको पॉइंट पकड़ लिया और बाकी काम।
0: हाँ, लेकिन जुल्कर्णन साहब, टीचर से ना आप सारी एक्सपेक्टेशंस नहीं लगा सकते इस तरह से, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमारे हमें वो सब लोगों को तारे जमीन वाला टीचर मिल जाए।
1: नहीं, मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, ये अभी की 2-3 दिन पहले की बात है। मेरा बेटा है ना छोटा है, वो तकरीबन अभी माशाल्लाह 10 साल का होगा कुछ दिनों में इंशाल्लाह, तो वो बिल्कुल अब्बा के ऊपर गया है, बात नहीं करता ज्यादा, शाय, बिल्कुल शाय। आप कहोगे ये बिल्कुल, आप अगर देखोगे ना आप कहोगे कोई डम बच्चा है, लेकिन उसके पास इतनी नॉलेज है, इतनी नॉलेज है जिसकी कोई हद नहीं है, लेकिन वो अब बात कैसे करे, कम्युनिकेट कैसे करे, उसने अपना प्रोजेक्ट बनाया, जबकि प्रोजेक्ट भी उसी के

0: आइडिया से बना था, लेकिन टीचर के सामने नहीं बात कर रहा, नहीं कर रहा, नहीं, बिल्कुल साइलेंट मोड. फिर मैंने उसे बोला, मैंने समझाया, वो आपने कहा ना सुरकरण साहब के सिनेरियो क्रिएट करो बच्चे से, बच्चे के लिए. तो मैंने उसे कहा देखो ये तुम्हारी क्लास है, इसके अंदर 32 बच्चा है, इन सबकी रेपुटेशन और तुम्हारी क्लास टीचर की रेपुटेशन तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है. तुम जाओगे, तुम अपना प्रेजेंटेशन दोगे, बोलोगे, तो जाके लोग बोलेंगे कि ये अच्छी टीचर है, वरना तो सब ये बोलेंगे कि ये तो गंदी क्लास है, इसके अंदर तो बच्चे निकल कर ही नहीं आते, बात ही नहीं करते. अरे भाई उसने प्रेजेंटेशन दी है, 3 दिन बाद जाकर उसकी टीचर ने हमसे बोला ये बोलता भी है हमें. उसने टीचर के लिए और बच्चों के लिए प्रेजेंटेशन दी है, फिर प्रिंसिपल के सामने खड़े होकर. मैंने कहा जैसी भी दी, काणी लंगड़ी जैसी भी दी, लेकिन दी.
1: बात हुई है ना कि उसमें मैं जो मेरा जो पॉइंट है कि ये तो हम सब करते हैं. मैं इसी चीज को मैं अपनी जबान में कह रही हूँ कि आपने पुश करना है किसी भी तरीके से बच्चे को, आपने आगे करना है, ठीक है. लेकिन अब ये जरूरी नहीं है कि आपको हर बच्चे को एक मेंटोर आपके अलावा मिल जाएगा, स्कूल में या कहीं पर. वो आपको ही वो मेंटोर बनना पड़ेगा, जो मेरा ख्याल है. आपको ही अपने बच्चे को पुश करना पड़ेगा, आपको ही. आप क्योंकि देखो वो टीचर के लिए क्लास में अगर 40 बच्चे हैं तो वो सब एक जैसे,
0: एक जैसे बिल्कुल.
1: लेकिन आपके लिए आपका बच्चा आपकी प्रायोरिटी है. आप चाहते हो आपका बच्चा जिंदगी की रेस में मतलब आगे जाए जितना जा सकता है, सबसे आगे ना सही फिर भी किसी हद तक आगे जाए. तो वो मेंटोर आपको बनना पड़ता है जिंदगी में.
2: ये आप आपकी बात ठीक है, लर्न करते हैं. आप पीटीएम में जाएं ना, और अगर आपके टीचर भी उनके चेंज होते रहते हैं, टीचर आप उनसे मिलें और वो कई चीज़ें आपको बताएंगे, आप सरप्राइज होंगे. तो अक्सर टीचर कहते हैं माँ बाप को कई चीज़ों का पता ही नहीं होता, और वो बच्चों की होशियारियाँ चलाकियाँ सुबह दोपहर शाम इतने घंटे बांध बांध के वो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं कई चीज़ें ऑनेस्टली. और उसकी लाइट में हम लोग, अच्छा बच्चा जब ये थोड़ा 10-11-12 साल में, उस वक्त वो स्मार्टनेस कई चीज़ें वो फिर अपना अपनी बातें ट्रिक से मनवाने की तरकीबें सोचता है
0: होशियार
2: तो उस वक्त. हाँ होशियारी उस वक्त ना, उस मेरे अपने एक्सपीरियंस है, मुझे जब टीचरों ने इसे बताया मेरे कान खड़े हो गए. तो वो अब दोस्तों के साथ जो प्लानिंग कर रहे होते हैं तो
0: और खास तौर पे लड़के, खास तौर पे
2: बिल्कुल सही बात है.

0: लोगों को लड़के देता है माशाल्लाह से, जिनके अंदर हिम्मत होती है उनको माशाल्लाह से इतना बर्दाश्त करने की, नहीं तो इंसान में बाल मुझना शुरू कर दे।
1: दोस्त थे बदनाम जमाना और उनका जो रिकॉर्ड था, तो एक दफा हमारे सामने ही ना उनके वालिद को एक को बुलाया, तो उसके अब्बा ने कहा हंस के बुरा हाल हो गया, बोला घर में तो हमारे भी काबू नहीं आते, इसको हम लोगों ने स्कूल में इसीलिए डाला, आप इनको इंसान बनाओ।
0: हाँ अक्सर उनका ऐसा होता है, मेजॉरिटी में ऐसा होता है।
1: तो क्लास में तो बच्चों से हम सुनते ही थे, तो इत्तेफाक से जब सुना तो मैंने कहा उसके घर वाले भी जो है ना उनको पता है कि ये क्या चीज किस तरह है। तो बाकी ऑफ़ कोर्स देखें, बच्चे जैसे भी हों माँ बाप की तो वो एक तरह से दिल का टुकड़ा होते हैं, इस तरह है उनको। अच्छा माएँ जो है ना, अब आप भी माएँ हैं, इसमें सिंपथी फैक्टर बहुत करती हैं, और बातचीत अगर कहीं से अब तो ईमेल आ जाती है, पता भी चले ना तो उसको बहुत डिफ्यूज करके बताती हैं कि कुछ ही नहीं हुआ बस सब।
2: अच्छा हमारा ऐसा सीन नहीं है सुल्तान साहब, हमारा नहीं, हमारा उल्टा है, मेरे हमारे हस्बैंड बचा रहे होते हैं।
0: मेरे तो घर में ही मशहूर है ये हिटलर है।
2: एग्जैक्टली
0: ये हिटलर है। मैंने कहा अगर मैं हिटलर ना बनूं ना तो ये अभी आसमान सर पे उठाया हुआ इन्होंने, कल ही ये बहस हो रही थी इतनी बड़ी।
2: हमारा वो सिंपैथी वाला और इस तरह का ना, हम वो वाली माए ही नहीं है भाई, जो सीधी
0: डंडे छोटे वाली।
1: बहुत फैमिली लकी है इसलिए कि माएँ मजबूत होती हैं, तो बच्चों को बाद में पता चलता है कि वो बच्चे कितने मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनते हैं, क्योंकि उन्होंने दिन का हिस्सा ही इस तरह है वो जाते हैं, तो फिर वो बाप में अपनी ना फिर सॉफ्टनेस ढूंढते हैं, और वो बड़ी अच्छी बात है, दिस इज़ वेरी अच्छी। हमारी अपनी फैमिलीज में भी था, हम भी हैरान होते थे, हम तो अपनी अम्मी को कोई इतनी लिफ्ट नहीं कराते, लेकिन उसकी अम्मी
0: आती मेरे बच्चे तो अब्बा के पीछे छुप रहे होते हैं, अब्बा के पीछे।
2: ऐसे ही
1: नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है कि वो उनको पता है कि, और अक्सर देखें बच्चे हर चीज ना बाप से फिर छुपा लेते हैं, माँ से छुपाना उनको बड़ा मुश्किल लगता है, किसी ना किसी तरह माएँ उगलवा लेती हैं, पता कर लेती हैं, लेकिन अगर
0: उगलवा लेते हैं हम बता देते हैं, खुद बता देते हैं इनको, पता है इनको, इसको इस औरत को तो पता चल ही जाना है। आते के साथ ना स्कूल से आते के साथ पहली ये आवाज आती है, इफ यू रिसीव अ कंप्लेन फ्रॉम द स्कूल फॉर मी प्लीज अंडरस्टैंड दिस वाज द मैटर, दिस वाज, जबकि मुझे कोई कंप्लेन आज तक अल्हम्दुलिल्लाह रिसीव नहीं हुई, लेकिन वो पहले ही बता देते अपना कच्चा चिट्टा खोल देते।
1: ये कंप्लेन होना एक नॉर्मल चीज है, बच्चे शरारतें करते हैं, वो चीजें हैं, इस तरह उनको पता भी चलता है, और इन चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाना है बच्चों को, यानी हम लोग कहते हैं हमने शरारतों का, हमारे स्कूल के जितने डिसिप्लिन की मैंने उनके प्रोटोकॉल पढ़े ना, मैं बाकायदा उनसे बहस करने चला गया।
0: शरारतें नहीं रोक सकते आप, नहीं रोक
1: यानी
0: सकते।
1: आप एक बेसिक चीज़ है कि बच्चे क्लास से निकले ना तो बड़ा डिसिप्लिन में ना वॉक करते हुए पेंगुइन की तरह जाएं, यार ये क्या बात है। मैंने कहा बच्चे हैं, थोड़ी सी उनको स्पेस दें चलने फिरने की, भागने दौड़ने की, हाँ उनको बोलें धक्के वक्के ना दें थोड़ा, घर में भी वो डब्बे में बंद है, स्कूल में भी आप लोग कह रहे हैं जी बिल्कुल वो चलें फिरें और ज़रा सा भी भाग दौड़ या एक्टिव ना करें, हाँ आप उनको थोड़ा सा रेगुलाइज करें, वो करें कि भाई आप ये नहीं करें, लेकिन भागना दौड़ना थोड़ा सा उनको फ्री स्पेस का एहसास तो होना चाहिए।
0: सही,
1: इतनी कमेटी इतनी सख्त और वो इतने रूल्स और ये वो है, मैंने कहा
0: जंग में गए बच्चे।
1: हाँ
0: मिलिट्री रूल
1: तो थोड़ी उनको दें, तो बाकी
0: हम बड़े जज्बाती हो गए बच्चों के टॉपिक पर।
2: अच्छा हाँ, हम समंदर में ना मतलब बहते चले गए, कहीं से कहीं चले गए हम लोगों ने वो पहले बेसिकली हम लोग बात कर रहे थे ना कि वो फर्स्ट स्टेप नहीं, फर्स्ट स्टेप थे, तो उसके हवाले से हम पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गए।
0: तो भाई आपको क्या लगता है कि व्हाई डू वी फियर टेकिंग द फर्स्ट स्टेप?
1: फर्स्ट स्टेप कुछ लोग हैं बहुत उसके ना, यानी स्टेप की इतनी अहमियत नहीं होती जितना उसके लवाजमात पे चले जाते हैं, और कुछ होते हैं कर लेते हैं देखा जाएगा। मैं इसका भी कायल नहीं हूँ, आप एक हद तक देखें टाइम लिमिट या उसके जो, यानी आपने बिरयानी बनानी है, अब वो मेहमान सर पे आ गए हैं तो आप तरकीबें ही नोट कर रहे हैं कौन सी
0: ये होता है,
1: तो वो आप वो चीज़ सूटेबल चूज करें, और उसका ना आपको यानी करने से पहले बेशक हल्का फुल्का तजर्बा कर लें, या उसमें आप इतना फेलियर मार्जिन रखें कि हाँ मैं फेल हो सकता हूँ, तो उसमें आपका डर खौफ कम हो जाता है, ख़त्म भी हो जाता है या कम हो जाता है कि आप रखें, लेकिन आप कहें कि नहीं ये ऐसा हो ही नहीं सकता और मुझे नुकसान होगा या वो होगा, तो आप इस लिमिट में इतना मार्जिन रखें, उसके बाद कोशिश करें, फेल भी होंगे तो हम एक कुछ चीज़ सीखेंगे। और वो जो प्रैक्टिकल, अच्छा आप अपने हाथ से जो नुकसान उठाते हैं सीखते हैं ना, वो आपको बड़ा याद रहता है, उसके
0: उसको हाँ, वो सिखाता है बहुत।
1: वो हमें बहुत सिखाता है. और जहाँ आपकी कोई पर्सनल लॉस होता है पैसे, तो जैसे वो कहते हैं ना, उधार के पैसे या

0: वहाँ रिश्तेदार हो या बाहर वालों के पैसे जो है ना, अक्सर लोग कहते हैं ये तो लौटा ही नहीं जाते, ये तो चीरी तक कहीं नहीं है, और उनका नुकसान उन्हीं का होता है, हमारा नहीं होता, तो उनको फीलिंग नहीं आती, वो उसमें इतनी दिल जमी से नहीं होते। कोई भी आप काम करें, कोशिश करें, और जिसका आपको कुछ पता हो,
1: आपका
0: टेम्परामेंट है, आप उसको कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल बात ठीक है। चलें, बात काफी हो गई।
1: बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुल्करैन साहब, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। रिंज तो हमारे साथ थे ज़ुल्करैन साहब, पहले तो हम ना जज्बात में कहीं और ही निकल गए, हम भूल गए हमारा टॉपिक क्या था, फिर बाद में अरे कहीं यार हम कहीं और जा रहे हैं। खैर जी, तो अभी हम जा रहे हैं एक म्यूजिकल ब्रेक की तरफ, फिर हम आते हैं वापस। आप सुनिए, एंजॉय कीजिए FM 107
2: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107 पर यू मैटर विद महावेश एंड सफा. और इस वक्त हमारी गाड़ी में कितने बज रहे हैं भाई? 10:44
1: हो गए. 44
0: नहीं जी, 45 हो गए.
1: हाँ, ये क्या हो गया, ये मेरा एक मिनट कहाँ चला गया? मैं भी ये ड्रामे करना शुरू कर देती हूँ.
0: महावेश, मेरे तो पूरे दिन निकल जाते हैं, आपको सिर्फ एक मिनट करवाना है.
1: एक मिनट कहाँ निकल गया, मेरा कम नया है.
0: मेरे घंटों निकल जाते हैं.
1: मैं जरा कुछ क्रिएटिव बनूंगी ना लाइफ में.
0: मैं एक एक सेकंड का हिसाब रखूंगी.
1: बिल्कुल.
0: तो भाई साथियों, आज हमारा मुद्दा ये चल रहा है कि जरा ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्यों इंसान पहला कदम लेने से हिचकिचाता है. अच्छा, मैंने अभी तक जितनी बातें सुनी और जितना मेरा अपना दिमाग काम करता है वो यही है कि कुछ लोगों को फेलियर का डर होता है, शायद कुछ लोगों को लोग क्या कहें का बड़ा डर होता है. जजमेंट उनका ये होता है कि जब लोग मुझे जज करेंगे दैट आई फेल. फॉर एग्जांपल, आपने कोई बिजनेस खोला तो 36 लोग आकर आपको ये बोलेंगे क्या करेंगे, हमने तो बोला था ऐसे 48 घंटे काम करो तब जाके पास हो गए तुम अपने किसी काम में. तो द थिंग इज दैट It was meant to happen.
1: भाई लोगों से कभी जिंदगी में किसी भी हवाले से, मतलब जो काम खासतौर पे आप कर रहे हैं और जो करना चाहते हैं, जो आपके दिल के करीब है, आपको लोगों से राय लेने की उस पर जरूरत नहीं है.
0: और अगर आप लेनी भी है ना,
1: या आप पास हो गए,
0: अगर आपने लेनी भी है ना, तो वो कोई इक्का दुक्का शख्स होता है लाइफ में जिसको
1: मोस्टली जो लोग है ना वो आपको ये आगे से, बहुत कम लोग होते हैं जो कि आपको इवन, मतलब मैं आपको घर की भी बता रही हूँ बात, कि घर में माँ बाप भी, मतलब अगर आपका बच्चा फेल होता है, बहुत कम माँ बाप फेलियर को एक्सेप्ट करते हैं.
0: क्योंकि वो ना महावेश, इसके अंदर बड़ी गहरी बात है. मुझे किसी ने एक बात बोली थी और मेरे दिमाग में बहुत बुरे तरीके से अड़ गई है कि जब भी आप किसी से मशवरा लेते हो ना, वो आपको अपने एक्सपीरियंस, अपने लेंस के थ्रू देखकर बता रहा होता है. फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने रेस्टोरेंट खोला, ठीक है, वो रेस्टोरेंट नहीं टिका, और उसी स्ट्रीट में आप सोच रहे हो कि ये बड़ी एक हाई फाई स्ट्रीट है, यहाँ पे मैं रेस्टोरेंट खोलता हूँ, वो फौरन आपको, अगर आपने उससे मशवरा नहीं भी लेना होगा ना, फौरन आपको बोलेगा यहाँ तो नहीं, यहाँ तो मेरा था काम, तो यहाँ मेरा नहीं चला तो तुम्हारा भी नहीं चलेगा. उससे आप सिर्फ डीमोटिवेट हो गए. क्या पता आपका आइडिया इज समथिंग डिफरेंट और वो काम कर जाए.
1: ऐसे ही,
0: इट्स समथिंग एल्स.
1: तो अगर आप श्योर है ना उस चीज के ऊपर और अपने बलबूते पे कर रहे हैं, तो फिर आपको वो काम कर लेना चाहिए. और उस पर ये पहले ही, मतलब जो लोग आपको बाद में सुना सकते हैं ना, उनको पहले ही बता देना चाहिए कि भाई ये मैं अपने बलबूते पे कर रहा हूँ, अपनी पूरी जान लगा
0: के कर रहा हूँ. बिल नहीं भर रहे,
1: हो सकता है कि ये चल जाए, हो सकता है कि फेल हो जाए, लेकिन इसका जिम्मेदार भी मैं खुद ही हूँ, तो बाद में मुझे सलावातें नहीं सुनाने का किसी को भी हक है, क्योंकि मैं खुद कर रहा हूँ.
0: अक्सर औकात लोग ये भी करते हैं, जैसे इमिग्रेशन का प्रोसेस होता है ना कुछ लोगों का, एक कंट्री टू अनदर कंट्री, जैसे हम लोग मूव आउट मूव इन करते हैं, तो इसके अंदर भी लोगों के बड़े होते हैं, अच्छी खासी जॉब लगी हुई थी.
1: अच्छा पता है उसमें एक और सफा, एक और बात मैं बताऊँ, कि आपको कभी भी अपने इस किस्म के आइडियाज, अगर आप देखो इमिग्रेशन की अगर हम बात करें ना, तो मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ. ठीक है, अब अगर इन केस तुमने इमिग्रेशन करनी है और तुम मेरे सामने आके शेयर करती हो, चूंकि मैं खिलाफ हूँ तो मैं तुम्हें उस पे नेगेटिव से शुरू करूंगी.
0: मैं वही बोल रही हूँ ना.
1: हाँ, तो उसमें आपका, और ये मेरा ओपिनियन है, मुझे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने लाइफस्टाइल से मुझे नहीं अच्छा लगता है इमिग्रेशन. अब आपने अगर मुझसे आके राय ली तो मैंने नेगेटिव से शुरू करनी है बात. हो सकता है कि तुम्हारे हक में वो चीज 100% चल जाए,
0: एग्जैक्ट
1: काम चल जाए, लेकिन चूंकि मैंने बात शुरू कर दी है ना से, तो अब ये बहुत बड़ी एक ना यहाँ पे आ जाती है इस तरह का एक मामला कि हो सकता है भाई अपने तुमने बात ही मशवरा गलत बंदे से लिया है, तो तुम्हारा काम में ना वो एक क्वेश्चन मार्क पहले डेवलप हो गया, कॉन्फिडेंस लो हो गया, फिर दूसरा वो बात गलत से शुरू होती है. तो मेरी अम्मी हमेशा बोलती थी, कभी भी अगर हम लोग चार बहने थी ना, तो जाहिर सी बात है लड़ाई झगड़ा होता है, तो हम लोगों का जब भी हो रहा होता था, तो अम्मी हमेशा बोलती थी कि जिस घर में ये ना शुरू हो जाता है मामला, उस घर में तबाहियां आती हैं. नहीं करना चाहिए आपस में किसी भी चीज को लेके ना बहुत ज्यादा नोक झोंक या किसी भी चीज के ऊपर नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए. तो अगर आपके सामने एक नेगेटिव ओपिनियन आता है, तो अभी मैं बकायदा देख रही थी कुछ अर्से पहले कि एक वीडियो मैंने देखी थी कि ये नेगेटिव, हम जिसे कहते हैं ना नेगेटिव वाइब आई मुझे किसी से, या नेगेटिव मतलब जो है ना, मतलब कुछ फील होता है ये वो, तो बकायदा ये जो वाइब्रेशन का कॉन्सेप्ट है और ये सब कुछ, तो ये रियल है. वाइब्स और इविल आई, मतलब बकायदा उसमें ये था कि रेडिएशन और ये सब कुछ ना, ये भाई पूरा साइंटिफिकली प्रूफ्ड हो चुका है कि अब ये जो चीज है ना, ये वो वाली ख्याली किताबों वाली जो हम लोग बोलते थे ना, यार हमारे लोगों को नजर बहुत ज्यादा लग जाती है, ये वेस्ट में क्यों नहीं लगती? तो लगती सबको है, हम वेस्ट में रहते नहीं उन लोगों के साथ प्रॉब्लम शेयर करने को, तो सबके साथ होता है. और ये वाइब्रेशन, ये रेडिएशन कह लें, आप जो कुछ भी कह लें, ये सब फैक्ट है. कभी भी आपको हर मामले में अपने
0: हर किसी को
1: शुरू करने से पहले आपको नहीं ओपिनियन देना चाहिए,
0: खामोशी से अपना काम शुरू करो। और कुछ ना हमारी ओवरथिंकिंग भी होती है, उस ओवरथिंकिंग की वजह से हम लोग कहते हैं पेट में बात नहीं रही, वो क्यों, क्योंकि वो 24 घंटे आपके दिमाग में घूम रही है। वो प्रेशर कुकर नहीं होता एकदम से सीटी बजती है प्रेशर कुकर की, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, तो वो आपकी जो सीटी बजती है ना वो गलत लोगों के सामने बजती है।
1: एग्जैक्टली, तो यही है भाई, आपको कभी भी ना इस तरह के मामलात शेयर ओवर शेयरिंग नहीं करनी चाहिए। जो सबसे ज़्यादा जो मुझे चीज़ समझ में आती है कि आप जितनी ओवर शेयरिंग करोगे, जितने लोगों से पूछोगे, हो सकता है वो बंदा अपने लिहाज से वो बात सही कर रहा हो, उसकी नेगेटिव वो भी ना हो, क्या कहना चाहिए,
0: इंटेंशन
1: भी ना हो, लेकिन वो आपके लिए चूंकि बात ना से शुरू हो गई है तो फिर वो ना हो जाती है, और ना से बात शुरू नहीं होनी चाहिए जो भी आपने करनी है।
0: अच्छा, मजे की बात ये वही वाली बात आ जाती है, हर किसी के अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने शेयर्स लिए हैं किसी मार्केट में, ठीक है, कुछ लोगों के शेयर मार्केट में बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनके करोड़ों डूब जाते हैं माविश, करोड़ों। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हम कहते हैं ना फूक फूक कर चलते हैं, उनको मुनाफा भी होता है।

0: बिल्कुल
1: सही हो गया। इंसान को जो है ना वो हमेशा ये सोचना चाहिए कि अपने आप को रेडी रखे चीजों के लिए। वी आर लिविंग द लाइफ फॉर द फर्स्ट टाइम एंड मे बी फॉर द नॉट मे बी ये वाली जो जिंदगी है हाल ही की वो फर्स्ट टाइम एंड द लास्ट टाइम तो कर लो कर गुजर जाओ। अगर कोई पॉजिटिव चीज़ है जिसमें आपको पोटेंशियल नजर आता है आपने अपना डाटा कलेक्ट किया हुआ है आपको यकीन है अपने ऊपर कर जाओ
0: कर जाओ। बिल्कुल ऐसे ही है। चले जी इसके साथ ही हम लेंगे आपसे इजाजत। इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होती है आपसे और कल भी एक नए टॉपिक पे आएंगे
1: इंशाल्लाह। अपना ढेर सारा ख्याल रखें सुनते रहें।
0: और कल होगा ट्यूसडे।
1: ओह यस ट्यूसडे। और फिर आ गया मैंने कहा था
0: आ गया निकल गया ना तुम्हारा कोई दिन बीच में मंडे निकल गया होगा।
1: नहीं संडे निकल गया मौज
0: यार मैं क्या करूं तुम्हारा। चले जी हमें तो दीजिए इजाजत। हम जा रहे हैं अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa
1: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो यह रस्सी यह हबले मतीन है कुरान करीम आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दे
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु सभी निकराम प्रोग्राम में कुरान के मोती के आज के सफर में आपका खिदमतम है तलहा शफुज़ ज़मान की जानिब से कबूल कीजिए सलाम व तहियात सामने कराम पिछले हलके में आपने सुना होगा कि हमने वहन और ईमान की कमज़ोरी के हवाले से गुफ्तगू की थी आज हम इसी मौजू को कंटिन्यू करेंगे ज़रा तसव्वुर कीजिए सामने कराम एक वक्त था कि आप किसी ऐसे प्रोग्राम या स्क्रीन के सामने बैठना पसंद नहीं करते थे जिसमें हराम मनाजिर हों फिर आहिस्ता आहिस्ता निगाह मानूस हो गई पहले दिल कहता था ये मेरे लिए मुनासिब नहीं फिर कहा आजकल तो हर जगह यही है फिर एक दिन वो चीज़ जिस पर दिल बेचैन होता था बिल्कुल मामूल बन गई अब यहाँ सवाल सिर्फ इस बात का नहीं कि आखिरी अमल का फिक्ही हुक्म क्या है फिक्ही हुक्म से दूर हटकर ज़रा अपने कल्ब का ग्राफ भी देखिए कि मेरी हसासियत ऊपर जा रही है या नीचे और इसी हसासियत के मौजू को डीप से समझने के लिए हमें वहन और ईमान की कमज़ोरी की अलामात पर आना होगा जिस्मानी बीमारी में डॉक्टर पहले अलामात पूछता है बुखार है तो दर्द कहाँ है कितने दिन से है शिद्दत कितनी है क्योंकि अलामत बीमारी तक पहुँचने का सुराग देती है कल्बी बीमारियों की भी अलामात होती हैं और ईमानी कमज़ोरी या वहन की पहली बड़ी अलामत है नफा बख्श आमाल के लिए दाफियत और हिम्मत का कम हो जाना ये लफ्ज़ याद रखिए दाफियत यानी मोटिवेशन आप कोई नफा बख्श काम करते थे और दिल में उसके लिए कुव्वत मौजूद थी क़ियामुल्लैल तिलावत कुरान अज़कार सुबह शाम हफ्तावार दर्स वालिदैन की खिदमत का कोई मुस्तक़िल मामूल किसी खैराती या समाजी खिदमत में शिरकत कुरान सीखना या सिखाना कोई भी ऐसा खैर का काम जिसे आपने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया हुआ था फिर अचानक सब कुछ गायब आहिस्ता आहिस्ता आप महसूस करते हैं काम वही है मगर अंदर से उठने वाली कुव्वत वो नहीं रही पहले दिल कहता था कि कब वक्त आएगा अब दिल कहता है करना जरूरी है क्या अब हर मर्तबा खुद को धकेलना पड़ता है ये एक वार्निंग साइन है फिर दूसरी अलामत है इबादत और खैर के मामूलात का मुसलसल नीचे आना यहाँ लफ्ज मुसलसल अहम है किसी हकीकी मसरूफियत बीमारी सफर या हंगामी हालत की वजह से मामूल कम हो जाना अलग बात है जिस कैफियत की बात हम कर रहे हैं वो ये है कि कोई वाज़ेह आरजी सबब नहीं मगर आपकी दीनी ज़िंदगी का जो सक़्फ़ है हजम है वो मुसलसल नीचे आ रहा है पहले हर महीने कुरान की तिलावत होती थी तदब्बुर के लिए वक्त निकालते थे फिर दो महीने फिर पूरे कुरान को ख़त्म करने के लिए तीन फिर ख़त्म कुरान का कोई वाज़ेह मामूल ही नहीं रहा पहले सुनन और नवाफिल की हिफाजत थी फिर एक एक करके कम होने लगे पहले वितर का खूब अहतमाम था फिर मकदार घटी फिर कभी हुआ कभी नहीं देखिए यहाँ मसला ये नहीं दोबारा ये बात कह रहा हूँ कि नफल छोड़ने को फौरन हराम करार दे दिया जाए ये फिक्ही मसाइल हम यहाँ नहीं कर रहे हैं यानी फिक्ही मसाइल की बात नहीं हो रही है सवाल ये है कि मेरा कल्बी ग्राफ जो है वो किस में जा रहा है अगर इंसान जानता है कि मैं पहले ज़्यादा

0: कभी ये भी सोचिए कि मैं कहाँ से चला था, आज कहाँ हूँ और मेरी हरकत किस तरफ रवा दवा है। अब मज़ीद एक और अलामत की तरफ आते हैं। ईमान की कमज़ोरी की अलामत के हवाले से हमारी गुफ्तगू हो रही है और तकरीबन 4 अलामत पर हम गुफ्तगू कर चुके हैं। अब ये बहुत ही दर्दनाक और हसास अलामत है कि नेकी तो बाकी है मगर नेकी की कदर दिल से निकलने लगी है। इंसान कुरान अब भी पढ़ रहा है लेकिन पहले कुरान खोलता तो दिल में इंतज़ार की कैफियत होती, किसी आयत पर रुक जाता, कोई जुमला अंदर उतरता था। अब सिर्फ सफहात मुकम्मल करता है फिर कुरान बंद कर देता है, बस दिल में इतना इत्मीनान कि आज चलो इतना पढ़ लिया है, यानी कुरान की लज्जत खोने लगा है। समझ कर यह अलामत बहुत बारीक है क्योंकि इंसान ने नेकी छोड़ी नहीं, अभी सब कुछ जाहिरन मौजूद है लेकिन नेकी की कीमत दिल में कम होने लगी है। अलबत्ता यहाँ भी तवाज़ुन ज़रूरी है, क्योंकि इबादत में हर वक्त एक जैसी लज्जत महसूस होना ईमान की सेहत की लाजमी शर्त नहीं। कभी मोमिन खुशू महसूस कर सकता है, कभी नहीं। कभी कुरान पढ़ते हुए आंख नम होती है, कभी इंसान सिर्फ अपने आप को पाबंद करके पढ़ता है, और कभी तो असल इखलास यही होता है कि लज्जत न होने के बावजूद बंदा इताअत नहीं छोड़ता। इसलिए ये मत समझिए कि आज नमाज में मज़ा नहीं आया, मुझे मेरे ईमान में कमज़ोरी है या मुझे वहन हो गया है। नहीं, हम एक मुसलसल कैफियत की बात कर रहे हैं। जब मुद्दत से नेकी की कदर कम हो रही हो, दिल की रगबत मुसलसल घट रही हो और उसके साथ बाकी अलामात भी जमा हो रही हों, तब ये एक ऐसा इशारा है जिसे संजीदगी से लेना चाहिए। क्योंकि आज इंसान नेकी कर रहा है मगर उसकी कदर महसूस नहीं कर रहा, और अगर यही कैफियत मुसलसल रही तो खतरा है कि कल दिल कहे कि जब मुझे इसमें कुछ महसूस ही नहीं होता तो मैं ये करता क्यों रहूं। तो पहले लज्जत जाती है, फिर रगबत, फिर पाबंदी, और आखिर में कभी खुद अमल भी छूट जाता है।
1: आइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान सिर्फ FM 107 पर।
0: जैसा मैंने कहा, अब तक वाहन की हमने 5 अलामात बयान की है। पहली, नफा बख्श आमाल के लिए दाफियत, मोटिवेशन और हिम्मत का कम होना। दूसरी, इबादत और खैर के मामूलात में बिला उज़्र मुसलसल कमी आना। तीसरी, सोच गुफ्तगू दिलचस्पियों और जिंदगी की तरजीहात का बदल जाना। चौथी, ज़ाहिरी हैयत और तर्ज जिंदगी में ऐसी तब्दीली जो एक वसीतर ईमानी पिसपाई का हिस्सा बन रही हो। पांचवी अलामत, नेकी अभी मौजूद हो मगर उसकी कदर, मानवियत और लज्जत दिल में मुसलसल कम होती जा रही हो। तो सामिन इकराम, ये 5 चीज़ें हमारे लिए आईना हैं, हमें अपने दिल को देखकर अपनी सिमत पहचाननी है। लेकिन अब असल सवाल शुरू होता है कि हमने बीमारी का तारुफ जान लिया, उसके मराहल समझे। जैसे कि ईमान की कमज़ोरी के हवाले से जो 3 मराहल हमने पिछले हल्के में भी बयान किए थे, एक है वहन, दूसरा दौफ, तीसरा इस्तकानत। अब उसकी अलामात भी देख लिए, मगर डॉक्टर अगर सिर्फ बीमारी का नाम और अलामात बताकर मरीज को घर भेज दे तो इलाज मुकम्मल नहीं होता। अब पूछना होगा कि वहन, ईमान की कमजोरी आता कहाँ से है, वो कौन से दरवाजे हैं जिनसे ये बीमारी दिल में दाखिल होती है, यानी असबाब वहन पर हम गुफ्तगू करेंगे कि दिल कमजोर कैसे होता है। कुरान शैतान के बारे में हमें एक वाज़ह हकीकत बयान करता है, इन्ना शैतान लकुम अदुवुन फत्तखिज़ूहु अदुवा, बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है लिहाजा उसे दुश्मन ही समझो। तो आयत में कहा गया है फत्तखिज़ूहु अदुवा, तुम भी उसके साथ दुश्मन वाला मामला करो, यानी उसकी चालों से गाफिल मत रहो। शैतान हर इंसान की कमजोरी को एक ही दरवाजे से नहीं आजमाता। किसी के लिए माल का दरवाजा ज्यादा खतरनाक है, किसी के लिए शहवत, किसी के लिए शोहरत, हसद, मायूसी, फिक्री शुबहात, बेमकसद मसरूफियत, मुसलसल तफरीह, किसी के लिए तारीफ की ख्वाहिश, और किसी के लिए खुद नेकी ही में ऐसा गुलू कि कुछ अरसे बाद थक कर सब कुछ छोड़ बैठे। गोया हर दिल की कमजोर जगह मुख्तलिफ हो सकती है, और शैतान का काम ही यह है कि इंसान को अल्लाह के रास्ते से हटाने के लिए मुनासिब दरवाजा तलाश करे। इसलिए मोमिन को भी अपने बारे में जानना होगा कि मेरा दरवाजा कौन सा है। ये समझना कि मैं कई साल से नेकी पर हूँ, अब शैतान शायद मुझे छोड़ चुका होगा, खतरनाक गफलत है। शैतान आपको शेल्फ पर रखकर भूल नहीं गया। जिस दिन एक दरवाजा बंद होता है वो दूसरे की तलाश करता है। अगर गुनाह से नहीं गिरा सकता तो शायद मायूसी से, मायूसी से नहीं तो गुरूर से, गुरूर से नहीं तो थकन से, और अगर दीन छोड़ने पर आमादा नहीं कर सकता तो कभी सिर्फ इतना चाहता है कि दीन आपकी जिंदगी में रहे मगर बेजान होकर, नमाज हो मगर बेअसर, कुरान हो मगर ताल्लुक ना हो, इल्म हो मगर अमल ना हो, जाहिर बाकी रहे।

और अंदर से अजम निकलता जाए, ये भी एक बड़ी शिकस्त है। और सामने के नाम हमारे ज़माने में वहन के, ईमान की कमज़ोरी के असबाब पर गुफ्तगु इसलिए भी ज़्यादा अहम हो जाती है कि दिल पर हमला करने वाली चीज़ें अब यानी हर वक्त हमारे साथ हैं, मुसलसल आती रहती हैं। सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन ही को ले लीजिए, सुबह, रास्ते में, काम के वक्फे में, घर आए, सोने से पहले, यानी कल्ब को एक फितने से निकल कर संभलने का मौका भी नहीं मिलता कि दूसरी चीज़ सामने आ जाती है। तो अगर ईमान की कमज़ोरी या वहन के असबाब पर हम गुफ्तगु करें तो इन असबाब में सबसे पहला नहायत अहम सबब यही है कि दिल को रोज़ाना मुसलसल और बड़ी मकदार में फितनों के सामने पेश कर देना। ज़रा इस जुमले को दोबारा सुनिए, अपने दिल को हर रोज़ मुसलसल बेहिसाब फितनों के सामने पेश करते रहना। हम अक्सर ये समझते हैं कि दिल बहुत मजबूत है, एक वीडियो से क्या होगा, एक शुबे से क्या होगा, एक गलत मजलिस से क्या होगा, लेकिन सवाल यह है कि एक के बाद एक, फिर एक के बाद एक, दिल हर रोज कितना कुछ जज्ब कर रहा है। दिल तो पत्थर नहीं, दिल मुतासर होता है। जो बार बार देखता है उससे मानूस होता है, जो बार बार सुनता है उसका वजन कम होने लगता है। जिस फितने के सामने बार बार खड़ा किया जाए उसके खिलाफ मुजाहमत थक सकती है। और शायद वहन या कमजोरी के असबाब को समझने का पहला उसूल यही है कि आप अपने दिल को रोजाना किस किस चीज के सामने खड़ा करते हैं। फितने दिल को एक ही जर्ब में नहीं तोड़ते, बल्कि वो तो मुसलसल आहिस्ता आहिस्ता कमजोर करते हैं। और यही सामने कराम कुरान की अहमियत आ जाती है। वहन का सबसे बड़ा इलाज कुरान है। याद रखिए, जहां कभी हम वहन की बात इसका जिक्र कर रहे हैं, इसका मतलब है कमजोरी, ईमान की कमजोरी। तो ये वहन दरअसल कमजोरी एक बीमारी का नाम है, और ये बीमारी मरहला बमरहला दिल में बहुत भयानक और खतरनाक रूप ले लेती है। जैसा कि हमने पहले भी बयान किया कि पहले वहन, फिर ज़ौफ़, फिर इस्तेकानत का आखिरी मरहला। अब सामने कराम हम कुरान की हिदायत लेंगे, कुरान इस सिलसिले में हमें क्या कहता है, क्योंकि कुरान हमें यह भी बताता है कि दिल को बीमारी से बचाना कैसे है। फितनों के मुकाबले में कुरान का एक मुख्तसर सा हुक्म देखिए। अल्लाह फरमाता है, वला तमुद्दन्ना आइनैक, अपनी निगाहें मत फैलाओ। गोया कुरान हमें यह सिखा रहा है कि हर चीज जो दुनिया में मौजूद है, जरूरी नहीं कि आप उसे देख लें। हर मंजर आपकी आंख के लिए नहीं, हर गुफ्तगू आपके कान के लिए नहीं। हर चीज को देख लेना आजादी नहीं, कभी कुछ चीजों से निगाह बचा लेना दिल की हिफाजत है। कभी कभार हम दिल से नूर मांग रहे होते हैं, मगर उसी दिल को दिन भर ऐसी चीजें भी दिखा रहे हैं जो इस नूर को मध्यम करती हैं। और इस तरह अगर इंसान मुसलसल अपने आप को शहवानी मनाजिर, फहश मवाद या दूसरे शदीद फितनों के सामने बेहिफाजती से रखता रहे, तो ये कैफियत आगे बढ़कर हराम ताल्लुकात, फहश मवाद की आदत या दूसरी संगीन लग्जिशों तक भी ले जा सकती है। इसीलिए कुरान का तरीका सिर्फ आखिरी गुनाह से मना करना नहीं, गुनाह तक पहुंचाने वाले दरवाजों की भी हिफाजत करना है। इसीलिए वला तमुद्दन्ना आइनैक, अपनी निगाह को हर तरफ मत फैलाओ, ये हुक्म आया है जो दरअसल इस वाहन का सबसे अहम और बड़ा इलाज है। और अब चले वाहन के दूसरे सबब की तरफ आते हैं। दिल में कमजोरी पैदा करने वाला एक और अहम सबब है रास्ते दीन की मुश्किलात का पहले से इदराक ना होना। ये नुक्ता काफी अहम है। बाज़ लोग जब दीन की तरफ आते हैं तो उनके जहन में गैर शोरी तौर पर एक तसव्वुर होता है कि अब मैं अल्लाह का फरमा बरदार बन गया हूँ तो जिंदगी आसान हो जाएगी, मैं हराम छोड़ रहा हूँ तो रिज़्क़ के तमाम दरवाजे फौरन खुल जाएंगे, मैं हिजाब इख्तियार कर रही हूँ तो सब लोग एहतराम करेंगे। हालांकि इसके बाद ही पहला इम्तिहान आता है और इंसान हैरान रह जाता है कि मेरे साथ क्यों हुआ, मैं तो अल्लाह की तरफ आया था, हमने आजमाइश को अपने नक्शे सफर में शामिल ही नहीं किया था। कुरान ने सालेहीन की तारीफ करते हुए क्या फरमाया, फमा वहनु लिमा असाबहुम फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जो कुछ उन्हें पेश आया उसकी वजह से वो वहन का शिकार नहीं हुए, उनके दिल में कमजोरी नहीं आई। और कीजिए, कुरान ने ये नहीं कहा कि उन्हें कुछ पेश ही नहीं आया, पेश आया, तकलीफ आई, आजमाइश आई, कीमत देनी पड़ी, मगर फमा वहनु, उस आजमाइश ने उनके दिल का अज़्म नहीं तोड़ा। इस्तकामत का मतलब है कि आजमाइश के बावजूद सिमत महफूज रहे। यही वजह है कि दीन के सफर में दाखिल होने वाले शख्स को सिर्फ फसाइल न सुनाए जाए, उसे सबात की कहानियां भी सुनाए। सिर्फ ये ना बताइए कि अल्लाह की इताअत में सुकून है, ये भी बताइए कि इताअत के रास्ते में आजमाइश भी आ सकती है, क्योंकि जिस मुसाफिर को पहले से मालूम हो कि आगे चढ़ाई है, वो चढ़ाई देखकर सफर पर शक नहीं करता, वो कहता है मुझे बताया गया था, ये भी

0: इसी रास्ते का हिस्सा है। कुरान इसीलिए साबिका अहले ईमान के इब्तिला और सबात की दास्तानों से भरा हुआ है और सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमें यह बताती है कि किस तरह साबिका अहले ईमान को इंतहाई शदीद जिस्मानी अजियतें दी गई मगर वो अपने दीन से न फिरे। ये वाकयात हमें अजियत की तमन्ना करना नहीं सिखाते बल्कि इस्लाम इंसान से ये नहीं कहता कि मुसीबत तलाश करो। सबक तो यह है इसमें कि अगर आजमाइश आ जाए तो आजमाइश को इस बात की दलील न समझो कि रास्ता गलत है। मोमिन तो आफियत मांगता है, मुश्किल को दावत नहीं देता, जायज आसानी तलाश करता है। लेकिन अगर हक पर कायम रहने की कोई कीमत सामने आ जाए तो सिर्फ कीमत देखकर हक की कदर कम नहीं कर देता। कभी आजमाइश बहुत बड़ी नहीं होती, एक रिश्ता आया, बात न बनी, किसी ने आपके जाहिरी दीनी अंदाज को पसंद नहीं किया, एक जॉब एप्लीकेशन रद्द हो गई, दो जगह सीवी कबूल नहीं हुआ, किसी ने आपकी दीनदारी का मजाक उड़ा दिया। अगर इतनी सी रुकावट पर इंसान अपनी पूरी दीनी सिमत बदलने लगे तो असल मसला रुकावट के हजम से ज्यादा दिल की तैयारी में हो सकता है, क्योंकि जिस शख्स को ये बताया ही नहीं गया कि सफर में इम्तिहान भी होगा उसे छोटा पत्थर भी पहाड़ महसूस होता है। लेकिन जिसने कुरान से सीख लिया फमा वहनु लिमा असाबहुम फी सबीलिल्लाह, वो मुश्किल देखकर पूछता है इस मुश्किल को हिकमत, सबर और शरी तरीके से कैसे उबूर करना है।
1: आइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान सिर्फ एफएम 107 पर।
2: हेलो,
3: क्या आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं? क्या हो रहा है कतर की बिजनेस में? क्या हलचल है स्टॉक मार्केट में? बिजनेस की स्ट्रेटजी, मार्केट का हाल, करेंसी अपडेट,
2: सुनिए कतर बिजनेस न्यूज विद आरजे सरवर मिर्जा डेली लाइव विद मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन ओनली ऑन एफएम 107। दिल से देसी देसी।
4: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में जोहर की अजान का वक्त हो गया है।

0: हर मंडे शाम 5 बजे से आरजे नाजिया के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से डीसी।
1: जेन ज़ी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है FOMO, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो फोमो एवर अगेन। सुनिए कतर 2026 आरजे फजील के साथ, रहिए अपडेटेड हर ट्यूसडे रात 9 बजे से सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं एफएम 107
0: दिल से देसी।
3: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसी ही ज़रूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। सामईन किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है। सामईन किराम, क्या आप जानते हैं दोस्ती का हक क्या है, भाईचारे का तकाजा क्या है, या फिर किसी अपने का साथ देने का मतलब क्या है? आमतौर पर हम कहते हैं अपना है तो उसका साथ देना चाहिए, लेकिन अगर अपना ही शख्स गलत हो, अगर दोस्त ज्यादती कर रहा हो, तब वफादारी का मतलब क्या बनता है? उसकी गलती छुपाना या उसके जुल्म का दिफा करना, या सिर्फ इसलिए उसकी तरफ खड़ा हो जाना कि वो मेरा आदमी है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सवाल का ऐसा जवाब दिया जो दोस्ती, वफादारी और नुसरत के पूरे मफहूम को बदल देता है। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंसुर अखाका ज़ालिमन औ मज़लूमा। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर वो मज़लूम हो तो हम उसकी मदद करेंगे, लेकिन अगर वो ज़ालिम हो तो उसकी मदद कैसे करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तखुदु फौक यदी, उसके हाथ पकड़ लो, उसे जुल्म से रोक दो। सामईन किराम, यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नुसरत की तारीफ ही बदल दी। हम समझते हैं साथ देना यानी मदद करना, सुन्नत कहती है नहीं, कभी साथ देना मदद के मतलब में आता है और कभी रोक देना भी मदद है। अब जो शख्स मजलूम है उसकी नुसरत का मफहूम तो वाज़ह है, उसके हक के लिए आवाज उठाना, उसे तन्हा न छोड़ना, उसके साथ होने वाली ज्यादती को रोकने की कोशिश करना। लेकिन हदीस हमें यहाँ नहीं रोकती, क्योंकि जुल्म के वाकये में सिर्फ मजलूम ही तबाह नहीं होता, जालिम भी अपने आप को तबाह कर रहा होता है। मजलूम को जुल्म का नुकसान पहुंच रहा है और जालिम अपने लिए गुनाह, जवाबदेही और अंजाम का बोझ तैयार कर रहा है। लिहाजा अगर आप वाकई उसके खैरख्वाह हैं तो उसे रोकिए। समीर कराम, कभी किसी से मोहब्बत का मतलब उसकी हाँ में हाँ मिलाना नहीं, उसे नहीं कहना होता है। सच्ची खैरख्वाही ये है कि आप कहें, मैं तुम्हारा खैरख्वाह हूँ इसीलिए तुम्हें इस काम में सपोर्ट नहीं कर सकता, ये गलत है, उसे रोक दो, कभी यही जुमला सबसे बड़ी मदद होता है। समीर कराम, जिंदगी में एक जुमला बहुत सुनने को मिलता है कि दोस्त वही जो मुश्किल वक्त में साथ दे। बिल्कुल, बात बिल्कुल सही है। अगर वो गलत है तो उसका हाथ पकड़ना, उसे समझाना, हक वापस दिलवाना और जरूरत हो तो माफी मंगवाना, यही उसकी मदद है। इसी तरह दफ्तर में आपका दोस्त किसी दूसरे मुलाजिम का हक मार रहा है, किसी के काम का क्रेडिट खुद ले रहा है, अपने ओहदे का नाजायज फायदा उठा रहा है, किसी कमजोर मुलाजिम को दबा रहा है, और आप ये सब जानते हैं। अब दोस्ती का इम्तिहान यहाँ से शुरू होता है। क्या आप खामोश रहेंगे क्योंकि मेरा दोस्त है, या मुनासिब अंदाज में कहेंगे ये दुरुस्त नहीं, तुम्हें इसे ठीक करना चाहिए? सामईन किराम, आज की रूह परवर सुन्नत हमें ये कहती है कि मैं अपने लोगों का साथ दूंगा मगर जुल्म में नहीं। सच्ची नुसरत ये है कि हम उसे हक के साथ, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंसुर अखाका ज़ालिमन औ मज़लूमन, अपने भाई की मदद करो।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi. Your health matters.
1: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सेहत के बारे में जिसका एहसास हमें अक्सर तब होता है जब मसला बहुत ज़्यादा हो चुका होता है या पैदा हो चुका होता है, और वो है बोन हेल्थ यानी हड्डियों की सेहत। ख़ास तौर पर आज हम बात कर रहे हैं ख़वातीन की बोन्स की सेहत के बारे में, और इसी तरह से जो हमारी हड्डियां हैं वो सिर्फ जिस्म को सहारा नहीं देती बल्कि तमाम जो मूवमेंट हम कर रहे होते हैं या जो ओवरऑल फिजिकल फंक्शन के लिए भी बेहद ज़रूरी हैं। ख़वातीन में उम्र ज़्यादा होने के साथ साथ जो बोन लॉस का रिस्क है वो ज़्यादा हो जाता है, ख़ास तौर पर मेनोपॉज के बाद। इसलिए हड्डियों की सेहत का ख्याल सिर्फ बड़ी उम्र में नहीं बल्कि अभी से रखना है, जवानी ही में रखना चाहिए। और सबसे पहले बात करेंगे हम कैल्शियम की। वैसे तो आप सबको मालूम है कि कैल्शियम हमारी बोन्स के लिए बेहद ज़रूरी है, और इसकी जो सोर्सेज हैं या हम उसे ऐसी जो खुराक है जो कि कैल्शियम रिच फूड्स हैं उनसे हासिल कर सकते हैं। और आपको मालूम है कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वही अहम हैं, जिसमें दूध है, दही और जो मिनरल हैं हड्डियों के लिए अहम कैल्शियम के जो सोर्सेज हैं वो हैं। इसलिए दूसरे कैल्शियम इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, मगर ये कि अगर ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स हों तो वो ज़्यादा बेहतर होंगे। और अगर किसी खातून को कोई मसला है तो फिर वो अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से इस बारे में मशवरा ज़रूर करे। दूसरा अहम जो न्यूट्रिएंट है वो है विटामिन डी। विटामिन डी जिस्म को कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में मदद देता है, और इसकी ज़रूरत जो है वो हर उम्र के फर्द को होती है। इसके लिए मेडिकल जो सिचुएशन है वो होनी बहुत अहम है, क्योंकि पता होना चाहिए कि कोई और क्रॉनिक बीमारी तो नहीं है, और इसमें लाइफस्टाइल और डाइट जो है वो भी बहुत अहम है। इसके लिए सप्लीमेंट खुद से बहुत ज़्यादा मिकदार में लेने के बजाय आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल से मशवरा ज़रूर कीजिए, यानी अपने डॉक्टर से मशवरा कीजिए कि वो क्या आपको डाइट जो है वो रिकमेंड करते हैं और विटामिन डी जो है वो कितनी आपको रिकमेंड करते हैं। और तीसरी जो बहुत ही अहम चीज़ है वो है एक्सरसाइज, जैसे कि आम वॉक है, स्ट्रेंथन एक्सरसाइजेज हैं या वेट बेयरिंग एक्टिविटीज़ हैं, वो जो मसल्स हैं और हड्डियों को सेहतमंद रखने में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। लेकिन अगर किसी खातून को फ्रैक्चर हो, ऑस्टियोपोरोसिस या कोई दूसरी जो मेडिकल कंडीशन है, तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले प्रोफेशनल एडवाइस लेना बेहद ज़रूरी है, यानी अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कीजिए कि आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन सी डाइट जो है वो लेनी है, और इस तरह आप किसी भी नुकसान से बच सकेंगी। ऐसी खवातीन जो स्मोकिंग करती हैं या इसी तरह कोई और ऐसी अद्वियात इस्तेमाल करती हैं जो कि हमारी विटामिन डी पर असरअंदाज होती हैं, तो इनके लिए ये एक ख़तरनाक बात हो सकती है कि किस तरह से वो जो फॉल या गिरने से भी बच सकती हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कहीं ना कहीं ख़वातीन जो है गिर पड़ती हैं, फिर फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, और ख़ास तौर पर बड़ी उम्र की जो ख़वातीन हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा होता है कि वो गिर जाती हैं, फॉल्स जो हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। घर में रास्ता जो है वो साफ़ रखिए, और इसी तरह मुनासिब रोशनी हो जहाँ आप चल रही हैं, और अगर कोई बैलेंस का मसला हो तो मेडिकल एडवाइस ज़रूर लीजिए। और अगर बार बार फ्रैक्चर हो या कद में कमी महसूस हो, कमर में मुसलसल दर्द हो या ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क हो, तो डॉक्टर से बोन हेल्थ असेसमेंट के बारे में आप ज़रूर बात कीजिए। आज की जो चंद अहम बातें जो आज हमने की, उसमें कैल्शियम, विटामिन डी, फिजिकल एक्टिविटी, हेल्दी लाइफस्टाइल और रेगुलर मेडिकल एडवाइस बहुत अहम है, और ये सब मजबूत हड्डियों के लिए बेहद अहम हैं। हड्डियों की सेहत को कल पर मत छोड़िए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, मजबूत फाल और सेहतमंद जिंदगी गुजारिए।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: दोस्तों, मैत्राज ऐप के जरिए रिहायशी अफराद अपने रिन्यू किए गए पासपोर्ट की तफसीलात को आसानी और सहूलत के साथ अपडेट कर सकते हैं, जिसके लिए सर्विस सेंटर जाने की जरूरत भी नहीं होती। इस अमल को शुरू करने के लिए होम स्क्रीन पर रेसिडेंसी सेक्शन पर जाएं, फिर चेंज डेटा सिलेक्ट करें और उसके बाद चेंज पासपोर्ट पर टैप करें। इसके बाद अपना QID नंबर या उस एप्लीकेंट का QID नंबर एंटर करें जिसका डेटा अपडेट करना हो। फिर नए पासपोर्ट का पहला सफ़ा स्कैन या अपलोड करें और साथ ही एक वाज़े पर्सनल फोटो भी अपलोड करें। इसके बाद तमाम मालूमात को दोबारा चेक करें ताकि ये यकीन हो जाए कि सब कुछ दुरुस्त है। मुकम्मल होने के बाद अपना पसंदीदा पेमेंट मेथड सिलेक्ट करें और पे पर टैप करें। आपकी दरख्वास्त कामयाबी के साथ सबमिट हो जाएगी और अपडेटेड QID सीधा कतर पोस्ट के जरिए आपको डिलीवर कर दी जाएगी। वजारत दाखिला का कहना है कि आपकी खिदमत करना हमारे लिए बायस मसरत है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
3: आज ही राब्ता करें
2: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: यार लेवल मेकअप कल जो ख्वाब थे आज चेज अब दुनिया जो बोले साइड में करके आंखों को खोलो वेक अप ए दोहा वाला मैं कबीर
1: यही कहूंगा सुबह सुबह
0: वेक अप
2: हर हफ्ते संडे टू थर्सडे सुबह 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी
3: आप सुन रहे हैं FM 107
4: दिल से देसी
5: FM 107 presents Tech Update.
1: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दो हवाला कबीर एफएम 107 पे एंड वेलकम टू टेक अपडेट। और जी आज भी हम आपको कुछ चीजें बताएंगे, बड़ी कूल सी चीजें बताएंगे, बड़ी काम की चीजें बताएंगे, लेकिन एक और काम है जो आपको कर लेना चाहिए अभी तक, तो आई बिलीव सो, वो है सोशल मीडिया हैंडल्स पे आना। सो FM 107 Qatar इस नाम से वैसे भी हर जगह मौजूद है। प्लीज गेट इन टच विद अस। ठीक है, आते हैं जरा मुद्दे की बात पे। तीन वेबसाइट आपको बता रहा हूँ बड़े काम की। नंबर वन ऑन द लिस्ट वेबसाइट का नाम है paperanimator.com। पेपर कागज वाला, PAPER एनिमेटर, ANIMATOR animator.com। जब इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो उसके बाद आपको बड़ा ही कमाल का एनिमेशन नजर आएगा। कागज एकदम पलट रहे हैं तेजी से और एक नाम पे फोकस कर रहे हैं। आपने देखा है वो हाई डिटेक्टिव वाले साइकोलॉजिकल मूवीज में अक्सर दिखाया जाता है, एकदम से एक सीन आता है, कैमरा पैन कर रहा है, धीरे धीरे क्लोजली जा रहा है कागज पे, कागज पलट रहे हैं और एक नाम पे फोकस हो रहा है, उस टाइप का एनिमेशन आपको मिलेगा। इसमें ब्लर इफेक्ट क्या चाहते हैं सब कुछ आप देख सकते हैं और बिना वाटर मार्क के उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो यू कैन यूज इट इन अदर प्लेसेस। बहुत कमाल, ये बहुत कूल चीज है, जरा सी लेकिन इफेक्टिव चीज। ओके, बढ़ते हैं अगली वेबसाइट की तरफ। अगली वेबसाइट का नाम है gamma.app यानी ऐप। सो GAMMA gamma.app। इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, फिर भी याद दिला देता हूं जिन्हें शायद नहीं पता। इसके जरिए आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो क्या होगा, आप गामा ऐप को चैट जीपीटी से कनेक्ट कर लीजिएगा, सेटिंग्स में जाके समझ में जाएगा, और ना समझ में आए तो वो प्रोसेस फॉलो कीजिएगा जो आपको ये टाइप करने से मिल जाएगा, कनेक्ट गामा ऐप टू चैट जीपीटी, सामने पूरा प्रोसेस हो जाएगा। बट वेन यू कनेक्ट बोथ ऑफ देम टुगेदर, उसके बाद आप जो कॉन्वर्सेशन करेंगे, जो प्रेजेंटेशन बनाएंगे

0: निकली देंगे, बहुत खूबसूरती से आपके सामने प्रेजेंटेशन आएगी। आई एम नॉट इन टू प्रेजेंटेशन, हमारा काम नहीं होता प्रेजेंटेशन का, लेकिन मैंने ट्राई किया है और क्या खूबसूरत प्रेजेंटेशन है। इट एक्चुअली आइडेंटिफाई कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या और उसके बेसिस पे एनालिसिस करके। ऐसा नहीं है कि खामखा में ये तो गाड़ी की बात कर रहे हैं, चलो मैं थोड़ा सा ब्लैक और रेड कलर यूज कर लूँ, थोड़ा डार्क, नहीं ऐसा कुछ नहीं। इट विल अंडरस्टैंड कि आपको चाहिए क्या, एंड अकॉर्डिंगली उसके वो टेम्पलेट सेलेक्ट करेगा और फिर आपको फॉन्ट वॉन्ट सब दिखाएगा, एंड अमेजिंग, एंड यू कैन ऑब्वियसली एडिट एंड ऑमिट लेटर ऑन। तो ट्राई करके देखिएगा, यू विल लव इट। gama.app। बढ़ते हैं अगली वेबसाइट की तरफ। अगली वेबसाइट का नाम है bestofai.com, BEST, bestofai.com। तो bestofai.com ये वेबसाइट पे आप जाएंगे तो जैसे कि नाम में है, द बेस्ट ऑफ ऑल द AIs यू विल गेट टू सी। अब आप चूज कर लीजिएगा आपको किस लिए चाहिए AI, क्या करना है, क्या काम नहीं करना है, कौन सा आपको पसंद है, कौन सा नहीं पसंद है, कौन से AI का ऑल्टरनेट आप ढूंढ रहे हैं, सब आपको एक ही जगह पे इकट्ठे मिल जाएगा। एंड कमाल की चीज़ यार, मुझे बहुत पसंद आया, आई लव्ड इट, बिकॉज आई फील ऐसी चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं जहाँ पे आदमी एक जगह बैठ के एक ही छत के नीचे सब मिल जाए, तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं इन टेक न्यूज़, क्योंकि खबरें बड़ी कमाल। तो जो पहली खबर आई है वो आई है टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की तरफ से। तो कहा ही जा रहा है कि अभी आने वाले वक्त में, कहा क्या जा रहा है, चीज़ें शुरू हो चुकी हैं, टेस्टिंग शुरू हो चुकी हैं। तो अराउंड द ग्लोब आप देखेंगे कि ग्रीन हाउस के ऊपर काम चल रहा है, कतर भी सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रहा है। इस बीच रोबोट डॉग्स कुछ जगहों पर इंक्लूड कर दिए गए हैं और ये इनको बिल्कुल सिक्योरिटी टाइट करने के बाद कहा गया है कि जो ये रोबोट डॉग्स होंगे ये खेती बाड़ी भी करेंगे, सिर्फ रखवाली नहीं करेंगे, सिक्योरिटी के लिए नहीं है, ये खेती बाड़ी में भी मदद करेंगे किसानों की। तो अभी टेस्टिंग पीरियड से थोड़ा ऊपर आ चुका है मामला। अगर मैं किसान होता तो क्या मैं इस पर भरोसा करता? एब्सोल्युटली नो, मैं अभी शुरुआत में तो नहीं कर पाता, बट क्या अगर इसका डेमो बढ़िया गया और ये साबित कर पाया तो इससे बढ़िया ऑप्शन कुछ भी नहीं है। मुझे अभी ये बताना मुश्किल हो रहा है कि ये बात अच्छी है कि बुरी है, आई डोंट नो, बट जो है सो है, एंड काफी काफी ज्यादा इसके बारे में पढ़ेंगे तो जानेंगे रोबोट डॉग्स क्या क्या करते हैं। भाई प्रॉपर खेती बाड़ी में मदद कर रहे हैं, दिस इज ह्यूज मैन। एनीवे, ये थी टेक अपडेट, आप भी बताइएगा आपको क्या कहना है। मिलते हैं अगली अपडेट में, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर टेक अपडेट। टेक अपडेट,
1: नंबर 1 हिट्स म्यूजिक स्टेशन, एनीटाइम एनीवेयर,
2: यस एनीटाइम एनीवेयर,
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107। लॉग इन टू आवर वेबसाइट urduradio.qa और डाउनलोड द ऐप QMC नाउ।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी
2: स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FM 107 पे इस्तकबाल है आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर हर रोज एक नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में मैं बात करता हूं और आपको आगाह करता हूं कि आप किस तरह से इन फ्रॉड से बच सकते हैं, इन स्कैम से बच सकते हैं। वेल, आज जिस स्कैम के बारे में हम बात करने वाले हैं, ये बच्चे और उनके पेरेंट्स के लिए है। ये है टॉयज स्कैम। ये स्कैम काम कैसे करता है और इन स्कैम से कैसे बचना है, इस पर नजर डालें। तो दोस्तों, ये टॉयज स्कैम हमेशा हॉलीडेज या ऐसे किसी फेस्टिवल, ईद है, बकरीद है या क्रिसमस है, इनकी शॉपिंग के रश और वायरल सोशल मीडिया ट्रेंड्स का फायदा उठाकर किया जाता है। इस फ्रॉड में स्कैमर्स टेम्परेरी ई कॉमर्स स्टोर फ्रंट्स या नकली वेबसाइट्स बनाते हैं, जहां वो साल के सबसे ज्यादा डिमांड वाले और मार्केट में सोल्ड आउट बच्चों के खिलौने ऐड करते हैं। वो SEO का गलत इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का गलत इस्तेमाल करते हैं, ताकि उनकी फेक वेबसाइट सर्च इंजन पर सबसे ऊपर नजर आए। इस वजह से परेशान पेरेंट्स, जो हर हाल में वो खिलौना खरीदना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए ताकि वो बच्चे खुश रहें, उनको ये ऐड दिखने लगती है और वो वेबसाइट जो अनजान है वो सर्च इंजन पे सबसे ऊपर आती है। और जब सर्च इंजन पे सबसे ऊपर कोई वेबसाइट आती है तो उस पे आसानी से भरोसा किया जा सकता है, लेकिन असल में ये एक जाल है जो स्कैमर्स आपको फंसाने के लिए बुनते हैं। जो लोग इन खूबसूरत और झूठे एड्स के चक्कर में आते हैं, उनका बहुत बड़ा नुकसान होता है। पैसा देने के बाद या तो उन्हें कुछ भी डिलीवर नहीं होता, या फिर उन्हें सस्ते, दो नंबर के, बेकार या फिर नकली खिलौने मिल जाते हैं, जो बच्चों की हेल्थ और सेफ्टी के रूल्स के खिलाफ होते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि हजारों लोगों के क्रेडिट कार्ड्स की डिटेल्स ये चोर रख लेते हैं और चोरी करने के बाद ये मलिशियस वेबसाइट हमेशा के लिए परमानेंटली डीएक्टिवेट हो जाती है। तो ऐसे में आपका पैसा तो जाता ही है, प्रोडक्ट आपके पास आया तो वो आपके बच्चों के लिए बहुत खराब निकलता है, उसके अलावा आपके कार्ड की डिटेल्स भी उनके पास चली जाती हैं और आगे आने वाले वक्त में भी वो आपके डिटेल्स, जो बैंक के कार्ड की डिटेल्स हैं, उनका इस्तेमाल करके आपको फ्रॉड कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के फ्रॉड से बचने के कुछ खास उपाय हैं, खास सॉल्यूशन है, जिनके बारे में हम बात करने वाले, और वो है सिर्फ ट्रस्टेड रिटेलर से ही खरीदें। कोशिश करें कि आप किसी स्टोर में जाके या फिर किसी लोकेशन पे जाके उन टॉयज को खरीदें, है ना, उनको सामने से परखें, जांचें, उसके बाद खरीदें, पेमेंट करें, क्योंकि इससे स्कैम होने की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। तो खिलौने हमेशा मशहूर और ट्रस्टेड वेबसाइट या ऑफिशियल ब्रांड से ही खरीदें या स्टोर से जाकर खरीदें। अगर कोई टॉय हर जगह सोल्ड आउट है और अचानक किसी अनजान साइट पर मिल रहा है तो वो स्कैम हो सकता है। वेबसाइट की एज और रिव्यूज भी चेक करें। किसी भी नई साइट से खरीदने से पहले एक अलग से वेबसाइट होती है जिन पर वेबसाइट कब बनी है, उनकी डिटेल्स क्या है, कहाँ की वो वेबसाइट, वो सब पता चल जाता है। जैसे voice.com, WHOIS.com, इस वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो किसी भी वेबसाइट की डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। अगर वो साइट कुछ ही दिन या हफ्ते पुरानी है तो वहां से शॉपिंग बिल्कुल ना करें और उसको जरा से शक की नजर से जरूर देखें। उसके अलावा क्रेडिट कार्ड या सिक्योर पेमेंट इस्तेमाल करें। हमेशा परचेज के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें। अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाए तो आप बैंक को कॉल करके चार्ज बैक क्लेम कर सकते हैं और अपने पैसे वापस ले सकते हैं। डेबिट कार्ड या डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कभी ना करें। इससे आपके साथ हुए फ्रॉड में आपको सहायता नहीं मिलती, आप दोबारा उस पैसे को वापस नहीं पा सकते। तो दोस्तों, ये था आज का टॉयज स्कैम, जहां पर आपके बच्चों को, आपके पेरेंट्स को इस तरह से फंसाया जाता है, जहां पर फेस्टिवल के जो टॉयज होते हैं या फेस्टिवल की जो चीजें होती हैं उनकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है फेस्टिवल के वक्त पे, और वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होते हैं, और यहां पर आपके साथ स्कैम किया जाता है, आपको पेमेंट करने को कहा जाता है और फेक वेबसाइट के थ्रू आपको टॉयज भेजे भी जाते हैं, जबकि वो बच्चों के लिए बिल्कुल सेहतमंद नहीं होते, बच्चों के लिए सही नहीं होते। उम्मीद है आपको ये स्कैम के बारे में नॉलेज या इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी कल एक नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में बात करते हुए। दिल से देसी
0: स्कैम अलर्ट। मैक्सिमम म्यूजिक, मैक्सिमम फन
1: ऑन FM 107। दिल से देसी।

आज हम बात करेंगे इंडियन क्रिकेट के एक ऐसे नाम की जिन्होंने सिर्फ बल्ले और गेंद से ही नहीं बल्कि ड्रेसिंग रूम में लीडरशिप और कोचिंग के जरिए भी अपना नाम बनाया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 107 और स्पोर्ट्स हाईलाइट के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। आपका अंदाजा सही जा रहा है, इवन मैं ये कहूंगा कि सही है। नाम है रवि शास्त्री। 27 मई 1962 को मुंबई में पैदा होने वाले रवि शास्त्री ने इंडिया के लिए 1981 में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था। शुरुआत में वो लेफ्ट आर्म स्पिनर थे लेकिन वक्त के साथ साथ उन्होंने अपनी बैटिंग को इतना बेहतर बनाया कि वो एक मुकम्मल बैटिंग ऑलराउंडर बन गए। इनिशियली वो 10th डाउन पर आते, धीरे धीरे प्रमोशन। न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका टेस्ट डेब्यू हुआ था 1981 में एंड उन्होंने दिलीप दोषी की जगह ली थी एंड उस टेस्ट मैच में ही इंप्रेस्ड विथ हिज लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग। लेकिन आगे जाकर पाकिस्तान का दौरा किया 1982 में और वहां पे 7th या 8th पोजीशन में बैटिंग करने आए थे और एक सेंचुरी भी स्कोर किया। धीरे धीरे धीरे रवि शास्त्री को प्रमोट किया गया एंड फाइनली वो ओपनिंग बैट्समैन बने इंडिया के लिए। सुनील गावस्कर के साथ भी ओपनिंग किया, श्रीकांत के साथ भी ओपनिंग किया एंड धीरे धीरे ही शोड टू द एंटायर क्रिकेटिंग यू नो द फ्रेटर्निटी कि उनके पास ओपनिंग बैट्समैन होने जो वो सलाहियत है वो मौजूद पहले से ही था। बट ओनली थिंग वॉज दैट कि मौका नहीं मिल रहा एंड जब उन्होंने अपने कंसिस्टेंसी के जरिए रन्स बनाने लगे तो कप्तान ने भी सोचा, टीम मैनेजमेंट भी सोच लिया कि इस बंदे को थोड़ा सा आगे प्रमोट किया जाए। तो उन्होंने इंडिया के लिए 80 टेस्ट और 150 ODIs खेले। टेस्ट मैचेस में उनके नाम 3830 रन्स और 151 विकेट्स हैं जबकि ODIs में उन्होंने 3108 रन्स बनाए और 129 विकेट्स हासिल किए। रवि शास्त्री के करियर का सबसे यादगार हिस्सा 1983 वर्ल्ड कप भी था। इंडिया ने लॉर्ड्स में वेस्ट इंडीज को हराकर पहली मर्तबा वर्ल्ड कप जीता और शास्त्री इस हिस्टोरिक स्क्वाड का हिस्सा थे। हालांकि वो मैच फाइनल में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, टूर्नामेंट में उन्होंने कुछ मैचेस खेले लेकिन ही वॉज नॉट देयर इन द फाइनल स्क्वाड। लेकिन शास्त्री के करियर का सबसे बड़ा इंडिविजुअल अचीवमेंट अगर देखा जाए 2 साल बाद आया, 1985 का वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और इस टूर्नामेंट में इंडिया ने तमाम मैचेस जीते और फाइनल में पाकिस्तान को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। इस टूर्नामेंट में शास्त्री प्रूव दैट ODI में भी वो उतने ही यू नो बेहतर क्रिकेटर है जैसे कि वो टेस्ट मैच में भी। उन्होंने इस टूर्नामेंट में 182 रन और 8 विकेट हासिल किए और उन्हें चैंपियन ऑफ चैंपियंस का अवार्ड दिया गया। आज भी लोग याद करते हैं कभी कभार उस टूर्नामेंट से, उस फाइनल के बाद वो तस्वीरात जो है वो आज भी पब्लिश होते हैं सोशल मीडिया पर, लोग देखते हैं और याद करते हैं। दैट वॉज रवि शास्त्री। उनकी परफॉर्मेंस के इनाम में उन्हें एक गाड़ी भी मिली थी। 1985 में ही शास्त्री ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक और धमाका किया, एक ही ओवर में 6 sixes का रिकॉर्ड लगाकर गैरी सोवर्स का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था उसको बराबर भी किया और ये उनके ऑलराउंडिंग क्रिकेटिंग टैलेंट का एक और यादगार एग्जाम्पल था। तिलक राज एक बोलर सौराष्ट्र के थे एंड आई थिंक ही वॉज फ्रॉम सौराष्ट्र। तिलक राज के एक ओवर पर रवि शास्त्री ने ये रिकॉर्ड कायम किया था। 1992 में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद शास्त्री कमेंट्री और क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ गए लेकिन उनकी सबसे इंपॉर्टेंट सेकेंड इनिंग्स कोच के तौर पर आई। हर एक्सपर्ट्स उस जमाने में कहते थे कि शास्त्री हैज अ वेरी वेरी यू नो ब्रिलियंट माइंड ऑफ अ क्रिकेटर। सोच वाली बात जो है ना वो रवि शास्त्री के अंदर, इट वॉज अ वेरी गुड कैप्टन। लेकिन उनको मौका ही नहीं मिला बहुत सारे मैचेस में यू नो लीड करने के लिए। एक ही टेस्ट मैच में शास्त्री हैड लाइट इंडिया। 2017 में रवि शास्त्री को जब इंडियन क्रिकेट का हेड कोच अपॉइंट किया गया तब एवरीबॉडी वाज इन अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड कि हाँ अब टीम कुछ करके दिखाएगी। उनके कोचिंग टेन्योर में इंडिया ने ओवरसीज टेस्ट क्रिकेट में खास तौर पर अपनी पहचान मजबूत की और 2018-2019 और 2020-2021 में ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीती, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और दूसरी सीरीज में एडिलेड में सिर्फ 36 रन पर ऑल आउट होने के बाद इंडिया ने जबरदस्त कमबैक करते हुए सीरीज 2-1 से जीती। दैट वाज समथिंग इन रवि शास्त्री जो अपने टीम मेंबर्स को वो यू नो वो स्प्रेड कर सकते थे, वो शेयर कर सकते थे। दैट पेप टॉक्स कुछ तो था उस बंदे में, कुछ तो था जो कि इंडियन टीम को इतने परफॉर्मेंस देने के पीछे जो रवि शास्त्री का एक अहम रोल रहा है। आज हम बैठ के जब एनालाइज करते तो हमें समझ आता है शास्त्री के टेन्योर में इंडिया 2019

वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक पहुंचा और इनॉग्रल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी जगह बनाई। 2021 में उनका इंडिया के हेड कोच के तौर पर टेन्योर खत्म हुआ, लेकिन रवि शास्त्री की लेगेसी सिर्फ ट्रॉफीज तक महदूद नहीं। एक प्लेयर के तौर पर वर्ल्ड कप विनर, 1985 के चैंपियन ऑफ चैंपियंस और कोच के तौर पर ओवरसीज टेस्ट विक्ट्रीज का हिस्सा बनकर उन्होंने इंडियन क्रिकेट के एक इम्पॉर्टेंट दौर पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। रवि शास्त्री की कहानी हमें ये बताती है कि क्रिकेट में सेकेंड इनिंग्स भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट हो सकती है जितनी पहली। एक खिलाड़ी जो खुद प्रेशर में खेला, बाद में उसी एक्सपीरियंस को कोच बनकर एक नई जनरेशन तक पहुंचाता रहा। यदि रवि शास्त्री की कहानी एक ऑलराउंडर, एक कमेंटेटर और एक कोच जिनका सफर इंडियन क्रिकेट के कई अहम चैप्टर से जुड़ा रहा। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और दिलचस्प स्पोर्ट्स स्टार के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.
1: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं कल्चर मोमेंट। मैं हूं आपकी आरजे महावश। इस 5 मिनट के सफर में हम बात करेंगे कतर की खूबसूरत सकाफत, रिवायत और विरसे की। यहां हर रस्म, हर लिबास, हर खाने और हर मेहमान नवाजी के पीछे एक प्यारी सी कहानी होती है। आइए मिलकर कतर की सकाफत को समझें, महसूस करें और इस विरसे को अगली नस्लों तक पहुँचाने का अहद करें। बात करेंगे कतर के एक पुराने और पसंदीदा खाने हरीस की। हर रवायती खाने के पीछे सिर्फ जायके की कहानी नहीं होती, बल्कि लोगों की जिंदगी, मौसम, मेहनत और अपनाइयत भी छुपी होती है। हरीस भी एक ऐसी ही डिश है जो सात अज्जा को सबर और हुनर के साथ एक नरम, मजबूत और दिल को सुकून देने वाले खाने में बदल देती है। हरीस आमतौर पर गंदम और गोश्त से तैयार की जाती है। इसके लिए गंदम और गोश्त को पानी, नमक और हल्के मसालों के साथ बहुत धीमी आंच पर पकाया जाता है। लंबे वक्त तक पकने की वजह से गंदम नरम हो जाता है और गोश्त बारीक बारीक रेशों की सूरत में घुलने लगता है। आखिर में दोनों मिलकर एक हमवार और गाढ़ी हुई सूरत इख्तियार कर लेते हैं। हरीस की अहम खसूसियत इसकी सादगी है। इसमें बहुत ज्यादा मसाले या मुख्तलिफ अज्जा नहीं होते, लेकिन इसकी सादगी के पीछे एक सबर आजमा तरीका होता है। गंदम को अक्सर पहले भिगोया जाता है काफी देर तक, फिर उन्हें गोश्त के साथ धीमी आंच पर पकाया जाता है ताकि हर दाना नरम हो जाए। तकरीबन इस पूरे प्रोसेस में 7-8 घंटे लग जाते हैं और जब खाना तैयार होता है तो उसे मजीद घोट कर एक जैसी नरम बनावट दी जाती है। पुराने जमाने में जब जिंदगी ज्यादा महदूद वसाइल के साथ गुजरती थी तो ऐसे खाने बहुत कीमती थे जो कम अज्जा से तैयार होकर ज्यादा लोगों को खिलाया जा सके। हरीस पेट भरने वाला और साथ ही ताकत देने वाला खाना था, इसीलिए ये गल्फ और अरब दुनिया के कई इलाकों में मुख्तलिफ सूरतों के साथ नजर आता है और बहुत मशहूर है। कतर में हरीस को खास तौर पर रमजान के साथ जोड़ा जाता है। अवतार के वक्त लंबे रोजेदार के लिए ऐसा खाना जरूरी समझा जाता है और पसंद किया जाता है जो नरम, पुरग़ज़ाइयत और आसानी से खाया जा सके। इसके अलावा ईद, रिश्तेदारों की मुलाकात और दूसरे खास मौकों पर भी हरीस पेश किया जाता है। हरीस की एक खास बात यह है कि इसकी तैयारी अक्सर खानदानी अमल होती है। घर के बुजुर्ग अपनी मालूमात और तजुर्बा अगली नस्ल को देते हैं। कोई गंदम की तैयारी देखता है, कोई गोश्त के गलने का इंतजार करता है और कोई आखिर में इसको अच्छी तरीके से घोटने का काम लेता है। इस तरह खाना पकाना एक रिवायत को याद रखने का जरिया भी बन जाता है। आमतौर पर हरीस को पेश करते वक्त ऊपर से घी डाला जाता है या फिर बटर डाला जाता है। घी की खुशबू और गर्माइश इसके सादा से जायके को और गहरा कर देती है। कुछ लोग इसके साथ दालचीनी, भुना हुआ जीरा या हल्की मिठास भी पसंद करते हैं, मगर असल रूह गंदम, गोश्त और आहिस्ता आहिस्ता पकने के इस अमल में है जो इस डिश को खास बनाती है। हरीस को सिर्फ एक खाना कहना शायद कम होगा, ये तवज्जो, वक्त और देखभाल की अलामत है। जिस तरह एक रिश्ता हौसला, तवज्जो और वक्त से मजबूत होता है, इसी तरह हरीस भी जल्दी में तैयार नहीं होता। इसकी बेहतरी इसके हर मरहले में सफर के पीछे छुपी होती है। आज के जदीद दौर में किचन्स और रेस्टोरेंट्स ने इसकी तैयारी को आसान बनाने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाए हैं, लेकिन घर की बनी हुई हरीस का एक अपना ही मकाम है, क्योंकि इसमें सिर्फ मसाले और गोश्त शामिल नहीं होते बल्कि बनाने वाले का प्यार और घर की यादें भी शामिल होती हैं। हरीज हमें ये सिखाता है कि सादा चीजें कभी छोटी नहीं होती। बुनियादी अर्जा अगर सही तरीके से मिलाए जाए तो एक ऐसा खाना बन सकता है जो नस्ल दर नस्ल पसंद किया जाए। इसी में रिवायती पकवान की असल खूबसूरती छुपी है। तो अगली बार जब भी आप हरीस खाएं, तो इसे सिर्फ गंदम और गोश्त का मेल ना समझिएगा। इसमें रमजान की शामें, खानदानी दस्तरखान, बुजुर्गों की सीख और कतर की मेहमान नवाजी की एक पुरानी दास्तान मौजूद है। आज के कल्चर मोमेंट का खुलासा यह है कि हरीस सादा जरूर है, मगर इसके अंदर तारीख, सबर और अपनाइयत की गहरी मिठास छुपी होती है। तो लिस्टनर्स, आज के कल्चर मोमेंट को यही मुकम्मल करते हैं। याद रखिए, सकाफत सिर्फ गुजरे हुए वक्त का नाम नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी का खूबसूरत हिस्सा है। मैं हूँ आपकी आरजे महाविश। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखिए और कतर की खूबसूरत सकाफत को हमेशा इज्जत और मोहब्बत के साथ याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।

0: सितारे उतरेंगे मैदान में, अजमत की जुस्तजू में, टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए, और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए, थमने ना पाए। दोहा बैंक स्टार्स लिए सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर।
1: साइंस कैन बी फन? ना, साइंस विल बी फन, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स होंगे तभी तो थ्योरीज फैक्ट्स बनेंगी, है ना? तो बस दुनिया बदलते देखिए हमारे साथ, क्योंकि हम करेंगे फन साइंस एक्सपेरिमेंट दोहा वाले कबीर के साथ, एक इजी एंड सेफ एनवायरनमेंट में। सुनिए और देखिए हमारे साथ ये खास शो जूनियर साइंटिस्ट, सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मैं हूं दोहा वाला कबीर FM 107 पे, एंड वेलकम टू जूनियर साइंटिस्ट। ओपनिंग मैंने देखा था कि लिखी होती है इट शुड बी एनर्जेटिक, तो मैंने कहा आज तो एनर्जी सारी की सारी डाल देंगे। पर आज जो है ना, हम जूनियर साइंटिस्ट में बात करेंगे साइंस की ही, लेकिन असली लाइफ एग्जांपल लेके। देखो, हम हमेशा से कहते हैं साइंस इज एवरीवेयर, इट्स जस्ट एवरीवेयर, यू फाइंड इट एवरीवेयर। लेकिन हाँ, एक कहावत से शुरू करूंगा। वो कहावत ये है कि पांचों उंगलियां बेटा एक बराबर ना होती, और पांचों उंगलियां सच में बराबर नहीं होती। और ये आप अपने बच्चों को बताते आते रहे होंगे, और आपको आपके माँ बाप ने बताया होगा, और आप आसपास में भी ये ज्ञान बांटते ही रहते होंगे। बहुत ही नॉर्मल सा, कॉमन सा ज्ञान है, लेकिन बहुत इफेक्टिव है। आज इसी बारे में बात करेंगे। तो ये जो मैंने इतनी जबरदस्त, वाह कबीर साहब, एनालॉजी खींची है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है आज का एक्सपेरिमेंट, क्योंकि आज हम जानेंगे कि डेंसिटी, ये जो वर्ड है साइंस में, ये कितना बड़ा की फैक्टर है जो एक्सप्लेन करता है कि अलग अलग लिक्विड्स जो होते हैं, भले ही एक जैसे लगते हों आपको, लेकिन अगर उनमें वर्ड डेंसिटी जोड़ दिया जाए तो सब के सब अलग अलग हो जाते हैं। हाँ, और इस पे आपको पता लगेगा सिमिलर जैसे लाइफ के एग्जांपल्स होते हैं। हो सकता है आप एक ही जगह पे काम करते हो, लेकिन चार लोग अगर काम करते हैं, चारों के चारों अलग होंगे, बट उनके साथ एक कॉमन फैक्टर होगा, वो ये कि चारों के चारों एम्प्लॉय हैं इस कंपनी के, मगर वो चारों के चारों अलग होंगे, सेम लिक्विड्स के साथ है। सारे के सारे लिक्विड एक जैसे लगते होंगे, सारे के सारे लिक्विड ही तो हैं, मगर उनकी डेंसिटी अगर अलग है तो उन दोनों को मिला के देख लीजिए आप, नहीं मिलने वाले। ऑफिसेज में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जितने भी स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं, क्लास भर किसी से थोड़ी होती है दोस्ती, है ना? ये तो मुझसे बेहतर जानते हैं। द मोमेंट यू हियर बेस्ट फ्रेंड्स तो आपको याद आता है, हाँ भाई तीन चार हैं, एक सबसे नहीं है दोस्ती। तो वही लिक्विड्स के साथ है, और आज हम ये जानेंगे, और हम इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा कलरफुल भी बनाने वाले। तो जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं, जूनियर्स मुझे सुन रहे हैं, बेटा मम्मी को कन्विंस करके रखिएगा, क्योंकि फूड कलर की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी। और अगर बच्चों की मम्मा सुन रही हैं तो बहन अलाउ कर दो प्लीज़, थोड़ा सा है प्लीज़। तो इस बारे में आज बात होगी, और एक्सपेरिमेंट के एंड में, इस पूरे सेगमेंट के एंड में आप जानेंगे किस तरीके से सॉल्ट वाटर, प्लेन वाटर आपस में मिल ही नहीं सकते, मिल नहीं सकते, बिल्कुल नहीं। आप फूड कलर उस पर डालेंगे तो भी नहीं मिलेंगे, दे हैव डिफरेंट डेंसिटीज।

एडिंग फूड कलर विल मेक देम इनविजिबल, मतलब फोर्सेस जो होंगी वो इनविजिबल फोर्सेस हैं, उनका असर आपको एक्सपेरिमेंट में देखने को मिलेगा। अब जरा इमेजिन कीजिए, दो लिक्विड है, उनको आपने एक साथ रखा हुआ है, अब वो दोनों आपस में मिल नहीं रहे, इन दोनों की दोस्ती नहीं हो रही, समझ में आ रहा क्यों नहीं हो रहा, दोनों तो लिक्विड ही हैं, जैसे आप कहते ना भाई दोनों बच्चे हैं, आप उनसे बोले बेटा हाथ मिलाओ, बच्चा नहीं मिला रहा तो नहीं हो रही दोस्ती, वैसे ही है, भले ही दोनों लिक्विड हैं लेकिन आपस में ब्लेंड नहीं हो पा रहे। ये तब होता है जब सॉल्ट वाटर, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, सॉल्ट वाटर है, प्लेन वाटर है, ये सब मीट ये मिलते हैं फूड कलरिंग से, तो इनके एक्सपेरिमेंट आपके सामने, आपके आंखों के सामने होते हैं, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर आप वो क्लियरली समझना चाहते हैं तो हमें फूड कलर डालना होगा इस एक्सपेरिमेंट में, एंड देन यू विल नो। ये एक्सपेरिमेंट हमें बताएंगे अलग अलग लिक्विड की डेंसिटीज किस तरीके से मैटर करती है। आपको तीन चीज़ें चाहिए, सॉल्ट चाहिए, पानी चाहिए और आपको फूड कलर चाहिए। सिंपल है बट इसके रिजल्ट ड्रामेटिक हो सकते हैं, काफ़ी ड्रामेटिक हो सकते हैं। और जैसे हम कहते हैं कि हमने बहुत बार देखा भी है, पेट्रोल और पानी को मिला के देखिए, ना मिलते भाई, इनमें कोई यारी नहीं है, कोई किस्म की, दे आर नॉट चडी बडीज। उसके लिए डेंसिटी मैटर करती है, कोई लिक्विड भारी है, कोई कम भारी है, और ये साइंस, जैसे आपसे मैंने कहा कि साइंस इज एवरीवेयर, ये फॉर्मूला जगह जगह अप्लाई होता है, और आज इसी को हम थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे इन अ फन वे विद फूड कलर एंड एवरीथिंग। रंग भरना बहुत जरूरी है, बेरंग किताबें तो हमने भी नहीं पढ़ी भाई, पढ़ी नहीं जाती, तो इस बारे में बात करेंगे, दैट्स अ टॉपिक फॉर अनदर डे। मगर जूनियर साइंटिस्ट में आई विल बी बैक, जाना नहीं है आपने। मैं दूहा वाला कबीर, ओनली ऑन FM 107।

0: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं दुहा वाला कबीर एफएम 107 पे और जूनियर साइंटिस्ट, ये सिर्फ शो के नाम में जूनियर साइंटिस्ट है लेकिन ये बड़ों के लिए भी शो है ताकि बड़े जो हैं अपने जूनियर्स के साथ ये शो कर सकें, मतलब उनके साथ मिलकर एक्सपेरिमेंट कर सकें और उन्हें समझा सकें कि साइंस इज जस्ट नॉट अ सब्जेक्ट, नॉट ओनली जस्ट अ सब्जेक्ट, इट्स एक्चुअली फन, इट्स एक्चुअली एवरीवेयर। छोटे से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ों में साइंस है और ये उनके काम आएगी। जैसे मैं हमेशा एक डायलॉग रिपीट करता हूँ, चाहे आप इसे तंग क्यों ना आ जाएं, वो ये है कि बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है, कुछ बाय बर्थ साइंटिस्ट होते हैं, उनको बस एक ट्रिगर पॉइंट चाहिए एंड यू माइट एज वेल ट्रिगर देयर क्यूरियोसिटी। तो आज का एक्सपेरिमेंट आपको बताएगा किस तरीके से अलग अलग लिक्विड्स, भले वो लिक्विड्स हैं मगर चूंकि उनमें डेंसिटी की बात कर दी गई है तो आपस में इनका कोई मेल नहीं होता। मैंने रियल लाइफ एग्जांपल भी दे दिया आपको, आप एक ही ऑफिस में, आप एक ही स्कूल में हैं, लेट्स गिव जूनियर्स एग्जांपल, एक ही क्लास में सारे सारे बच्चे हैं, सबकी एक दूसरे से दोस्ती नहीं होती, कहने को सब बच्चे, कहने को स्कूल भी वही है, कहने को क्लास भी वही है, बट दे आर जस्ट नॉट फ्रेंड्स क्योंकि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं, वो आपस में नहीं मिलते हैं। वैसे ही लिक्विड्स का खेल है, द वर्ड डेंसिटी कम्स इनटू प्लेस, जो लिक्विड भारी होगा वो दूसरे को नहीं मिलेगा। ईगो है भाई, पानी का भी लिक्विड है तो उसका भी अलग अलग ईगो है। तो आज जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो है दो टॉल क्लियर ग्लासेस चाहिए या फिर जार भी चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और इसके अलावा पानी चाहिए जिसमें क्यूब्स ऑफ आइस पड़े हों, प्लेन वाटर, उसके अलावा टेबल सॉल्ट चाहिए, फूड कलरिंग चाहिए और चम्मच तो चाहिए उसे हिलाने के लिए, मिलाने के लिए, स्टर करने के लिए, क्योंकि उंगली से ट्राई मत करना, होगा कुछ नहीं मगर अच्छा नहीं लगता है ना, एटिकेट्स नाम की वो चीज़ होती है। तो माँ बाप और बच्चे, दिस कैन बी द फर्स्ट लेसन, ये एक तरीके का पहला लेसन समझिए होम साइंस का, और आपकी आपका घर ही आपकी लैब है और एकदम सेफ है, ईजी है, आई कैचिंग है। जो वार्म वाटर होगा वो डिजोल्व करेगा सॉल्ट को बहुत जल्दी से, और जब आप टैप वाटर वार्म कर लीजिए जल्दी से, अब आप करके देखिए आपको समझ में आएगा कितना ईजी है, तो सॉल्ट फुली उसमें गायब हो जाएगा। अब आने वाले स्टेप्स को धीरे धीरे एक एक करके फॉलो कीजिए। सबसे पहले दोनों ही ग्लासेस में आप 3/4 फुल वाटर डाल दीजिए। जो पहला वाला ग्लास है उसमें आइस क्यूब्स ऐड करेंगे आप 2-3, और 2-3 लार्ज स्पून ऐड करेंगे सॉल्ट के और उन्हें मिला दीजिए जब तक सारा का सारा सॉल्ट आपको बिल्कुल गायब होता हुआ नजर नहीं आता। उसमें आप डाल दीजिए जी फूड कलरिंग, थोड़ी सी फूड कलर उसमें डाल दीजिए, और जो दूसरा ग्लास आपने लिया है उसमें आपको आइस क्यूब्स डालने हैं 2-3, और 4-5 ड्रॉप डालना है फूड कलर का, और उसके बाद ये प्लेन वाटर में जब आप कर लेंगे ग्लास आपका तैयार हो जाएगा, और यही आपको काम करना है पहले वाले ग्लास में। अब अगर आप चाहें तो यू कैन जस्ट यूज द स्पून एज अ गाइड, मैं तो गाइड हुई उसमें भी गाइड। जो कलर्ड वाटर है डजंट स्प्लैश राइट नाउ, तुरंत वो स्प्लैश नहीं मारेगा, धीरे धीरे आप देखिएगा कि किसकी डेंसिटी ज्यादा काम करती है, कौन सा लिक्विड ज्यादा डेंसिटी वाला है। अब आप थोड़ा सा सरप्राइज होंगे, जो कलर्ड वाटर है वो सिर्फ मिक्स नहीं हो रहा, मतलब वो मिक्स होने का नाम नहीं ले रहा, इसके अलावा वो लेयर फॉर्म करेगा, स्वर्ल्स पैदा होंगे और डेंसिटी ये काम करके दिखाएगी, रंग बिरंगा पानी, लेयर रहा भाई, लेयरें उठ रही हैं उसमें, इधर से उधर जा रहा है, अदाएं दिखा रहा है। तो ये जो है जब आप फूड कलर ऐड करेंगे तो आपको पता लगेगा एंड लिक्विड की डेंसिटी आपको मालूम पड़ेगी। अब इसके बाद एक फन साइंस है, जो मतलब साइंस का एक बहुत ही फन फैक्टर जो दैट कम्स इन प्लेस, यहाँ पर आपको बच्चों को सिखाना पड़ेगा नॉट लाइक अ टीचर बट लाइक अ पेरेंट। डेंसिटी बेसिकली क्या है, इट्स जस्ट हाउ हैवी समथिंग इज अपने साइज के हिसाब से, और कुछ नहीं है डेंसिटी। वो लगता है इतना भारी वर्ड है, फैंसी सा वर्ड है, बट डेंसिटी इज नथिंग बट हाउ हैवी समथिंग इज फॉर इट्स साइज, अपने साइज के हिसाब से क्या चीज कितनी हैवी है। आप एक समझ लीजिए, आप एक सूटकेस ले लीजिए, है वो बिल्कुल भरा हुआ है उसमें, मतलब आपने इधर उधर कपड़े फेंक दिए उसमें, जूते वूते दबा के उसमें डाल दिया आपने, और उसमें एक मोटी मोटी किताब भी डाल दिया ना, बहुत हैवी हो गया, अपने स्पेस के हिसाब से, अपने साइज के हिसाब से ज्यादा ही भर गया, तो इसे कहते हैं हाई डेंसिटी। और अगर इसको पूरी तरह से आप जो है एक और लगेज ले लीजिए, मान एक्सपेरिमेंट में ऐड कर देता हूँ, इसमें आपने भर के पर रख दिए, फैदर इसमें भर दिए या रुई भर दी, तो ये लाइट रहेगा एज कम्पेयर टू दी अदर वन एंड दिस इज लो डेंसिटी। तो वैसे ही जब आप डिजोल्व करेंगे सॉल्ट वाटर में मिला देंगे तो डेंसिटी आपने बढ़ा दी, तो आप उसको मास बढ़ा रहे हैं, तो ये चीज डेंसिटी को बढ़ा देगी। सॉल्ट वाटर डेंसर आपको नजर आएगा, प्लेन वाटर विदाउट सॉल्ट लेस मास फॉर द सेम स्पेस, तो उसमें कम डेंसिटी रहने वाली है। तो जब आप ट्राई करेंगे to put less dense water on top of denser water, they don't immediately mix. अब दोनों अलग अलग पानी है ना, एक तो सॉल्ट मिला के आपने पहली भारी कर दिया, उसमें प्लेन वाटर मिलाने की कोशिश करेंगे, दोनों के दोनों इमीडिएटली मिक्स नहीं होने वाले। होगा बड़ा ही कमाल का चीज, कमाल का कुछ, जो हैवियर सॉल्ट वाटर है वो नीचे ही सतह पे रहेगा, दबा रहेगा, जो लाइटर वाला पानी जो प्लेन वाटर है वो ऊपर की सतह पे तैरता रहेगा और लेयर्स बनाता रहेगा। वो जो लेयर्स बन रही हैं उसमें जैसे ही आप फूड कलर डाल देते हैं वो आपको वही इनविजिबल फोर्स दिखाएगा। वो फूड कलर डालते के साथ ही उसमें स्वर्ल्स में छोटी छोटी निक्की निक्की प्यारी प्यारी लहरें पैदा होती हैं और ये आपको बताती हैं और दिखाती हैं वो इनविजिबल सोर्सेस, इनविजिबल फोर्सेस, सोर्सेस बोल रहा हूँ, समझ गए ना आप मतलब। तो ये आप एक्सपेरिमेंट घर में बहुत इजीली कर सकते हैं एंड डेंसिटी का एग्जांपल देने के लिए अपने बच्चों को ये एक्सपेरिमेंट करके दिखा सकते हैं। इट इज मच मच इजियर एंड इट कैन बी डन इन इन इन सेफ एनवायरनमेंट। आपके घर को लैब बना देंगे शो में, ये तो प्रॉमिस रहा। तो आप कुछ कहना चाहते हैं, आपको एक्सपेरिमेंट करते हैं या बच्चों को एग्जाम्पल किस तरीके से देते हैं किसी भी साइंस का, ये आप जरूर बताएं। सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, FM107 Qatar, आपके मैसेजेस के इंतजार में रहूंगा मैं दोहा वाला कबीर। एंड आपसे ज्यादा चाहूंगा इंशाल्लाह अगले हफ्ते मिलते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी हैं। मास्सलाम।
1: जूनियर साइंटिस्ट सिर्फ FM107 पर, दिल से देसी। आप सुन रहे हैं FM107,
2: दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: स्ट्रेस या टेंशन फील कर रहे हैं, चाहते हैं लाइफ में बैलेंस और ग्रोथ, तो सुनिए यू मैटर, आपके लिए प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रेटजीज ताकि आप खुश, हेल्दी और फुलफिल्ड लाइफ जी सके, क्योंकि आप मैटर करते हैं।
0: सुनिए हर संडे टू थर्सडे सुबह 10 से 11 बजे यू मैटर, यू मैटर आरजे सफा और आरजे महविश के साथ, जहां वो शेयर करेंगी प्रैक्टिकल टिप्स, इमोशनल इंटेलिजेंस टेक्निक्स और पर्सनल ग्रोथ हैक्स, जो आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्पफुल हो सकता है। Tune into FM 107, दिल से देसी।
2: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट लेकर आ रहे हैं आरजे सर्वर MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में। MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में वजारती दाखिला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ, कुछ मिलेगा यहाँ। ट्यून करें हर वेंसडे शाम 7:15 FM 107 और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। MOI वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर विद आरजे सर्वर। Don't miss it. Don't miss it. FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: आप सुन रहे हैं FM 107,
0: दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 Time Check।
2: हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडियो की घड़ी में 1:30 और आपकी खिदमत में आ गए हम दोनों।
3: आप सुन रहे हैं एनर्जी आर, एनर्जी आर आरजे नाजिया और आरजे सर्वर के साथ सिर्फ एफएम 107 पर। दिल से देसी, दिल से देसी।
4: दोस्तों सलाम आदाब, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग खैरियत से होंगे। सर्वर और नाजिया हम दोनों पूरे एक घंटे आपके साथ रहेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। और आज का दिन देखा जाए दोस्तों तो बड़ा ही खास दिन है। अब आप पूछेंगे क्यों, वो भी हम बताएंगे क्यों आज का दिन बहुत खास है। लेकिन उसके पहले हमारे नंबर्स जहां आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, वेल हमारे नंबर्स हैं 666-22107। और अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं फिर हमारा नंबर है 4434377।
2: जी वैसे तो हर दिन खासम खास होता है और कोई भी दिन बकवास तो नहीं होता, बकवास हम बना देते हैं उसको, ये बात अलग है।
4: आपकी आमद
2: अच्छा, मतलब खुद हमारे हाथों से करीबी चीज होती है ये। और अगर हम चाहें तो हमारा हर दिन खास गुजर सकता है क्योंकि हर दिन एक नई सुबह लेकर आता है, एक नई रोशनी लेकर आता है। कितनी अच्छी बातें करने लगा हूं, मैं करता हूं, मैं एक्चुअली लगा नहीं हूं।
4: ये बातें मैं सुबह सुबह करती थी, once upon a time when I used to do summer mornings।
2: अच्छा
4: ये वही कहा,
2: सुबह अच्छी बातें करती थी आप, फिर शाम तक वो अच्छी बातें भी खत्म हो जाती थी आपके पास।
4: सर भाई लोग इतने अच्छे अच्छे जुड़े रहते थे, इतना अच्छी वाइब आती थी, इतना अच्छा माहौल था। वो कहते हैं ना कि माहौल का बड़ा फर्क पड़ता है।
2: वाह वाह वाह वाह,
4: माहौल में जब वजन घुल जाए।
2: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, बाबा से आज मुझे और कोई भी याद आ रहा
4: है, कोई
2: तो भाई हमारे साथ जुड़ सकते हैं जैसे कि नाजिया जी ने बता दिया है। और आज खासम खास मौजू, खासम खास दिन, हर एक की जिंदगी में एक सितारा ऐसा होता है जो चमकता है और वो सितारा अपनी चमक,
4: सितारा
2: अपनी चमक जो है आपके अंदर डालता है और फिर आप चमकते ही
4: चमकते हैं। मैं कहूंगी कि वो हर एक की जिंदगी में ये शमा की तरह है जो खुद तो जल रहे हैं लेकिन दूसरे की जिंदगी में रोशनी डाल रहे।
2: वाह वाह वाह वाह,
4: कौन है,
2: कहीं कौन, कहीं ना कहीं कुछ परवाने नाजिया की तरह भी होते हैं जो आकर शमा में जल जाते हैं। मगर ये जो लाइट, ये जो शमा, ये जो रोशनी है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों,
4: सर्वर भाई जैसे दीवाने भी होते हैं आके शमा को फूंक के बुझा जाते हैं।
2: वाह वाह वाह नादिया, बहुत ही बेकार शेर सुनाया, मजा नहीं आया। मगर आज जस्ट बता दें
4: आपकी
2: तर्ज पे आ जाते हैं, मजाक से हटके
4: खासम खास भी जुड़ चुके,
2: खासम खास दिन है आज उसका जिक्र कर देते हैं।
4: मैं कह रही हूं कॉलर के साथ।
5: हेलो,
2: सही सही सही सही, एक्चुअली मजा नहीं आएगा बात करने में। जी कौन है हमारे साथ?
5: मैं अहान, मिस्टर अहान।
4: अहान, मिस्टर अहान
2: भाई, मिस्टर अहान कैसे हैं एंड कैसा रहा आज आपका टीचर्स डे?
4: यस,
5: टीचर्स डे आज बहुत अच्छा नहीं, गंदा नहीं, अच्छा नहीं, गंदा नहीं, क्योंकि आज टीचर डे था नहीं हमारे स्कूल में बनाया गया।
2: अच्छा नहीं मनाया गया आपके स्कूल में? अच्छा भाई ये भी चलिए अच्छी, मगर आज टीचर्स डे है, आपको मालूम है आज वर्ल्ड टीचर्स डे है? अच्छा भाई, अरे भाई अच्छा ठीक है, खाली टीचर्स डे कर लेते हैं। तो नाजिया टीचर के लिए क्या कहना चाहते हैं? अहान बड़ा प्यारा नाम है यार।
4: अच्छा आपकी सबसे फेवरेट टीचर?
2: नहीं कुछ कहने, कुछ कहने
4: क्या
2: नादिया टीचर के लिए कुछ कहना चाहता हूँ।
4: अच्छा कहिए, ये अपनी टीचर के लिए कुछ कह रहे हैं
2: नादिया टीचर?
4: हाँ तो इनकी टीचर का नाम भी नाजिया है भाई।
2: हाँ आयन भाई बोलो बोलो बोलो
5: आपके लिए।
2: अरे आहान, आहान यार मेरी जान, आहान आहान गलती हो गई उस्ताद। और देखिए आज खासम खास दिन और हमारे साथ आहान कनेक्ट भी हो गए।
4: आहान आप बहुत प्यारे हैं पता है आपको,
2: माशाल्लाह। किस क्लास में हैं आप? किस क्लास में हैं?
5: फोर्थ में।

0: फोर्थ में, और सेक्शन क्या है आपका?
1: मेरा सेक्शन सेक्शन है आई
2: आई आई आ भी जाइए आ भी जाइए आ भी जाइए.
0: अच्छा
1: बोलो आप गेस करो ए क्या आई.
0: अच्छा मैं गेस करूं ए होना चाहिए.
2: हाँ मुझे लगता है बी बी बी.
1: नहीं गलत, सब गलत.
2: डी डी डी
1: बोला मैं चूज करो बल्कि ए न तो आई से
0: ए ना आई, तो आई, आई से तो फिर तो आई हुआ अगर ए नहीं है तो.
2: अच्छे सवाल कर रहे
1: हैं ये तो चीटिंग है, ये तो चीटिंग
2: है. अरे हमेशा से रहे हैं सर भाई हमेशा से. अच्छा आपकी जो सबसे फेवरेट
1: हाँ
0: अरे अल्लाह जल्दी करवाओ जल्दी करवाओ.
1: नहीं बोल रही है
2: नहीं बोल रही है. फायजा बोलो कुछ तो बोलो. फायजा
0: क्या नाम है आपकी बहन का?
2: सबसे फेवरेट टीचर. थैंक यू सो मच. और आपकी टीचर को भी बहुत बहुत बहुत मुबारक हो. वैसे आपकी फेवरेट टीचर का नाम क्या है? ये सवाल फायजा से पहले है और फिर अहान से है.
0: नीलमा
2: नीलमा और अहान आपकी फेवरेट टीचर? आपकी फेवरेट टीचर?
1: मेरी फेवरेट टीचर सर है. सर है मेरा फेवरेट.
2: अच्छा फेवरेट सर. उनका नाम क्या है?
1: विकास सर.
2: विकास सर क्यों फेवरेट है आपके?
1: क्योंकि ना पी पी कंडक्ट करता है हमारा पी, तो पी सबसे ज्यादा अच्छी रहती है. पी में फिजिकल एक्सरसाइज होती है.
2: इनको फिजिकल वाले पीटी टीचर कह सकते हैं.
0: पीएचई हमारे कहा जाता है. तो विकास सर से कहिएगा कि मेरे भी वो फेवरेट टीचर हैं. ठीक है
2: सर भाई डोंट से दिस. कौन आपको देख के
1: मारे?
0: अच्छा चलिए भाई खुश रहिए. अयान एंड फायजा और सॉरी अहान एंड फायजा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए. और बहुत शुक्रिया.
2: थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया.
0: टीचर्स डे को खास बनाने के लिए हमारे साथ भी. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.
2: तो भाई
0: ये थे अहान और फायजा. और देखिए हम जिस मुद्दे पे आने वाले थे आज, वैसे तो हम किसी और चीज पे बात करने वाले थे बट वर्ल्ड टीचर्स डे आज उस्तादों का दिन है तो जिस रोशनी और जिस शम्मा और जिस लाइट की हम बात कर रहे थे वो हमारे उस्ताद हैं जाहिर है. तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज के दिन आप अपने उस्ताद को याद करते हैं और अगर याद करते हैं तो कोई ऐसी बात जो हमारे साथ आप शेयर करना चाहते हो. जाहिर है काफी लोग मतलब उस्तादों में से ही और उस्तानियों में से ही मैं कह रहा हूँ शायद आज आपके और हमारे साथ नहीं भी हैं. तो कोई ऐसा मैसेज जो आप उनको देना चाहते हो, कोई ऐसी दुआ जो आप उनको भेजना चाहते हो, तो ये सारी चीजें मुख्तलिफ चीजें आप मेरे और नादिया के साथ शेयर कर सकते हैं. नंबर आपको बताइए 666-22107 और मैसेज भी भेज सकते हैं आप.
2: और कोई इंसिडेंट है, कोई स्टोरी है या कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट था जहां आपको लगा कि आपके टीचर की वजह से आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आया, तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं. या कोई ऐसा टीचर
0: आया ही होता
2: है श्योर, या कोई ऐसा टीचर जिसे सबसे ज्यादा डर लगता था उनकी क्लास अटेंड करने में, बिल्कुल यू नो थरथरी कांपती थी.
0: आप किस्सा सुना सकते
2: हैं? तो वो भी आप हमें बता सकते
0: हैं. सुनाने वाला हो बस ये याद रखिएगा.
2: सर आप पे तो बेशुमार होंगे क्लास के
0: सुना नहीं सकता ना. मसला नहीं, मसला ये सुना नहीं सकता. हेलो
3: सलाम
0: अलैकुम. वालेकुम सलाम. खैरियत से?
3: अल्हम्दुलिल्लाह.
0: कैसे हैं उस्ताद नसीम साहब?
3: शुक्र अल्लाह के.
0: माशाल्लाह नसीम भाई आज खासम खास दिन है. आज उस्तादों का दिन है, आज टीचर्स डे है. तो उनसे मुतालिक उस्ताद से मुतालिक कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ याद ऐसी?
3: एक थे हमारे हिफ्ज में हाफिज सर, हाफिज पति जमा सर.
0: अच्छा आपको मदरसे में पढ़ाते थे?
3: हाँ मैं जब पढ़ता था तो मेरे उस्ताद थे.
0: अच्छा
3: बहुत अच्छा आदमी, अभी भी है अल्हम्दुलिल्लाह बातचीत होती रहती है.
0: अच्छा अच्छा अल्लाह ताला उनको सेहत दे भाई. और जाहिर बात है जैसा कि आपने बताया कि सारे उस्ताद अच्छे ही होते हैं, बट कोई ऐसी बात जो आप शेयर करना चाहते हैं जो आपको याद आता हो, या आपकी जिंदगी में कितनी रहनुमाई रही उनकी और उन्होंने आपको कितना रास्ता दिखाया सच का, हक का और बेहतरी का?
3: वो हर चीज पे जब भी मेरे मदरसे से भागना करता था उनको मालूम हो जाता
0: क्या करता था?
2: मदरसे से भागने का दिल करता था.
0: अच्छा, दिल दिल में ही पता चल जाता था.
2: हाँ, समझ जाते थे.
0: वाह,
2: कहना चाहिए रग रग से वाकिफ थे टीचर.
0: हकीम तो नहीं थे उस्ताद जी? साथ में इस साइड में काम करते हो हकीम का भी.
3: पैसे से भी और नसीहत से भी बहुत रोना मैं.
0: अल्लाह ताला भाई उनको खुश रखे, और बड़ी अच्छी बात. चलिए,
2: अच्छा आपको मौका मिलता है तो मिलने चाहते हैं आप उनसे? कोई आप हैं रब्ते में? नहीं
3: मैं नहीं, रब्ते बात होती रहती है.
2: अच्छा, बात चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप अपने टीचर के साथ जुड़े हुए हैं. बहुत बड़ी बात है. मैंने तो ऐसे स्टूडेंट्स को भी देखा है कि बगल से टीचर्स निकल जाते हैं, टीचर्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं, बट स्टूडेंट्स ऐसे मुंह घुमा के इतना रूड एटीट्यूड रखते हैं, कैसे हम भूल सकते हैं? जी जी,
3: मैं कुछ पढ़ रहा था, कहावत हमारे नजर से गुजरा है, गई भैंस पानी में.
0: मैं सुन नहीं पाया.
2: आप पानी में जो है, कान बंद हो गया.
0: अच्छा, वाह, क्या शेर सुनाया आज. आज भी अच्छा शेर सुनाया, ऐसी बात नहीं. नसीम भाई, डेली आपके शेर बड़े अच्छे होते हैं. आज भी अच्छा. अरे फंदा लग गया भाई को मेरे, इतनी अच्छी बात की कि फंदा लग गया नसीम भाई को. खैर नसीम भाई, बहुत ही अच्छी बात भाई, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें कॉल करने के लिए. और भी कुछ है जो शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं?
2: आज कोई शेर है आपके पास?
0: उस्ताद के हवाले से कुछ है तो सुना दी दीजिए.
3: उस्ताद के हवाले से नहीं
2: है, एक मिनट. वाह, इंसाइक्लोपीडिया है नसीम जी, अभी बता देंगे. ये वाला डे के हिसाब से नहीं है तो दूसरा डे लीजिए, अभी निकालते हैं.
0: वाह वाह वाह वाह वाह,
3: उस्ताद के हवाले से तो नहीं है मेरे पास.
2: अच्छा, चलिए जो आप शेयर करना चाहें.
3: अल्लामा इकबाल साहब का है, जिस्म फानी है सजाने की जरूरत क्या है. जिस्म फानी है सजाने की जरूरत क्या है, हुस्न दुनिया हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है.
0: वाह,
3: ऐसे अमाल करो कि रूह से खुशबू आए.
0: वाह,
3: ऐसे अमाल करो कि रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है.
0: वाह वाह वाह वाह वाह, बहुत खूब. बहुत बहुत शुक्रिया नसीम साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और वक्त निकालने के लिए. थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए अपना भाई. अल्लाह
2: थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज. और एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं. दोस्तों आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं टीचर्स डे, जो कि 5th of October, इट्स लाइक अ वर्ल्ड टीचर्स डे. तो इस दिन को सेलिब्रेट करते हुए अगर टीचर्स के हवाले से कोई इंसिडेंट, कोई किस्सा, कोई मेमोरी, कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहते हैं, देन फील फ्री टू कनेक्ट विद अस. फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर यहाँ जुड़ चुके हैं. हेलो
4: डिंपू उस्ताद जी.
0: वाह,
2: कैसे खुल गया ना?
0: अंतर्यामी है, बाबा है, क्या बात है. मैं तो कहता हूँ आप पुरुष ही नहीं है, आप महापुरुष है, महापुरुष है, महापुरुष है.
2: ये वैसे पता कैसे चला? आज ही जिक्र यार, आज कैसे खुल गई
0: हमारे लिसनर्स. वाकई दिल से दिल को रहा हो गई भाई, कनेक्शन लाइन बिछा दी इन लोगों ने यार.
2: वाकई अभी ये डिस्कशन होके खत्म हुआ था,
0: अभी होके खत्म हुआ, 3-4 घंटे चला.
2: वाकई सुबह से चल रहा है इस नाम को लेकर. आपको कैसे पता चला?
4: मेरे को?
2: हाँ
4: बस नाजिया जी, मैं अभी क्या करूँ, सिक्स सेंस.
0: ये तो 18वां सेंस लग रहा है, ये सिक्स तो नहीं लग रहा मुझे. इसमें दो और कहना चाहिए कि क्या बात है यार.
2: नहीं, इतना तो है, कोई नहीं, नहीं, नहीं, नहीं
0: ये मिली जुली भगत है किसी की, कोई घुसपैठिया है हमारे बीच?
4: बिल्कुल है, आपके बगल में ही है.
0: अच्छा
2: बगल में तो आप
0: ही. इतनी देर में मैसेज कर दिया क्या नाजिया? वाह वाह वाह वाह, क्या बात है.
4: अच्छा सरवर भाई,
0: पहुंच जाती हैं दुश्मन तक हमारी खुफिया बातें भी. बताओ कौन सी कैची लिफाफा काट जाती है.
2: वाह वाह,
4: ओए होए होए होए,
2: सरवर भाई वो कैची आपकी जबानी है.
0: आदाब आदाब
2: लेके आप चलते.
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी. गाबा भाई, तो क्या कहते हैं उस्तादों के हवाले से आज बात हो रही है, क्या कहना चाहते हैं
4: उस्तादों के हवाले से? सरवर भाई,
0: आपको अपने टीचर याद हो जी, कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं उनके हवाले से?
4: सरवर भाई, टीचर के हवाले से बात कर रहे हो तो मेरे मैथ के टीचर है ना, मैं उनको कभी कभी बहुत याद करता हूँ.
0: अच्छा,
4: क्योंकि मैं मैथ में पहले बिल्कुल नालायक था.
0: अच्छा,
4: उन्होंने मेरे को
0: लायक बनाया
4: उस इंटेंशन से. जी उन्होंने मेरे को उस इंटेंशन से मारा है ना, डंडों के साथ, नेगेटिविटी के साथ नहीं सर.
0: अच्छा मतलब सुधारने के लिए,
5: डेवलप करने के लिए जी, सुधारने
0: यार
5: के
0: मुझे
5: लिए।
0: अपने भी उस्ताद अश्वनी दुबे साहब याद आ गए और उन्होंने ही मुझे सुधारने की कोशिश करी, उसके बाद मैथ सुधर गई। मैं थोड़ा नहीं सुधर पाया मुझे ऐसा लगता है। क्या नाम था उनका गाबा भाई उस्ताद का?
5: देवेंद्र सिंह।
2: देवेंद्र सिंह
0: क्या बात है देवेंद्र। तो क्या क्या याद है जो शेयर करना चाहते हैं
5: सर्वर भाई? अगर मैं रियल लाइफ में किसी को उस्ताद मानता हूँ तो मैं अपनी दादी को सर्वर
0: दादी को उस्ताद मानते हैं। ओके, ये भी
2: वो तो मैं भी मानती हूँ, ये तो सच का आप
0: अच्छी बात। मंजूरी का भी मानती थी दादी को उस्ताद
5: कौन सी पार्ट टू वाली
0: नहीं है, मैं नदिया आपके लिए थोड़ी कुछ कहा है मैंने यार इसके अंदर। मैं एक जनरली फिल्म का मुझे भाग याद आ गया बात करते करते उस्तादों,
2: मुझे भी बहुत ही अच्छा भाग याद है लेडी भाई
0: उस्तादों के हवाले से।
2: आप ऑफ तो फेयर हो तो मैं आपको
0: जनाब गाबा सिंह साहब देवेंद्र साहब ने आपको खूब तबीयत से कूटा ये कहना चाहते हैं आप?
2: अच्छा पिटाई याद है क्या?
5: बिल्कुल बिल्कुल डंडों वाली जो,
0: और वो कुटाई रंग लाई
5: पड़ते थे ना ठंडे,
0: जब हिना पिटती है जब रंग लाती है कहते हैं, तो फिर
5: बिल्कुल
0: मेहंदी की तरह फिर जो है चमके हमारे गाबा भाई खिल गए।
5: वो डायलॉग है ना धुरंधर मूवी के गाने का, रंग आशिकी गहरा हुआ, बिल्कुल गहरा हुआ सर्वर भाई।
0: वाह वाह वाह क्या बात है
2: सर्वर भाई, मुझे लगता है वो धुनाई आपकी
0: रहेगी। बड़े अच्छे से बात कही गाबा भाई, और भी कुछ शेयर करना चाहते हैं?
2: चलिए
5: सर्वर भाई, बड़ी एक तो एक ही जगह पे आप 2100 ट्रांसफर कर देना, शुक्रिया।
0: क्या बात है क्या बात है,
2: वो कह रहे मेरा उधार लौटा देना भाई।
0: यार बताइए 2100 डबल मांग रहे गाओ भाई, वो भी ऐसी बात कर रहा है।
5: आपने खुद ही बोला है ना अंतरजामी बाबा जी, मैंने तो कुछ बोला नहीं, आपने खुद ही टाइटल दिया है,
2: गुरु मान ही लिया है तो शगुन बिल्कुल वही ना।
0: चलिए साहब ठीक है गाबा भाई, बहुत बहुत
2: मैं शर्त लगा लूं इनके जेब से फूटी कौड़ी निकल जाए
0: इंशाल्लाह ताला। कहा करिए साथ में
5: ठीक है जी, ठीक है गाबा भाई, उस्तादों को भी
0: हैप्पी टीचर्स डे, बिल्कुल सही,
5: आपको भी एंटरटेन करते रहें।
2: थैंक यू सो मच।
0: तो वही कहते हैं कि वही शागिर्द फिर हो जाते हैं उस्ताद ए सरवर, जो अपने जानो दिल से उस्ताद की क्या करते हैं दिल्ली बताइए
2: इताअत।
0: क्या बात है नादिया, ये तो आ रहा मतलब ऐसी बैठे बैठे बना रहा था मैं, आपने अच्छी बना दिया, अच्छा बना दिया।
2: एक हमारे साथ कॉलर भी,
0: अच्छा कॉलर भी जुड़ गए, लिए जुड़ गए। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
6: अस्सलाम
0: वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे लगा फॉल सीलिंग में से आवाज आई, मैं तो ऊपर देखने लगा, मैंने कहा ये यहाँ क्या कर रहे हैं भाई, कौन है हमारे साथ?
2: जी हम दोनों खैरियत से, आप कैसे हैं, आपका नाम?
6: बिल्कुल मेरा नाम गनीउर रहमान है और मैं इस ड्यूटी में हूँ अभी, टीचर का।
2: अच्छा
0: आप टीचर हैं गनी साहब,
2: ड्यूटी पे
6: सर? अगर हम टीचर होता तो कितने अच्छा होता
0: नहीं नहीं आप बिल्कुल टीचर हैं, आप अपने घर के टीचर हैं, आप अपने बच्चों के टीचर हैं, आप अपने तमाम खानदान के टीचर हैं, ऐसी बात नहीं है
6: जी। बिल्कुल अपनी फैमिली का टीचर है सर, बस
0: फैमिली के टीचर
6: है, बड़ी बात है
0: सही।
2: तो कोई है आपकी जिंदगी में जिससे बहुत अच्छी रहनुमाई की?
6: जी मैं आज FM 107 का बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ये भी हमारा सेम टीचर है, बहुत कुछ मैंने सीखा है और बहुत कुछ मैं सुनता हूँ और बहुत अच्छे जो जितना भी सीधा रास्ते है ना मैंने FM से बहुत सीखे हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और जितना भी
0: अरे ये तो मेरा फर्ज था गनीउर रहमान साहब, ये तो
2: आप भटके रहे रास्ते सिखाते सिखाते
6: सर। और सर हमारे साथ बिरयानी भी है घर।
0: अच्छा ये बात मैं बता रहे हैं, आप पहले इधर उधर की बातें कर दी, आपने काम की बात अब बता रहे हो गनी भाई?
2: नहीं वो कह रहे बिरयानी है बासी है।
6: जी बिरयानी है मतलब है सरवर सर के लिए, तो बाकी तो सरवर सर समझता है ना,
2: बाकी तो आप समझते ही है।
0: नहीं मैं वाकई नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये क्या बात हो रही है आज, सब ये मेरे मतलब मेरे घर की बातें कैसे जान रही पब्लिक यार इतना।
2: ये देख लीजिए घर का भेदी लंका ढाए, ये ढा कौन रहा है आपकी लंका।
0: गनी भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बड़ी अच्छी आपकी प्यारी बातें,
2: बहुत शुक्रिया जी,
6: बहुत शुक्रिया।
2: और जो आपने कहा ना कि FM 107 से आप सीख रहे हैं और हम आपके लिए मतलब हमारे जितने भी प्रोग्राम्स के थ्रू आपको सीखने का मौका मिल रहा है, तो उसके लिए हम बहुत बहुत ग्रेटफुल हैं आपके कि आप टाइम निकालते हैं, सुनते हैं, एंड फाइनली आप अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, सो इट ट्रूली मींस अ लॉट टू अस. बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया
7: आप लोगों का, बहुत शुक्रिया.
0: अल्लाह ताला दुआओं में याद रखिए गनी भाई, अपना ख्याल रखिए, माल में भाग रखिए. थैंक यू सो मच.
2: अरे ये तो हमारे
0: चलिए साहब, ओके ओके, बाय गनी भाई, बाय.
2: और हमारे साथ यहाँ कॉल,
0: अच्छा ब्रेक पे नहीं जाने आज हम लोगों को क्या? चलिए बिल्कुल कनेक्ट करेंगे भाई, आज उस्तादों के उस्ताद हमारे लिसनर सभी उस्ताद हैं अपने आप में. और अगर हमें कोई उस्ताद सुन भी रहे हैं, हाँ, कोई टीचर अगर हमारे साथ कनेक्टेड है तो प्लीज हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए, ताकि
2: हम कह सकते हैं टीचर्स आज का स्टूडेंट थे.
0: हाँ वाह वाह वाह, क्योंकि सास भी कभी बहू देखने का देखिए असर कितना है इस लेडी के ऊपर, कि सारी बातें वही मिल रही जाके. हेलो सलाम अलैकुम.
2: ये तो अज्जू जी हैं, वेरी गुड आफ्टरनून.
0: अरे यार मैं तो आज आपको भी याद कर रहा था अज्जू भाई, अगर अज्जू भाई हैं तो.
2: अज्जू ही हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. अज्जू है हमारे साथ.
8: अज्जू जी,
0: अज्जू भाई आपका वैसे नाम क्या है असली?
2: वावा.
0: अज्जू या आपका नाम?
2: आपका तो नहीं है वावा?
8: नहीं नहीं, मेरा नाम अज्जू कृष्णन.
0: अज्जू कृष्णन, अच्छा अज्जू ही आपका असली नाम है? नहीं निकनेम नहीं है, अज्जू कृष्णन बता रहे. सर नेम इज अज्जू कृष्णन?
2: नेम इज अज्जू कृष्णन.
8: नहीं नहीं, मेरा नाम अज्जू है, मेरा फादर नेम कृष्णन, वो दोनों मिलके अज्जू कृष्णन.
0: अज्जू कृष्णन मतलब अज्जू ही है सर नेम है. क्या बात है यार अज्जू भाई की. तो अज्जू भाई, एज यू नो टुडे इज टीचर्स डे, तो क्या ऐसा है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं?
8: शेयर करना है बहुत है एक्चुअली. टीचर्स आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल इन आवर लाइफ. They do not only teach us a subject. They guide us, like they give you motivation and help us become a good human.
0: Sahi.
8: Then more important, आपका अंदर जो ability है उसको discover करने वाला teachers है.
2: True. बहुत अच्छा.
8: क्योंकि आपका घर में इतना आपका एलिजिबिलिटी नहीं दिखाने वाला नहीं, लेकिन स्टूडेंट्स का अंदर बहुत बहुत एलिजिबिलिटी है, उसको डिस्कवर करने वाला टीचर्स है.
2: True.
0: क्या बात है यार, क्या बात है.
2: बहुत अच्छा.
8: And they play as an important role to building as a better human in our society.
2: True.
8: बहुत है, लेकिन बात करेगा तो बहुत बात कर सकता है.
0: बात करेगा तो बहुत.
2: ओके अज्जू जी, इज देयर एनी वैल्यूएबल लेसन दैट एनी ऑफ योर टीचर हेल्प यू टू टीच यू टू गेट टू नो अबाउट दैट?
8: या एग्जैक्टली, लास्ट टाइम आपको मैं बोला ना, मेरा एक घर में एक गार्डन में एक फार्म था, उसको पैसे नहीं आ रहा है. देन मैं मेरे टीचर को बोला था, मैं टीचर बोला आपका पानी का TDS चेक करो.
2: Yes. Now I remember. Yeah. True.
8: मैं बहुत सारा थोड़ा टेक्निकल इश्यूज है मेरा, कोई नहीं है तो मैं बायोलॉजिकल टीचर को मैं बात करता हूँ, मेरे को बोलता है बहुत पानी का TDS चेक करना.
0: Wow.
2: So is he still in touch with you?
8: No, she already died.
2: She. Okay.
0: Sorry.
8: When I was in school, almost she is going to retired stage. Near my home only, around 3-4 kilometer only.
0: Okay.
8: I think he died around 2016, I think.
2: एक
8: बात था, ये टीचर्स ने ये PT टीचर्स जो होता ना,
2: हाँ जी हाँ जी,
8: उसको स्टूडेंट्स को जरूर उसका PT क्लास देने का था. मेरा टाइम में मेरा I was in plus two में every day 1 hour मेरा हमारा PT period था.
0: Okay.
8: उसी time मेरा maths teacher आके घुसता है उसको syllabus खत्म करने के लिए.
0: तो वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो PHE या PT पीरियड होता है उसको आप फॉर ग्रांटेड ना लें, और उसमें ये जो भी वो तरतीब और तरबियत करते हैं उनको करने दें, उनको भी अपने क्लास जो है वो मुकम्मल करने दें.
2: सब्जेक्ट था PT वगैरह,
0: एक्स्ट्रा क्लास वगैरह,
2: मतलब उसको इतना सीरियस नहीं लिया जाता, तो उसमें मैंडेटरी अटेंडेंस नहीं थी स्टूडेंट्स.
0: गुड मैसेज अज्जू भाई, बहुत अच्छा मैसेज है.
2: बट अज्जू जी, नाउअडेज ये जो सब्जेक्ट, ये जो PT है या जो भी फिजिकल एजुकेशन टॉप ये सब्जेक्ट है, इसे मैंडेटरी कर दिया है.
0: इवन बच्चे और भी ज्यादा, क्योंकि इसमें भाग ले रहे हैं, और
2: बिकॉज़ ऑफ द लाइफस्टाइल एंड एवरीथिंग. या
8: मेरा रिलेटिव कजिन और स्कूल में पढ़ रहा, मैं वो लोगों को बात करता था आपको पीटी पीरियड में क्या करता है, वो लोगों को बोलता है पीटी पीरियड में कोई टीचर आके क्लास लेते हैं।
0: हम समझ गए आपकी बात, वो यही कहना चाहते हैं।
8: तो आपका कोई
2: स्कूल्स थे यार, आई मीन दे आर क्वाइट विजिलेंट कि अब जो है अगर पीटी क्लास है या पी मतलब फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है तो उसमें सारे
0: इसी बात को मद्देनजर रखते हुए अभी ये नई नई चीजें आ रही हैं। And
8: this is the one of the ability for the student. Maybe he will become a sports player.
2: And it is quite mandatory for the students throughout the day. They are sitting at one place. तो उन्हें भी चाहिए, you know. अभी तो कितनी ज़्यादा importance और कितनी ज़्यादा बात भी हो रही है इस पर. So एक अच्छा message आपकी तरफ से. Thank you so much, Arju. हमेशा बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके.
0: Thank you for your time. Thank you for calling. और बहुत अच्छा message अपना.
2: And thank you for your insights. Thank you so much.
0: ख्याल रखिए.
2: एक बार मॉर्निंग में हमारे साथ शेयर की थी और उस टीचर ने पर्सनली टाइम लेकर इनको बताया, सिखाया, समझाया। इस तरह की कोई आपकी पर्सनल स्टोरी है जो वाकई टीचर्स, कई बार क्या होता है कि क्लासरूम में जब कनेक्शन होता है ना टीचर्स से, तो इट्स लाइक अ कनेक्शन विद ऑल द स्टूडेंट्स। लेकिन कुछ टीचर्स इतने ज़्यादा मैं कहूँगी कि इमोशनली इंटेलिजेंट होते थे सर्वर एट दैट टाइम ऑल्सो, कि अगर आप स्ट्रेस में हैं, टेंशन में है और समथिंग वेंट रॉन्ग और कुछ ना कुछ चल रहा है आपके दिल और दिमाग में, तो टीचर्स जो थे क्लास के बाद पॉइंट आउट करते थे दूसरों से कि आप स्टाफ रूम में मिलिए।
0: हाँ नहीं,
2: एंड दे टेक आउट दिस टाइम यू नो एनर्जी एंड एवरी सिंगल सॉर्ट ऑफ थिंग टू गेट टू नो यू वेल, कि भाई आप क्यों परेशान है, व्हाई यू आर नॉट परफॉर्मिंग सो वेल, या क्लास में आप क्यों इतने ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड नजर आ रहे थे। और ऐसे कुछ टीचर्स थे, मैं कहूंगी कि हैट्स ऑफ।
0: नहीं असल में ये तो आपकी सारी बातें सही है,
2: इट्स नॉट अ प्रोफेशन।
0: कुछ बच्चे मतलब भी तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं ना, मतलब मेरे जैसे जिनको,
2: आप तो क्लास में नहीं होते,
0: जिनको टीचर जो है वो बहुत कुछ सिखाना भी चाहते हैं और जिनसे टीचर भी सीख लेते हैं, भाई ऐसी बात नहीं है।
2: तो टीचर आप जैसे स्टूडेंट्स, अरे वैसे एक कॉलर थे सर्वर में, कॉलर इज वेटिंग,
0: लेट्स टॉक टू हिम, या
2: फिर हम
0: मैंने कहा क्योंकि हमारा
2: ट्रैक की तरफ जाएंगे,
0: वक्त हो रहा था। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
7: हेलो वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू।
0: अहलन व सहलन, कौन है हमारे साथ?
7: मेरा नाम है मोहम्मद अकरम।
0: मोहम्मद अकरम साहब जी, अकरम भाई क्या बात बताना चाहते हैं और आज के खास से खास दिन?
7: आज का टॉपिक कितना, यानी कितने साल बाद मैंने अपने मेमोरी को है ना, स्टूडेंट लाइफ, कॉलेज लाइफ को है ना वापस लेके आना, बहुत अच्छा दिखता है।
0: मैंने शायद आप कहने वाले कितने सालों बाद आज मैंने अच्छा टॉपिक सुना है नादिया से।
7: नहीं माशाल्लाह आप लोग का ना डेली टॉपिक अच्छा रहता है, लेकिन कुछ लोग है ना, हर टॉपिक होती है लेकिन है ना कुछ लोग है ना छुप जाते हैं टॉपिक में, यानी कि नजर नहीं आते, वो है टीचर्स। टीचर्स को यानी कि ज्यादा जब आप बच्चे लोग स्कूल छोड़ते तो बोलते यार वो सर वो टीचर, जब एक लाइफ गुजर जाती है फिर बोलते अरे यार वो पढ़ाया था मुझे और वो मुझे अब काम आ रहा है, लाइफ में काम आ रहा है, डिसिप्लिन में काम आ रहा है, जैसे पीटी टीचर डिसिप्लिन में। तो मैं फॉर एग्जाम्पल मैं वो हूँ एमएस इंडियन स्कूल जो है दुआकातर, मैं उसका एक्स स्टूडेंट हूँ। और मेरे टीचर्स वो जो पीटी टीचर थे, ज्योग्राफी टीचर, जो बड़े बड़े आंसरों को शॉर्ट करके कैसा सिखाते थे, तो हमेशा लाइफ में ये सीख लिया कि भाई जो पढ़ता है ना वो कभी कामयाब नहीं होता, जो समझ के पढ़ा वो हर चीज कामयाब कर लेता है।
2: समझे सर?
0: तो पहले वाली जो बात थी आपके लिए थी नाजिया, दूसरी अच्छा? वाली जो बात थी भाई ने मेरे लिए कही है एक्चुअली।
7: टीचर्स एक वो क्या बोलते हैं, हिडन वो है, जेम्स है जो हमें है ना पॉलिश करके छोड़ते हैं। लाइफ में कोई भी कहीं भी आप लाइफ में कहीं भी जाओ, कहीं ना कहीं फिजिक्स का हो गया, ड्राइविंग में काम आ गया, साइंस का हो गया, कहीं ना कहीं
2: अच्छा,
7: एविएशन में काम आता है, ड्राइविंग में काम, फिजिक्स तो बहुत वो है। तो
0: नाजिया तो किचन में भी काफी काम कर लेती हैं माशाल्लाह से।
7: अगर हम है ना कोई भी टीचर को अगर यानी कि अगर आप याद करेंगे ना आपके हर एक डिसिप्लिन में ना बहुत, यानी कि आप कितने भी केजी स्टैंडर्ड से लेके कॉलेज के लाइफ तक कितने भी टीचरों के नाम लोग कम है,
0: क्या बात है यार।
7: तो
2: वही हम कहते हैं ना टीचर्स इम्पैक्ट जो है इट गोज फार बियॉन्ड द क्लासरूम, और ये हमारी पूरी लाइफ में हम बाद में जो है वो रियलाइज भी करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं अपार्ट फ्रॉम टेक्स्ट बुक हमने टीचर्स से सीखे, वैल्यूज हैं, ऑनेस्टी है, इंटेग्रिटी है, परसीवरेंस है, काइंडनेस है, सब कुछ। और कहीं ना कहीं हर टीचर जो है एपिटोम अपने आप में जी।
7: अब हमारे जो
9: मरहूम भी उनका नाम लेना जरूरी है, मरहूम बी के मोहम्मद कोनी सर को मैं उनकी वो लाइफ से देखा जब वो जवान थे और बेल बॉटम के जमाना था, उनको उस जमाने में देखते थे, फिर उनका इंतकाल हुआ, बट वी मिस हिम अ लॉट। और ऐसे सर से ऐसे टीचर्स हमारी लाइफ से गुजरे हैं, हम बैठ के बात करते थे, डिस्कशन करते थे, टाइम बढ़ता था, बेल भी बज जाती थी ना, तो टीचर बोलते कोई बैठ के भी समझना चाहते तो अभी समझ लो। तो हम लोग वो चांस का ना वो फायदा उठाते, न्यू जनरेशन जिसको समझना समझ वो सब बाहर निकल जाएंगे, लेकिन जो बैठ गया बैठ गया। तो ऐसे कुछ ऐसे टीचर्स भी मिले हैं, तो ऐसे टीचर्स भी थे लाइफ में कि जब हम इतने इंटेलिजेंट से हमारे को बहुत सपोर्ट होता था, मगर एक टीचर से मैं मिला अपना लाइफ में, बहुत हमें सपोर्ट। मैं अपनी फैमिली को जब मिला मैं उनसे यहाँ पे शॉप में तो मॉल में, तो मैं उनके पास मेरी फैमिली लेके गया, मैम ये मैं पहचाने मुझे, तो वो मुझे याद नहीं कर सक रहे, यानी कि मेरे जो अब इतना अफसोस हो गया कि भाई ये अपनी लाइफ हमें दे दी लेकिन अभी हमें याद नहीं, यानी कि उनकी जो एज हो गई मेमोरी वो हो गई है ना।
2: बट अक्रम जी ना, अक्रम जी इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको याद है वो, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। टीचर को याद है आप नहीं है, लेकिन ये कितनी बड़ी बात है कि आपको एज अ स्टूडेंट आज भी अपनी टीचर याद है और उतनी ही आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं।
0: अकरम भाई की बातों से ऐसा लग रहा है इनको खुद भी टीचर बन जाना चाहिए था, इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं और भारत अल्लाह ताला आपको खुश रखे।
2: डू यू माइंड आस्किंग अस आप किस प्रोफेशन में
9: है? मैं एविएशन में हूँ।
2: एविएशन में, ओके नाइस। चलिए बहुत अच्छी बात,
0: यार बड़ा अच्छा लगा और आपने वक्त निकाला और हमसे बात करी। हैदराबाद से ताल्लुक है आपका अकरम साहब?
9: जी जी जी, हैदराबाद से ताल्लुक है, मैं यहीं बॉर्न हुआ, यहीं बड़ा हूँ, यहीं मेरी पढ़ाई हुई है, फिर एविएशन के लिए हैदराबाद गया था, मगर माशाल्लाह मेरा दिल कभी भी छुट्टी जाना बोलते तो हैदराबाद कभी दो साल तीन साल में जाता हूँ, तो मेरी फैमिली उधर की, यानी कि वाइफ मेरे हैदराबाद पक्का हैदराबाद से है।
0: अच्छा तो, माशाल्लाह
9: अच्छा अच्छा।
0: आज पहली बार कॉल किया आपने हमें?
2: नहीं करते हैं
9: हम, मैं आपको बहुत बार कॉल करता हूँ
2: और हमेशा बहुत अच्छा। मोहम्मद अकरम, हम अक्सर इन्हें इकराम बोल जाते थे, फिर ये करेक्ट करते हैं, अकरम मोहम्मद अकरम।
0: हमारी तो पुरानी दोस्ती है यार, क्या बात है।
2: खाइए वॉलनट्स, वी हैव सम आमंड्स।
0: बहुत बहुत शुक्रिया भाई अकरम भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए।
2: थैंक यू सो मच।
0: और भी बात करते हैं जरूरी, ब्रेक लेना है इसलिए
2: आपकी टंग भी ट्विस्ट हो।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया,
2: थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू जी।
0: छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं यू गाइस और यू वापस आए, सुनते रहिए FM 107।

0: आज भी सुनिए ये गाना और किसी की भी आवाज में सुनिए यार, अच्छा ही लगता है।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
0: तो भाई ये थे नितिन पाली, जिनकी आवाज में सुना अपने नीले नीले अंबर पर, और किशोर दा की आवाज में तो ये गाना मशहूर है ही। उसके अलावा और भी मेरे ख्याल में आरटीओ दसियो सिंह ने गाया ये गाना। तो आज बात हमारे साथ हो रही है उस्तादों की, और आज खासम खास दिन है क्योंकि आज वर्ल्ड टीचर्स डे है। तो उसके खास उसी की मुनासबत से आज हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। नाजिया जी, नाजिया आपने नहीं बताया आपको अपनी कौन सी टीचर याद हैं या कुछ ऐसी बात।
2: मुझे तो बहुत सारी टीचर्स मेरी याद हैं जिन्होंने बहुत कुछ सिखाया।
0: नहीं नहीं, याद तो मुझे भी हैं, कभी गाल की तरफ देखता हूँ तो याद आते हैं, कभी कान की तरफ देखता हूँ तो याद आते हैं, उंगलियों में उंगलियां देखता हूँ, स्केल इसके बीच में फंसाए गए थे वो, तो ऐसे तो बहुत याद आते हैं।
2: पेंसिल आपके बीच में फंसा कर ट्विस्ट किया,
0: पेंसिल टूट जाया करती थी ना, तो स्केल ज्यादा अच्छा रहता था ताकि वो सख्त भी रहे।
2: वुडन वाला चलता था वो,
0: हाँ वही लकड़ी वाला, लकड़ी वाला, बाकी वो स्टील वाला तो कहीं और छपने के काम आता था।
2: अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर भी है, फिर हम अपना भी बताएंगे।
0: हेलो
2: हेलो,
3: अस्सलाम
0: वालेकुम। जी कौन है हमारे साथ?
3: अलहमदुल्ला
0: मुबशर भाई, अहलन वसहलन, कैसे हैं मुबशर साहब?
3: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं आप कैसे हैं?
0: मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। नादिया की खैरियत नहीं पूछेंगे आप, पूछ लीजिए वरना मैं घर भी जाना है मुझे।
3: नहीं, मैं अभी आ
2: रहा
3: था उस तरफ लेकर, साथ ही आपने बोल दिया कि आप खैरियत नहीं
2: पूछेंगे। हाँ हाँ हाँ, वो बेचारे आ ही रहे थे। जरूर है खैरियत से
0: जी मुबशर भाई, तो क्या खास है आज आपके पास टीचर्स डे के हवाले से?
3: मैं आपका शो तो रोज सुनता हूँ, बस बैठ के हंसता रहता हूँ, कॉल नहीं करता, लेकिन आज तो मेरे से रहा नहीं गया, क्या टीचर्स डे है तो आज तो कॉल करूंगा ना।
2: नाइस, यानी कोई बहुत अच्छा किस्सा आप शेयर करने वाले हैं।
0: खुद भी टीचर
3: है, किस्से तो बहुत सारे हैं, मैं किस्से सुनाऊं तो ये आई थिंक जो बीच में रह गया ये किस्सों में खत्म हो जाएंगे, इस तरह बहुत सारे हैं। लेकिन मैं एक बात करूंगा कि भाई पढ़ाई में तो मैं अच्छा नहीं था।
2: अच्छा?
3: सब नहीं देखते होते, सब अच्छे होते हैं, ये मसला नहीं है। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा कि जितना मैं बिगड़ा हुआ था ना, मुझे मेरे टीचर ने सीखा भी किया है और बहुत रिस्पेक्ट भी है उनकी। और एक चीज मैं अक्सर अपने दोस्तों के साथ होता हूँ, ये मेरे पुराने जो क्लासमेट थे मैं उनके साथ होता

0: शर्मा के या वो साइड पे हो जाते हैं कि भाई हमें मतलब शर्माने से वो बुलाते नहीं है टीचर को, तो ये चीज बहुत होती है कि आप ये चीज नहीं करनी चाहिए। आप जब टीचर बहुत आपका काम बनता है, आप दुनिया ध्यान के सारे काम वहीं पे छोड़ो और पहले टीचर, बाकी सारी चीजें बाद में, चाहे वो एक यंग टीचर है, चाहे वो उन्होंने अपनी जिंदगी गुजार दी है या चाहे जैसे भी है, लेकिन टीचर्स वो टीचर है, उन्होंने आपको बहुत आगे तक पहुंचाया है पढ़ाई में ना से, या क्योंकि पढ़ाई में तो टीचर का पार्ट नहीं है, वो तो हमारा खुद का पार्ट, हम खुद पढ़े तो पढ़े, ना पढ़े तो ना पढ़े,
1: सही है।
0: लेकिन ये है कि अगर टीचर इंसान बना दे तो वो ज्यादा अच्छी बात है मेरे ख्याल से। तो
2: क्या बात है यार, बहुत अच्छी बात और बड़ा ही अच्छा मैसेज आपका, और हकीकत है जो भी बात आपने कही। अल्लाह ताला खुश रखे तमाम उस्तादों को और तमाम उस्तानियों को भी, और इसी तरीके से आगे भी वो जो खिदमत कर रहे हैं हम उनको सराहते रहें और उनसे सीखते रहें और उनकी इज्जत करते रहें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया जी।
0: एक चीज में और शामिल करना चाहूंगा, क्योंकि मैं बिलासपुर पाकिस्तान गया हुआ था, तो जो मेरा हाई स्कूल था जिसमें मैंने मैट्रिक मैंने क्लियर की थी, मैं स्पेशल अपने स्कूल गया और मैं जाकर अपने सारे टीचर से मिला जो नहीं थे वहाँ पे टीचर थे, फिर मैं स्पेशल जहाँ पे मेरे से हो सका मैं उन सबसे मिला जाके।
2: वेरी गुड।
0: ये चीज मैं अगर ये बताने का ये मकसद है कि भाई सबको ये चीज कोशिश करना चाहिए, जिनके हयात है ठीक है, जिनके नहीं है उनके लिए मकसद की दुआ करनी चाहिए,
2: लेकिन
0: जिनके हयात है उनको तो लाजमी जाना ही चाहिए कि नहीं, क्योंकि उन्होंने आपको अपनी अपनी जिंदगी के बेशक 2 साल दिए होंगे लेकिन वो आपकी पूरी जिंदगी का सबक होगा।
2: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए मुबशर भाई।
1: बहुत ही खूबसूरत बात, जबरदस्त।
2: थैंक यू सो वेरी मच
1: फॉर योर कॉल। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।
2: अल्लाह हाफिज। और अब थोड़े से मैसेजेस हमारे पास, पहले वो पढ़ लेते हैं। नाजिया जी,
1: हाँ जी,
2: कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
1: वालेकुम अस्सलाम।
2: हिशाम है हमारे साथ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तौफीक भाई हमारे साथ, कहते हैं सरवर नादिया अस्सलाम वालेकुम तौफीक अल मकरा से। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ये इन्होंने कुछ लिख के मिटा दिया, रो क्या नाम लिखा भाई, मुझे तो रोगी समझ में आ रहा है। बहरहाल क्या लिख के मिटा दिया आपने, कही देते दिल की बात हमसे। यूसुफ भाई का मैसेज है, सलाम कहते हैं, गुड आफ्टरनून कहते हैं और सबका वेलकम करते हैं, मंडे की भी मुबारकबाद देते हैं और कहते हैं हैप्पी वर्ल्ड टीचर्स डे टू ऑल। स्कूल डेज में हाँ एक टीचर थी, उनका नाम अमजद अली साहब था। उनके अच्छा। बाल बड़े थे और एक्चुअली में चोटी होती थी तो हम चोटी वाले टीचर कहते थे, जस्ट टू रेफर हिम बट नॉट एज टीजिंग। वो इंग्लिश सब्जेक्ट लेते थे, बहुत ही सॉफ्ट एंड पोलाइट मैनर्स थे, हमेशा स्माइलिंग करते रहते थे, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उन्हें मगफरत, अच्छा नहीं रहे वो अब, अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए और जन्नत में आला मकाम दे, आमीन। टीचर्स की बात चली तो मुझे ये टीचर याद आ गए, यूसुफ भाई कहते हैं। अच्छी बात है, याद कर रहे हैं।
1: जब टीचर्स की बात हो, कौन सा टीचर हमारे जहन में सबसे पहले आता है? अच्छा, ज्यादातर लोगों ने जब कहा ना कि जिन्होंने मारा, मुझे भी वो अपने प्रकाश सर याद आए।
2: पिटी
1: नहीं, मैं तो नहीं पिटी, लेकिन औरों को मैंने देखा बहुत बुरी बुरी तरह।
2: मैंने कहा यार इकबाल पिटाई, वो भी यहाँ पर बैठ के, नादिया तो कर ही नहीं सकती।
1: नहीं मेरे तो काम अब सब टाइम पे,
2: माशाल्लाह मरम्मत तो आपकी होती रहती है भले ही ऑफिस हो या घर हो। भाई आप मुझे टाइम दे दो एक बार बस, आसिफ भाई कहते हैं।
1: ये पैसे और टाइम दो चीजें नहीं,
2: भाई साहब हम भी खड़े हैं लाइन में, हमें भी कबूल कर लीजिए और बुला लीजिए, क्यों नहीं बुला रहे हो, दावत तो दीजिए, कितना तड़पाओगे, कब तक सताओगे। आसिफ भाई किसने दी है दावत, किसको दी है दावत?
1: मांग रहे हैं।
2: मुबीन बुखारी बगदादी साहब सबको सलाम कहते हैं, वालेकुम सलाम कहते हैं तमाम लिसनर को और गुड आफ्टरनून भी सबको कहते हैं। मुबीन साहब आपका भी कोई किस्सा होगा उस्तादों का, सुनाइए हमें बताइए।
1: बल्कि आप खुद उस्ताद,
2: हाँ आप खुद भी टीचर हैं,
1: बड़ा टीचर
2: कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, हमारी हमारे दोस्त हैं वो खास कर मेरे ज्यादा दोस्ती। अस्सलाम वालेकुम सर, हमारे मैं पढ़ नहीं पा रहा क्योंकि मैं पढ़ना नहीं चाह रहा हूँ कि मैं कुछ और पढ़ दूँ। अरबाज खान है, अरबाज भाई दोबारा लिखो क्या कहना चाहते हो। ओके बढ़ते हैं आगे। मोहम्मद शहबाज हैं, अस्सलाम वालेकुम सरवर एंड नाजिया, हमेशा आपका आपकी बातें हमेशा अच्छी होती हैं, टॉपिक अच्छे होते हैं और सबको टीचर्स डे विश कर रहे हैं भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। फरमान भाई हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई, आप तो खुद टीचर हो, आपको किसी टीचर का जरूरत नहीं है। नाजिया

0: फरमान भाई कह सके ना यार, देखिए आप
1: कौन से वाले फरमान खान,
0: उस्ताद का दर्जा दिया जा रहा है, मेरे ख्याल में वही होंगे, ऐसी बात तो वही थी अगर मुझे उस्ताद मान लें तो।
1: अच्छा एक हमारे साथ कॉलर यहाँ
0: जुड़ गए, हम सलाम
2: सर कैसे हैं, उवैस बात कर रहा हूँ।
0: उवैस
2: जी जी
0: कैसे हैं उवैस भाई,
2: जी अल्लाह करे, मैं पहली दफा कॉल कर रहा हूँ और मैंने कहा टीचर्स डे तो
0: अच्छा
2: कर लूँ क्योंकि मैं खुद भी एक टीचर हूँ।
0: यस यार यार, तालियां भाई तालियां, वेलकम भाई उवैस भाई, बहुत ही अच्छा
1: साल था।
0: अच्छा
2: असल में एक्चुअली बस व्हाइल ट्रैवलिंग व्हेन आई गो बैक टू पिक माय वाइफ, मैं उनसे उस दौरान ये जो आधा घंटा है ना, दो बजे हमारी छुट्टी होती है, तो इट्स लाइक लिसनिंग टू यू गाइस एंड इट्स लाइक एंजॉयिंग each and every moment of it.
0: तो देखिए आप बच्चों को अब आज के आइंदा अगर वो इधर उधर की बातें करें जैसे हम करते हैं तो डांटिएगा मत, कहीं ना कहीं काम आ जाती है वैसे भाई वो वाली बातें।
2: तो आज डांटने वाला जो सिलसिला है ना, वो मेरी बेगम भी टीचर है।
0: अच्छा ओहो,
2: स्कूल में वो टीचर्स पर रोक जमाती है और घर आके जो है ना
0: आप स्टूडेंट बन जाते हैं, मैं समझ सकता हूँ वैस भाई मैं समझ सकता हूँ।
2: चलो भाई और आप दोनों के लिए बहुत बहुत जो है ना, मैं आप लोग जो मुस्कुराहटे बिखेर रहे हैं थ्रू दिस प्रोग्राम, बीच में काफी अर्सा मैं सुनता रहा, पता नहीं आप लोग कहाँ चले गए थे, वो बीच में कोई गैप आ गया था और लास्ट के बाद शायद तो मिस किया मैंने आप लोगों को।
0: अरे सर ये तो आपकी मोहब्बत है और सर यकीन जानिए कि आप आज जुड़े, आपने हमारा हमारे प्रोग्राम में चार नहीं छह चांद लगाए और बहुत ही अच्छा लगा।
2: मुझे पता है मुख्तसर बात होती है, 26-27 मिनट पे सरवर भाई को जो है ना वो घड़ी दिखना शुरू हो जाती है। बारकल्ला आप लोगों को, अल्लाह ताला बहुत खुश रखे, आप लोग खुशियां बखेर रहे हैं, अच्छे
0: बहुत बहुत शुक्रिया
1: सर। हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं आप और आपकी वाइफ कर रहे हैं एज अ टीचर, आप दोनों को सैल्यूट है।
0: और यह है कि हम आपसे और क्या ही जाने,
2: मैं कराची से हूँ और अच्छा। आप सबको सलाम सुनने वालों को।
0: अच्छा कराची में कहाँ से रुकी रुकी रुकी सर, रुकी है कराची में किधर से
1: वहाँ तक ले जाएंगे,
2: आप डाखाना में ला लेंगे, मुझे पता है आप डायरेक्ट डाखाने तक पहुँचेंगे। मोहम्मद अली जिन्ना का बता रहे उसके करीब है ना मेरा।
0: ओहो अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, मैं गुलशन इकबाल और कैंट के एरिया में और इस तरफ ज्यादा मतलब जी जी गुलशन इकबाल ब्लॉक बी में
1: उसी से बाहर कर दिए गए।
2: अच्छा जी अच्छा, मैं
0: बता उस्ताद है हमारे साथ, इनसे तो मजाक मत करो।
2: मेरे मेरे जो अबा उस्ताद है वो मतलब इंडिया से माइग्रेटेड है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो मतलब हम वही है उर्दू बोलने वाले जो लोग है ना अभी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कराची में सेटल्ड हूँ लेकिन हमारी अभी हैदराबाद है, तो बेसिकली
0: भाई थे
2: मेरे दादा और दादी वगैरह सब दे सेटल्ड इन इन
0: हम यकीन जानिए इतनी खुशी हुई कि हम इजहार नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आज का मौजू ऐसा है कि हम ज्यादा हंसी मजाक भी नहीं कर पा रहे हैं, बट आपकी आमद से हमें यकीन जानिए बहुत अच्छा लगा,
1: बहुत अच्छा लगा वाकई। हम चाह रहे थे कोई टीचर हमारे साथ कोई मेंटर हमारे साथ जुड़े
0: और मैम मैम को भी हमारी तरफ से मुबारकबाद दीजिएगा जरूर अगर वो हमें सुन भी रही है तो।
2: वाइस प्रिंसिपल वो बच्चों को पढ़ाती नहीं है लेकिन रोज
1: जमाते
2: हैं। हमें 16 साल हो गए शादी को, तो
0: प्रैक्टिस उसकी अच्छी। टीचर टीचर खेल रहे हैं आप लोग, इंशाल्लाह ताला खैर होगी, अल्लाह ताला खुश रखे भाई आप लोग को। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
1: आई थिंक हमारे साथ आज कुछ नए कॉलर्स भी जुड़े हैं एंड वी आर रियली रियली यू नो हैप्पी कि फाइनली हमारे साथ एक
0: टीचर। कॉलर तो रोज नए होते हैं, ये जो हमारे माशाल्लाह उन्होंने कुछ ऐसा हिसाब लगा लिया, उनको पता है
1: पहली बार हमें
0: कॉल किस वक्त उठेगी, तो ये भी हमारे लिसनर्स ने ना कुछ हिसाब किताब बना लिया
1: है। ये इत्तेफाक था कि आज उनकी कॉल थी, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम हमें कॉल।
3: हेलो
0: हाय
3: जी सरवर भाई, अस्सलाम वालेकुम।
0: हम सलाम व रहमतुल्लाह जी, कौन है हमारे साथ
3: जी? बोलिए खरिया ना सब बताएं।
0: बस बिल्कुल बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं क्या हालचाल है, कहाँ पे हैं अभी, कहाँ पहुँचे?
3: बढ़िया, अभी अभी मैं रास्ते में हूँ।
0: अच्छा रास्ते में किधर किधर पहुँच गए
3: जी,
0: किधर हैं अभी?
3: गर्राफा।
0: अच्छा अच्छा, तो आप क्या इस वक्त छुट्टी हुई है स्कूल से और
3: नहीं मैं छुट्टी वाला काम नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खुद का काम है।
0: अच्छा अच्छा, मैं समझा शायद उस्ताद हैं और छुट्टी करवा के आ रहे हैं किसी की या करके आ रहे हैं।
3: उस्ताद वाला आज टॉपिक था तो मैं इसलिए बात कर रहा था कि हमारी जो उस्ताद थी, हमारी वालदा खुद है, खुद टीचर नहीं थी, यानी हम सारे भाइयों को खुद पढ़ाती थी।
1: अच्छा अच्छा, वैसे आप कह रहे हैं। हाँ, वैसे तो पेरेंट्स तो हमारे पहले
3: हमारे टाइम में कलम कॉपी नहीं हुआ करता था, हमारे जमाने में हुआ करता था तख्ती।
0: अच्छा, कौन से जमाने की बात है?
1: 1950।
0: कब की, मतलब आप माशाल्लाह, क्या उम्र आपकी जान सकता हूँ मैं?
3: नहीं, 52।
0: अच्छा माशाल्लाह, फिर तो माशाल्लाह, अभी की बात हो रही है, तो अभी कल परसों की
1: तख्ती तो लाइक बहुत पुरानी बात होगी।
0: हाँ, मगर जाहिर बात है, जहाँ से भी आए हैं और वालदा को अपनी क्रेडिट देते हैं और उन्होंने इतनी मेहनत करी है।
3: और उस जमाने में हम लोग स्कूल नहीं जाते थे, इसलिए हम लोग को स्कूल नहीं जा पाए, इसलिए उस टाइम का जो हमारा जो प्रॉब्लम था घर का, उसकी गरीबी, और हमारी वालदा हमें खुद पढ़ाती थी,
0: मगर उन्होंने जो काम अंजाम दिया, आज माशाल्लाह आप लोग यहाँ हैं, आप दुनिया के।
3: और ये चीज मुझे ये समझ में आया कि इली में ऐसी चीजें आप किसी से भी आंख में आंख डाल के आप बातें कर सकते हैं।
0: आप दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह में हैं, तो जाहिर है आप खुद सोचिए कि माशाल्लाह उनकी जो मेहनत है।
1: और एक लाइन जो उन्होंने कहा ना कि इल्म एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपके अंदर एक एकदम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है, आंख में आंख डाल के आप बात कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी लाइन आपकी, और ये आपने बिल्कुल सच कहा, बहुत ही अच्छी बात,
0: बहुत बहुत शुक्रिया।
3: और यही वजह है जो आज हम लोग चार भाई हैं, सब लोग अलग हो गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने हिस्से में सिर्फ माँ को लिया।
0: वाह वाह,
1: मेरे हिस्से आई माँ आई।
0: वाह वाह वाह, क्या बात है।
1: बशीर बदर का था ना।
0: अल्लाह ताला खुश रखे और आप सब भी।
3: और मैं, हम लोगों ने कभी स्कूल और मदरसे का मुंह नहीं देखा, बस माँ खाना बनाती थी लड़कियों पे, और कुछ गलती होता तो बेलन से मार देना, कभी वो कोई चीज से मार देना, कभी लकड़ी से ही मार देना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने ज्यादा तालीम नहीं ली।
1: अच्छा
3: जी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितना हमने पढ़ा कि हमने ये सीख लिया कि दुनिया में हमें कैसे जीना है।
0: क्या नाम बताया भाई आपने अपना?
3: मेरा नाम मोहम्मद शमशाद।
0: शमशाद भाई, आप के जो अखलाक है ना, यकीन जानिए, लोग बड़े बड़े, माजरत के साथ कह रहा हूँ, बड़े बड़े डॉक्टर और पीएचडी होल्डर और बड़े बड़े लोग पढ़ लिख जाते हैं, बड़े बन जाते हैं, बट ये अखलाक जो हैं, ये जब वालदेन की तरफ से आते हैं तो उनकी अलग बात होती है, और जो दिखते हैं, जो आपकी बात में और बातों में शमशाद भाई नज़र भी आ रही है और समझ में भी आ रही है, तो बहुत बहुत
3: मैं तो अल्लाह का लाख लाख बार मैं शुक्रगुजार हूँ कि जो आदमी यहाँ लेबर पे आया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह माँ की दुआ से आज हमारे पास अपनी खुद की कंपनी।
1: माशाल्लाह माशाल्लाह, ये कहते हैं अचीवमेंट।
0: वाह वाह, अल्लाह ताला आपको मुबारक करे भाई।
3: अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक गांव पे एक सिस्टम बनाया हुआ, जो भी यतीम बच्चे हैं उसको मैं पढ़ाता हूँ, उसका खर्चा
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा किया कि आप तशरीफ लाए और हमसे बात करी शमशाद भाई।
1: आप एक्चुअल में आप भी टीचर,
0: आप टीचर हैं,
1: अम्मा के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे जो बेचारे पढ़ नहीं पा रहे हैं उन्हें आप जो है
3: एजुकेशन की वजह से बहुत पीछे हैं।
0: बहुत खुशी,
3: मेरी ये कोशिश है लोगों को ये इल्म दिया जाए, और जिस जगह पे हूँ कितने ऐसे लोग हैं तो यहाँ पे लोग बोलते रहे यार तुम्हारे पास ऐसी पुरानी गाड़ी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कितने लोग इसके लिए भी तरसते हैं।
1: सही बात है,
3: शायद हमारे पास
1: फर्क नहीं पड़ता पुरानी
3: तो
1: नई,
3: उस पर शुक्र अदा करें सबसे पहले।
1: सही, क्या समझा? बहुत अच्छा
3: जी।
1: और जो काम आप कर रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा काम है। जैसे सत्य जा रही है, कितने लोगों को आप नौकरी लगवाएंगे, कितने लोग स्किल होंगे आपके थ्रू, कितना सवाब आपको मिलेगा, इंशाल्लाह मिलता ही रहेगा
3: इंशाल्लाह।
1: तो ये आपका काम।
3: मैं सरवर भाई, मेरे दिमाग में बस एक बात ये है कि ये दुनिया हमारा मदरसा, हमने यहाँ एग्जाम देना है, एग्जाम हमारा सही आया तो क़यामत के दिन हमें वो मुकाम मिल जाएगा
0: इंशाल्लाह ताला भाई। अल्लाह ताला खैर करेगा और इंशाल्लाह हम सब कामयाब होंगे इसी तरीके से, अपने आमाल के ख्याल करते हुए।
3: काफी लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि काफी दुनिया, मैंने हर इंसान के गांव में दो चार पांच बच्चे ऐसे यतीम होते हैं जो एक कलम के लिए, एक पेन के लिए, किताब के लिए तरसते हैं। आप अपना कम से कम 1% भी आप निकालेंगे ना, उनको आप देंगे ना, तो वो उनके चेहरे पे जो खुशी होगी ना, वो अगर 50,000 का पेन अगर आप अपने बच्चे को देते हैं ना, वो खुशी आपके अंदर नजर नहीं आएगी। अगर उसको 1 रुपए का पेन देते हैं तो
0: बहुत अच्छी बात है यार, बहुत।
1: 1 रुपए के पेन से वो कितना लिखेगा, क्या कमाल करेगा, अपनी जिंदगी जो है अपनी किस्मत बदल सकता है। तो ये आपका बहुत अच्छा, तो
0: बहुत अच्छा लगा शमशाद भाई। वक्त कम होता है, वरना यकीन जानिए आपसे और भी जानते। इंशाल्लाह आप आगे भी तशरीफ लाइएगा,
3: इंशाल्लाह कल फिर बात होगी।
0: जरूर जरूर,
3: हमारी नहीं होती थी, मैं तो यहाँ पे 2006 से हूँ।
0: इंशाल्लाह बाकी कोशिश करिएगा,
3: कुछ दिया है
0: अल्लाह ताला उसमें और इजाफा करे और बरकत दे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया,
3: याद रखे
0: आप भी, आप भी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: कोशिश ये
0: है कि एक कॉल और ले लें, एक कॉल और ले लें,
1: देन लेट्स कंक्लूड। हेलो
4: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कौन है हमारे साथ?
4: जी मेरा नाम रियाज है।
1: ओ रियाज जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? हम दोनों लोग खैरियत से हैं, बिल्कुल ठीक हैं। आज टीचर्स के हवाले से बात हो रही है, तो कुछ कहना चाहेंगे? कुछ याद आ रहे हैं कोई टीचर आपको खास?
4: जी जी जी बिल्कुल, इसलिए मैं ट्राई कर रहा था टाइम।

0: बिल्डिंग का जैसे एक सुतून होता है, तो वो उस्ताद ही है। तो उस्ताद में मेरे कहने का मतलब ये है कि माशरे में उस्ताद का मुकाम एक बहुत बड़े सर्जन, डॉक्टर वगैरह, इन सब पीएचडी सबसे ऊंचा मुकाम जो है ना वो उस्ताद का है। और जिस माशरे ने उस्ताद की कदर की वो माशरे हमेशा आगे जाते हैं। और अशफाक अहमद साहब की एक बात मुझे याद आ रही है कि उसको एक जब ये मतलब कुछ बात हो गई थी और उसको अदालत में पेश होना पड़ा था, एक मुल्क का नाम लिखा था लेकिन मैं अभी फिलहाल भूल रहा हूँ। तो उसके जज को जब पता चला कि एक उस्ताद को अदालत में, मतलब उस्ताद अदालत में लाया है किसी मामले में, तो वो अपनी जगह से खड़े हो गए और ऑर्डर दिया कि आप लोगों की जुर्रत कैसे हो गई ये एक उस्ताद को वहां से यहां तक लाने के लिए। वो एक मामला छोटा था, बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी वो उस्ताद भी एहतराम और वो उसमें इतना खफा और गुस्सा हो गए कि आप लोगों की जुर्रत कैसे हुई एक उस्ताद को उधर से यहाँ अदालत में लाने के लिए। और मेरे कहने का मतलब ये है कि हमेशा
1: उस्ताद का एहतराम करें और उनकी इज्जत जरूर करें। बेशक बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जो भी है
2: आज का दिन बड़ा खास रहा और बस हम दोनों जाते जाते अपने सभी लिसनर्स से यही कहेंगे कि आप सब कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी तरह के मेंटोर हैं, रहेंगे। सो थैंक यू, थैंक यू टीचर्स। आप नहीं होते तो शायद हम यहाँ नहीं होते। सो हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल द वंडरफुल टीचर्स अराउंड द वर्ल्ड।
1: उस्ताद का एहतराम कीजिए, उनकी इज्जत कीजिए और इंशाल्लाह ताला आप देखिए कैसे दुनिया आपकी इज्जत करेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह ताला कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। सुनते और देखते रहिए FM 107।
2: दिल से देसी।

0: नाम से वैसे भी हर जगह मौजूद है. प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज गेट इन टच विद अस. ठीक है, आते हैं जरा मुद्दे की बात पे. तीन वेबसाइट आपको बता रहा हूँ, बड़े काम की. नंबर वन ऑन द लिस्ट, वेबसाइट के नाम है paperanimator.com. पेपर कागज वाला, PAPER एनिमेटर, ANIMATOR animator.com. जब इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो उसके बाद आपको बड़ा ही कमाल का एनिमेशन नजर आएगा. कागज एकदम पलट रहे हैं तेजी से और एक नाम पे फोकस कर रहे हैं. आपने देखा है वो हाई डिटेक्टिव वाले साइकोलॉजिकल मूवीज में अक्सर दिखाया जाता है, एकदम से एक सीन आता है, कैमरा पैन कर रहा है, धीरे धीरे क्लोजली जा रहा है कागज पे, कागज पलट रहे हैं और एक नाम पे फोकस हो रहा है, उस टाइप का एनिमेशन आपको मिलेगा. इसमें ब्लर इफेक्ट क्या चाहते हैं सब कुछ आप देख सकते हैं और बिना वाटर मार्क के उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं. सो यू कैन यूज इट इन अदर प्लेसेस. बहुत कमाल ही, बहुत कूल चीज है, जरा सी लेकिन इफेक्टिव चीज. ओके, बढ़ते हैं अगली वेबसाइट की तरफ. अगली वेबसाइट का नाम है gamma.app, यानी ऐप. सो GAMMA gamma.app. इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, फिर भी याद दिला देता हूं जिन्हें शायद नहीं पता. इसके जरिए आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं. तो क्या होगा, आप गामा ऐप को चैट जीपीटी से कनेक्ट कर लीजिएगा, हर सेटिंग्स में जाके समझ में जाएगा, और ना समझ में आए तो वो प्रोसेस फॉलो कीजिएगा जो आपको ये टाइप करने से मिल जाएगा, कनेक्ट गामा ऐप टू चैट जीपीटी, सामने पूरा प्रोसेस हो जाएगा. बट वेन यू कनेक्ट बोथ ऑफ देम टुगेदर, उसके बाद आप जो कॉन्वर्सेशन करेंगे, जो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए देंगे, बहुत खूबसूरती से आपके सामने प्रेजेंटेशन आएगी. आई एम नॉट इन टू प्रेजेंटेशन, हमारा काम नहीं होता प्रेजेंटेशन का, लेकिन मैंने ट्राई किया है और क्या खूबसूरत प्रेजेंटेशन है. इट एक्चुअली आइडेंटिफाई कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या और उसके बेसिस पे एनालिसिस करके. ऐसा नहीं है कि खामखा में तो गाड़ी की बात कर रहे हैं, चलो मैं थोड़ा सा ब्लैक और रेड कलर यूज कर लूँ, थोड़ा डार्क, नहीं ऐसा कुछ नहीं. इट विल अंडरस्टैंड कि आपको चाहिए क्या, एंड अकॉर्डिंगली उसके वो टेम्पलेट सेलेक्ट करेगा और फिर आपको फॉन्ट वॉन्ट सब दिखाएगा. एंड अमेजिंग, एंड यू कैन ऑब्वियसली एडिट एंड ऑमिट लेटर ऑन. तो ट्राई करके देखिएगा, यू विल लव इट. gamma.app. बढ़ते हैं अगली वेबसाइट की तरफ. अगली वेबसाइट का नाम है bestofai.com. BEST bestofai.com. तो bestofai.com ये वेबसाइट पे आप जाएंगे तो जैसे कि नाम में है, द बेस्ट ऑफ ऑल द AIs यू विल गेट टू सी. अब आप चूज कर लीजिएगा आपको किस लिए चाहिए AI, क्या करना है, क्या काम नहीं करना है, कौन सा आपको पसंद है, कौन सा नहीं पसंद है, कौन से AI का ऑल्टरनेट आप ढूंढ रहे हैं, सब आपको एक ही जगह पे इकट्ठे मिल जाएगा. एंड कमाल की चीज़ यार, मुझे बहुत पसंद आया, आई लव्ड इट, बिकॉज आई फील ऐसी चीज़ें बड़ी जरूरी होती हैं जहाँ पे आदमी एक जगह बैठ के एक ही छत के नीचे सब मिल जाए. तो ये जरूर ट्राई कीजिएगा. ठीक है, अब बढ़ते हैं इन टेक न्यूज, क्योंकि खबरें बड़ी कमाल. तो जो पहली खबर आई है वो आई है टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की तरफ से. तो कहा ही जा रहा है कि अभी आने वाले वक्त में, कहा क्या जा रहा है, चीज़ें शुरू हो चुकी हैं, टेस्टिंग शुरू हो चुकी हैं. तो अराउंड द ग्लोब आप देखेंगे कि ग्रीन हाउस के ऊपर काम चल रहा है, कतर भी सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रहा है. इस बीच रोबोट डॉग्स कुछ जगहों पर इंक्लूड कर दिए गए हैं और ये इनको बिल्कुल सिक्योरिटी टाइट करने के बाद कहा गया है कि जो ये रोबोट डॉग्स होंगे ये खेती बाड़ी भी करेंगे, सिर्फ रखवाली नहीं करेंगे, सिक्योरिटी के लिए नहीं है, ये खेती बाड़ी में भी मदद करेंगे किसानों की. तो अभी टेस्टिंग पीरियड से थोड़ा ऊपर आ चुका है मामला. अगर मैं किसान होता तो क्या मैं इस पर भरोसा करता, एब्सोल्युटली नो. मैं अभी शुरुआत में तो नहीं कर पाता, बट क्या अगर इसका डेमो बढ़िया गया और ये साबित कर पाया तो इससे बढ़िया ऑप्शन कुछ भी नहीं है. मुझे अभी ये बताना मुश्किल हो रहा है कि ये बात अच्छी है कि बुरी है, आई डोंट नो. बट जो है सो है, एंड काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में पढ़ेंगे तो जानेंगे रोबोट डॉग्स क्या क्या करते हैं. भाई प्रॉपर खेती बाड़ी में मदद कर रहे हैं, दिस इज ह्यूज मैन. एनीवे, ये थी टेक अपडेट. आप भी बताइएगा आपको क्या कहना है. मिलते हैं अगली अपडेट में, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर टेक अपडेट. टेक अपडेट.
1: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी. स्कैम अलर्ट.
2: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. FM 107 पे इस्तकबाल है आप सभी का. मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर हर रोज एक नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में मैं बात करता हूं और आपको आगाह करता हूं कि आप किस तरह से इन फ्रॉड से बच सकते हैं, इन स्कैम से बच सकते हैं. वेल, आज जिस स्कैम के बारे में हम बात करने वाले हैं ये बच्चे और उनके पेरेंट्स के लिए है. ये है टॉयज।

0: स्कैम, ये स्कैम काम कैसे करता है और इन स्कैम से कैसे बचना है इस पर नजर डालें। तो दोस्तों, ये टॉयज स्कैम हमेशा हॉलीडेज या यू नो ऐसे किसी फेस्टिवल, ईद है, बकरीद है या क्रिसमस है, इनकी शॉपिंग के रश और वायरल सोशल मीडिया ट्रेंड्स का फायदा उठाकर किया जाता है। इस फ्रॉड में स्कैमर्स टेम्परेरी ई कॉमर्स स्टोर फ्रंट्स या नकली वेबसाइट्स बनाते हैं, जहां वो साल के सबसे ज्यादा डिमांड वाले और मार्केट में सोल्ड आउट बच्चों के खिलौने ऐड करते हैं। वो SEO का गलत इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का गलत इस्तेमाल करते हैं, ताकि उनकी फेक वेबसाइट सर्च इंजन पर सबसे ऊपर नजर आए। इस वजह से परेशान पेरेंट्स, जो हर हाल में वो खिलौना खरीदना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए ताकि वो बच्चे खुश रहें, उनको ये एड दिखने लगती है और वो वेबसाइट जो अनजान है वो सर्च इंजन पे सबसे ऊपर आती है। और जब सर्च इंजन पे सबसे ऊपर कोई वेबसाइट आती है तो उस पे आसानी से भरोसा किया जा सकता है, लेकिन असल में ये एक जाल है जो स्कैमर्स आपको फंसाने के लिए बुनते हैं। जो लोग इन खूबसूरत और झूठे एड्स के चक्कर में आते हैं, उनका बहुत बड़ा नुकसान होता है। पैसा देने के बाद या तो उन्हें कुछ भी डिलीवर नहीं होता, या फिर उन्हें सस्ते दो नंबर के बेकार या फिर नकली खिलौने मिल जाते हैं, जो बच्चों की हेल्थ और सेफ्टी के रूल्स के खिलाफ होते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि हजारों लोगों के क्रेडिट कार्ड्स की डिटेल्स ये चोर रख लेते हैं, और चोरी करने के बाद ये मलिशियस वेबसाइट हमेशा के लिए परमानेंटली डीएक्टिवेट हो जाती है। तो ऐसे में आपका पैसा तो जाता ही है, प्रोडक्ट आपके पास आया तो वो आपके बच्चों के लिए बहुत खराब निकलता है, उसके अलावा आपके कार्ड की डिटेल्स भी उनके पास चली जाती हैं, और आगे आने वाले वक्त में भी वो आपके डिटेल्स, जो बैंक के कार्ड की डिटेल्स हैं, उनका इस्तेमाल करके आपको फ्रॉड कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के फ्रॉड से बचने के कुछ खास उपाय हैं, खास सॉल्यूशन है, जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, और वो है सिर्फ ट्रस्टेड रिटेलर से ही खरीदें। कोशिश करें कि आप किसी स्टोर में जाके या फिर किसी लोकेशन पे जाके उन टॉयज को खरीदें, है ना, उनको सामने से परखें, जांचें, उसके बाद खरीदें, पेमेंट करें, क्योंकि इससे स्कैम होने की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। तो खिलौने हमेशा मशहूर और ट्रस्टेड वेबसाइट या ऑफिशियल ब्रांड से ही खरीदें या स्टोर से जाकर खरीदें। अगर कोई टॉय हर जगह सोल्ड आउट है और अचानक किसी अनजान साइट पर मिल रहा है तो वो स्कैम हो सकता है। वेबसाइट की एज और रिव्यूज भी चेक करें। किसी भी नई साइट से खरीदने से पहले एक अलग से वेबसाइट होती है जिन पर वेबसाइट कब बनी है, उनकी डिटेल्स क्या है, कहाँ की वो वेबसाइट, वो सब पता चल जाता है। जैसे voice.com, WHOIS.com, इस वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो किसी भी वेबसाइट की डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। अगर वो साइट कुछ ही दिन या हफ्ते पुरानी है तो वहां से शॉपिंग बिल्कुल ना करें और उसको जरा से शक की नजर से जरूर देखें। उसके अलावा क्रेडिट कार्ड या सिक्योर पेमेंट इस्तेमाल करें। हमेशा परचेज के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें। अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाए तो आप बैंक को कॉल करके चार्ज बैक क्लेम कर सकते हैं और अपने पैसे वापस ले सकते हैं। डेबिट कार्ड या डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कभी ना करें। इससे आपके साथ हुए फ्रॉड में आपको सहायता नहीं मिलती, आप दोबारा उस पैसे को वापस नहीं पा सकते। तो दोस्तों, ये था आज का टॉयज स्कैम, जहां पर आपके बच्चों को, आपके पेरेंट्स को इस तरह से फंसाया जाता है, जहां पर फेस्टिवल के जो टॉयज होते हैं या फेस्टिवल की जो चीजें होती हैं उनकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है फेस्टिवल के वक्त पे, और वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होते हैं, और यहां पर आपके साथ स्कैम किया जाता है, आपको पेमेंट करने को कहा जाता है, और फेक वेबसाइट के थ्रू आपको टॉयज भेजे भी जाते हैं, जबकि वो बच्चों के लिए बिल्कुल सेहतमंद नहीं होते, बच्चों के लिए सही नहीं होते। उम्मीद है आपको ये स्कैम के बारे में नॉलेज या इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी कल एक नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में बात करते हुए। दिल से देसी स्कैम अलर्ट।
1: एनीटाइम एनीवेयर।
2: यस, एनीटाइम एनीवेयर।
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107। लॉग इन टू आवर वेबसाइट urduradio.qa और डाउनलोड द ऐप QMC नाउ।

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: یہ دنیا کی زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے, کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے. بس کہیں صبر تو کہیں شکر کی آزمائش ہے. صبر و شکر لازم و ملزوم ہے. جہاں شکر ہو وہیں صبر بھی ہوتا ہے, اسی طرح جہاں صبر آ جائے وہاں شکر بھی آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر و شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام آن FM 107.
3: آپ سن رہے ہیں FM 107.
1: FM 107. دل سے دیسی.
4: Smart money.
1: Welcome to our segment called Smart Money. मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी host नासिया. आज के segment में दोस्तों हम बात करने वाले हैं एक ऐसे subject पर जो हर income level और हर age group के लिए जरूरी है. आज का हमारा बड़ा ही interesting topic है और ये topic है building financial confidence. दोस्तों जब हम financial confidence की बात करते हैं तो हम इसका मतलब अमीर होना निकाल लेते हैं. फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस का मतलब है अपने पैसों के बारे में इन्फॉर्म्ड और कंफर्टेबल डिसीजंस लेना. बहुत से लोग अच्छी इनकम कमाते हैं लेकिन फिर भी फाइनेंशियल स्ट्रेस में रहते हैं, और वहीं कुछ और लोग बड़ी लिमिटेड इनकम के बावजूद भी फाइनेंसिस को बेहतर तरीके से मैनेज कर लेते हैं. यहाँ पे फर्क पैसों का नहीं, कॉन्फिडेंस और

फाइनेंशियल अवेयरनेस का है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस एक दिन में डेवलप नहीं होगा, ये छोटे छोटे फाइनेंशियल हैबिट से बनता है। मिसाल के तौर पे अगर आप हर महीने अपनी इनकम और एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड रखती हैं, तो आपको अंदाजा होता है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। जब आप अपने फाइनेंसेस को समझने लगते हैं तो कॉन्फिडेंस नेचुरली बिल्ट होना शुरू हो जाता है। फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस की पहली सीढ़ी है बजटिंग। अक्सर लोग बजट का नाम सुनकर सोचते हैं कि ये सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस का नाम है। नहीं, असल में बजट आपको कंट्रोल देता है। जब आपको पता हो कि कितने पैसे आ रहे हैं और कितने खर्च हो रहे हैं, तो फाइनेंशियल डिसीजंस लेना आसान हो जाता है। दूसरी जरूरी चीज है सेविंग हैबिट। चाहे अमाउंट छोटी हो या बड़ी, रेगुलर सेविंग्स फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस को मजबूत करती है। जब आपके पास इमरजेंसी फंड होते हैं तो आप अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में घबराते नहीं हैं। मान लीजिए घड़ी खराब हो जाए, गाड़ी खराब हो जाए, या कोई और चीज ऐसी जो महंगी थी और खराब हो गई, या कोई मेडिकल इश्यू आ जाए, या जॉब से रिलेटेड कोई इशू हो जाए, तो ऐसे में आप फाइनेंशियल प्रेशर कम महसूस करते हैं। वही एक और फैक्टर जो फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस देता है वो है आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी या एजुकेशन। बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट्स, लोन, इंश्योरेंस और रिटायरमेंट प्लानिंग के टॉपिक से दूर भागते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये मुश्किल सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन जितना आप सीखते हैं ना, उतना आपका डर कम होता जाता है। नॉलेज कॉन्फिडेंस को जन्म देती है, इसीलिए फाइनेंशियल बुक्स, पॉडकास्ट, आर्टिकल्स और ट्रस्टेड फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सीखना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस का एक और इम्पॉर्टेंट हिस्सा है रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग। दूसरों को देखकर फाइनेंशियल डिसीजंस लेना अक्सर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे मेरे दोस्त ने नई गाड़ी ली, या मेरे दोस्त ने अपने बच्चे का हायर यूनिवर्सिटी में एक महंगी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा दिया, या मेरे रिलेटिव ने फलां जगह इन्वेस्टमेंट कर लिया, उसने कहा तुम भी कर लो। ये सारे डिसीजंस जो हैं बड़े वेग डिसीजंस होते हैं। हर फाइनेंशियल डिसीजन हर एक के लिए सूटेबल नहीं होता। कॉन्फिडेंट लोग कंपैरिजन की बजाय अपने फाइनेंशियल रियलिटी को देखकर फैसला करते हैं। ये आता है अपने पैसों को समझने से, ये आता है प्लानिंग से, ये आता है डिसिप्लिन से, और सबसे बढ़कर ये आता है फाइनेंशियल नॉलेज से। यानी स्मार्ट मनी का आज का हमारा जो पावरफुल लेसन है वो ये है कि फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होगी, बिल्ड की जाएगी, और हर छोटा स्मार्ट डिसीजन आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब लेकर आता है। तो बस अपने पैसों के साथ अपने कॉन्फिडेंस को भी ग्रो कीजिए उसे समझकर। फिलहाल मुझे यानी नासिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो सुनते रहिए FM 106.6।

आज हम बात करेंगे इंडियन क्रिकेट के एक ऐसे नाम की जिन्होंने सिर्फ बल्ले और गेंद से ही नहीं बल्कि ड्रेसिंग रूम में लीडरशिप और कोचिंग के जरिए भी अपना नाम बनाया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 107 और स्पोर्ट्स हाइलाइट के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। आपका अंदाजा सही जा रहा है, इवन मैं ये कहूंगा कि सही है। नाम है रवि शास्त्री। 27 मई 1962 को मुंबई में पैदा होने वाले रवि शास्त्री ने इंडिया के लिए 1981 में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था। शुरुआत में वो लेफ्ट आर्म स्पिनर थे लेकिन वक्त के साथ साथ उन्होंने अपनी बैटिंग को इतना बेहतर बनाया कि वो एक मुकम्मल बैटिंग ऑलराउंडर बन गए। इनिशियली वो 10th डाउन पर आते, धीरे धीरे प्रमोशन। न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका टेस्ट डेब्यू हुआ था 1981 में एंड उन्होंने दिलीप दोषी की जगह ली थी एंड उस टेस्ट मैच में ही इम्प्रेस्ड विथ हिज लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग। लेकिन आगे जाकर पाकिस्तान का दौरा किया 1982 में और वहां पे 7th या 8th पोजीशन में बैटिंग करने आए थे और एक सेंचुरी

स्कोर के धीरे धीरे धीरे रवि शास्त्री को प्रमोट किया गया एंड फाइनली वो ओपनिंग बैट्समैन बने इंडिया के लिए सुनील गावस्कर के साथ भी ओपनिंग किया श्रीकांत के साथ भी ओपनिंग किया एंड धीरे धीरे ही शोड टू द एंटायर क्रिकेटिंग यू नो द फ्रेटर्निटी कि उनके पास ओपनिंग बैट्समैन होने जो वो सलाहियत है वो मौजूद पहले से ही था बट ओनली थिंग वॉज दैट कि मौका नहीं मिल रहा एंड जब उन्होंने अपने कंसिस्टेंसी के जरिए रन्स बनाने लगे तो कप्तान ने भी सोचा टीम मैनेजमेंट भी सोच लिया कि इस बंदे को थोड़ा सा आगे प्रमोट किया जाए तो उन्होंने इंडिया के लिए 80 टेस्ट और 150 ओडीआईज खेले टेस्ट मैच में उनके नाम 3830 रन्स और 151 विकेट्स हैं जबकि ओडीआईज में उन्होंने 3108 रन्स बनाए और 129 विकेट्स हासिल किए रवि शास्त्री के करियर का सबसे यादगार हिस्सा 1983 वर्ल्ड कप भी था इंडिया ने लॉर्ड्स में वेस्ट इंडीज को हराकर पहली मर्तबा वर्ल्ड कप जीता और शास्त्री इस हिस्टोरिक स्क्वाड का हिस्सा था हालांकि वो मैच फाइनल में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया टूर्नामेंट में उन्होंने कुछ मैचेस खेले लेकिन ही वाज नॉट देयर इन द फाइनल स्क्वाड लेकिन शास्त्री के करियर का सबसे बड़ा इंडिविजुअल अचीवमेंट अगर देखा जाए दो साल बाद आया 1985 का वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और इस टूर्नामेंट में इंडिया ने तमाम मैचेस जीते और फाइनल में पाकिस्तान को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की इस टूर्नामेंट में शास्त्री प्रूव दैट ओडीआई में भी वो उतने ही यू नो बेहतर क्रिकेटर है जैसे कि वो टेस्ट मैच में भी उन्होंने इस टूर्नामेंट में 182 रन और 8 विकेट हासिल किए और उन्हें चैंपियन ऑफ चैंपियंस का अवार्ड दिया गया आज भी लोग याद करते हैं कभी कभार वो उस टूर्नामेंट से उस फाइनल के बाद वो तस्वीरात जो है वो आज भी पब्लिश होते हैं सोशल मीडिया पर लोग देखते हैं और याद करते हैं दैट वॉज रवि शास्त्री उनकी परफॉर्मेंस के इनाम में उन्हें एक गाड़ी भी मिली थी 1985 में ही शास्त्री ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक और धमाका किया एक ही ओवर में 6 सिक्सेस का रिकॉर्ड लगाकर गैरी सोवर्स का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था उसको बराबर भी किया और ये उनके ऑलराउंडिंग क्रिकेटिंग टैलेंट का एक और यादगार एग्जांपल था तिलक राज एक बॉलर सौराष्ट्र के थे एंड आई थिंक ही वाज फ्रॉम सौराष्ट्र तिलक राज के एक ओवर पर रवि शास्त्री ने यह रिकॉर्ड कायम किया था 1992 में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद शास्त्री कमेंट्री और क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ गए लेकिन उनकी सबसे इंपॉर्टेंट सेकेंड इनिंग्स कोच के तौर पर आई हर एक्सपर्ट्स उस जमाने में कहते थे कि शास्त्री हैज अ वेरी वेरी यू नो ब्रिलियंट माइंड ऑफ अ क्रिकेटर सोच वाली बात जो है ना वो रवि शास्त्री के अंदर इट वॉज अ वेरी गुड कैप्टन लेकिन उनको मौका ही नहीं मिला बहुत सारे मैचेस में यू नो लीड करने के लिए एक ही टेस्ट मैच में शास्त्री हैड लेड इंडिया 2017 में रवि शास्त्री को जब इंडियन क्रिकेट का हेड कोच अपॉइंट किया गया तब एवरीबॉडी वाज इन अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड कि हाँ अब टीम कुछ करके दिखाएगी उनके कोचिंग टेन्योर में इंडिया ने ओवरसीज टेस्ट क्रिकेट में खास तौर पर अपनी पहचान मजबूत की और 2018 2019 और 2020 2021 में ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीती बहुत बड़ी बात है दोस्तों और दूसरी सीरीज में एडिलेड में सिर्फ 36 रन पर ऑल आउट होने के बाद इंडिया ने जबरदस्त कमबैक करते हुए सीरीज 2-1 से जीती दैट वाज समथिंग इन रवि शास्त्री जो अपने टीम मेंबर्स को वो यू नो वो स्प्रेड कर सकते थे वो शेयर कर सकते थे दैट पेप टॉक्स कुछ तो था उस बंदे में कुछ तो था जो कि इंडियन टीम को इतने परफॉर्मेंस देने के पीछे जो रवि शास्त्री का एक अहम रोल रहा है आज हम बैठ के जब एनालाइज करते तो हमें समझ आता है शास्त्री के टेन्योर में इंडिया 2019 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक पहुंचा और इनॉग्रल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी जगह बनाई 2021 में उनका इंडिया के हेड कोच के तौर पर टेन्योर खत्म हुआ लेकिन रवि शास्त्री की लेगेसी सिर्फ ट्रॉफीज तक महदूद नहीं एक प्लेयर के तौर पर वर्ल्ड कप विनर 1985 के चैंपियन ऑफ चैंपियंस और कोच के तौर पर ओवरसीज टेस्ट विक्ट्रीज का हिस्सा बनकर उन्होंने इंडियन क्रिकेट के एक इम्पॉर्टेंट दौर पर अपनी गहरी छाप छोड़ी रवि शास्त्री की कहानी हमें ये बताती है कि क्रिकेट में सेकेंड इनिंग्स भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट हो सकती है जितनी पहली एक खिलाड़ी जो खुद प्रेशर में खेला बाद में उसी एक्सपीरियंस को कोच बनकर एक नई जनरेशन तक पहुंचाता रहा यदि रवि शास्त्री की कहानी एक ऑलराउंडर एक कमेंटेटर और एक कोच जिनका सफर इंडियन क्रिकेट के कई अहम चैप्टर से जुड़ा रहा उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा अगली बार एक और दिलचस्प स्पोर्ट्स स्टार के साथ हम हाजिर होंगे तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत अल्लाह हाफिज़

0: सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शूव प्लेटफॉर्म पर
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी
3: कुरान सिर्फ एक किताब नहीं ये अल्लाह का कलाम है यह हमें बताता है क्या सही है कौन सा रास्ता बेहतर है और मुश्किल वक्त में कैसे सब्र और उम्मीद रखी जाती है बचपन से हमने कुरान पढ़ा तिलावत की लफ्ज दोहराए लेकिन अक्सर उसे समझने के लिए रुककर सोचा नहीं जबकि कुरान अल्लाह की तरफ से हर मोमिन के लिए खास तोहफा है जो सिर्फ पढ़ा नहीं समझा भी जाना चाहिए इसलिए FM 107 लाया है एक ऐसा शो जहां बच्चे कुरान को बेहतर तरीके से समझ सकें तो सुनिए कुरान फॉर किड्स आरजे तलहा के साथ
4: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु प्यारे बच्चों और तमाम तर गार्जियंस को हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत है तो आपका दोस्त अलहा शफ जमान की तरफ से कबूल कीजिए सलाम तहियात आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कुरान फॉर किड्स इस प्रोग्राम में हम कुरान के हवाले से बात करते हैं अच्छा जी कुरान की बात आ गई तो ये कुरान सिर्फ कोई किताब नहीं ये तो बच्चों आपका दोस्त है दिल का दोस्त बन जाता है बच्चों क्या आपने कभी एक किसी को बहुत याद किया अम्मी को अब्बू को या किसी ऐसे दोस्त को जो आपको बहुत अजीज हो जब हम किसी को याद करते हैं तो हमारा दिल क्या चाहता है कि वो भी हमें याद करे ना तो कुरान हमें एक बहुत ही प्यारी बात बताता है अल्लाह फरमाते हैं तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा फज़कुरूनी अज़कुरकुम सोचो बच्चों रब कायनात ज़मीन व आसमान का मालिक हमें याद करेगा ये कोई हाँ वादा नहीं है अल्लाह का वादा है तो हम अगर दिल से कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह अल्लाहुम्मा सुभान अल्लाह तो अल्लाह हमें नज़रअंदाज नहीं करते बल्कि हमें अपने ख़ास बंदों में याद करते हैं बच्चों अल्लाह को याद करना सिर्फ ज़बान से नहीं दिल से भी होना चाहिए जब दिल और ज़बान दोनों मिलकर अल्लाह को याद करेंगे तो ये सबसे खूबसूरत ज़िक्र होता है ये ज़िक्र अल्लाह की मोहब्बत पैदा करता है दिल को सुकून देता है और हमें शुक्रगुजार बनाता है इसीलिए कुरान में अल्लाह ने पहले फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरकुम और फौरन बाद फरमाया वश्कुरूली मुझे याद भी करो और मेरी नेमतों का शुक्र भी अदा करो क्योंकि शुक्र करने वाला दिल अल्लाह को बहुत पसंद है शुक्र का मतलब है दिल में मानना कि सब नेमतें अल्लाह की हैं जबान से कहना या अल्लाह तेरा शुक्र है अमल से दिखाना अच्छे बच्चे बनकर तो बच्चों आज की आयत हमें ये सिखा

जहां आप ये भी सीख सकें कि आपको आप अपने बच्चों के साथ किस तरह के ना डिस्कशन में जाने हैं, उनके साथ कैसे कैसी बातें करनी है। तो अच्छा तस्वीर कीजिए, एक बच्चा और एक अम्मी है। अब बच्चा कहता है, मैं कभी कभी अकेला महसूस करता हूँ कि अकेला क्या बोरिंग है ये वो। अब अम्मी नरमी से कहती है, हाँ नहीं बेटा, क्या तुम अल्लाह को याद करते हो? बच्चा, जी हाँ मैं अल्लाह को याद करता हूँ, तो इससे किसका क्या मतलब है? बस मैं तो याद करता हूँ, हाँ अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कभी कह लेते हैं, इसका क्या मतलब है? अब अम्मी मुस्करा कर कहती है, हाँ बेटा तुम्हें ये भी याद रखना है कि अल्लाह, अगर तुम अल्लाह को याद करते हो तो अल्लाह भी तुम्हें याद करते हैं। अब बच्चा कहते हैं कि वाकई ऐसा ही है, अल्लाह मुझे याद करते हैं? वो कैसे, कहाँ आपको मिला है? हाँ ये आयत। फिर अम्मी उसे पढ़कर सुनाती है, कुरान में अल्लाह ने खुद फरमाया, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। वो रट्टा लगा कर याद करना यहाँ मकसद नहीं, सिर्फ ज़बान से बोलना भी यहाँ मकसद नहीं, असल जिक्र तो वो है जो दिल से हो, यानी दिल को एहसास हो कि अल्लाह देख रहे हैं, अल्लाह सुन रहे हैं, अल्लाह हमारे साथ हैं। बार बार अपने बच्चों को इसकी तरबियत दीजिए और बताइए कि हाँ अल्लाह देख रहे हैं, अल्लाह सुन रहे हैं, अल्लाह हमारे साथ हैं। उलमा कहते हैं कि जिक्र की असल दिल की बीमारी है, असल ज़बान जो है दिल की तर्जुमान है। बच्चों, सईद इब्ने जुबैर बड़े ताबई थे, आपने उनका नाम सुना होगा। वो कहते हैं, अल्लाह को याद करने का मतलब है अल्लाह की इताअत करना। यानी अगर कोई बहुत ज़्यादा सुभान अल्लाह कहे लेकिन अम्मू या अब्बू की बात ना माने तो असल जिक्र नहीं, और अगर कोई बच्चा कम बोले लेकिन सच बोले, अच्छा काम करे, किसी को तकलीफ न दे तो अल्लाह को याद करने वाला है। इस तरह से जो अल्लाह की इताअत करे वो अल्लाह को याद करता है, चाहे उसकी नमाज कम क्यों ना हो, और जो अल्लाह की नाफरमानी करे वो अल्लाह को भूल जाता है, चाहे वो बहुत इबादत करे। क्योंकि इताअत ये है जिक्र का सबसे अहम मेयार, इताअत ही ना हो फिर बड़े से हाथों में तस्बीह पकड़े हुए काफ़ी जो है ना जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इससे इसका क्या फ़ायदा? और इस तरह बच्चों, अगर तुम्हारा इम्तहान हो, दिल उदास हो, रात को नींद ना आए, तो परेशान मत हो, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ते रहो, यही है अल्लाह को याद करना। देखोगे अच्छी नींद आ जाएगी तुम्हारी। कोशिश भी करना चाहिए उसके साथ साथ, सच बोलना, अम्मी अब्बू की बात मानना, और किसी का दिल न दुखाना, ये सब भी अल्लाह को याद करने की शक्लें हैं, यानी इताअत, अल्लाह की फरमाबरदारी। तो हम अल्लाह को याद करते हैं तो अल्लाह हमें सिर्फ याद ही नहीं करते बल्कि हमें हौसला देते हैं, हमें सुकून देते हैं, हमें अकेला नहीं छोड़ते। बच्चों, अल्लाह करीब है, अल्लाह देख रहे हैं, अल्लाह हमें ताकत देते हैं। तो आज की आयत हमें यही बताती है, अल्लाह को याद करो ज़बान से, दिल से, अमल से, ज़िंदगी से, और जब तुम ऐसा करोगे तो अल्लाह भी तुम्हें अपनी रहमत से याद रखेंगे। फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, यही है फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम का खूबसूरत मतलब। फिर कुछ अल्लाह के नेक बंदे कहते हैं, एक बुज़ुर्ग था अबू उस्मान नहदी रहमतुल्लाह, उन्होंने कहा, मुझे वो लम्हा मालूम है जब अल्लाह हमें याद करते हैं। लोगों ने पूछा, आपको कैसे पता? ये एक सवाल है ना, अगर कोई कहे कि हाँ मुझे पता है कि कब अल्लाह मुझे याद करते हैं, अरे है ये तो बहुत बड़ा सवाल है कि हाँ कैसे, आपको कैसे पता? तो उन्होंने कहा, क्योंकि अल्लाह खुद फरमाते हैं, फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। जब भी हम अल्लाह को याद करेंगे उसी लम्हे अल्लाह भी हमें याद करते हैं। एक और बुज़ुर्ग सिद्दीक़ रहमतुल्लाह कहते हैं, कोई बंदा ऐसा नहीं जो अल्लाह को याद करे और अल्लाह उसे याद न करें। अब सिर्फ ये है, अगर मोमिन याद करे तो अल्लाह उसे रहमत से याद करते हैं, और अगर कोई अल्लाह को भुला दे तो खुद अपने लिए नुकसान चुन लेता है। अच्छा, अब एक दूसरा मसला ये है कि कभी कभार हम अल्लाह को याद करते हैं और बच्चे कह रहे थे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन दिल में तो इत्मीनान नहीं, वो मिठास महसूस नहीं होती। अब अबू उस्मान उसके हवाले से कहते हैं, ऐसे वक्त में अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हारे जिस्म का कम अज़ कम एक हिस्सा अपनी इबादत के लिए इस्तेमाल किया है। ये है वो शऊर कि जब आप फील करने लगे कि हाँ ये भी एक नेमत है, ये भी अल्लाह ने मुझे इबादत का मौका दिया है, तो इसके लिए हम हर वक्त शुक्र अदा करते रहें। अगर हमें नमाज की तौफीक मिली है, अगर हम बाजमात नमाज पढ़ पा रहे हैं, अगर हमारे बच्चे कुरान के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये अल्लाह की नेमत है, हमारी कोई ताकत नहीं है इसमें। अल्लाह अपनी नेमत से, अपने इरादे से, अपने जो है ना रजामंदी से जो चाहता है करता है।

0: Horseshoe platform पर।
1: FM 107 Time Check.
2: चेक चेक चेक टाइम चेक। इस वक्त हमारी स्टूडियो क्लॉक पे हुए हैं शाम के 4:01, यानी इट्स टाइम फॉर,
0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
2: तो यस माय देसी ऑडियंस, क्या हाल चाल है, वेलकम है आप सभी का FM 107 पर द रिक्वेस्ट शो पर। मैं हूँ आपके फॉर अमिता। तो कैसा गुजरा दिन, क्या क्या किया, अभी क्या कर रहे हो? हाँ, वेल आज का द रिक्वेस्ट शो हमारा बड़ा कमाल का होने वाला है, क्योंकि वो कहते हैं ना फिल्मी दुनिया की जो यादगार धुनें होती हैं उनके नाम हम ये एंटायर घंटा करने वाले, यानी कि आज हम प्ले करेंगे सिर्फ और सिर्फ लव सॉन्ग्स, जो कभी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हैं, कभी हमें पुरानी यादों की गलियों में ले जाते हैं, और कभी कभी हम एंटायर फैमिली पूरे परिवार के साथ उन्हें गुनगुनाते हैं। तो वो कौन से खूबसूरत गाने हैं, वो कौन से खूबसूरत लव सॉन्ग्स हैं जो आपकी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। फिर चाहे आप गाड़ी चला रहे हो, ऑफिस से घर लौट रहे हो, चाहे के मज़े ले रहे हो, या एंटायर फैमिली के साथ हमारा FM 107 सुन रहे हो, बताओ बताओ, अपनी रिक्वेस्ट भेजो 6622107 पर, 6622107 पर, अपने नाम के साथ, अपने डेडिकेशन, अपनी स्टोरीज, और मैं आपकी ए फॉर अमिता यहाँ द रिक्वेस्ट शो पर आपकी रिक्वेस्ट प्ले करूँगी। और अभी आज हमारे द रिक्वेस्ट शो का सबसे पहला गाना आपके नाम जो मैं डेडिकेट करने वाली हूँ, दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट्स। और कहते हैं ना कि जब लव सॉन्ग्स की बात होती है तो ये गाना मेरी लिस्ट में टॉप करता है। केके की आवाज में जन्नत फिल्म का ये गाना, जरा सा लेट्स एंजॉय टुगेदर। स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।

0: हाँ जनाब, वेलकम है आप सभी का FM 107 पर. मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता.
1: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ, ओनली ऑन FM 107. दिल से देसी.
0: यस, देसी ऑडियंस, क्या हाल चाल है. वेल, द रिक्वेस्ट शो का पहला गाना, जरा सा इसे सुनकर इतना अच्छा लगा. एंड द मोमेंट आई प्लेड दिस गाना, हर कोई मुझे मैसेज कर रहा है कि अमिता ये वाला गाना हमें भी पसंद है. सो यस, जिन्हें भी जरा सा ये गाना बहुत पसंद था, आई एम श्योर कि आपने पूरा पूरा उसे यहाँ इंजॉय किया है केके की आवाज़ में. और इसी बात पर आज की जो थीम है, दैट इज लव सॉन्ग्स. ठीक है, तो लव सॉन्ग्स कुछ भी हो सकते हैं. वो एक छोटा सा, एक छोटे छोटे जो कहते हैं ना मोमेंट्स होते हैं हमारी लाइफ के, चाहे वो एक हल्का सा मुस्कुराना हो, एक ब्लश मारना हो, एक फील गुड फैक्टर हो. तो यस, वो कौन से गाने हैं जो आपकी जिंदगी की मोहब्बत है, या उन मोहब्बतों वाले पलों को वो कहते हैं ना चेरिश करने पर मजबूर करते हैं, जरूर शेयर करें 666-22-107, 666-22-107 पर अपने नाम के साथ अपने डेडिकेशन, अपनी स्टोरीज. और अभी जो रिक्वेस्ट आई है, आइए जरा उस पर नजर मार ली जाए. सो ये जो पर्टिकुलर गाने की रिक्वेस्ट आई है, फिल्म है आओ प्यार करें. हालांकि ये फिल्म सुपर हिट नहीं थी, लेकिन ये गाना इस फिल्म का सुपर डुपर हिट है. और इसकी रिक्वेस्ट की है इब्राहिम साहब ने. क्या बात है, कुमार सानू की आवाज है एंड फुल ऑन कॉम्प्लीमेंटिंग सॉन्ग है. तो ये गाना मैं आपको पूरा पूरा सुनाने वाली हूँ. और उसके बाद ओहो, 90s के एरा का वन ऑफ द रोमांटिक लव सॉन्ग, जिसके बिना तो हर चीज अधूरी सी लगती है. सैफ ने इस गाने की रिक्वेस्ट की है.
2: क्या करूं हाय, कुछ कुछ होता है.
0: शाहरुख खान और काजोल की जब जोड़ी साथ आती है तो कुछ कुछ तो होता ही है. सो डेफिनेटली ये गाना भी पूरा पूरा हम आपको सुनाने वाले हैं. लेकिन आपकी प्लेलिस्ट का वो कौन सा गाना है, वो कौन सा लव सॉन्ग है जो आपके दिल के बहुत करीब है, बहुत अजीज है, डू शेयर विद अस 666-22-107 पर अपने नाम के साथ अपने डेडिकेशन. और अभी हम कुमार सानू की एक बेहतरीन आवाज़ को इंजॉय करते हैं इस गाने के जरिए. कहीं ना जाए, बने रहे FM 107.

0: number one hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: Kabhi bhi aur kahi bhi, aap sun sakte hain FM 107.
3: FM 107.
1: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
4: नया जमाना और अनप्लग गाने, दिल खोल के होंगी आपके खत की बातें, छोटी सी कहानी हो या तरक्की के किस्से, ये शो फजील के साथ आपके हिस्से।
5: सुनिए अनप्लग इवनिंग विद आरजे फजील, संडे टू थर्सडे 6 PM टू 7 PM ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
6: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर, माहिरीन की राय पर। लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड,
7: हेल्थ गाइड,
6: जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाब। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक,
7: इलाज और एहतियात तक।
6: सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
7: दिल से देसी।
6: याद रखिए, सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
8: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
9: यस जनाब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का ऑन FM 107 पर। मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता और द रिक्वेस्ट शो की आज हमारी थीम बहुत ही खूबसूरत है, और वो थीम है कि आज यहां बजेंगे सिर्फ और सिर्फ लव सॉन्ग्स। हाँ, मतलब अलग अलग एहसास, अलग अलग फील के साथ। तो बताएं कि वो कौन सा गाना है जो आपको आपकी सबसे खूबसूरत पुरानी याद तक ले जाता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कौन सा गाना बजते ही आपके घर में सब लोग एक साथ गुनगुनाते हैं। हाँ, या फिर अगर किसी फैमिली मेंबर, दोस्त या कलीग को कोई गाना डेडिकेट करना है तो वो गाना कौन सा होगा? कम ऑन, थिंक और बताएं, शेयर करें हमसे 666-22-107 पर अपने नाम के साथ, और चाहे तो हमारे FM 107 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं। सोशल मीडिया पे अपनी आरजे अमिता को भी ढूंढ सकते हैं, वहां पर भी आपके मैसेजेस चलेंगे। ठीक है, चलिए इसी बात पे अगली रिक्वेस्ट की तरफ हम रुख करते हैं। ये वो गाना है जिसके लिए मैं कहूँगी कि इस पर्टिकुलर सॉन्ग ने दबंग फिल्म के बहुत सारे अवार्ड्स जीते, एंड इस गाने को पहली बार शूट कर लिया गया था, लेकिन उसमें सलमान खान के वो जो आइकॉनिक हार्ट शेप्ड के ग्लासेस थे वो नहीं थे, वो पहनना भूल गए थे, तो फिर इस गाने को रीशूट किया गया। एनी गैसेस गाना कौन सा है? चलो बताते हैं, मोहम्मद बिलाल की रिक्वेस्ट है। गेस तो कर लिया होगा, यस, तेरे मस्त मस्त दो नैन जस्ट कमिंग अप ऑन योर वे। और उसके बाद काशिफ की रिक्वेस्ट है, द ट्रेन फिल्म का ये गाना, जिसको मतलब जिसे सुनकर ऐसा लगता है कि इट्स अ कंप्लीट हार्ट ब्रेक सॉन्ग, लेकिन जब इसको सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा ब्यूटिफुल लव सॉन्ग कोई नहीं हो सकता, है कि नहीं? बीते लम्हे इज द सॉन्ग, के की आवाज एंड एडिशनल वोकल्स जो है वो है क्षितिज तारे के। एंड जब भी इसका म्यूजिक सुनते हैं तो अक्सर लोग सोचते हैं कि प्रीतम ने इसका म्यूजिक दिया, बट नो, मिथुन ने इसका म्यूजिक दिया है और सैयद कादरी के बोल हैं। सो बीते लम्हे पूरा पूरा मैं आपको सुनाने वाली हूँ, और आप भी अपनी प्लेलिस्ट रेडी करो जनाब, बताओ कि कौन सा गाना है जो आपकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद को ताज़ा करता है, कौन सा वो लव सॉन्ग है, जरूर शेयर करें 666-22-107 पर अपने डेडिकेशंस। और अभी बने रहे FM 107 पर, दिल से दे

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
3: मुझे तो लगता है नोटिफिकेशन को बंद कर देना चाहिए, बहुत डिस्टर्ब करते हैं।
4: अरे पर कुछ मिस हो गया तो? इनफैक्ट हर नोटिफिकेशन ऑन रहना चाहिए, वरना बेचैनी रहेगी ना।
3: उफ, पर दिमाग को सुकून भी तो चाहिए ना।
5: यही वो अलाइनमेंट है दिमाग की, जिसे बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि हर ओपिनियन मैटर्स। सुनिए हमारा खास प्रोग्राम एनर्जी आर, हर संडे से थर्सडे दोपहर 1:30 to 2:30 आरजे नाजिया और आरजे सरवर मिर्जा के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
6: क्रिकेट हो,
7: and he's hooked that away. That's 4 runs.
6: फुटबॉल हो, या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे साधे अंदाज में।
8: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
6: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंडअप विद अवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन एवरी ट्यूसडे एट 1 PM।
8: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स
0: की। आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
9: यस जनाब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का ऑन FM 107 पर। मैं हूँ आपकी फॉर अमिता द रिक्वेस्ट शो पर, और आज की जो थीम है वो है हमारी जिंदगी के लव सॉन्ग्स। मतलब ऐसा होता है ना कि कभी कभी किसी गाने को सुन के एक दो नहीं कई सारी कहानियाँ याद आ जाती हैं। कभी स्कूल के दिन, कॉलेज की मस्ती, पहली नौकरी, फैमिली रोड ट्रिप, या फिर फेस्टिविटीज़ की तैयारियाँ, या फिर दोस्तों के साथ गुजारी हुई एक यादगार शाम। कम ऑन, बताएं तो वो कौन से गाने हैं जो इन खूबसूरत मोमेंट्स को तरोताज़ा करते हैं। ज़रूर शेयर करें 6622107 पर, 6622107 पर अपने नाम के साथ अपने डेडिकेशंस। और अभी अगली रिक्वेस्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। ये रिक्वेस्ट है मिस्टर एम के की, ठीक है, पूरा नाम नहीं बताया, लेकिन चलिए आपका नाम एम के है आपके प्रोफाइल में तो वहीं से लेते हैं। और इन्होंने जिस गाने की रिक्वेस्ट की है, आई शुड टेल यू कि अरिजीत सिंह को इस पर्टिकुलर गाने के लिए 59th फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला था। गेस कर दिया कौन सा गाना है? आशिकी 2 फिल्म का तुम ही हो, क्या बात है।
10: हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते।
9: सो कंपोजर और लिरिसिस्ट मिथुन, मतलब उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि इतना सिंपल गाना इतना हिट हो जाएगा। सो डेफिनेटली ये गाना पूरा पूरा हम आपकी राहों में लेके आएंगे। और उसके बाद एक और गाना है जिसका सूफी टच है, जिसमें मेन जो वॉइसेस है वो अरिजीत सिंह एंड श्रेया घोषाल।

कमाल की है, लेकिन जो बैकग्राउंड में कव्वाली स्टाइल है दैट इज ऑफ शादाब एंड अल्तमाश फरीदी, जो कि इस गाने को और भी ज्यादा पावरफुल बनाती है। और ये रिक्वेस्ट है परवेज की फ्रॉम द मूवी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। तो ये दोनों ही गाने आपकी राहों में पूरे पूरे आ रहे हैं, सो लेट्स एंजॉय। और आप भी अपने डेडिकेशंस जल्दी से भेजें, FM 107 पर बने रहें, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: हाँ जनाब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का ऑन एफएम 107 पर। मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता। एंड डेफिनेटली आपकी रिक्वेस्ट बड़ी कमाल कमाल की आ रही है। आज की थीम लव सॉन्ग्स थी, जहां पर हम अपनी जिंदगी के हर खूबसूरत लविंग जो मोमेंट्स होते हैं ना, उनको सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन अभी क्विज टाइम का वक्त है, तो चलिए जानते हैं कि आपका फिल्मी नॉलेज कितना तेज है।
0: क्विज टाइम।
1: तो अब मैं आपको एक गाना सुनाने वाली हूँ, बीच से आपको पहचानना है क्योंकि ये कौन सा गाना है जो सफर और जिंदगी को खुलकर जीने वाली एनर्जी के लिए जाना जाता है।
2: मेरा फलसफा कंधे पे मेरा बस्ता, चला मैं जहां ले चला मुझे रास्ता, बूंदों पे नहीं।
1: बताए बताए बताए कौन सा गाना है। 6622107 पर, 6622107 पर अपने नाम के साथ जवाब भेजें। और अभी हम बढ़ते हैं अगली रिक्वेस्ट की तरफ। एक बहुत ही खूबसूरत सी रिक्वेस्ट आई है

लेकिन जनाब ने अपना वॉइस मैसेज भेजा बट नाम बताना भूल गए और इनके जो फ़ोन नंबर के लास्ट के दो डिजिट है दैट इज 67 और ये गाना बचपन की खूबसूरत यादों को ताज़ा करता है. थोड़ा सा रेट्रो स्टाइल का है बट मीनिंग बहुत खूबसूरत है. सो डेफिनेटली इस गाने को हम आपके लिए लेकर आएंगे. और उसके बाद हमें रिक्वेस्ट आई है अब्दुल वहाब की और इन्होंने एक बहुत ही शानदार गाने की रिक्वेस्ट की है एंड द सॉन्ग इज बेज़फ. सो साद लमजारद एंड नेहा कक्कर की आवाज़ में ये गाना भी पूरा पूरा सुनाएंगे. और मेरे बचपन के दिन जिस गाने की हम रिक्वेस्ट प्ले करने वाले हैं फाइनली हमारे लिसनर ने नाम भेज दिया है. उनका नाम है तलत. सो तलत भाई आपके नाम ये गाना होने वाला है. इन्जॉय करें. स्टे ट्यून्ड टू FM 107.9.

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी.
1: यस माय देसी ऑडियंस वेलकम वंस अगेन. एफएम 107 सुन रहे हैं आप. द रिक्वेस्ट शो बिल्कुल अपने आखिरी मुकाम पर पहुंचा हुआ है, लेकिन क्विज टाइम पर हमने आपको एक गाना सुनाया था. कहा था कि गाना पहचानो भाई, ये कौन सा गाना है जो सफर और जिंदगी को खुलकर जीने वाली एनर्जी दे रहा है. गैस किया? चलो मैं बता देती हूँ. मोहित चौहान की आवाज है और ये गाना है इलाही फ्रॉम द मूवी ये जवानी है दीवानी. और सही जवाब दिया है रहीम अफजल आदिल एंड नईज ने. सो कंग्रेचुलेशंस, ये गाना पूरा पूरा आपके नाम होने जा रहा है. और इसी के साथ मैं कहूंगी अब आप मुझे दीजिए इजाजत क्योंकि वक्त हो गया मेरे जाने का. आपकी मेरी मुलाकात होगी कल शाम 4 बजे एक नई थीम के साथ द रिक्वेस्ट शो पर. तब तक क्या करना है, हमारे एफएम 107 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए और अपनी आरजे अमिता को भी वहीं ढूंढिए. और जाते जाते ये कहना तो बनता है हमें राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते. स्टे ट्यून्ड टू एफएम 107 दिल से देसी.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक। राइट दोस्तों, टाइम फॉर द टाइम चेक। और इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक में बज रहे हैं 5:01।
2: आप सुन रहे हैं विमेन वेलनेस आरजे नाजिया के साथ सिर्फ FM 107 पर। दिल से

0: आप सुन रहे हैं विमेन वेलनेस आरजे नाजिया के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: राइट दोस्तों, सलाम आदाब, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त नाजिया, और आप सुन रहे हैं शो विमेन वेलनेस, जहां हम हर रोज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं। आई मीन टू से हर मंडे जब इस एपिसोड में जुड़ते हैं तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बात हम करते हैं विमेन के हेल्थ से और उनके वेलबींग से रिलेटेड। वेल, आज भी हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप जानते हैं अक्टूबर का मंथ है और इस पूरे मंथ को जो है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के तौर पर जो है वो सेलिब्रेट तो नहीं कहना चाहिए, इसको किसी तरह से लोगों को अवेयर किया जाता है, उस हवाले से मनाते हैं। तो बस आज का हमारा टॉपिक भी यही रहने वाला है, टॉपिक है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस। एंड ऑफ कोर्स इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़हरा सैदी। आप जो हैं वो गायनोकोलॉजिस्ट हैं, कंसल्टेंट हैं, ऑब्स्टेट्रिशियन हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कतर यूनिवर्सिटी। कहना चाहेंगे को एफएम 107 पे, कैसी हैं डॉक्टर?
2: बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया नाजिया अपना आपकी इन्विटेशन का, और बाकी सब खैरियत है, आप सुनाइए।
1: अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप जानती हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम इस पे चाहेंगे, हमारी फीमेल जितनी भी यहाँ पे लिसनर्स हैं वो आपको सुन रही हैं और जानना चाहेंगे। कई बार बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट हो जाती हैं, इस टॉपिक पे खुल के बात नहीं कर पाती। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो मेरे जहन में था वो यही था कि डॉक्टर हमें बताइए कि बहुत सी ऐसी फीमेल्स हैं को कोई सिम्टम नहीं होते ब्रेस्ट कैंसर के, प्लस उनकी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं होती, उसके बाद भी क्या उनके लिए ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस उतनी ही ज़रूरी है?
2: जी, असल में ब्रेस्ट कैंसर की जो अवेयरनेस है वो हर लेडी के लिए इम्पोर्टेंट है, और हर एज की लेडी के लिए इम्पोर्टेंट।

किसी सर्विस के बारे में मालूमात चाहिए या पुलिस के किसी शोबे की जिम्मेदारियों और खिदमात को जानना चाहते हैं, तो सुनिए प्रोग्राम पुलिस और अवाम, जिसमें हर हफ्ते वजारत दाखिला के मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक नुमाइंदे अपने शोबे की जिम्मेदारियों, खिदमात, कवानीन और अवाम से मुतालिक अहम उमूर के बारे में तफसीली मालूमात फराहम करते हैं। हर पीर रात 8 बजे से तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ पुलिस और अवाम, पुलिस और अवाम, जानिए, समझिए और बाखबर रहिए। ओनली ऑन FM 107। दोस्तों, गाड़ी चलाते वक्त तेज रफ्तार से परहेज करना सिर्फ एक एहतियात नहीं बल्कि एक जिम्मेदार ड्राइवर की पहचान भी है। जब आप अपनी गाड़ी को हद से ज्यादा तेज चलाते हैं तो आप ना सिर्फ अपनी जिंदगी खतरे में डालते हैं बल्कि रास्ते पर चलने वाले दूसरे लोगों की जान को भी खतरा लाहक होता है। सड़क हमेशा मोहतात और एहतियात के साथ गाड़ी चलाएं ताकि हर किसी की हिफाजत हो सके। एक्सेसिव स्पीड में ब्रेक लगाना मुश्किल हो जाता है जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स बढ़ जाते हैं, इसलिए अपनी गाड़ी की स्पीड हमेशा स्पीड लिमिट के अंदर रखें। ट्रैफिक साइंस और सिग्नल का एहतराम करें और सड़क की हालत को मद्देनजर रखते हुए सेफ ड्राइविंग प्रैक्टिसेस इख्तियार करें। याद रखें, आपकी छोटी सी एहतियात से न सिर्फ आपकी जिंदगी महफूज होती है बल्कि आप अपने फैमिली और मुआशरे की भी हिफाजत करते हैं। वजारत दाखिला का कहना है कि सड़क पर एहतियात सब्र से चलिए, अपनी और दूसरों की हिफाजत को पहली तरजीह दीजिए। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।

0: हैं, एक ब्रेस्ट बहुत बड़ा लग रहा है, एक ब्रेस्ट छोटा लग रहा है, या अगर कोई स्किन में कोई प्रॉब्लम आ रही है ब्रेस्ट की, या निपल की स्किन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आपको नजर आएगी। ये आपको मिरर में खड़े होके करना है। दूसरा मरहला है आपको हाथ से महसूस करना है, ठीक है? मिरर में आपने देख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आप हाथ से महसूस करेंगी। हाथ से कैसे महसूस करेंगी आप? ये वाला जो सरफेस है आपकी हैंड का, इस सरफेस से आप हल्के हल्के ऐसे पूरा ब्रेस्ट पेल्पेट करेंगी, ठीक है? ब्रेस्ट को आप इमेजिनरी फोर क्वाड्रेंट्स में बांट लें, जैसे चार हिस्से कर लें, और हर क्वाड्रेंट को आप अच्छी तरह महसूस करेंगे, ठीक है? ताकि आपको ये पता चले कि कहीं पे भी कोई गिल्टी नहीं है।
1: सही।
0: अच्छा, और जो आप जब आप उसको प्रेस करेंगी तो आपकी जो मूवमेंट्स हैं वो सर्कुलर होनी चाहिए, ताकि आपको अंदर महसूस हो कि क्या चीज है, ठीक है? अच्छा, जो आपका प्रेशर है वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है? जब आप सर्कुलर मूवमेंट्स कर रहे हैं तो आप ना बहुत ज्यादा जोर से करें, ना बहुत ही हल्का करें कि आपको अंदर महसूस ही ना हो। तो एक मीडियम प्रेशर के साथ जेंटली आप पूरा अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करेंगे।
1: सही।
0: उसके बाद इसके बाद आप क्या करेंगे, अपने एक्जिला को एग्जामिन करेंगे, अंडर आर्म को, कि अंडर आर्म में तो कोई स्वेलिंग नहीं है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ब्रेस्ट एग्जामिनेशन।
1: अच्छा।
0: वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज एक्जिला, बिकॉज एक्जिला के अंदर भी जो जितने भी जो लिम्फ नोड्स होती हैं, जो कि ब्रेस्ट को ड्रेन करती हैं, ब्रेस्ट के लिम्फेटिक्स को, वो एक्जिला में होती हैं। तो अगर खुदा ना खास्ता कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रेस्ट में आपको कुछ नहीं फील होता, आपको एक्जिला में चीज़ें मिलती हैं, ठीक है? तो आपको अपना एक्जिला होना है। ये हमने देख लिया कि आपने पहले आपने देख लिया, फिर आपने अपने हाथ से फील कर लिया। तीसरे नंबर पे आप क्या करेंगे कि अपने निपल को हल्का सा स्क्वीज करके देखें कि कोई एबनॉर्मल डिस्चार्ज तो नहीं है निपल से, ये आपको देखना है। अच्छा, कोई भी गिल्टी नई हो, पुरानी हो, जिल्द में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, इस पर आपको यानी तवज्जो देनी है, अगर आपने पहले असेसमेंट कराई हुई है। अच्छा, इस पूरे एग्जामिनेशन का ये मतलब नहीं है कि आप डॉक्टर बन गए, ठीक है ना?
1: जी, जी।
0: तो आपको ये मालूम होना चाहिए, आप जब आप हर महीने करेंगी अपना एग्जामिनेशन, तो आपको ये पता चलेगा कि मेरे ब्रेस्ट में ऐसी कोई चीज़ पहले नहीं थी, अगर कोई चीज़ डेवलप हो रही है। लेकिन अगर आप इन्हें नहीं करेंगी तो आप उसको कंपेयर नहीं कर सकती, आप समझ रहे हैं बात? जैसे अगर आप हर महीने एक चीज़ को छू के देख रही हैं, ठीक है, अगर खुदा ना खास्ता कैंसर या कोई स्वेलिंग डेवलप होती है, अगेन स्वेलिंग कैंसर नहीं होती तो इतना डरने की बात नहीं है, अगर कोई स्वेलिंग डेवलप होती है तो आप उसको पकड़ लेंगी कि हाँ ये पिछले महीने नहीं थी, ये मुझे अभी फील हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर से जाके मशवरा कर सकती हूँ।
1: जैसे आपने कहा कि पीरियड्स के बाद
0: एक हफ्ते बाद
1: पाँच छः दिन के बाद ये सेल्फ एग्जामिनेशन करें, और खुदा ना खासा किसी को कोई सिम्टम्स लगते हैं तो फौरन ही डॉक्टर
0: से रुजू
1: करें, और हर महीने रिपीट करें,
0: हर महीने, क्योंकि
1: ये बड़ी बात है।
0: आपको पता होना चाहिए ना कि आपके जो ब्रेस्ट है उसका नॉर्मल क्या है, जैसे आप फेस देखती हैं अपना मिरर में, ठीक है ना? अगर कोई एबनॉर्मल स्वेलिंग या कुछ डेवलप हो गया आप फौरन नोटिस करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ इस चीज़ को बहुत ऑकवर्ड समझा जाता है, ये कुछ खवातीन जो है वो तो इस पे बात भी नहीं करती।
1: जी जी।
0: तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मतलब ये कि आप देखें ना, आप कितनी बड़ी बीमारी से बच सकते हैं सिर्फ सेल्फ एग्जामिनेशन से।
1: सही। तो सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है, दैट टू एवरी मंथ
0: 5 days और 5 to 7 days आफ्टर द पीरियड्स।
1: चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हुई, और भी कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन हैं जो अब हम करेंगे थोड़ी देर बाद। जैसे हमने आपको बताया कि आज हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स अबाउट ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ हम सेलिब्रेट या ऑब्जर्व कर रहे हैं। कुछ आपका भी सवाल है तो आप हमें लिखकर भेज सकते हैं 666-22-107 पर। अब से थोड़ी देर के बाद जो है हम आपके क्वेश्चंस भी लेंगे, और भी क्वेश्चंस हैं जिन पर बात करेंगे। फिलहाल जुड़े रहिए, सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर, दिल से देसी।
4: दोस्तों, बिजली से लगने वाली आग का खतरा हर जगह होता है, लेकिन इससे बचाव मुमकिन है अगर हम कुछ अहम सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करें। सबसे पहले, हमेशा ओरिजिनल और सर्टिफाइड वायर्स, सॉकेट्स और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स ही

0: इस्तेमाल करें जो कतर या इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर पूरी उतरती हों। लो क्वालिटी इलेक्ट्रिकल आइटम्स इस्तेमाल करना न सिर्फ आपके माल का नुकसान कर सकता है बल्कि जान को भी खतरे में डाल सकता है। वायर्स का सही तरीके से इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस भी बहुत जरूरी है। ये बात भी याद रखें कि ओवरलोडेड सॉकेट्स या एक्सटेंशन कॉर्ड्स का इस्तेमाल ना करें और इलेक्ट्रिकल वायरिंग को मॉइस्चर और हीट से बचाएं। अगर कभी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कोई मसला आए जैसे कि स्पार्क, झटका या यूजुअल, तो फौरन कॉल इलेक्ट्रीशियन से चेक करवाएं। आपके घर और ऑफिस की हालत आपके हाथों में है, इसलिए कभी भी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को नजरअंदाज ना करें। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है और आप एहतियाती तदाबीर को पहली तरजीह दें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है, इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो। यह रस्सी ये हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दें। हर हफ्ते इतवार से जुमेरात सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर।
2: आप सुन रहे हैं विमेन वेलनेस RJ नाजिया के साथ सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
3: राइट दोस्तों, एक बार वापस आप सभी को कहूंगी वेलकम, खुश आमदीद। आप सुन रहे हैं शो विमेन वेलनेस, मैं हूं नाजिया आपके साथ। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जहरा। आज हम बात कर रहे हैं इस कैंसर के हवाले से, अवेयरनेस जो है वो जनरेट करने की हमारी कोशिश है। और डॉक्टर, जैसे आपने ब्रेक थे उससे पहले आपने एग्जामिनेशन की बात की, आपने बताया डिटेल में हमारे लिसनर्स को। अब एक और चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हमारी ऑडियंस को बताइए, क्या रेगुलर ब्रेस्ट स्क्रीनिंग जो है वो किस उम्र से शुरू करनी चाहिए? और दूसरा इम्पोर्टेंट ये, क्या हर औरत के लिए स्क्रीनिंग का जो स्केड्यूल है वो एक जैसा ही होना चाहिए?
4: नहीं नाजिया, ऐसी बात नहीं है। जैसे जो लोग मतलब हम फीमेल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक लो रिस्क और एक हाई रिस्क। पहले मैं लो रिस्क का बताती हूँ क्योंकि लो रिस्क ज़्यादा होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना? तो जो लो रिस्क खवातीन होती हैं उनको उनमें जो स्क्रीनिंग की एज है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट है, लेकिन ज़्यादातर जो स्क्रीनिंग वो 40 ईयर्स के बाद शुरू होती है। कुछ जगहों पे 50 ईयर्स पे शुरू होती है कुछ जगहों पे, लेकिन ज़्यादातर जो स्टैंडर्ड है वो 40 ईयर्स के बाद स्क्रीनिंग शुरू हो जाती है। जो कतर का नेशनल प्रोग्राम है स्क्रीनिंग फॉर लाइफ, ये हमें 45 ईयर्स से 69 ईयर्स तक की स्क्रीनिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, लो रिस्क ख्वातीन में चाहे वो लोग रेजिडेंट हों या जो जो लोग यहाँ के अपने शहरी हैं, जो नेशनल्स हैं, कतर नेशनल्स हैं, उन सबको ऑफर करते हैं हम स्क्रीनिंग फ्रॉम 45 ईयर्स टिल 69 ईयर्स, और एवरी 3 ईयर्स पे जो लो रिस्क पॉपुलेशन है उनका एवरी 3 ईयर्स पे रिकमेंडेड होता है मेमोग्राम। ठीक है, अच्छा, ये टेस्ट जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल मुफ्त होता है, तो हर कोई अपने हेल्थ सेंटर में बुक करा सकता है। ब्रेस्ट कैंसर के लिए स्पेसिफाइड हैं 3 हेल्थ सेंटर, 3 या 4 हैं शायद, मोएज़र में, लबीब हेल्थ सेंटर में, रौदातुल खैल एंड अलवकरा सेंटर में। इन चारों सेंटर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल स्क्रीनिंग होती है। हॉस्पिटल्स में भी होती है, लेकिन अगर हेल्थ सेंटर्स में जरा सही रहता है आपका स्केड्यूल, आपको वेट नहीं करना पड़ता। हॉस्पिटल्स में जाहिर सी बात है बिजी होते हैं थोड़े से, तो वहाँ पे टाइम लग जाता है। अच्छा, लेकिन वो खवातीन जिनको रिस्क फैक्टर्स हैं टू डेवलप ब्रेस्ट कैंसर्स, उनको हम स्क्रीनिंग उनकी हम ईयरली करते हैं, उनको एवरी ईयर मेमोग्राम ऑफर करते हैं। ठीक है, जैसे फ़र्ज करें हाई रिस्क में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे जो खातून है अगर उसकी वालदा को या बहन को या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जितने भी है ना, वालदा बहन, इनको

0: उम्र में किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ तो वो जो जो जो जो खातून है जो स्क्रीनिंग के लिए आई है वो हाई रिस्क हो जाएगी टू डेवलप ब्रेस्ट कैंसर. इसके अलावा एक खास जीन होती है कुछ फैमिलीज में, इसको हम BRCA जीन कहते हैं. जो लोग भी BRCA जीन पॉजिटिव होते हैं उनको जो है ब्रेस्ट कैंसर की ईयरली स्क्रीनिंग करानी होती है. BRCA जीन पॉजिटिव वाले लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि वो ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर्स डेवलप करते हैं ज़्यादा तेज़ी से बनिस्बत जनरल पॉपुलेशन के, और इन लोगों में ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर की डेवलप करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है. अगर किसी को तीसरी ये बात हो सकती है जिसको हम अर्ली मतलब ईयरली स्क्रीन करते हैं फॉर ब्रेस्ट कैंसर, अगर किसी को यंग एज में कोई रेडिएशंस की थेरेपी हुई है या चेस्ट पे कोई रेडिएशंस दी गई हैं किसी भी वजह से तो उनको भी स्क्रीनिंग करानी चाहिए ईयरली.
1: ये सब आप बता रही हैं हाई रिस्क पे.
0: हाई रिस्क बता रही हूँ. लोरिन ने बता दिया ना कि उसका हम 49 से 65 ईयर्स तक करते हैं, एवरी 3 ईयर्स पे करते हैं. ये वाला जो ग्रुप है जो हाई रिस्क ग्रुप है इनको हम ईयरली स्क्रीन करते हैं. ठीक है. अच्छा, इसमें हम जो स्क्रीनिंग है वो 30 ईयर्स से शुरू कर देते हैं.
1: 30 ईयर्स से
0: अर्ली स्क्रीनिंग.
1: अदरवाइज आपने कहा 45 ईयर्स.
0: कतर में 45 ईयर्स है. वैसे हर डिफरेंट कंट्रीज का डिफरेंट स्केजुअल है, ज़्यादातर 40 ईयर्स से शुरू कर देते हैं.
1: 40 से.
0: ठीक है. अच्छा, या कभी ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कोई कोई भी मरीज़ आपके पास आई है उसके घर में उसकी माँ या बहन को ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है. ठीक है, डायग्नोज हुआ है, ट्रीट हुआ है, या उनकी डेथ ब्रेस्ट कैंसर की वजह से हुई है. तो जैसे फर्ज करें उसकी माँ या बहन को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था 40 साल की उम्र में, तो हम इसको 30 साल की उम्र में देखेंगे. अगर उनकी माँ या बहन को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था 50 साल की उम्र में तो हम इनको 40 साल की उम्र में, यानी 10 साल अर्लियर इनको स्क्रीन करना शुरू कर देंगे और इनको हम एवरी ईयर स्क्रीन करेंगे. ये जो है ये स्केजुअल होता है ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग का. अच्छा, ये बात है कि स्क्रीनिंग सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है कि जिनमें कोई अलामत नहीं है. हर लेडी को स्क्रीनिंग करानी है.
1: सही.
0: और किसी भी उम्र में अगर आपको गिल्टी फील हो रही है तो आप अपनी स्क्रीनिंग के टाइम का वेट ना करें. जैसे अगर आपने इस साल स्क्रीनिंग कराई उस वक्त बिल्कुल ठीक था,
1: ठीक,
0: अगले साल आपको कुछ फील हो रहा है तो आपको आप ये कह रही हैं कि मुझे 3 साल बाद कहा है डॉक्टर ने, तो जब मेरी बारी आएगी मैं उसी वक्त कराऊंगी. नहीं, अगर आपको कोई गिल्टी या कोई गांठ टाइप की चीज फील हो रही है तो आपको अपने डॉक्टर को जरूर जाके बताना है ताकि वो आपको इन्वेस्टिगेट करे.
1: सही. बहुत ही अच्छी मालूमात थी, बहुत ही मुफीद डॉक्टर. अच्छा डॉक्टर, एक चीज़ है जिसको बहुत ज़्यादा सुनते भी हैं कि जो कहलाता है कि डेंस ब्रेस्ट टिश्यूज़, इनके बारे में बहुत ज़्यादा बात भी की जाती है, तो क्या ये ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क या फिर डायग्नोसिस पर असर डालते हैं?
0: देखिए, डेंस ब्रेस्ट टिश्यू जो है वो यानी कि उसकी उसमें ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा होते हैं, और इस बारे में जो है वो लोग कम जानते हैं. पहले आप ये समझें कि ये जो डेंस ब्रेस्ट है इसका क्या मतलब है. क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि जो ब्रेस्ट में जो फैट और जो ग्लैंड्स हैं, दो चीज़ें होती हैं ना, वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू कोई ऐसी खातून जिसका डेंस ब्रेस्ट नहीं है. ठीक है. अच्छा, अगर आप जो है, और ये कोई बीमारी भी नहीं है, ये नहीं है कि ये कोई बीमारी है. इसमें ये होता है कि आम तौर पर जब आपकी एज बढ़ती है और आपके पीरियड्स बंद होने वाले होते हैं तो ये जो है ना, ये हाथ से नज़र नहीं आता, हाथ से नहीं पता चलेगा आपको. क्या आप ब्रेक ले सकते हैं?
1: जी जी बिल्कुल. यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि आप भी मेरे खास से पानी वानी पीना चाहते हैं. बिल्कुल, यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं और इसी क्वेश्चन को वापस लेंगे, कंटिन्यू करेंगे इस पे बात. फिलहाल बने रहिए हमारे साथ सुनते हुए शो वेमेन वेलनेस.
2: जेन जी, जेन एक्स, जेन अल्फा, मिलेनियल्स, ये सब महज टर्म्स नहीं हैं. ये अलग अलग ख्याल, आदतें, इन सब को अगर एक दूसरे से मुखातिब कराया जाए तो क्या होगा?
3: तो ये जानने के लिए सुनिएगा जनरेशन टॉक, जनरेशन टॉक विद आरजे कबीर एंड आरजे सफा एवरी ट्यूसडे एट 3 PM ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी.

हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है, ये दिन हमारे लिए खुशियाँ मनाने, बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है, इस यकीन के साथ कि हर जवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है। आइए जुमे की रूहानी, खानदानी और समाजी पहलुओं पर तबादला ख्याल करें। तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ जुड़िए प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शंस में हर जुमा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं विमेन वेलनेस आरजे नाजिया के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: राइट दोस्तों, एक बार वापस आप सभी को कहूंगी वेलकम, खुशामदीद। आप सुन रहे हैं शो वुमेन वेलनेस, मैं हूं नाजिया आपके साथ। आज हम बात कर रहे थे ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जहरा। तो डॉक्टर, अब मैं आपसे जो हम सवाल कर रहे थे वही सवाल कंटिन्यू करना चाहेंगे। हम आपसे पूछ ही रहे थे कि डेंस ब्रेस्ट, जी जो डेंस ब्रेस्ट टिश्यूज के बारे में सुना बहुत जाता है, क्या ये ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को या डायग्नोसिस पर असर डालते?
2: जी, जो हम जहाँ से हमारी बात ख़त्म हुई थी कि डेंस ब्रेस्ट का क्या मतलब होता है, डेंस ब्रेस्ट का मतलब ये होता है कि ब्रेस्ट के अंदर दो चीज़ें होती हैं, या तो ग्लैंड्स होते हैं या फिर चर्बी यानी कि फैट होता है, ठीक है ना। तो जब भी ग्लैंडुलर टिश्यू ज़्यादा हो और चर्बी कम हो तो इसको हम डेंस ब्रेस्ट कहते हैं। अगर दोनों बराबर हैं तो कोई मसला नहीं है, अगर ग्लैंड कम है तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन जब भी ग्लैंड ज्यादा होंगे, फैट कम होगा, तो इसको हम डेंस ब्रेस्ट कहेंगे। ये कोई बीमारी की बात नहीं है, बल्कि ये कुछ खवातीन में होता है, कुछ खवातीन में नहीं होता, ठीक है ना, अपनी अपनी अपनी बॉडी की बात है। अच्छा, इसमें जो असर होता है वो ये है कि सबसे पहले तो ना डायग्नोसिस पे अफेक्ट करता है। अगर ब्रेस्ट कैंसर की डायग्नोसिस की बात करें हम, तो होता ये कि जो जब हम मेमोग्राम करते हैं तो जो ग्लैंडुलर

0: शू है वो भी वाइट नजर आता है, वाइट जैसे ना डॉट्स डॉट्स जैसे नजर आते हैं. और जो कैंसर की जो गिल्टी या जो जो स्वेलिंग होती है वो भी वाइट नजर आती है. जैसे आप इस तरह सोचे कि कहीं पे बर्फबारी हो रही है और उसमें आप कह रहे हैं कि आप वाइट बॉल ढूंढें, तो मुश्किल है ना. तो इस तरह डेंस ब्रेस्ट में कैंसर की जो अलामत हैं वो ढूंढना बहुत मुश्किल होती है. तो इसलिए ये इसमें डेंस ब्रेस्ट में कैंसर पकड़ना मुश्किल है, ठीक है. एक बात ये. दूसरी बात ये कि ये एक ऑब्जर्वेशन है कि जो डेंस ब्रेस्ट वाली खवातीन हैं इनमें छाती का कैंसर ज़्यादा देखा जाता है एज़ कम्पेयर टू वो खवातीन जिनके ब्रेस्ट नॉर्मल ग्लैंडुलर टिश्यू के हैं.
1: जी जी,
0: ठीक है. तो अब जो है वो बेचारी जो डेंस खवातीन डेंस ब्रेस्ट वाली खवातीन है वो क्या करें, मतलब उनका तो हुजूर नहीं है.
1: बिल्कुल.
0: तो सबसे पहली जो एडवाइस है कि वो मैमोग्राम कराना ना छोड़ें.
1: सही,
0: ठीक है, क्योंकि ये बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट है और ये बहरहाल फिर भी कुछ ना कुछ डिटेक्शन हो जाती है,
1: हो ही जाती है.
0: अपनी रिपोर्ट में देखें और डॉक्टर से पूछें कि क्या आप जब भी आप कराएं मैमोग्राम आप पूछें कि क्या मेरा मेरे पास मेरा डेंस ब्रेस्ट है या नहीं है.
1: सही.
0: अगर डेंस ब्रेस्ट है तो वैसे ही डॉक्टर आपको हो सकता है कुछ आपके इजाफी टेस्ट कराएं, जैसे अल्ट्रासाउंड कराएंगे, कोई 3D मैमोग्राम करा सकते हैं. ज्यादा खतरे वाली खवातीन को MRI भी रिकमेंड किया जा सकता है.
1: सही.
0: और अगेन अपने घर पर जो आपको सेल्फ असेसमेंट करनी है वो आप साथ साथ करते रहें.
1: सही.
0: तो इन समरी ये है कि जो जिनके अगर कोई किसी का डेंस ब्रेस्ट है तो उसको कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका क्या प्रॉब्लम है. और ये कि अगर आप किसी भी
1: मैमोग्राम
0: प्रॉब्लम देखें तो आप डॉक्टर से जरूर डिस्कस करें.
1: बिल्कुल. अच्छा डॉक्टर, कई बार सोशल मीडिया पर जो है वो सर के हवाले से बहुत से बातें चलती रहती हैं, जैसे कि जो डियोज हैं कुछ खाने हैं या जिस तरह के अंडरगारमेंट्स पहने जाते हैं या फीमेल्स जो पहनती हैं, तो इन सब से भी कैंसर होता है या बनता है. और जैसे यहाँ पे हमें एक लिसनर का भी मैसेज, उन्होंने कहा कि बहुत जो फीमेल्स जो हैं वो जब फीडिंग करा रही होती हैं तो उसमें जो पोस्चर है या फिर एबनॉर्मलिटी ऑफ फीडिंग, इसकी वजह से भी क्या कैंसर होता है. तो पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि इन बातों में कितनी सच्चाई है और क्या ये बातें सही हैं कि नहीं है, आप इन्हें डिमांग कर रही हैं.
0: नहीं नहीं, बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है कि
1: अच्छा.
0: कोई ख़ास किस्म की ब्रा पहनने से या किसी ख़ास किस्म का परफ्यूम या डिओडोरेंट लगाने से मेरे नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं है. लेकिन अब ये कि लोग बात करते हैं तो जाहिर सी बात थोड़ी सी परेशानी भी हो जाती है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं. बल्कि मैं ये आपको बताऊंगी कि जो लोग फीड कराते हैं अपने बच्चों
1: जी,
0: को
1: जी, जी,
0: उनको ब्रेस्ट कैंसर का जो रिस्क है ना वो बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन और एज़ कम्पेयर टू दोज जो फीड नहीं कराते.
1: अच्छा.
0: तो जितना आप अपने बच्चे को माँ का दूध जो है वो सबसे अच्छी गजा है बच्चे के लिए और माँ के लिए भी उतना ही फायदेमंद है. जितना आप फीड कराएंगी उतना आपका ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम होता जाता है.
1: अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर ये पूछ रहे हैं कि शुड वी मेंटेन द टाइमिंग फॉर फीडिंग किड्स.
0: ऐसा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं. बच्चों को
1: नहीं,
0: तो देखिए आप फीडिंग ऑन डिमांड होती है ना छोटे बच्चों की, क्योंकि वो उनको जब भूख लगेगी उनको फीड कराना पड़ता है, ठीक है ना. तो टाइमिंग्स आई डोंट थिंक सो या कोई खास पोस्चर इससे कोई फर्क
1: नहीं पड़ता. चलिए नाउ कमिंग टू द क्लोजिंग क्वेश्चन डॉक्टर, अब आप हमारी फीमेल ऑडियंस को बताइए कि ब्रेस्ट के हवाले से कौन सी तीन ऐसी स्ट्रॉन्ग एडवाइसेस है जो आप जाते जाते देना चाहेंगी.
0: ठीक है, मैं आपको जो मेरे तीन जो समझे कि ये समराइज करेंगे ना हम जो
1: जी जी
0: थ्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट
1: जी.
0: सबसे पहला जो मैं सारी अपनी बहनों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जो है वो अपने जिस्म को पहचानें. आपको पता होना चाहिए कि आपका जो नॉर्मल ब्रेस्ट है वो कैसा है. आपको हर महीने, जैसे मैंने कहा, मैं रिपीट कर रही हूँ, हर महीने आपको अपने ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन करना है, ठीक है
1: जी.
0: उसमें आपको पहले मिरर के सामने खड़े होकर देखना है, दूसरी दफ़ा में आपको
1: प्रेस
0: पेल्पेट करना है, जेंटली प्रेस कर करके देखना है. और ये जो है ना आपको, और कब करना है आपको,
1: पीरियड्स के एक हफ्ते बाद,
0: ठीक है ठीक है. ये आपको भी याद हो गया अब नाजिया, ठीक है. दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि आप स्क्रीनिंग को प्रायोरिटी दें, ठीक है. अपनी उम्र के मुताबिक आप मैमोग्राम कराएं, चाहे आप बिल्कुल ठीक हैं लेकिन आपको स्क्रीनिंग कराना ज़रूरी है.
1: ज़रूर.

0: ठीक है, स्क्रीनिंग कैंसर को उस वक्त पकड़ती है जब कैंसर हाथ से भी महसूस नहीं हो रहा होता.
1: सही.
0: ठीक है, तो आपको एवरी थ्री इयर्स पर अपनी स्क्रीनिंग ज़रूर करानी है. अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में रिस्क फैक्टर है कोई कैंसर का, तो आपको अपनी स्क्रीनिंग अकॉर्डिंग टू द रिस्क फैक्टर करानी है. ठीक है, तीसरा अगेन जो मैं हमेशा हर प्रोग्राम में कहती हूँ, हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाएं, वज़न को काबू में रखें, कुछ ना कुछ रोज़ाना वॉक करें. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो भी आपको ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से आज अवेयरनेस हुई है, इसको सिर्फ अपने तक ना रखें, इसको आगे डिस्कस करें, ज़्यादा से ज़्यादा बात करें इस टॉपिक पे. जब आप फ़ोन पे किसी से अपनी दोस्त से बात करें तो उससे पूछें कि आपको सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में पता है, क्या आप सेल्फ एग्जामिनेशन करती हैं. एक सवाल करने से मेरे ख्याल में आप किसी के लिए बहुत अच्छा कर सकती हैं.
1: बहुत ही अच्छी बात, बहुत ज़बरदस्त. आपने तीनों ही एडवाइसेस हमारी फीमेल ऑडियंस के लिए खास दी. थैंक यू सो मच डॉक्टर कि आपने टाइम निकाला और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारी ऑडियंस के साथ शेयर की. थैंक यू वंस अगेन.
0: मोस्ट वेलकम.
1: वेल दोस्तों, अब वक्त हो गया कि आपसे इजाज़त ली जाए. बस जाते जाते मैं भी यही कहना चाहूँगी, जैसे डॉक्टर ने भी कहा कि आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिला. हम और आप ये समझे हैं कि कैंसर से बचाव, बेहतर इलाज का सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका जो है वो है अवेयरनेस. अगर आप अवेयर हैं तो फिर आप जो है आगे स्टेप ले पाते हैं. इसके लिए आप रेगुलर स्क्रीनिंग कीजिए, वक्त पे डॉक्टर से रिजू कीजिए, ख़ास तौर से अपनी सेहत को किसी भी तरह से नज़रअंदाज मत कीजिए. वेल, इसी नोट पर अब आपसे इजाज़त लेंगे. नेक्स्ट एपिसोड में एक और नए टॉपिक पे बातचीत यहाँ पर जारी रहेगी. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए एंड सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी.
2: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है. इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो. यह रस्सी ये हबले मतीन है, कुरान करीम. आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दें. हर हफ्ते इतवार से जुमेरात सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर.

0: सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर
1: FM 107 टाइम चेक
2: Yala Habibi, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. FM 107 pe istiqbal hai aap sabhi ka. 6:02 hamari studio ki ghadi mein aur filhal ye show Unplugged Evening.
3: Aap sun rahe hain Unplugged Evening with RJ Fazil.
4: Only on FM 107, dil se desi.
2: तो वही 6 से लेकर 7 बजे तक हमारा और आपका साथ रहने वाला है और फिलहाल 6:02 पर आज जो है मजेदार ठीक ठाक मौसम हो रहा है यार. अब टहल सकते हैं. अभी वो वाला मौसम आ गया कि 100 मीटर से ज़्यादा चलोगे तो थोड़ा सा बदन गीला होने लगेगा, पसीना आएगा, लेकिन 100 मीटर से कम चल सकते हैं तो पसीना नहीं आएगा, उसके ऊपर पसीना आने लगता है. फिर 200 मीटर के ऊपर अगर आप चलोगे तो इंसान थोड़ा थोड़ा अजीब सा महसूस करता है. 300 मीटर के बाद थोड़ी हालत ख़राब होने लगती है. 400 के बाद इंसान बेहोश हो रहा है. आज अभी जो माहौल है, जो मौसम है, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ. तो 400 के बाद आप बेहोश हो रहे हैं और यही तो जून जुलाई में 100 के बाद बेहोश हो रहे थे. लेकिन फिर भी अभी मौसम जो है वो बेहतर हो गया है. आप टहल घूम सकते हैं और अगर हवा चल रही है तो और भी बेहतर है. तो ये बीच का मौसम भी लगभग शुरू हो गया और ये मुझे लगता है अगर आप बहुत ज़्यादा सर्दी में बीच नहीं जाते हैं तो ये परफेक्ट मौसम है, क्योंकि अक्टूबर का महीना शुरू हो गया. अक्टूबर और नवंबर सर्दी में या सर्दी फील हो सकती है जब आप बीच पे जाएं, बाकी उसके अलावा तो फिर नहीं. लेकिन 6 से लेकर 7 बजे तक ये सब बातें थोड़ी होंगी. बातें तो होंगी हमारे सवाल पर. तो आज का सवाल क्या है उस पर भी आएंगे. लेकिन एक सवाल जो मेरे मन में था वो मैं ये पूछना चाह रहा था कि यार तुम लोग ऐसा करते हो कि कैश वैश रखते हो अपने पास, कि मोबाइल से या एटीएम कार्ड से टैप करके ही काम चलाते हो? क्योंकि यार इतना ज़्यादा बुरा वो मेरे को आदत लग चुकी है ना एटीएम कार्ड रखने की या मोबाइल पे कार्ड जो मैंने सेव कर रखा उसकी, कि अब कैश नहीं रहता. और कई बार कैश ना रहता तो भाई आपको बहुत ज़्यादा झेलना पड़ जाता है. अब मैं अपने ऑफिस में नदीम भाई से उधारी लेकर काम चला रहा हूँ यार, ये जिंदगी हो रही है. बताइए कि भाई सब कुछ ठीक ठाक है, शक्ल से लग नहीं रहा होगा कि गरीब आदमी है. लेकिन नदीम भाई तो सोच रहे होंगे कि अरे बेचारा शादी जो है करने के बाद बेचारा इंसान जो है बड़ा पछताता है, बेचारे के पास पैसे नहीं आएंगे. अब उनको क्या बताया भाई, इतना ज़्यादा टैप कर लिया है. और क्या है कि आप पैसे ना रखो वो ठीक है, लेकिन कार अगर आपकी ख़राब हो गई तो सारा कांड वहीं हो जाता है भाई. अब क्या है, मेरी कार को मैंने बनने को दिया, थोड़े मोड़ी चीज़ें जो हैं वो सही होनी है, वो बनने को दे दिया. अपने को कैब की ज़रूरत है भाई, कैब के लिए भी मुझे 15-20 रुपए तो रखने चाहिए अपने अपने पास. अब क्योंकि मेरे पास कार है, कार्ड जो है मोबाइल में सेव है, पर्स लाता नहीं हूँ भाई, मेरे पास 15-20 रुपया नहीं होता है. मैं कार वाले से कह रहा हूँ भैया कल दूध तो चलेगा भाई, उनने कोड़ा उठा लिया यार. मतलब मुझे ऐसे गरीब नजर से उसने देखा कि आए हाय बेचारे फजील साहब आपके पास भी नहीं है. मैंने कहा नहीं है मेरा भाई, फॉरन पे हो तो बताओ मैं कर सकता हूँ पेमेंट. तो उनने किसी और का दिया, उनके पास भी नहीं था फॉरन पे वाला. यार ये बड़ी मुसीबत वाली चीज़ें हैं भाई. आज मुझे लगता है कि 1.5 साल बाद अपनी जेब में पर्स रखा है मैंने. और कल मैं गराज से लेकर ऑफिस तक आया, मेरे पास पैसे नहीं थे, नदीम भाई से मैंने उधारी मांगी है. तो अब ऐसी ऐसी चल रहा है भाई, यही हो रहा है. तो क्या आप लोग भी ऐसा करते कि पैसे ऐसे नहीं रखते जेब में, क्या रखते हैं? क्योंकि मैंने तो 20 रियाल नहीं रखा और आज बहुत दिनों बाद ऐसा हो रहा है और आज मेरे को पैसे निकालने पड़ेंगे. फिर खैर 6:06 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, मैं बस इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो लज्जत है या जो बेइज्जती है, लज्जत क्या, बेइज्जती की लज्जत वो मुझे ही ना फील हो, मुझे ऐसा एहसास हो कि हाँ यार ठीक है बाकी लोग भी पैसे नहीं रख रहे, इनकी ज़िंदगी में भी परेशानी आती होगी कि पैसे नहीं है और कैब वाले को क्या ही देंगे, दूसरे को फ़ौरन पे कर रहे हैं या दूसरे से पैसा मांग रहे हैं. तो मैंने सोचा ये वाला अभी पूछना चाहिए, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी, अगर रखते तो अच्छी बात है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. फज्जू भाई की ज़िंदगी उधार की ज़िंदगी है. हाँ भाई उधार ही चल रहा है, अब क्या बताए भाई. सिर्फ यही उधार नहीं है, ये एक उधार ही है कि लोगों से पैसे मांग के 30-30 रुपए में दे रहा हूँ. दूसरी उधारी है वो, लेकिन अच्छे लेवल की मानते हैं लोग, उसे लोन कहते हैं। और एक उधारी इंसान बीवी की भी रखता है। आपने अगर बीवी से 10 रियाल 20 रियाल मांगे हैं तो आप बीवी के भी 100 रियाल उधार हैं। ला आप अगर आप सोच रहे हैं अरे 10-20 मांगा है तो 20 नहीं 100 रियाल। अब जिनको पता है उनको पता है। बाकी अगर आप वाले ऐसे कि अरे नहीं नहीं ले लीजिए हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारा क्या इस्तेमाल हो रहा है, अगर आपको जरूरत है आप ले लीजिए, भाई पकड़ के रखना कहीं जाने मत देना। मैं बता रहा हूँ घर से बाहर निकला करो तो बहुत ही ज्यादा इज्जत दिया करो हर जगह, है ना। कार में सीट बेल्ट उनको मत लगाने दिया करो, खुद लगाया करो सीट बेल्ट, समझ में। और गेट खुद खोला करो कार का, वो खोले तो बहुत गलत बात है। अगर आपकी बेगम ऐसा कर रहे हैं कि नहीं लीजिए मेरे पास तो कोई इस्तेमाल ही नहीं है, आप ले लीजिए पैसे, मैं क्या करूंगी, मैं देख ना लूं ऐसे लोगों को कि तुम जो है अपना कार सीट पे बैठ गए ड्राइविंग सीट पे और वो कार खोल रही है। गेट तुमको खोलना है, सीट बेल्ट तुमको लगाना है, और फिर सबसे बड़ी बात हफ्ते में 2 बार फूल जरूर देना है। अब वो वाला जो गुलदस्ता आता है वो वाला, ऐसा नहीं सिंगल फूल लगा दे रहे हो, समझ में आ। ऐसी महिलाओं को अलग ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। बाकी अपना क्या यार, मैं तो वैसे भी 100-200 रियाल तो उधार हूं अपनी बेगम का। नसीम साहब कहते हैं बकाला का कितना है? नहीं भाई बकाले वाले का उधार नहीं होता क्योंकि वो लोग कार्ड पेमेंट लेते हैं, तो वहां पर मैं जो कार्ड पेमेंट ले रिया मैं वहां बच रहा हूँ। जो जैसे अब कैब ड्राइवर वो होते हैं ना कैब वाले भैया, वो नहीं ले रहे ना कार्ड पेमेंट, वो कौन सा अपना मशीन लेके फिर रहा, उनको तो कैश चाहिए, फजील के पास कैश नहीं है। तो भाई साहब मुझे कल एहसास हुआ है कि कतर में भी लोग जो है बेसबॉल का या स्टंप अपने कार के अंदर रखते हैं कि अगर कोई पैसा रहे तो सूद देंगे। बाकी ये सब बातें छोड़ो यार, 6:08 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, कोड़े वाले भैया को सलाम। इस पार स्टूडियो में बैठे हुए 2 स्टूडियो हमारे पास, एक स्टूडियो जहां पर आमतौर पर लोग बैठ सकते हैं, एक स्टूडियो जहां पर सिर्फ आरजे बैठता और कोई नहीं बैठ सकता। तो अपन आ गए, अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं, बाकी लोगों के मैसेज एक एक करके ले लिया जाएगा। और आज का सवाल जो है वो फजल भाई के लिए भी है, क्योंकि हमने कहा था ना फजल भाई इस हफ्ते एक सवाल ऐसा जरूर होगा जिसमें आप अपने अपनी राय जो है वो दे सकते हैं।
5: मेरे सवाल का जवाब दो,
2: हाँ जी। तो सवाल ये है कि मिसाल के तौर पे आप किसी भी काम में अगर आज हैं इस शहर में, आप चाहे लिमोजीन का काम में हो, ठीक है, कस्टमर संभालने के काम में हो, आपका कोई बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो सकता है ऑब्वियसली, फिर अगर आपका स्टोर कोई हो जहां पर आप कपड़े वगैरह देते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह आपका हो, ठीक है, तो अगर कुछ भी गलत हो जाए एज अ ओनर, जब आप कस्टमर को कोई प्रोडक्ट दे रहे हों, चाहे रेस्टोरेंट में खाना खिला रहे हों, है ना, कुछ भी गलत, इवन सर्विस भी अगर आप अपने कस्टमर को दे रहे हैं, अगर कुछ गलत हो जाए और लेटर ऑन, मतलब ऐसा भी नहीं कि आपने अभी काम किया और आपसे गलत हो गया और कस्टमर सामने खड़ा है, ऐसा नहीं, 10 दिन बाद कि आपने कोई प्रोडक्ट दिया, पता चला अरे यार वो प्रोडक्ट तो खराब है, तो फिर आप क्या फैसला लेंगे कि छोड़ो जाने दो यार, जो कस्टमर गया तो गया, अपने पास प्रॉफिट आ गया वो ठीक है, या फिर आप प्रॉफिट की तरफ जाएंगे। ये ऐसा भी होता ना कि आप ट्रस्ट जीतने की कोशिश करते कि नहीं यार उसको जो प्रॉब्लम हुई है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे दें, सॉल्व कर दें, और फिर वो दोबारा आए ना आए उसकी अपनी मर्जी। तो 2 ऑप्शन है आपके पास, कोई गड़बड़ी आपकी तरफ से कस्टमर को लेकर हो जाती है और 10 दिन बाद पता चलता है कि आपका प्रोडक्ट आपका काम कुछ तो खराबी हो गई है, कस्टमर को बुरा लग रहा है, तो आप उनका ट्रस्ट वापस जीतने की कोशिश करेंगे कुछ और सर्विस देके, कुछ पैसे वापस करके। मिसाल के तौर पे आपने कोई प्रोडक्ट दिया, प्रोडक्ट अच्छा नहीं निकला, तो आप उनको पैसे रिटर्न कर देंगे, अपना नुकसान झेल लेंगे, ट्रस्ट जो है वो दोबारा बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, या फिर आप सोचेंगे मैं जान दो यार कोई बात नहीं, 1-2 बार होता है, 100 में से 1-2 कस्टमर को इस तरह की प्रॉब्लम आती है, हटाओ प्रॉफिट तो आ गया अपने पास, देखी जाएगी। आपका क्या मानना है ये जरूर मुझे बताओ। नंबर है 666-22-107 और उम्मीद है कि बड़े ही समझदार काबिल लोग आएंगे और हमें बताएंगे कि एक्चुअली में ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, और जो नए लोग हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्रेन्योर हैं उनको भी सीखने का मौका मिलेगा कि यार किस तरह से कस्टमर को डील करना चाहिए। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
6: वालेकुम अस्सलाम
2: जी हबीबी, कौन बात कर रहा है?
6: नूर मोहम्मद।
2: नूर साहब कैसे हैं मेरा भाई?
6: अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत, आप सुनाएं।
2: बहुत बढ़िया, कल आपका इंतजार कर रहे थे, जो सवाल किया था, लेकिन आप कल आए नहीं तो मुझे लगा कोई बात नहीं, क्योंकि कुछ दिन पहले आपने कॉल करी थी, हमने बात करी थी, हमें लगा शायद कल भी आप आएंगे।
6: नहीं, वक्त का तकाजा है, कभी कहां तो कभी कहां।
2: क्या बात है, तकाजा। तो ये हाँ, तो खैर सवाल पर आते हैं, और सवाल जो है बड़ा आसान सा किया है, वो कस्टमर को लेकर है, कि अगर आपकी तरफ से कस्टमर को लेकर कोई गड़बड़ी हो जाए ओनर की तरफ से, बिजनेस ओनर की तरफ से, तो आप उनका ट्रस्ट वापस जीतने की कोशिश करेंगे, या फिर ये सोचेंगे हमें 100 में से एक दो बुरा निकल जाता है कस्टमर, या प्रोडक्ट खराब निकल गया, जान दो प्रॉफिट आ गया अपने पास, आप क्या करेंगे?
6: तो अभी इस सवाल के तो दो तीन जवाब होंगे ना।
2: एक परफेक्ट जवाब, या चलो दो तीन भी दे दो, अपने पास टाइम है।
6: एक सवाल ये, जो बिजनेस

0: ओनर जो होगा ना,
1: हाँ,
0: जो बिजनेस माइंड सेट जिसका होगा वो तो सॉल्यूशन का हल ढूंढेगा।
1: सॉल्यूशन तो मतलब उस सवाल का हल, क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढेगा। ओके,
0: उसका हल ढूंढेगा। जैसे अगर मैं किसी के पास काम पे हूँ तो मैं तो जाने दो।
1: अच्छा
0: नहीं, जो सच है वो है।
1: ये बहुत ही मतलब ऐसा नहीं कि जिसका दिल इतना सख्त हो चुका होता है उसको कोई फिकर ही नहीं होती है, जाने दो।
0: भाई सब आजकल के वक्त में ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं, बस ये सोशल मीडिया मेरे आपके सामने आके अच्छे बनते हैं, बाकी
1: हाँ।
0: अंदर से जो इंसान आजकल जो वक्त चल रहा है ना,
1: हाँ।
0: सब एक जैसे है।
1: हाय हाय, मैं लेकिन आपके इस रॉ वाले यू नो आप दिमाग कह लें या आपका रॉ जो जवाब निकला है ना कि जाने दो, वो उसका फैन हूं मैं। फिर तीसरा और एक और तीसरा आप कह रहे थे, वो क्या सोल्यूशन?
0: तीसरा ये है कि मैं सामान लेने एक बार गया था तो गलती से मुझे लेडीज प्रोडक्ट साथ में आ गया।
1: अच्छा,
0: वो मैंने परचेज नहीं किया था, वो सामान में साथ आ गया।
1: अच्छा,
0: तो फिर मैंने वो रिटर्न वापस कर दिया क्योंकि मैं काम का नहीं था, अगर काम का होता शायद मैं रख भी लेता।
1: हाँ मतलब ये तो फिर आपकी तरफ से प्रॉब्लम है ना, ये ओनर का प्रॉब्लम थोड़ी। ओके नूर भाई, लेकिन दूसरा वाला थोड़ा रॉ हो गया, बहुत रूड भी हो गया, रॉ रूड, लेकिन ठीक है।
0: एक बात है, हकीकत है, असलियत आदमी वही बताए ना, फालतू में चार आदमी के सामने बोला मैं जैसा हूँ दुनिया में और ऐसा कोई है ही नहीं, तो वक्त सिचुएशन के हिसाब से आदमी का दिल बिगड़ भी जाता है, खराब भी हो जाती है।
1: हाँ सही बात है, अब घी मक्खन काहे को लगाने का।
0: हाँ, जो सत्य है वो है।
1: हाय हाय सत्यता। चलो भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओके मेरा भाई शुक्रिया। फिलहाल एक और कॉलर है हमारे साथ। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू। कैसा है मेरा भाई?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ, आप सुनाएं, आप कैसे हैं, नाम बताएं मेरा भाई।
2: फजल भाई।
1: ओ फजल भाई, कैसे हैं, अब छुट्टी हो गई ऑफिस की?
2: अरे नहीं सर, हमारा काम शुरू होता है शाम के 4 से रात के 12 तक।
1: अच्छा, शाम को 4 से रात के 12, तो आप नाइट आउल हैं।
2: जी, उसके बाद रात के 12 से सुबह के 4 तक वर्क फ्रॉम होम, जो भी काम होता है ना, मतलब क्लाइंट्स के लिए जो भी मेरा पेंडिंग वर्क होता है, यूं समझ लीजिए शाम के 4 से रात के 4 तक, ये हमारी शेड्यूल है।
1: यार ये तो मजदूरी टाइप का काम हो गया कुछ तो, कि मतलब लगातार करे चले जा रहे हैं भाई। हम भी मतलब ऑब्वियसली मजदूरी है यार, लेकिन आप थोड़ा सा ज्यादा कर रहे हैं, ये ऐसा तो नहीं कहीं कि मेहनत बहुत ज्यादा आपको करने का दिल ही करता है?
2: पैशन है सर।
1: अच्छा नहीं, तब अपना तो कोई ऐसा नहीं है कि यार ये मरे पड़े हुए हैं।
2: दूसरा उसका रीजन है,
1: हाँ।
2: दूसरा उसका रीजन ये है मेरे भाई,
1: हाँ।
2: मेरे जो ज्यादातर 95% क्लाइंट्स है वो ब्लू कॉलर हैं।
1: अच्छा।
2: और वो लोग काम ही रात को करते हैं,
1: हाँ।
2: तो हमने अपना शेड्यूल क्लाइंट मतलब बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से बदल दिया।
1: अच्छा ओके, सही है, ये भी सही है कि रात में कई बार काम करते हुए थोड़ा सुकून भी रहता है, मजा भी आता है, लेकिन बहुत लंबे वक्त तक रात में काम मत किया करिए, मतलब कि अब जैसे 2 या 3 महीने लगातार।
2: ये नहीं नहीं, एक दो दिन हफ्ते में मैं ब्रेक लेके डे टाइम में भी काम करता हूँ, लेकिन ये डे टाइम का मतलब क्या है ना कि
1: हाँ।
2: अभी ये जो ब्लू कॉलर, ये वर्ड याद रखिए,
1: समझ रहा
2: हूँ, वो जो है ना दिन में वो लोग काम ही नहीं कर रहे हैं, रात को काम कर रहे हैं, उसका रीजन जो है ह्यूमिडिटी भी।
1: हाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, बट इन सब के बावजूद मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, क्योंकि कंटिन्यूसली रात में काम करना, इवन आप 2 दिन की बात कर रहे हैं ना, मैं कहता हूँ 1 महीने का भी स्केड्यूल जो है वो चेंज करिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर आपको पड़ जाएगा, बॉडी पर भी एक अलग तरह का प्रेशर होता है ना, रात का प्रेशर अलग है और दिन का काम करने का प्रेशर अलग है, रात को ज़्यादा आपको प्रेशर लगेगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने भी एक वक्त होता है ना कि हर आदमी मेहनत जब कर रहा होता है, स्ट्रगल जब कर रहा होता है, तो रात को भी काम करता था, तो अपन रात को भी काम करते थे, कभी कभार जबरदस्ती बोर आ जाते थे हम।
2: जी जी, इसका रीजन ये है सर कि अभी मैं वन मैन शो चला रहा हूँ।
1: अच्छा,
2: तो इंशाल्लाह अपनी कैपेसिटी तक तो 24 छक्के मार लूंगा,
1: आए आए।
2: जब मैं थक जाऊंगा,
1: हाँ।
2: तो फिर डे टाइम जो है इसको शिफ्ट करूंगा, जब तक मेरे पास इतना क्लाइंट डेटाबेस और रेगुलर बिजनेस हो जाएगा कि बड़ी आसानी से इंशाल्लाह अपने 9 to 5 वाले जॉब पे आ जाऊंगा।
1: सही है, ओके, तो सवाल पर हम आते हैं, और सवाल आपने सुन लिया होगा, उम्मीद है कि उसका जवाब आपके पास तैयार होगा।
2: बिल्कुल तैयार है सर,
1: बताएं।
2: चार स्टेप्स मैं चाहूंगा हर नया बिजनेस और पुराना बिजनेस मेरे 4 स्टेप्स को याद रखें, या 4 मंत्र को याद रखें।
1: ओके,
2: पहला स्टेप है लर्निंग, दूसरा स्टेप है लर्निंग, तीसरा स्टेप है लर्निंग, चौथे पे जब पहुंचोगे मेरी जान तो एल गिर जाएगा।
1: अर्निंग, ये वाला तो आपने पहले बता दिया है, लेकिन आज का
2: बिल्कुल
1: ये वाला
2: बिल्कुल एप्लीकेबल है, बिल्कुल कैसे एप्लीकेबल है वो समझिए।
1: हाँ।
2: देखिए, कल मेरा जो उसूल है ये

0: समझ लीजिए, एवरी मीटिंग ऑफ माइंड डजंट कन्वर्ट टू बिजनेस. एवरी मीटिंग ऑफ माइंड यानी क्लाइंट से जो मैं मीट कर रहा हूँ वो हर मीटिंग बिजनेस में कन्वर्ट नहीं होती, लेकिन बिजनेस बगैर क्लाइंट मीटिंग के भी नहीं होती.
1: हाँ, obviously client meeting तो करनी पड़ेगी.
0: हाँ, अब आपका जो सवाल पे आता हूँ कि भाई आपसे क्लाइंट रूठ गया. ओके, देखिए एक बात समझ लीजिए, ये जो ह्यूमन साइकोलॉजी है ना, ये एक बार रूठ जाए ना तो इसको मनाना
1: मुश्किल,
0: बहुत मुश्किल काम.
1: वापस नहीं आते कस्टमर पे,
0: नंबर वन. नंबर टू, आप उसको छोड़ दें. जैसे हम लोग मच्छी पकड़ते हैं ना, बड़ी मच्छी जब गटती है आप उसको खींच नहीं सकते. गिव इट टाइम, लेट इट रन अवे.
1: अच्छा,
0: लेट इट रन अवे.
1: Oh.
0: आपकी नसीब में है, रिस्क में अल्लाह है.
1: हाँ.
0: तो आएगा.
1: अरे यार, क्या पॉइंट है, बहुत ही वैलिड पॉइंट.
0: सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं अपने पे मतलब फर्ज कर लिया हूँ कि भाई मुझे बिजनेस मिले या ना मिले, मैंने उस क्लाइंट से क्या सीखा.
1: ओके, कूल.
0: मुझे बिजनेस मिले या ना मिले.
1: हाँ.
0: तो और ये स्पेशली जब बिजनेस नहीं मिले ना मेरे भाई, आपको
1: हाँ.
0: बिजनेस नहीं मिले.
1: हाँ. हाँ.
0: तो आदमी का मोटिवेशन डाउन होता है. ना, डोंट डाउन योर मोटिवेशन. ठीक हो भाई, ये मैं मानता हूँ कि 90% मेरी गलती की वजह से बिजनेस नहीं मिले.
1: ओके, कूल.
0: 90% तो अब मैंने क्या गलती की.
1: हाँ.
0: मैंने गलती क्या की.
1: हाँ.
0: अगर ये चीज मेरी समझ में आ जाए ना तो ये फॉर्मूला बन जाता है अगले कस्टमर के.
1: ओके, लेकिन एक तो ये आपने बहुत उम्दा बात बताई कि अगर कस्टमर जा रहा है तो जान दो, लेकिन सीखना ज़रूरी है. और ये नहीं करते आम तौर पे ना. मैंने देखा है कई लोग यहाँ पर भी और इवन बाकी भी जगह पे कि कस्टमर का फॉलोअप बार बार लेते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं. तो वहाँ पर ना कस्टमर इमेज नेगेटिव बना लेता है आपके बिजनेस के बारे में.
0: अभी आपको कल का एक इंसिडेंट बताता हूँ विदाउट टेलिंग यू माय बिजनेस डिटेल. एक कस्टमर से मैंने मीटिंग की, उसको समझाया. अब वो बंदा एक पर्टिकुलर चैनल पे एडवर्टाइजिंग करता है, उसने हजार रियाल बर्बाद किए, उसको जीरो रिजल्ट मिला.
1: ओके,
0: मैंने बोला मेरे पास सिर्फ 100 रियाल लगाओ उसी चैनल पे, लेकिन मेरे साथ, तुम्हारे साथ नहीं, मेरे साथ 100 रियाल लगाओ 5 दिन के लिए, इंशाल्लाह तुमको रिजल्ट दूंगा. उसकी समझ में नहीं आई बात.
1: अच्छा.
0: तो मैंने आखिरी लाइन क्या बोला, भैया तू एक काम करना, तो 1000 रियाल और लगा दे और वो भी तेरे को जीरो रिजल्ट देंगे, उसके बाद मेरे पास पलट के आ जा.
1: ऑब्वियसली अगर तुम एक जगह 1000 लगा रहे हो तो एक जगह 100 लगा कर देख लो, है ना. आपने सही पॉइंट दिया उसे. और सॉल्यूशन तो देखो यार, उसको तलाश करना पड़ता है. कई बार आपको एक जगह से एक सवाल से जवाब नहीं मिल जाता, उसके अलावा 1000 सवाल करना पड़ता है एक जवाब के लिए. बट इन सब के बीच फजल भाई, आपकी जो मुझे करनी बात लगी वो ये कि अगर कस्टमर जा रहा है तो जान दो भाई, जबरदस्ती पीछे भागने की जरूरत नहीं है, उसको छोड़ दो, ऐसी वो खुद ही आएगा.
0: लेकिन एक चीज आपको लाजिम करना है कि भाई ये कस्टमर गया क्यों.
1: हाँ, obviously सीखा, सीखना
0: और
1: है.
0: ये सोचो,
1: learning.
0: और ये सोचो कि पहली चीज ये सोचो भाई मेरी गलती से गया.
1: हाँ.
0: कस्टमर पे ब्लेम मत डालो.
1: हाँ.
0: कस्टमर पे हर चीज ब्लेम नहीं डालो. अगर तुम कस्टमर पे ब्लेम डालना शुरू करोगे यू विल नेवर लर्न.
1: हाँ.
0: और मैं तो मेरे भाई एवरी डे मैं समझता हूँ कि मैं एक स्टूडेंट ऑफ बिजनेस, मैं अपने आप को एक्सपर्ट या मास्टर कभी नहीं मानता.
1: हाँ.
0: मैं समझता हूँ कि मैं एम स्टूडेंट ऑफ बिजनेस, आई शुड लर्न. और अल्हम्दुलिल्लाह रोज मैं सोने से पहले ये एनालिसिस करता हूँ, ये ऑडिट करता हूँ.
1: हाँ.
0: भाई आज कितना बिजनेस मिला, बंदे ने बिजनेस क्यों दिया.
1: हाँ.
0: कितने बंदों ने बिजनेस नहीं दिया और क्यों. तो अल्हम्दुलिल्लाह आप यकीन मानिए एवरी डे समथिंग, लेट्स से 5% इंप्रूवमेंट आ रहा है मेरा.
1: माशाल्लाह, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लर्न करें और फिर चौथे साल जाके अर्निंग हो जाएगा.
0: भाई तीन स्टेप्स है. आपको अगर धंधा करना है, आपको पैसा कमाना है, अगर सक्सेस होना है, तो
1: हाँ.
0: ये 4 मंथ पकड़ लो मेरी जान, 3 बार लर्न करना पड़ेगा,
1: उसके बाद अर्निंग होगी.
0: माँ के पेट से सर, हम माँ के पेट से क्या सीख के पैदा हुए थे,
1: कुछ नहीं.
0: हाँ?
1: यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है फजल भाई टीचर हैं और अपन स्टूडेंट हैं.
0: आप सोचिए 2 मिनट के लिए कि हम जब माँ के पेट से पैदा हुए थे, हमको बात करने नहीं आता था, तो फिर हम कैसे कम्युनिकेट करते थे, हम रोते थे सर.
1: हाँ, हमने देखिए अम्मा के पेट से आने के बाद से अपन ने लर्निंग ही करी है, लेकिन अर्निंग नहीं हो पा रही है. पता नहीं ये अर्निंग नहीं हो पा रही है ऐसा क्यों है, लर्निंग चल रही है हमारी जिंदगी में.
0: आपको आपको और आपके लिसनर्स को एक सिंपल फॉर्मूला देता हूँ. आपको अगर समझ लीजिए बिजनेस करना है, एक्स्ट्रा अर्निंग करना है, तो गैप तलाश करिए. गैप
1: क्या तलाश करें,
0: गैप,
1: गैप
0: मार्केट में।

0: गैप क्या है? फॉर एग्जाम्पल 12 दुकानें हैं मार्केट में, ठीक है, 13वीं दुकान आपकी हो गई, तो कहां से बिजनेस मिलेगा?
1: अच्छा, सेम दुकान नहीं होना चाहिए, जो गैप है उसको फिल करना है ऐसा?
0: गैप निकाल भाई, मार्केट में कमी किस चीज की है, कमी किस चीज की है, इस पे थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है, थोड़ा होमवर्क करना पड़ता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है।
1: फजल भाई वाला काम नहीं है भाई। फजल भाई आपने ये सही कहा, मार्केट में कमी किस चीज की है, मुझे लगता है लर्निंग की कमी है जी।
0: बिल्कुल।
1: ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा बात करते हुए, थैंक यू सो मच मेरा भाई।
0: थैंक यू।
1: तो देखो सारी बातें तो भाई ने कवर कर ही ली हैं, बाकी मैसेज की तरफ आते हैं। और ये एक मैसेज है फजल भाई, आई नीड ट्रस्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी बिकॉज आई एम एयर फ्रेशनर, अच्छा सेलिंग एयर फ्रेशनर, इफ दे डोंट लाइक द स्मेल आई विल चेंज द फ्रेगनेंस, अदरवाइज आई विल गिव फ्री, नो इशू, आई नीड टू सेटिस्फाई द कस्टमर एंड आई वॉन्ट टू गिव आर बेस्ट 100%। ओके, तो ये हैं मकसूद साहब, और मकसूद साहब ने की क्या बात ही कही है कि अगर एक खुशबू आपको पसंद नहीं आ रही तो चेंज करने की कोशिश है, और कई बार आपको फ्री देना पड़ता है जस्ट के उनको आइडिया हो जाए कि आप क्या सेल कर रहे हैं, आप क्या प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आए हैं और क्यों वो अच्छा है, क्यों वो अफोर्डेबल है। देखो तो चीप प्रोडक्ट देने की ज़रूरत नहीं है, अफोर्डेबल और उसकी वैल्यू होनी चाहिए, है ना। किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप रखते हैं अपने पास तो उसकी एक वैल्यू होनी चाहिए। अगर आपने कोई एक डीओ खरीदा है मिसाल के तौर पे, अगर आपको वो खुशबू पसंद आई है तो आप 10 रियाल अगली बार से एक्स्ट्रा दे देंगे क्योंकि वो खुशबू आपको पसंद आई है, चार लोगों ने आपसे उस खुशबू के बारे में बात किया है, तो इसलिए आप उसके लिए 10 रियाल और एक्स्ट्रा दे भी देंगे। तो जब प्रोडक्ट अच्छा हो तो कंज्यूमर जो है ना वो थोड़ा सा पेमेंट कर देता है एक्स्ट्रा, लेकिन चीप की तरफ तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ऑल्दो कई बार ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो ओनर होते हैं उनको तो पता ही नहीं होता कि यार हम जो है अपने प्रोडक्ट का जो वैल्यू रख रहे हैं वो असल में अफोर्डेबल है कि वो यू नो ज़रूरत से ज़्यादा जा रहा है। मिसाल के तौर पे कोई बहुत ऐसी कोई चीज़ है जो 1 या 2 रियाल की है, लेकिन अगर आप उसे 5 रियाल की बेच रहे हैं तो कंज्यूमर बेवकूफ़ थोड़ी है कि यार उसकी अगर लागत 1 की है 2 का बेच दो यार प्रॉफिट के लिए, चलो 3, आप 5 का बेचेंगे तो वहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाती है। लेकिन मकसूद साहब ने बहुत ही उम्दा बात कही है, और वो ये कि यार थोड़ा सा तो हम तुम्हें एक बार को फ्री भी दे देंगे, और ट्रस्ट जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जब के आपका बिजनेस अगर नया है तो ट्रस्ट जीतना, ट्रस्ट बिल्ड करना, बेहतर बनाना अपने प्रोडक्ट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मकसूद साहब ने बहुत उम्दा लिखा है। फिर सलाम लिखा, वालेकुम अस्सलाम, शेख साहब कहते हैं फूड डिलीवरी में कितना उदार है वहां पर, अरे वो लोग भी कभी कभार यार वो लेकर चले आते हैं कार्ड टैप करने वाला। हाँ, जैसे कई बार होता है ना कि आपके वो एक तो वहां पर वो है कि जो आपका क्या बोलते हैं उसे खुद का जिनका रेस्टोरेंट, तो वो तो अपने वाले डिलीवरी वाले बंदे को भेज देते हैं और वो कार्ड रीडर के साथ भेजते हैं। दूसरा ये है एप्लीकेशन वाले, एप्लीकेशन वाले डिलीवरी भी देते हैं कैश ऑन डिलीवरी, और फिर वो ऑनलाइन पेमेंट भी लेते हैं, तो अपन ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, फूड वालों से अपन बचे हुए हैं। उसके अलावा एक और ही मैसेज है, सलाम का, वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई, क्या हाल चाल, बहुत अच्छा। और ये लिखा है कि ट्रस्ट जीतना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इम्प है, IMP इम्प है, ठीक है, हम भी ट्रस्ट जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। कहते हैं कि भाई 100 में से 1 आध बुरा निकल जाता है, सबकी सुनने की नीड नहीं, जरूरत नहीं है। ओके, कूल, ये भी एक मैटर है कि 100 में से, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ भी एक चीज होती है भाई, अगर उस एक आदमी का पौवा अच्छा हुआ तो फिर क्या करोगे। मिसाल के तौर पर अगर किसी को आपने कोई चीज दी और फिर वो 10 लोगों को और कहे कि यार इनके यहाँ से प्रोडक्ट ना लेना, बहुत बेकार देते हैं, ये कस्टमर सर्विस अच्छी नहीं देते, तब क्या करेंगे। ऐसे ऐसे ऐसे कस्टमर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आदित्य रेखारी की आवाज में चांद एक गाना, 6:27 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, आदित्य रेखारी FM 107 पे गाना एंजॉय करें।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील
3: ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील
1: ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
2: हाँ जी FM 107 दिल से देसी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। FM 107 पे इस्तकबाल है आप सभी का। 6:37 हमारे स्टूडियो की घड़ी में। और आज का सवाल के मानिए, आप एक कस्टमर हैं या आप एक किसी बिजनेस के ओनर हैं, हो सकता है आप कपड़े का काम कर रहे हो, ऑनलाइन काम कर रहे हो, या रेस्टोरेंट हो आपका, कोई स्टोर हो, तो ऐसे में अगर आपसे कोई गलती हो जाए, 100 में से 1 या 2 कस्टमर आपको आपकी गलती के लिए जिम्मेदार ठहराएं, तो क्या ऐसे में आप उनका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करेंगे, आपसे जो गलती हुई है उसे पाटने की कोशिश करेंगे, या फिर आप कहेंगे हमें अडाओ प्रॉफिट आ गया, आप जान दो पैसे आ गए, अब जान दो, 1-2 कस्टमर तो ऐसे निकलते ही। वेल, एक भाई ने ये कहा भी है कि यार सारे कस्टमर को मनाने की जरूरत है नहीं। तो एक बार फिर से मैसेज की तरफ बढ़ लेते हैं। और एक नाम है, इनका नाम है वलीद साहब। और वलीद साहब कह रहे हैं और बहुत सही बात कही भी है कि कई कस्टमर तो ऐसे भी होते हैं कि वो आते हैं, रोते हैं, गाते हैं, पैसे भी कम कराएंगे, और फिर अगर वही आपसे रो कर जाएंगे, कह के जाएंगे यार देखिए आपने कुछ ज़्यादा पैसा लगा दिया है, या फिर आपने कोई ख़राब काम उनको दे दिया, प्रोडक्ट गलत हो गया है, तो ऐसे में उनको मनाने की ज़रूरत नहीं है। इतने साल से, अगर आप 1 साल से भी बिजनेस में, तो आपको पता चल जाता है कि कैसे कस्टमर आते हैं, किन कस्टमर को असल में मनाना है, किन को नहीं मनाना है, तो ये आपको असल में पता हो जाना चाहिए। और ये बहुत ही लाजिम बात भी है, अगर आप 1 साल से हैं तो आपको पता हो जाना चाहिए कि किसको मनाना है,

0: किसको लेट गो करना है और किसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है, ये बड़ी अहम बातों में से एक है और मुझे बिल्कुल सही बात इनकी लगी है। फिर एक और मैसेज है, सलाम लिखा है, वालेकुम अस्सलाम, नाम है इनका रियाज साहब और रियाज भाई कहते हैं कि भाई ट्रस्ट जीतने से कस्टमर दोबारा आएगा, ये गारंटी कहीं नहीं है, ये गारंटी तो बड़े बड़े वाले बिजनेस वाले भी, चाहे वो स्टोर हो कुछ भी हो, कस्टमर लौट के वापस आएगा ये पता नहीं है। फिर उसके बाद एक और मैसेज है, सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, भाई ने जो पूछा है इसका जवाब मैंने इनको लिख कर दे दिया है क्योंकि अपन यहाँ पर नहीं कर सकते। अदर्ब, हेलो अदर्ब, अगर आपने मैसेज रिसीव कर लिया तो मेरे को बता देना, बाकी आपके सवाल का जवाब तो मैंने दे दिया। मुबीन साहब कहते हैं जवानी में सवाल पूछने से भाई साहब डबल बुढ़ापे में सवाल जवाब नहीं होते, क्या है ये? मुबीन भाई आज भी उस स्टेज पे हैं जहाँ पर उनको टाइपिंग सीखना ही पड़ रहा है। मुबीन भाई आपको अलग से क्लासेस लेनी पड़ेंगी और टाइपिंग की क्लासेस लेने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी और भी जगह क्लासेस चलेंगी लेकिन इकलौते आप होंगे जिनसे 1,000 नहीं 2,000 नहीं 4,000 रियाल जो है वो मांगा जाएगा। फीस आपके लिए थोड़ी महंगी पड़ेगी क्योंकि आपको सिखाना बहुत ज़्यादा, आप ऑडियो भेज दिया करो मेरा भाई, ठीक है। फिर एक और मैसेज है, सलाम, पैसा आने के बाद कस्टमर भूल जाओ, अरे ये इतना ज्यादा रॉ ये तो नहीं होना चाहिए। जी हेलो, सलाम अलैकुम।
1: वालेकुम सलाम
0: भाई, आपका रेडियो थोड़ा धीमा कर लीजिए, उधर से आवाज आ रही है रिटर्न में।
1: जी अभी
0: अभी नहीं आ रही है। हाँ जी, क्या नाम है?
1: तादिम हुसैन।
0: ताजिम,
1: तादिम हुसैन,
0: तो हुसैन बोलता हूँ मैं क्योंकि अभी भी पहला जो आपका नाम है ना वो समझ नहीं आया मेरे को।
1: मुश्किल नहीं है, खादिम हुसैन के,
0: खादिम, अच्छा हाँ, अभी आपने खादिम में पहले जोर नहीं डाला, खा खा से अच्छा। पहले आपने खादिम हुसैन, तो वो मेरे को समझ नहीं आया। तो खादिम साहब क्या कहना चाहेंगे आज के टॉपिक पे?
1: आज के टॉपिक में तो आदमी आदमी को देख के फिर उस सिचुएशन के हिसाब से चलना पड़ता है ना।
0: अरे वाह, आपने कभी कोई बिजनेस किया या कोई सोचा है बिजनेस करने के लिए, कोई काम करने के लिए?
1: बस फिर वही पैसे की कमी।
0: ओ ये तो वही वाली बात हो गई कि फजील भाई तुम भी उधारी पे, हाँ भाई, खादिम साहब आप भी उधारी पे, हाँ यार हम कौन सी नई चीजें।
1: वक्त हालात इस तरीके से चल रहे हैं ना।
0: अच्छा ठीक है, लेकिन फिर भी आप अगर एज अ कस्टमर भी बोलेंगे तो एक क्या प्रॉब्लम आप फेस करते हैं ओनर से या प्रोडक्ट को लेकर जो आपको लगता है कि ओनर को ध्यान देना चाहिए?
1: आजकल तो वो वाला सिस्टम नहीं है जो पहले जमाने में कस्टमर या फिर ओनर होते थे, वो अभी सिस्टम नहीं है ना। आज तक तो ज्यादातर कारोबार में तो
0: पैसा आया और फिर भूल जाते हैं, पैसा आते फिर भूल जाते हैं।
1: हाँ ना, बात वही है ना, लेकिन जो अपने मुल्क में है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में, वहाँ पे कस्टमर को देखना पड़ता है।
0: अच्छा, वहाँ पर कस्टमर को इसलिए देखना पड़ता है,
1: उन्हें मनाना पड़ता है, कुछ कस्टमर ऐसे हैं उन्हें भगाना पड़ता है।
0: और कुछ कस्टमर ऐसे भी हैं जो 4-6 लड़के लेकर चले आते हैं, तो फिर तो बैठ कर बताना पड़ता है कि अरे साहब देखिए आप ऐसा है, पैसे लेकर जाइए, प्रोडक्ट भी ले जाइए।
1: वो तो सिचुएशन के हिसाब से बोल रहा हूँ ना, हर चीज सिचुएशन के हिसाब से होगी।
0: क्या रही है, मेरे को अब पता चला कि इतना सोच समझ के आपने पहली लाइन बोली थी, सिचुएशन के हिसाब से भाई साहब काम करना चाहिए, अगर 4-6 लड़के लेकर आ रहा है कस्टमर तो जो वो कहे वो कर दो।
1: नहीं फिर उसके हिसाब से फिर जो जो इसका बिजनेस होता है उसके पास भी 4-6 होते हैं ना चाय पीने वाले,
0: चाय भी। अच्छा आपको भी पता है, आप उन 4-6 से निपट चुके हैं या आपके ऊपर वो मुसल्लत कर दिए गए?
1: नहीं ऐसा सिचुएशन एक दो बार हमारे साथ भी कभी हुआ है ना, एक बार मोबाइल लेने गए तो यूज मोबाइल मिल गया, तो उस हिसाब से तो हमने कहा था कि भाई हम ये करेंगे वो करेंगे, वो कहेगा तो भाई हमारे भी 4 बंदे बैठे हुए हैं।
0: तो फिर जीता कौन? अब तो मुझे मजा आ रहा है इसमें।
1: नहीं हमने मोबाइल वापस कर लिया था ना, वो पुराने जमाने की बात है जब नेटेल का जमाना था।
0: ओ अच्छा, मतलब पुराने की बात, हाँ नहीं पुराने जमाने में तो चल जाता था, अब तो क्या है कि ऑनलाइन सब सिस्टम हो गया ना, तो आप ऑनलाइन धमकी दे देते हैं। आप देखते होंगे ऑनलाइन
1: भी वो चीज, वो मजा नहीं है जो आप खुद जाके खरीदारी करेंगे ना, ऑनलाइन में वो बात नहीं है।
0: ये भी बात सही है, ऑनलाइन में वो मजा नहीं है। लेकिन आप क्या कभी
1: हमारे साथ जाएंगे चीज लेंगे, बोलेंगे, मैं 800 बोलूंगा, उसका मजा अपना ही है।
0: अरे अच्छा, नेगोशिएशन जो है उनको वो करना है। ओके मेरा भाई,
1: उसमें जो सुकून है ना, अगर 10 रुपए भी दुकानदार छोड़ देता है, उसमें जो सुकून है ना, वो किसी चीज में नहीं है दुनिया में।
0: सही है, चले भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जुड़ने के लिए। ओके मेरा भाई, तो देखो लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और ऑनलाइन का सिस्टम, मेरा मतलब कहने का ये था कि आजकल ऐसा भी होता है ना कि अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो आप टैग कर देते हैं, आप सोशल मीडिया पे मेंशन कर देते हैं कि भाई फला प्रोडक्ट मैंने फला जगह से लिया था, अच्छा नहीं है। तो इवन अगर बड़ी कंपनियां हैं तो वो एक बंदा रखती हैं बाकायदा रिप्लाई करने के लिए, तो उधर से जो है मैसेज भी आता है, अरे सर आप आ जाइए ना, चार लोगों को चिल्लाने की जरूरत क्या है आपको। तो ऑनलाइन कस्टमर के आने से, ऑनलाइन आने से या फिर सोशल मीडिया के आने से काफ़ी फायदा भी हुआ है कि अपने प्रोडक्ट को लेकर सीरियस भी हुए हैं जो काम करने वाले लोग हैं, जो यू नो बिजनेस वाले लोग हैं। तो ये एक कस्टमर के लिए बेस्ट है, और कतर भी कस्टमर के लिए बेस्ट करता है, और यही वजह है कि एक कस्टमर हेल्पलाइन भी है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने कहीं से प्रोडक्ट लिया, वो सही नहीं हुआ, तो आपने तो यार पैसा दिया है ना किसी प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए, तो अगर आपने पैसा दिया है तो ज़रूरी है कि प्रोडक्ट अच्छा निकले। लेकिन कतर के गवर्नमेंट ने ये काम बहुत ही उम्दा किया है, प्रोडक्ट ख़राब निकले तो आप जो पैसा दे रहे हैं वो बर्बाद ना जाए, इसलिए 24/7 कस्टमर का जो हेल्पलाइन है वो चलता रहता है। और 16008 जो है, कई बार आप देखते होंगे ये जो हेल्पलाइन नंबर है, लेबर कंप्लेंट्स है, इस पर आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी ने आपको कोई प्रोडक्ट दिया और वो प्रोडक्ट ख़राब हो गया, या फिर किसी ने फ्लायर या पोस्टर जो है वो सोशल मीडिया पे डाला और उस पोस्टर में कोई प्रोडक्ट है कि एसी है, वॉशिंग मशीन है, कोई भी प्रोडक्ट है, आपने वहाँ से लिया और वो 5 महीना 6 महीना 3 महीने में ख़राब हो गई, तो आप 16008 पे कॉल कर सकते हैं। अगर तब आप कॉल कर सकते हैं कि जब आपने प्रोडक्ट खरीदा और अब फिर वो जो जिससे आपने ख़रीदा है वो वापस नहीं ले रहा हो, क्योंकि एक साल की गारंटी है, फिर भी वो वापस नहीं ले रहा है, तो इस तरह की सिचुएशन में, कंप्लेंट्स करने की सिचुएशन में, तो 16008 जो है ये लीगल असिस्टेंट आपको प्रोवाइड कराता है, कंपनी इश्यूज़ है, कॉन्ट्रैक्ट के वायलेशंस हैं, तो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता है। फिलहाल अब इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद वैसे वक्त बचेगा नहीं क्योंकि फिर अजान का वक्त हो जाएगा। तो सवाल जो है बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि एक अच्छा एक और मैसेज आया, शोएब भाई कहते हैं भाई भाई पॉलिश ज़्यादा करने से भी कस्टमर बनते हैं। अच्छा नहीं नहीं, कस्टमर तो मेरे को नहीं बनाने का, मतलब ऐसा सिंपल रखने का कि आना है आओ, नहीं जाना। फजल भाई ने बहुत सही बताया कि अगर तुमको आना है तो आओ, नहीं आना है तो छोड़ दो। जब उसको मार्केट में दिखेगा कि अरे यार बाकी जगह चीज़ें ख़राब है, बेहतर आपके पास है, लेकिन फिर बेहतर देना भी पड़ेगा। तो शेब भाई ये भी एक ज़रूरी बात है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक की तरफ अपन बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास जो है वक्त जो है वो बहुत कम सा है। लेकिन सवाल एक कर लेते हैं, और सवाल बड़ा सिंपल सा है, सवाल सिर्फ इतना सा कि सवाल क्या, ख़त है, और वो ख़त ये कि आपको लिखना है, आमतौर पे बिजनेस ओनर जो है कस्टमर को कुछ ना कुछ काम देते हैं और बिजनेस ओनर की तरफ से कुछ गलतियां हो जाती है, लेकिन आज मैं सवाल पूछ रहा हूँ कस्टमर को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है अगर आप बिजनेस ओनर्स, चाहे वो रेस्टोरेंट वाले हों, कपड़े वाले हों, व्हाटएवर कुछ भी हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम आप फेस करते हैं जिसकी वजह से आपको नुकसान होता है और आप बिजनेस ओनर को बताना चाहते हैं। तो एक प्रॉब्लम आप एज अ कस्टमर जो फेस करते हैं और वो बिजनेस ओनर को बोलना चाहते हैं, वो लिखकर बताइए हमारे व्हाट्सएप नंबर 6622107 पे। डियर ओनर्स, फिर उसके बाद आप अपनी बात लिख सकते हैं।
2: दोस्तों, स्कूबा डाइविंग और फ्री डाइविंग के दौरान हिफाजती कवानीन पर अमल जरूरी है। वजारत दाखिला ने स्कूबा डाइविंग और फ्री डाइविंग के शौकीन अफराद को हिदायत दी है कि हिफाजती कवानीन पर सख्ती से अमल किया जाए ताकि पानी के नीचे होने वाले हादसात से बचाव मुमकिन हो और गोताखोरी या वाटर डाइविंग को महफूज बनाया जा सके। याद रखें कि डाइविंग शुरू करने से पहले ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है जो किसी ऑफिशियल इदारे से हासिल की जाए। इसके साथ साथ समंदर और मौसमी सूरत हाल भी चेक करना चाहिए ताकि नामुनासिब हालत में डाइविंग को अवॉइड किया जा सके। वजारत दाखिला ने वाजे तौर पर कहा है कि जब आप अकेले हों तो डाइविंग मत कीजिए और खाने के फौरन बाद या ऐसी दवा लेने के बाद डाइविंग मत कीजिए जो तवज्जो या होश पर असर डाल सकती हो। ये भी याद रखिए कि समुद्री मखलूक को छूना या नुकसान पहुंचाना मना है, जबकि समुद्री माहौल की हिफाजत भी हर डाइवर की जिम्मेदारी है। डाइविंग से पहले तमाम इक्विपमेंट की जांच कर लेना लाजमी है ताकि ये यकीन हो जाए कि वो ठीक हालत में है। डाइवर को चाहिए कि डाइविंग लोकेशन और वापसी के वक्त के बारे में घर वालों या दोस्तों को पहले से इत्तला दें और पानी की सतह पर डाइविंग फ्लैग के साथ नुमाया

0: बॉय लगाएं ताकि वहां पे जो कश्तियां या दूसरे लोग हैं उनको आपकी मौजूदगी का अंदाजा हो सके। डाइविंग के दौरान पानी की गहराई, प्रेशर और एयर कंजम्पशन पर लगातार नजर रखनी चाहिए, जबकि ममनू इलाकों और मुल्क की समंदरी हुदूद से दूर रहना जरूरी है और किसी भी इमरजेंसी की सूरत में फौरन 999 पर राब्ता कीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर कहती है कि हिफाजती कवानीन पर अमल करें, महफूज रहें और समंदर का लुत्फ जिम्मेदारी के साथ उठाएं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में इशा की अजान का वक्त हो गया है।

0: दिल से देसी
1: दिल से देसी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। एफएम 107 पे इस्तकबाल है आप सभी का। 6:53 हमारे स्टूडियो की घड़ी में। और सवाल ये था कि एक कोई बात एज अ कस्टमर अगर आपको ओनर को लिखनी हो तो क्या आप लिखेंगे। वेल कई सही बातों में से एक बात है जो आबिद भाई ने लिखी है और कहते हैं आफ्टर सेल सर्विस को बेहतर करना जरूरी है ओनर्स को। इनने बात ही लिख दी, कोई खतवत नहीं लिखा। और ये कई बार होता है कि आप जो है काम कहीं पर जाते हैं, आप प्रोडक्ट लेते हैं, कई बार खाना वगैरह खाते हैं। आपने देखा रेस्टोरों में भी ऐसा होता है कि आप खाना खाए, आपको अच्छा नहीं लगा, आप कहने जाते हैं वहाँ के ओनर से या फिर जो रिसेप्शन पे खड़ा रहता है उसको, आप बोलते भी है ना, काउंटर पे खड़ा रहता है तो उसको बोलते, वो कहता अगली बार, नेक्स्ट टाइम। अब भाई वो मतलब अपोलोजाइज भी नहीं करते, सॉरी भी नहीं बोलते, वो सीधे अरे इतना ज्यादा खून खोलता है मेरा, मेरा ऐसा दिल करता कोड़े वाले भैया को साथ में ले जाया करूं। वो तो यहाँ अलाउड नहीं है। वरना कनपट्टी पे बजाने का मन तो करता है, अरे भाई कुछ तो हाँ हाँ क्या। और कई बार तो हाँ हाँ भी नहीं करते भाई, सर हिला लेते हैं बस, वो मुक्का ही मारने का दिल करता है। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं, अरे सर आई एम रियली सॉरी, नेक्स्ट टाइम आप आएंगे आपको हमारी तरफ भेजा फ्राई फ्री हमारी तरफ से। अरे वाह क्या बात है। ऐसे ऐसे जब कोई कहता है मैं कहता हूँ अरे अभी लगाइए अभी खाऊंगा मैं, भेजा फ्राई अभी लगाओ यार, मेरे को चाहिए भाई। मस्त लगता है अगर ऐसा कोई कहते सर अगली बार आप आइए आपको अगली बार हमारी तरफ से टिक्का फ्री भेजा फ्राई, मैं तो मान जाता हूँ तुरंत कि हाँ अभी लगाओ। लेकिन आबिद भाई ने कई बार बात सही भी कही है, ऐसा होता है प्रोडक्ट आप बेच देते उसके बाद आप सर्विस नहीं सही देते। साबिर साहब भी कुछ कहते हैं और सलाम लिखने के बाद कहा है ओनर प्लीज कस्टमर की बात को सुनिए, अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए बेवकूफ ना बनाओ। बे भाई क्या सही बात ली, कई ओनर ये करते हैं यार, जो माल नहीं निकल रहा। मेरे अब्बा भी यही करते थे, मतलब अब्बा ऐसा नहीं करते थे, अब्बा ऐसा करते थे कि वो सामने रख देते कि ये भी देख ही लो तुम। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं कई बार, जब एज अ ओनर आपको बहुत बुरा लग रहा होता कि यार एक प्रोडक्ट अपने पास रखा हुआ वो निकल नहीं रहा है, तो आप हल्के हाथ से सरका देते हैं कस्टमर के सामने कि देखो ये वाला देखो अच्छा लग रहा, देखो तो चेक करो। ये भी इंसान जो है वो कर लेता है, बेकार इंसान तो है इंसान लेकिन कर लेता है। और समीर साहब ये काफ़ी हद तक सही बात है कि अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए कस्टमर के साथ धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए। और इसी पर एक्चुअली शेख साहब मुकम्मल करते हैं इस बात को, लिखा है कि प्रोडक्ट के बारे में सही बताइए। भाई ऐसा लग रहा है कि मैं ही बेच रही हूँ भाई, ठीक है। बाकी लिखा है प्रोडक्ट के बारे में सही बताइए, जिनको जानकारी कम मालूम उनको सही बात बताइए। करेक्ट, हाँ ये भी कई बार ऐसा होता भी है कि आप कुछ लेने जा रहे हैं सामान और आपको कुछ और दिखा के एकदम लल्लू पंजू बातों में, और ये वही करते हैं जिनका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा होता है। एक बार भाई मैं लेने गया अपने इंडिया में एक ऐसा मोबाइल जो बहुत ज़्यादा जिसका नाम था, भाई दूसरा वाला मोबाइल चिपका दिया यार उसने हमें, क्योंकि उसमें मार्जिन ज़्यादा था तो वो चिपकाने के लिए बहुत सी बातें कर रहे हैं, इसमें फोटो अच्छी आती है, देखिए इसमें कलर कॉम्बिनेशन कितने अच्छे आ रहे हैं, देखिए इसमें फिल्टर भी आ गया है, इनबिल्ट है, एप्लीकेशन है, भाई उनने जो चोमू बनाया है मेरे को। और भाई मैं इस बात पे कहूँ क्यों गलत, लेकिन मैं बना चोमू यार। उस दिन मेरे को बनाया भाई ने, मैं दूसरा मोबाइल सोचे यार, 4-6 हजार की चीज अगर आप ले रहे हैं और आपको कोई बना दे तो दिल तो दुखता है। फिलहाल इसी के साथ वक्त हो चुका है कि यहाँ से अलविदा कहूँ और इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल शाम 6 बजे आपसे। देवनेगी और दीक्षा की आवाज़ में एक खूबसूरत से ट्रैक के साथ आपको छोड़कर जा रहा हूँ, एंजॉय करें इस गाने को, इंशाल्लाह मुलाकात कल शाम 6 बजे। दिल से

0: कहते हैं जिंदगी एक रेस है, लेकिन क्या आप इस रेस में भागने के लिए तैयार हैं?
1: आपका करियर सिर्फ एक जॉब नहीं, आपके फ्यूचर की डायरेक्शन है। तो फिर सवाल ये है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं?
0: नए करियर्स, फ्यूचर स्किल्स, चेंजिंग जॉब मार्केट और वो अपॉर्चुनिटीज जो आपके मुस्तकबिल को नई राह दे सकती हैं। अपने करियर का अगला कदम सोच समझ कर उठाइए।
2: अस्सलाम वालेकुम लिस्टनर्स, आप सुन रहे हैं FM 107 कदर और शो है ये फ्यूचर करियर, वो शो जहां हम उन प्रोफेशनल्स के बारे में बात करते हैं जो हमारी कल की दुनिया को शेप कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज के लिए खुद को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं हूं आपकी आरजे मावश। हेल्थ केयर हमेशा से हमारी सोसाइटी का एक बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर रहा है। डॉक्टर्स, नर्सेस, फार्मासिस्ट और दूसरे हेल्थ केयर वर्कर्स हमारी कम्युनिटीज को हेल्दी रखने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब हम हेल्थ केयर के बारे में सोचते हैं तो आमतौर पर हमारे जहन में हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट का तस्वीर आता है। लेकिन आज हेल्थ केयर की दुनिया बहुत तेजी से चेंज हो रही है और इस चेंज के पीछे एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है टेक्नोलॉजी। आज टेक्नोलॉजी हेल्थ केयर सर्विसेज का एक एसेंशियल हिस्सा बन चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड से लेकर वियरेबल डिवाइसेस तक, रोबोटिक सर्जरी से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, टेक्नोलॉजी हेल्थ केयर के तरीके को फंडामेंटली चेंज कर रही है। पहले पेशेंट का मेडिकल रिकॉर्ड अक्सर पेपर फाइल्स में मेंटेन किया जाता था। आज बहुत से हेल्थ केयर सिस्टम्स में पेशेंट की इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर और मैनेज की जा रही है। वेरिएबल डिवाइसेस लोगों को अपनी हेल्थ और फिटनेस के बारे में एस्पेक्ट्स मॉनिटर करने में मदद देते हैं। स्मार्ट डिवाइसेस हार्ट रेट, फिजिकल एक्टिविटी और दूसरे हेल्थ रिलेटेड मेजरमेंट्स को ट्रैक कर सकती हैं। इसी तरह मेडिकल टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस ने डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के नए तरीके भी इंट्रोड्यूस किए हैं। रोबोटिक सिस्टम्स डॉक्टर्स को कुछ कॉम्प्लेक्स सर्जिकल प्रोसीजर्स में असिस्ट कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को लार्ज अमाउंट्स ऑफ मेडिकल डेटा एनालाइज करने और कुछ सिचुएशंस में पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने में सपोर्ट कर सकती है। ये तमाम डेवलपमेंट्स सिर्फ हेल्थ केयर को मॉडर्न नहीं बना रही, बल्कि स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स के लिए नए करियर अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट कर रही हैं। अगर आपको हेल्थ केयर में इंटरेस्ट है लेकिन आप ट्रेडिशनल मेडिकल प्रोफेशन के अलावा कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी आपके लिए एक इंटरेस्टिंग फील्ड हो सकती है। और अगर आप टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स, डेटा और इनोवेशन में इंटरेस्ट रखते हैं और साथ ही लोगों की हेल्थ और क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करने में कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, तो ये फील्ड आपको दोनों इंटरेस्ट को कंबाइन करने का मौका दे सकती है। आज के एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी करियर्स। हम देखेंगे कि इस फील्ड में कौन से करियर्स फ्यूचर में इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। हम बात करेंगे कि स्टूडेंट्स इस फील्ड में करियर बनाने के लिए किस तरह की एजुकेशन और स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। हम ये भी समझेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्थ केयर को किस तरह ट्रांसफॉर्म कर रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम देखेंगे कि कतर में हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी की फील्ड में किस तरह की अपॉर्चुनिटी डेवलप हो रही है। दुनिया भर में हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशंस, स्मार्ट हेल्थ सॉल्यूशंस, स्मार्ट मेडिकल टेक्नोलॉजीज और AI पावर्ड हेल्थ केयर सिस्टम्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही हैं। इसका मतलब है कि हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी के इंटरसेक्शन पर काम करने वाले प्रोफेशनल्स की इम्पोर्टेंस भी बढ़ रही है। आने वाले वक्तों में हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस को सिर्फ डॉक्टर्स और नर्सेस ही नहीं, बल्कि ऐसे प्रोफेशनल्स भी चाहिए होंगे जो टेक्नोलॉजी, डेटा, डिजिटल सिस्टम्स और हेल्थ केयर को समझते हो। यानी फ्यूचर का हेल्थ केयर वर्कफोर्स इंक्रीजिंगली मल्टीडिसिप्लिनरी हो सकता है। और अब आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे, क्या आप ऐसे करियर में काम करना पसंद करेंगे जो टेक्नोलॉजी को लोगों की हेल्थ और क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करने के साथ कंबाइन करते हो? इस सवाल का जवाब अभी अपने जहन में रखिए, क्योंकि आज के एपिसोड में हम हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी की दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि फ्यूचर में इस फील्ड में आपके लिए कौन सी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। और अब वक्त आ गया है हमारे सेगमेंट जॉब्स फॉर टुमारो का। जॉब्स फॉर टुमारो। हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी आज की फास्टेस्ट ग्रोइंग फील्ड में से एक बन रही है। इस फील्ड की खास बात यह है कि ये हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी को एक साथ लेकर चलती है। एक तरफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स पेशेंट्स की नीड्स को समझते हैं और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स डिजिटल सिस्टम्स, सॉफ्टवेयर, डेटा और इनोवेटिव सॉल्यूशंस डेवलप करते हैं। जब ये दोनों एरियाज एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं तो हेल्थ केयर डिलीवरी को इम्प्रूव करने की नई पॉसिबिलिटीज क्रिएट होती हैं। तो चलिए जान लेते हैं कुछ ऐसे करियर्स के बारे में जो फ्यूचर हेल्थ केयर को शेप कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स स्पेशलिस्ट की। हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स हेल्थ केयर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दरमियान एक ब्रिज का काम करती है। हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को मैनेज करने में मदद करते हैं। इनका काम ये इंश्योर करना होता है कि मेडिकल इंफॉर्मेशन एक्यूरेट, ऑर्गेनाइज्ड, सिक्योर्ड और जरूरत के वक्त एक्सेसिबल हो। आज हॉस्पिटल्स में बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जनरेट होती है। पेशेंट्स के मेडिकल रिकॉर्ड्स, लेबोरेटरी रिपोर्ट्स, डायग्नोस्टिक रिजल्ट्स, प्रिस्क्रिप्शंस और ट्रीटमेंट इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स स्पेशलिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में शामिल हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स को मैनेज करना, हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को इम्प्रूव करना, हेल्थ केयर स्टाफ को डिजिटल सिस्टम यूज करने में सपोर्ट करना, पेशेंट डेटा को एनालाइज करना और हेल्थ केयर प्रोसेसेस को ज्यादा एफिशिएंट बनाना। मिसाल के तौर पर अगर एक हॉस्पिटल में पेशेंट इंफॉर्मेशन अलग अलग सिस्टम्स में स्टोर हो और स्टाफ को इंफॉर्मेशन एक्सेस करने में मुश्किल हो तो हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स प्रोफेशनल्स सिस्टम को इम्प्रूव करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। इस करियर के लिए हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी दोनों में इंटरेस्ट फायदेमंद हो सकता है। अब बात करते हैं टेली हेल्थ कोऑर्डिनेटर की। टेली हेल्थ का मतलब है टेक्नोलॉजी की मदद से पेशेंट्स को रिमोटली हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करना, यानी पेशेंट्स को कंसल्टेशन के लिए फिजिकली हॉस्पिटल या क्लिनिक जाना जरूरी नहीं होता। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और पेशेंट्स रिमोटली कनेक्ट कर सकते हैं। टेली हेल्थ कोऑर्डिनेटर्स इस प्रोसेस को ऑर्गेनाइज और मैनेज करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में शामिल हो सकता है वर्चुअल अपॉइंटमेंट्स को मैनेज करना, टेली हेल्थ प्लेटफॉर्म्स को कोऑर्डिनेट करना, पेशेंट्स के साथ कम्युनिकेशन मैनेज करना, ऑनलाइन हेल्थ केयर सर्विसेज को ऑर्गेनाइज करना और इंश्योर करना कि पेशेंट्स टेक्नोलॉजी को इफेक्टिवली यूज कर सकें। सोचिए, एक पेशेंट घर से डॉक्टर के साथ वीडियो कंसल्टेशन करना चाहता है। इस सिंपल प्रोसेस के पीछे अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, पेशेंट कम्युनिकेशन और टेक्निकल सपोर्ट जैसे बहुत से एलिमेंट्स हो सकते हैं। टेली हेल्थ कोऑर्डिनेटर इन सिस्टम को स्मूथली ऑपरेट करने में मदद करता है। जैसे जैसे डिजिटल हेल्थ केयर एक्सपेंड होगी, टेली हेल्थ से रिलेटेड करियर्स भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तीसरा करियर है मेडिकल टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट। मॉडर्न हॉस्पिटल्स में एडवांस मेडिकल इक्विपमेंट और डिजिटल सिस्टम का यूज बढ़ता जा रहा है। मेडिकल टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी सिस्टम्स को सपोर्ट करते हैं। इनका काम डिफरेंट मेडिकल डिवाइसेस को ऑपरेट करना, उनकी परफॉर्मेंस मॉनिटर करना और इंश्योर करना हो सकता है कि टेक्नोलॉजी प्रॉपरली फंक्शन कर रही हो। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में शामिल हैं मेडिकल डिवाइसेस को ऑपरेट करना, इक्विपमेंट की परफॉर्मेंस मॉनिटर करना, हेल्थ केयर स्टाफ को टेक्नोलॉजी यूज करने की ट्रेनिंग देना, टेक्नोलॉजी के करेक्ट फंक्शनिंग को इंश्योर करना और हेल्थ केयर सिस्टम्स को मेंटेन करना। ये करियर उन स्टूडेंट्स के लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है जो हेल्थ केयर के साथ टेक्नोलॉजी में भी स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट रखते हों। हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी सिर्फ कंप्यूटर्स तक लिमिटेड नहीं है। मेडिकल डिवाइसेस, डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट, डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम और एडवांस्ड हेल्थ केयर टेक्नोलॉजीज भी इस फील्ड का इम्पोर्टेंट पार्ट है। और अब चौथा करियर है डिजिटल हेल्थ कंसल्टेंट। हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस को जब न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी होती है तो उन्हें सिर्फ टेक्नोलॉजी खरीदना ही नहीं होती, उन्हें ये भी समझना होता है कि टेक्नोलॉजी को ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है। डिजिटल हेल्थ कंसल्टेंट हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस को इसी प्रोसेस में गाइड करते हैं। वो डिफरेंट एरियाज में एडवाइस दे सकते हैं, जैसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, हेल्थ केयर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, ऑपरेशनल इम्प्रूवमेंट्स और पेशेंट एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन अपने पेपर बेस्ड प्रोसेसेस को डिजिटल सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहती है तो डिजिटल हेल्थ कंसल्टेंट ऑर्गेनाइजेशन को प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में सपोर्ट कर सकता है। इस करियर में हेल्थ केयर नॉलेज के साथ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग भी इम्पोर्टेंट होती है। अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट करियर की, क्लिनिकल डेटा एनालिस्ट। आज हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा कलेक्ट करती हैं। पेशेंट इंफॉर्मेशन, ट्रीटमेंट रिकॉर्ड्स, लेबोरेटरी रिजल्ट्स और हेल्थ केयर आउटकम्स, ये सब वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन डेटा सिर्फ कलेक्ट करना काफी नहीं, इस डेटा को समझना और यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना भी जरूरी है। क्लिनिकल डेटा एनालिस्ट हेल्थ केयर डेटा को एनालाइज करते हैं और पैटर्न्स और ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं। उनका काम हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्थ केयर ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करने, पेशेंट आउटकम्स इम्प्रूव करने, रिसर्च प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने, ट्रीटमेंट इफेक्टिवनेस एवल्यूट करने और हेल्थ केयर डिसीजंस में सपोर्ट प्रोवाइड करने में मदद देता है। डेटा एनालिसिस हेल्थ केयर को एविडेंस बेस्ड डिसीजन लेने में सपोर्ट कर सकती है और ये करियर उन स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पर इंटरेस्टिंग हो सकता है जो मैथमेटिक्स, स्टेट्स, कंप्यूटर्स और हेल्थ केयर में इंटरेस्ट रखते हैं। और अब बात करते हैं हेल्थ केयर साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट की। आज हेल्थ केयर सिस्टम्स इंक्रीजिंगली डिजिटल हो रहे हैं, लेकिन डिजिटलाइजेशन के साथ साइबर सिक्योरिटी की इम्पोर्टेंस भी बढ़ रही है। पेशेंट इंफॉर्मेशन बहुत सेंसिटिव होती है। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, हॉस्पिटल सिस्टम्स, पेशेंट इंफॉर्मेशन, हेल्थ केयर नेटवर्क्स और मेडिकल डिवाइसेस को सिक्योरिटी थ्रेट से प्रोटेक्ट करना जरूरी है। हेल्थ केयर

0: एक्सप्लोर की जा सकती हैं।
1: कहते हैं जिंदगी एक रेस है, लेकिन क्या आप इस रेस में भागने के लिए तैयार हैं?
2: आपका करियर सिर्फ एक जॉब नहीं, आपके फ्यूचर की डायरेक्शन है। तो फिर सवाल ये है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं?
1: नए करियर्स, फ्यूचर स्किल्स, चेंजिंग जॉब मार्केट और वो अपॉर्चुनिटीज जो आपके मुस्तकबिल को नई राह दे सकती हैं। अपने करियर का अगला कदम समझ कर उठाइए।
0: तो हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी को फ्यूचर करियर क्यों कहा जा रहा है? सबसे पहली वजह ये है कि दुनिया भर में हेल्थ केयर की डिमांड कंटिन्यू कर रही है। लोगों की हेल्थ नीड्स भी कभी खत्म नहीं होती। साथ ही टेक्नोलॉजी हर सेक्टर में रैपिडली डेवलप हो रही है। जब हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो नए रोल्स और न्यू करियर पाथवेज क्रिएट होते हैं। फ्यूचर में उन प्रोफेशनल्स की वैल्यू बढ़ सकती है जो सिर्फ एक फील्ड को नहीं बल्कि हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी दोनों को समझते हों। इस फील्ड में अपॉर्चुनिटीज हॉस्पिटल से लेकर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, टेक्नोलॉजी कंपनीज और डिजिटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस तक हो सकती हैं। यानी हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी एक ऐसा करियर एरिया है जहां साइंस, टेक्नोलॉजी, डेटा और ह्यूमन वेलबींग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। अब सवाल ये है कि अगर आप स्टूडेंट हैं और हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी में करियर बनाना चाहते हैं तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी में जाने के लिए सिर्फ एक ही एजुकेशनल पाथवे नहीं है। डिफरेंट बैकग्राउंड्स के स्टूडेंट्स इस फील्ड में एंटर कर सकते हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पाथवेज को समझते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स का। आज बहुत सी यूनिवर्सिटीज हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड प्रोग्राम्स ऑफर कर रही हैं। इन प्रोग्राम्स में हेल्थ केयर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कंबाइन किया जाता है। स्टूडेंट हेल्थ केयर सिस्टम्स, डेटा मैनेजमेंट, मेडिकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशंस के बारे में सीख सकते हैं। अगर आपको हेल्थ केयर के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी इंटरेस्ट है तो हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स एक सुटेबल ऑप्शन हो सकता है। दूसरा पाथवे है कंप्यूटर साइंस। अगर आप टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से आते हैं तो आप हेल्थ केयर सेक्टर में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा एनालिटिक्स और डिजिटल हेल्थ प्रोजेक्ट्स के जरिए एंटर कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स प्रोग्रामिंग, डेटा एनालिसिस, डेटाबेस सिस्टम्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी जैसे एरियाज में स्किल्स डेवलप करते हैं। इन स्किल्स को हेल्थ केयर एप्लीकेशंस में यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हेल्थ केयर एप्लीकेशन सेंटर क्रिएट कर सकते हैं। डेटा प्रोफेशनल्स हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर सकते हैं। AI स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन को इंटेलिजेंट डिजिटल सॉल्यूशंस डेवलप करने में सपोर्ट कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हेल्थ केयर सिस्टम को डिजिटल थ्रेट से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तीसरा पाथवे हेल्थ केयर और मेडिकल साइंसेज का है। अगर आप हेल्थ केयर में इंटरेस्ट रखते हैं तो अपनी मेडिकल एजुकेशन के साथ टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्किल्स भी डेवलप कर सकते हैं। पॉसिबल एरियाज में हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक लेबोरेटरी साइंसेज, पब्लिक हेल्थ और हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट स्किल्स भी शामिल हो सकती हैं। हेल्थ केयर का फ्यूचर मल्टीडिसिप्लिनरी है, इसलिए हेल्थ केयर नॉलेज के साथ टेक्नोलॉजी और डेटा की अंडरस्टैंडिंग आपको फ्यूचर वर्कप्लेस में एडवांटेज दे सकती है। एजुकेशन के साथ स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी में सक्सेसफुल होने के लिए स्टूडेंट्स को टेक्निकल और ह्यूमन दोनों स्किल्स डेवलप करनी चाहिए। सबसे पहले टेक्निकल स्किल्स, डेटा एनालिसिस, डिजिटल लिटरेसी, हेल्थ केयर सॉफ्टवेयर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की नॉलेज और साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस। आपको हर चीज का एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना और नए डिजिटल टूल सीखने की विलिंगनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी के बावजूद हेल्थ केयर एक ह्यूमन सेंटर्ड फील्ड है, इसीलिए ह्यूमन स्किल्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन, एम्पैथी, टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग और अटेंशन टू डिटेल। हेल्थ केयर में छोटी सी इंफॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसलिए एक्यूरेसी और

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
1: आज ही राब्ता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
1: आज ही राब्ता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: وزارت داخلہ کے ادارہ تعلقات عامہ کے تعاون سے ریڈیو قطر پیش کرتا ہے پروگرام

वेलकम एक समय एक मरत फिर आप सबको खुश आमदीद प्रोग्राम पुलिस और आवाम में मैं हूँ आपके साथ अल्हाज शफ़ ज़मान और हमारे साथ आज के इस हलके में मौजूद थे मनशियात से निमटने के इदारे आम से वाबस्ता कैप्टन अब्दुल्ला कासिम आसकर। तो उन्होंने हमें ओवरऑल मनशियात से निमटने के हवाले से काफ़ी सारी अहम हिदायत दी है। वैसे जो इब्तदाई जो अहम यदि मौजू है वो ये कि कानून आगही ख़ानदान की निगरानी नौजवान की तरबियत, तो ये सब चीज़ आपस में मिलकर ही एक मुआशरा जो है ना बनता है। तो ज़रूरी है कि चूँकि आप सब जानते हैं कि मनशियात का मसला आज किसी यानी एक मुल्क का नहीं बल्कि एक किसी एक उम्र के तबके की बात भी नहीं है, ये ओवरऑल मावराए हदूद ये काफ़ी फैल चुका है। तो इस वजह से जराइम की शक्ल भी इख्तियार कर चुकी है। तो सिलसिले में रियासत कतर में नशावर जो अशिया हैं ये लत के जो अशिया ज़हनी असर रखने वाले जो मादे हैं इनके हवाले से वाज़े कानूनी ज़वाबित मौजूद हैं। और बैक वक्त कुछ ऐसे पॉइंट्स भी उन्होंने हमें बताए कि बैक वक्त कवानी तो अपनी जगह पर है लेकिन आगही इलाज और बहाली के इस तरह कुछ उनकी तरफ से कुछ ऐसे प्रोसीजर्स भी हैं एक्टिविटीज़ भी हैं जो मैंने माशरे के साथ मिलकर जो अफराद हैं उनके साथ मिलकर उनके बहाली के लिए भी कोशिशें की जाती है। यूँ नहीं कि बस कानून है तो बस यानी सज़ाएं और ये सब नहीं, बहाली के लिए भी वो काम कर रहे हैं। तो एक तरफ कानून की बात भी आ रही है और साथ साथ बहाली की बात भी उन्होंने की। तो हम बिज़्निल्लाह ताला आज के इस हलके में जैसे कि हमारे मेहमान ने बताया कतर में मनशियात से मुतालिक कानून की बात करेंगे। सफ़र के दौरान दूसरों का सामान अपने साथ लाना ये किस तरह ख़तरनाक हो सकता है। अद्वियात के हवाले से भी उन्होंने कहा कि कतर आने से पहले या कतर में जब आप आ रहे हैं तो किन बातों का आपने ख्याल रखना है और मनशियात के इस्तेमाल और यानी तिजारत वगैरह अगर कोई इससे वो बिज़नेस करे तो इस सिलसिले में कानूनी सज़ाएँ क्या है और मुश्तबा सरगर्मी के इत्तला कैसे दी जा सकती है। और इसी तरह अगर कोई शख्स, सबसे अहम बात यह है मैं तो ये समझता हूँ कि आखिर में जो उन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स लत से निकलना चाहे तो उसके लिए इलाज का रास्ता क्या है। तो ये तमाम महावत हैं और हमारे मेहमान ने तफसीली अंदाज में तमाम तनक़ात बड़ी वजाहत के साथ उन्होंने हमें बताई है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि एक एक नुक्ता जो है ना आप लोगों के साथ बड़ी तफसील के साथ मैं आप पहुंचा दूं। सबसे पहला जो नुक्ता था हमारे कैप्टन अब्दुल्ला कासिम आसकर के साथ जिनके ताल्लुक का जनरल डायरेक्टरेट बराए इंसदाद मुनशियात, मुनशियात यानी नशा आवर अशिया के मुकाबले के हवाले से ये एक बड़ा

0: कोई दवाई दे रहा है ये वो कि भाई उसे ये दवाई पहुंचा देना, तो इस सिलसिले में आप क्या करेंगे, क्या प्रोसीजर्स हैं, कानूनी तौर पर आपको किस तरह के मुसाइलात और जवाबदेही का सामना करना पड़ सकता है। तो सिलसिले में मेहमान ने काफ़ी तफसीली हमें बताया है कि क्या कुछ करना है, तो छोटे से एक ब्रेक के बाद मिलते हैं बेइज़्निल्लाहि ताला, जुड़े रहिए हमारे साथ।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें। आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: हर प्रोफेशनल शख्स इतना मसरूफ है जिंदगी में कि अगर उसे वक्त मिले और कोई उससे पूछे कि बैठिए जरा बताइए क्या चल रहा है,
4: चले तो कट ही जाएगा सफर,
3: तो फिर एक ऐसी कहानी सुनने को मिलेगी जो सीधा आपके दिल पे जा लगेगी। इसलिए हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे कैफे में, जहां आप में से ही एक शख्स हमारे साथ होगा कैफे 107 पर।
5: हर फ्राइडे शाम 7:15 बजे से FM 107 पर दो हवाले कबीर के साथ।
6: दो हवाले कबीर के साथ।
7: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

हाँ जी, एक बार तो फिर आप सबको खुश आमदीद प्रोग्राम पुलिस अरवाम में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम ब्रेक से पहले जिस सवाल पर हमारे यानी जो सवाल हमने किया था मेहमान से और उसका ताल्लुक है दरअसल अदवियात के हवाले से, तो चूंकि अदवियात एक है और मुनशियात अलग है, मामला तो एक नहीं ना, तो हाँ बाज़ अदवियात में ऐसे मादे हो सकते हैं जिन पर कानूनी निगरानी और मखसूस ज़वाबत जो है ना लागू होते हैं। तो ओवरऑल हमारे सवाल था कि दवियात वगैरह जो भी कतर में लाना चाहे तो इस सिलसिले में क्या कार्रवाई करनी पड़ती है, तो उन्होंने कहा कि सही है कि मरीज़ को अपनी बीमारी के लिए दवा की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन ये है कि कतर में अल्हम्दुलिल्लाह हमद मेडिकल कॉर्पोरेशन और जितनी यानी यहाँ आपको वो सारी दवाएँ मिल जाएंगी, और उन्होंने कहा कि अदवियात मुतवफ़र। तो उन्होंने बताया कि आप ज़रूर ये जानकारी लें, यानी सही तरह मालूमात हासिल करें कि भाई कौन कौन सी दवा यहाँ मिल रही है, तो आपको बिन अल्लाह ताला अक्सर बेशतर मिल जाएंगी। अगर कहीं मसला ऐसा हुआ कि वो दवाई नहीं मिल रही कतर में, या फिर ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन ओवरऑल उन्होंने बताया कि ऐसा एहतियात तो करना चाहिए कि दवाई ना ले आए। हाँ, अगर आपने कुछ आपकी इमरजेंसी है, कुछ ज़रूरी है, तो फिर दवाई ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपने कई प्रोसीजर्स इनको जो है ना फॉलो करना है। पहली बात तो ये कि उन्होंने कहा कि मुस्तनद जो डॉक्टर हैं उनका तिब्बी नुस्खा साथ, यानी प्रिस्क्रिप्शन जो कहते ना, उसमें वाज़े तौर पर सब कुछ लिखा हो कि भाई इसका एक्सपायरी डेट क्या है, कब से कब तक और किस वजह से दिया जा रहा है, ये बंदा ये दवाई क्यों ले रहा है, ओवरऑल जो भी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, यानी ये दवाई जो आपके साथ मखसूस है, इस बात की वजाहत वहाँ मुकम्मल तौर पर लिखनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में दवाई वगैरह लाने पर काफ़ी सारी पाबंदियाँ भी हैं, चूँकि बाज़ अवक़ात ऐसा भी हो सकता है कि वो दवाई जो है ना वहाँ जिस मुल्क से आप लेके आ रहे हैं वहाँ तो ममनू नहीं, लेकिन उस दवाई में ऐसे कुछ मादे

0: सवाल नहीं बनता, नामालूम शख्स का सामान आप साथ में न लाइए, और खुसूसन अदवियात के हवाले से तो और भी आगे ज़्यादा अहम है, ज़रूरी तिब्बी दस्तावेज़ात मुकम्मल अपने साथ रखिए। और ओवरऑल बात यही है कि बहाली के लिए अगर फ़िक्र है तो ज़रूर उनसे रब्ता करें। आप अगर ख़ुद तशरीफ़ लाते हैं, ख़ुद आके बैठ कर आते हैं तो कानून आपका तहफ़ देता है और इलाज व बहाली के लिए वो हर पल कोशिश करेंगे। यूँ नहीं कि आपका ये राज जो है ना सबको पता चल जाएगा और ये वो नहीं, राजदारी के साथ खुफिया तौर पर आपके साथ ये वो अच्छे से यानी काबू में लाने की कोशिश करेंगे ताकि आप बस सही मायने में इस तरह की लत वगैरह में जहाँ फंस चुके हैं उससे आप निकल सकें। तो अगर कोई शख्स नशे की लत में फंस चुका है तो उसे सिर्फ गिरता हुआ ना देखिए, इलाज की तरफ बढ़ने में मदद कीजिए। तो यही दरअसल हमारी कामयाबी है और अवेयरनेस के सिलसिले में सबसे बड़ा अचीवमेंट है। तो सामने कराम ओवरऑल अपने आप को महफूज रखिए, अपने सोहबत का ख्याल रखिए और अपने माशरे की हिफाजत में ज़िम्मेदार किरदार जो है ना हमें अदा करना है। इन्हीं पैगामात के साथ और हमारे मेहमान उन्होंने जैसे हमें हिदायत दी है उनका इजहार तशक्कुर करते हुए हम आज के इस हलके से यानी इजाज़त चाहेंगे। हमारे साथ है कैप्टन अब्दुल्ला कासिम आस्कर जिनका ताल्लुक है जनरल डायरेक्टर बरा इंसदाद मनशियात से, मज़ीद तकनीकी मुआवन असीला बंदारा और मुझे तलहा अशरफुज़्ज़मान को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होती है आइंदा हलके में मज़ीद वज़ारत दाखिले किसी दूसरे अहम शोबे के अफसर के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, मासलामा।
1: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।

to our segment called Smart Money. मैं हूँ आपकी दोस्त आपकी होस्ट नासिया. आज के सेगमेंट में दोस्तों हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सब्जेक्ट पर जो हर इनकम लेवल और हर एज ग्रुप के लिए ज़रूरी है. आज का हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये टॉपिक है बिल्डिंग फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस. दोस्तों जब हम फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस की बात करते हैं तो हम इसका मतलब अमीर होना निकाल लेते हैं. फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस का मतलब है अपने पैसों के बारे में इन्फॉर्म्ड और कंफर्टेबल डिसीजंस लेना. बहुत से लोग अच्छी

लेकिन फिर भी फाइनेंशियल स्ट्रेस में रहते हैं और वहीं कुछ और लोग अपनी लिमिटेड इनकम के बावजूद भी फाइनेंसिस को बेहतर तरीके से मैनेज कर लेते हैं। यहाँ पे फर्क पैसों का नहीं, कॉन्फिडेंस और फाइनेंशियल अवेयरनेस का है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस एक दिन में डेवलप नहीं होगा, ये छोटे छोटे फाइनेंशियल हैबिट्स से बनता है। मिसाल के तौर पे अगर आप हर महीने अपनी इनकम और एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड रखती हैं, तो आपको अंदाजा होता है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। जब आप अपने फाइनेंसेस को समझने लगते हैं तो कॉन्फिडेंस नेचुरली बिल्ट होना शुरू हो जाता है। फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस की पहली सीढ़ी है बजटिंग। अक्सर लोग बजट का नाम सुनकर सोचते हैं कि ये सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस का नाम है। नहीं, असल में बजट आपको कंट्रोल देता है। जब आपको पता हो कि कितने पैसे आ रहे हैं और कितने खर्च हो रहे हैं, तो फाइनेंशियल डिसीजंस लेना आसान हो जाता है। दूसरी जरूरी चीज है सेविंग हैबिट। चाहे अमाउंट छोटी हो या बड़ी, रेगुलर सेविंग्स फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस को मजबूत करती है। जब आपके पास इमरजेंसी फंड होते हैं तो आप अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में घबराते नहीं हैं। मान लीजिए घड़ी खराब हो जाए, गाड़ी खराब हो जाए, या कोई और चीज ऐसी जो महंगी थी और खराब हो गई, या कोई मेडिकल इशू आ जाए, या जॉब से रिलेटेड कोई इशू जाए, तो ऐसे में आप फाइनेंशियल प्रेशर कम महसूस करते हैं। वही एक और फैक्टर जो फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस देता है वो है आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी या एजुकेशन। बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट्स, लोन, इंश्योरेंस और रिटायरमेंट प्लानिंग के टॉपिक से दूर भागते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये मुश्किल सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन जितना आप सीखते हैं ना, उतना आपका डर कम होता जाता है। नॉलेज कॉन्फिडेंस को जन्म देती है, इसीलिए फाइनेंशियल बुक्स, पॉडकास्ट, आर्टिकल्स और ट्रस्टेड फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सीखना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस का एक और इम्पॉर्टेंट हिस्सा है रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग। दूसरों को देखकर फाइनेंशियल डिसीजंस लेना अक्सर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे मेरे दोस्त ने नई गाड़ी ली, या मेरे दोस्त ने अपने बच्चे का हायर यूनिवर्सिटी में एक महंगी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा दिया, या मेरे रिलेटिव ने फलां जगह इन्वेस्टमेंट कर लिया, उसने कहा तुम भी कर लो। ये सारे डिसीजंस जो हैं बड़े वेग डिसीजंस होते हैं। हर फाइनेंशियल डिसीजन हर एक के लिए सूटेबल नहीं होता। कॉन्फिडेंट लोग कंपैरिजन की बजाय अपनी फाइनेंशियल रियलिटी को देखकर फैसला करते हैं। ये आता है अपने पैसों को समझने से, ये आता है प्लानिंग से, ये आता है डिसिप्लिन से, और सबसे बढ़कर ये आता है फाइनेंशियल नॉलेज से। यानी स्मार्ट मनी का आज का हमारा जो पावरफुल लेसन है वो ये है कि फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होगी, बिल्ड की जाएगी, और हर छोटा स्मार्ट डिसीजन आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब लेकर आता है। तो बस अपने पैसों के साथ अपने कॉन्फिडेंस को भी ग्रो कीजिए, उसे समझकर। फिलहाल मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए।

0: किसी अनजान साइट पर मिल रहा है तो वो स्कैम हो सकता है। वेबसाइट की एज और रिव्यूज भी चेक करें। किसी भी नई साइट से खरीदने से पहले एक अलग से वेबसाइट होती है जिन पर वेबसाइट कब बनी है, उनकी डिटेल्स क्या है, कहाँ की वो वेबसाइट है, वो सब पता चल जाता है। जैसे voice.com, WHOIS.com, इस वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो किसी भी वेबसाइट की डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। अगर वो साइट कुछ ही दिन या हफ्ते पुरानी है तो वहां से शॉपिंग बिल्कुल ना करें और उसको जरा से शक की नजर से जरूर देखें। उसके अलावा क्रेडिट कार्ड या सिक्योर पेमेंट इस्तेमाल करें। हमेशा परचेज के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें। अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाए तो आप बैंक को कॉल करके चार्ज बैक क्लेम कर सकते हैं और अपने पैसे वापस ले सकते हैं। डेबिट कार्ड या डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कभी ना करें। इससे आपके साथ हुए फ्रॉड में आपको सहायता नहीं मिलती, आप दोबारा उस पैसे को वापस नहीं पा सकते। तो दोस्तों, ये था आज का टॉयज स्कैम, जहां पर आपके बच्चों को, आपके पेरेंट्स को इस तरह से फंसाया जाता है, जहां पर फेस्टिवल के जो टॉयज होते हैं या फेस्टिवल की जो चीजें होती हैं उनकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है फेस्टिवल के वक्त पे, और वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होते हैं, और यहां पर आपके साथ स्कैम किया जाता है, आपको पेमेंट करने को कहा जाता है और फेक वेबसाइट के थ्रू आपको टॉयज भेजे भी जाते हैं, जबकि वो बच्चों के लिए बिल्कुल सेहतमंद नहीं होते, बच्चों के लिए सही नहीं होते। उम्मीद है आपको ये स्कैम के बारे में नॉलेज या इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी कल एक नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में बात करते हुए। दिल से देसी
1: स्कैम अलर्ट। Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं कल्चर मोमेंट। मैं हूँ आपकी आरजे महावश।

छुपी है। तो अगली बार जब भी आप हरीस खाएं, तो इसे सिर्फ गंदम और गोश्त का मेल ना समझिएगा। इसमें रमजान की शामें, खानदानी दस्तरखान, बुजुर्गों की सीख और कतर की मेहमान नवाजी की एक पुरानी दास्तान मौजूद है। आज के कल्चर मोमेंट का खुलासा यह है कि हरीस सादा जरूर है, मगर इसके अंदर तारीख, सबर और अपनाइयत की गहरी मिठास छुपी होती है। तो लिस्टनर्स, आज के कल्चर मोमेंट को यही मुकम्मल करते हैं। याद रखिए, सकाफत सिर्फ गुजरे हुए वक्त का नाम नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी का खूबसूरत हिस्सा है। मैं हूँ आपकी आरजे महाविश। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखिए और कतर की खूबसूरत सकाफत को हमेशा इज्जत और मोहब्बत के साथ याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
2: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। तफहीमुल कुरान के एक और ईमान अफरोज हलके में आप सबको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। सामने किराम, आज हम कुरान मजीद की एक ऐसी आयत पर गुफ्तगू का आगाज कर रहे हैं जिसके बारे में मुतअद्दिद अहले इल्म मुफस्सिरीन किराम ने बयान किया है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली आखिरी आयत में से है। इस आयत के नुजूल के कुछ ही दिन बाद अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से कूच कर गए। गोया ये आयत उम्मत के लिए एक आखिरी नसीहत, एक आखिरी तंबीह और एक आखिरी पैगाम बनकर नाजिल हुई थी। इरशाद खुदावंदी है, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون

और उस दिन से डरो जिस दिन तुम सब अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे, फिर हर शख्स को उसके किए का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और किसी पर जर्रा बराबर जुल्म नहीं किया जाएगा। समीने कराम, कुरान की आयत हमें अंजाम के बारे में याद दिलाता है। ये आयत हमें एक ऐसे दिन की याद दिला रही है जिससे कोई इंसान बच नहीं सकता। ये कौन सा दिन है? मुफस्सिरीन ने इस बारे में दो आरा जिक्र की हैं। एक राय ये है कि इससे मुराद क़यामत का दिन है और यही जमहूर मुफस्सिरीन की राय है। दूसरी राय यह है कि इससे मुराद इंसान की मौत का दिन है, क्योंकि जब इंसान फौत हो जाता है तो उसके आखिरत का आगाज हो जाता है। सियाक आयत पर गौर करें तो मालूम होता है कि यहाँ असल मुराद यौम क़यामत ही है, क्योंकि आगे फरमाया फिर हर जान को उसके अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और मुकम्मल हिसाबों किताब, जजा सजा और इंसाफ का दिन तो क़यामत ही का दिन है। समीने किराम, क़यामत पर ईमान ये इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक रुकन है। जिस तरह अल्लाह पर ईमान ज़रूरी है, रसूलों पर ईमान ज़रूरी है, उसी तरह आखिरत पर ईमान भी ज़रूरी है। और किसी इंसान के दिल में आखिरत का यकीन मजबूत हो जाए तो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है, उसका किरदार बदल जाता है। क्यों? इसलिए कि वो जानता है कि हर लफ्ज़, हर कदम, हर निगाह, हर फैसला और हर अमल एक दिन अल्लाह के सामने पेश होना है।

0: इसलिए उलमा फरमाते हैं कि इंसान के अक्सर गुनाहों की जड़ आखिरत की कमज़ोर याद है। जब हिसाब का यकीन कमज़ोर हो जाए तो गुनाह आसान महसूस होने लगता है, लेकिन जब यकीन ताज़ा हो जाए तो गुनाह से पहले ही दिल कांप उठता है। इस हकीकत को एक आसान मिसाल से समझते हैं। फ़र्ज़ कीजिए एक शख्स सड़क पर गाड़ी चला रहा है, उसे बार बार बताया गया है कि रफ्तार आहिस्ता रखो, कानून की पाबंदी करो, सिग्नल न तोड़ो, लेकिन वो इन हिदायत की ज़्यादा परवाह नहीं करता। मगर जैसे ही उसे मालूम होता है कि आगे रफ्तार नापने वाला कैमरा लगा हुआ है या कानून नाफिज करने वाला निज़ाम मौजूद है, अचानक उसकी रफ्तार कम हो जाती है, वो पूरी एहतियात से गाड़ी चलाने लगता है। आखिर ऐसा क्यों? इसलिए कि उसे यकीन हो गया है कि अब खिलाफ वर्जी हुई तो फौरन हिसाब होगा। इसी तरह जब इंसान को ये यकीन हो जाए कि अल्लाह हर लम्हा देख रहा है, हर अमल लिखा जा रहा है और क़यामत के दिन हर चीज़ का हिसाब होगा, तो फिर उसकी ज़िंदगी खुद ब खुद संवरने लगती है। कुरान ने ज़िंदगी के रास्ते में बहुत से वाज़ह इशारे लगा दिए हैं। कहीं फरमाया सूद से बचो, कहीं फरमाया जिना के करीब भी न जाओ। गौर कीजिए कुरान का हुक्म कि बस इतना नहीं कहा गया कि जिना न करो, बल्कि फरमाया जिना के करीब भी न जाओ, क्योंकि हर बड़ा गुनाह छोटे कदमों से शुरू होता है। समय कराम, इसलिए इस्लाम सिर्फ अंजाम से नहीं बल्कि उस तक पहुंचाने वाली रास्तों से भी रोकता है। सोचने की बात यह है कि आखिर इंसान अल्लाह की मुकर्रर करदा हुदूद क्यों तोड़ता है, वो हराम कमाई क्यों इख्तियार करता है, वो झूठ क्यों बोलता है, वो खयानत क्यों करता है, वो अल्लाह की नाफरमानी क्यों करता है। इसका एक बड़ा सबब यही है कि आखिरत का यकीन कमज़ोर हो जाता है। अगर इंसान को हर लम्हा ये एहसास रहे कि अल्लाह देख रहा है, फरिश्ते लिख रहे हैं और एक दिन अदालत इलाही में हाजिर होना है, तो बहुत से गुनाह खुद ब खुद ख़त्म हो जाए। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी पर नज़र डालें। 13 बरस तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़्यादातर 3 बुनियादी अकायद पर जोर दिया। अव्वल तौहीद यानी सिर्फ अल्लाह की इबादत, दुम रिसालत यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, सेवम आखिरत यानी मरने के बाद दोबारा उठाया जाना, हिसाब जन्नत और जहन्नम। जब ये 3 बुनियादें मजबूत हो जाएं, तो इंसान की पूरी ज़िंदगी खुद ब खुद दुरुस्त होने लगती है। सामने किराम, तो चलें आज की इस नशिस्त में हम इसी अजीम हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे कि क़यामत पर ईमान इंसान की ज़िंदगी को कैसे बदल देता है और कुरान हमें बार बार आखिरत की याद क्यों दिलाता है। अल्लाह ताला हमें अपनी मुलाकात की तैयारी करने, अपने आमाल की इस्लाह करने और उस दिन की कामयाबी नसीब फरमाए जिस दिन न माल काम आएगा न औलाद, बल्कि सिर्फ वही शख्स कामयाब होगा जो अल्लाह के हुजूर कल्ब सलीम लेकर हाजिर होगा। आमीन या रब्बल आलमीन। सबने कराम, प्रोग्राम के इस मरहले में लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। वक्फे के बाद इस आया मुबारका की तफसील की तरफ बढ़ेंगे। बेइज़्निल्लाह ताला जुड़े रहिए हमारे साथ।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
0: वेलकम बैक सामीन, खुश आमदीद आपको प्रोग्राम तहफीमुल कुरान के आज के इस मुबारक हलके में। क़यामत पर ईमान के हवाले से हमारी गुफ्तगू हो रही है। हमने ये बताया कि इस्लाम के बुनियादी अकायद में से है, बल्कि इंसान के किरदार और अमल के इस्लाह का सबसे मजबूत ज़रिया भी यही अकीदा है। तो कुरान मजीद ने क़यामत और दोबारा ज़िंदा किए जाने के अकीदे को किस अंदाज में साबित किया है और क्यों अल्लाह ताला ने मक्की दौर में इस मौजू को बार बार बयान फरमाया चलें,

मतलब ये है कि वो हमारी मिसाल बयान करता है और अपनी पहली पैदाइश भूल जाता है। कहता है इन बोसीदा हड्डियों को कौन जिंदा करेगा? कह दीजिए इन्हें वही जिंदा करेगा जिसने पहली मर्तबा पैदा किया था। यही असल जवाब है। मिसाल के तौर पर फर्ज करें कंपनी ने एक जदीद गाड़ी तैयार की, फिर किसी ने उस गाड़ी को खोलकर उसके तमाम पुर्जे अलग अलग कर दिए। अगर वही कंपनी चाहे तो क्या दोबारा उसे जोड़ नहीं सकती? जरूर कर सकती है। हालांकि ये मिसाल भी अल्लाह की कुदरत के मुकाबले में बहुत महदूद है, क्योंकि इंसान को पहले खाम माल चाहिए, कारखाना चाहिए, मशीनें चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला के लिए सिर्फ हुक्म काफी है, कुन फयकून। इसी तरह क़यामत के अकीदे को साबित करने का एक तीसरा अंदाज है, कुरान मुस्तकबिल के मनाजर बयान करता है। ये कुरान का निहायत मुनफरद उसलूब है। अल्लाह ताला क़यामत के ऐसे मनाजर बयान करते हैं जैसे सब कुछ आंखों के सामने हो रहा है। मसलन सूरह साफात में अहले जन्नत की गुफ्तगू, अल्लाह फरमाता है कि जन्नत वाले आपस में बातें करेंगे। उनमें से एक शख्स कहेगा, दुनिया में मेरा एक दोस्त था जो क़यामत का इनकार करता था। वो मुझे कहा करता था कि तुम वाकई मानते हो कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होंगे? फिर अहले जन्नत से कहा जाएगा, क्या तुम देखना चाहते हो कि वो कहाँ है? वो झांक कर देखेगा तो उसे जहन्नम के दरमियान में पाएगा। फतला फराहु फी सवाइल जहीम قالت الله ان كنت لتردين تب وہ کہے گا اللہ کی قسم تو مجھے بھی ہلاک کر دیتا اگر میرے رب کا فضل نہ ہوتا تو آج میں بھی تیرے ساتھ جہنم میں ہوتا۔ پھر خوشی سے اپنے ساتھیوں سے کہے گا اب ہمارے لیے کوئی موت نہیں سوائے پہلی موت کے اور اب ہمیں کبھی عذاب نہیں ہوگا۔ پھر اعلان ہوگا لمثل هذا فليعمل العاملون ऐसी कामयाबी के लिए अमल करने वालों को अमल करना चाहिए। दूसरी तरफ जहन्नम का मंजर भी बयान होता है। जक्कूम का दरख्त, खोलता हुआ पानी, शदीद अजाब और अहले जहन्नम का अफसोस। ये सब क्यों? ताकि इंसान दुनिया में रहते हुए अपने अंजाम को सामने रखे। इसी तरह सूरह आराफ में भी देखिए अहले जन्नत और अहले जहन्नम के दरमियान मुकालमा की बात आई है। अहले जन्नत पूछेंगे هذا ما وعدنا رب قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا हमने तो अपने रब का वादा सच्चा पाया, क्या तुमने भी अपने रब का वादा सच्चा पाया है? जहन्नम वाले सिर्फ एक लफ्ज कहेंगे हाँ, उसके बाद ऐलान होगा अल्लाह की लानत हो जालिमों पर। सामने किराम, कुरान क़यामत को सिर्फ एक महज एक नजरिया बनाकर पेश नहीं करता, बल्कि उसे एक ऐसा जिंदा मंजर बना देता है कि इंसान महसूस करने लगता है जैसे वो खुद इन मनाजर को देख रहा हो। इसीलिए मक्की कुरान बार बार हमें आखिरत याद दिलाता है ताकि हमारा ईमान मजबूत हो, हमारे आमाल दुरुस्त हों और हम उस दिन की तैयारी करें जिस दिन हर इंसान को अपने रब के सामने हाजिर होना है। सभी के नाम एक मरतबा फिर उस आयत को दोहराते हैं जिस पर हमारी गुफ्तगू हो रही प्रोग्राम के शुरू से। उस दिन से डरो जिस दिन तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे। ये वापसी इख्तियारी नहीं, कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं अल्लाह की तरफ वापस नहीं जाना चाहता। मौत आएगी, जिंदगी ख़त्म होगी, कब्र का मरहला

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: जी हाँ भाई बहनों, झुमरी तलिया से मुन्नी की रिक्वेस्ट आई है, रफ्ता रफ्ता देखो आंख मेरी लड़ी है।

0: एक सबक है, एक रोशनी जो हमें राह दिखाती है। उनकी कुर्बानियां, सब्र और अल्लाह पर यकीन हमें सिखाता है कि मुश्किलें आती हैं, मगर ईमान हमेशा जीतता है। Stories of Prophets, Stories of Prophets, जिसमें आप सुनेंगे नबियों की दिलचस्प कहानियां, उनकी मेहनत, उनके इम्तिहान और उनके पैगामात जो दिल को छू लेते हैं। आप भी इस सफर में शामिल हों और इन पाक कहानियों से अपने दिल को रोशन करें।
1: सुनिए शो आरजे महविश खान के साथ ओनली ऑन एफएम 107, दिल से देसी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। लिस्टर्स, स्टोरीज फ्रॉम प्रॉफिट्स की एक और खूबसूरत और सबक आमोज एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। ये वो शो है जहां हम अल्लाह ताला के उन बरगजीदा रसूलों और नबियों की जिंदगी के वाकयात सुनते हैं जिन्हें अल्लाह ने इंसानों की रहनुमाई के लिए मुंतखब फरमाया। उनके वाकयात सिर्फ माजी की कहानियां नहीं बल्कि हमारे आज के लिए भी बेशुमार सबक रखती हैं। पिछले एपिसोड में हमने हजरत हूद अलैहि सलाम और कौम आद के बारे में सुना था। कौम आद एक ताकतवर और तरक्की याफ्ता कौम थी। उन्हें अल्लाह ताला ने कुव्वत, वसाइल, तामीराती सलाहियतें अता की थीं। उन्होंने अजीम इमारतें बनाई और अपनी ताकत पर फख्र किया, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उनका तकब्बुर था। उन्होंने अल्लाह ताला की हिदायत को कबूल करने से इनकार किया और अपनी ताकत को हिफाजत का जरिया समझ लिया। आज हम एक और ताकतवर और खुशहाल कौम के बारे में जानेंगे। ये कौम थी समूद। कौम समूद भी तरक्की याफ्ता थी। उन्हें अल्लाह ताला ने जमीन में आबाद किया, उन्हें ताकत दी और ऐसी सलाहियतें अता की कि वो पहाड़ों को तराश कर उनके अंदर घर बना सकते थे। वो मैदानों में शानदार महल बनाते और पहाड़ों को काट कर महफूज रहायश गाहें तैयार करते थे। लेकिन एक मर्तबा फिर मसला वही था। तरक्की थी मगर शुक्र कम था, ताकत थी मगर आजी नहीं थी, दौलत थी मगर अतात नहीं थी। और इसी कौम की तरफ अल्लाह ताला ने हजरत सोले अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हजरत सोले अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को वो ही बुनियादी पैगाम दिया जो तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम का पैगाम था, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। लेकिन कौम समूद ने हजरत सोले अलैहिस्सलाम से एक निशानी का मुतालबा किया। उन्होंने कहा, अगर आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं तो हमें कोई निशानी दिखाएं। अल्लाह ताला ने उन्हें एक अजीम निशानी अता फरमाई, एक ऊंटनी। ये सिर्फ एक जानवर नहीं था बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से एक वाज़े निशानी और इम्तिहान था। कौम को हुक्म दिया गया कि इस ऊंटनी को नुकसान ना पहुंचाया जाए, उसे अल्लाह की जमीन में आजाद छोड़ा जाए और उसके बारे में अल्लाह के मुकर्रर करदा हुक्म की पाबंदी की जाए। लेकिन क्या कौम समूद ने इस निशानी को कबूल किया? क्या उन्होंने अल्लाह की बात मानी या उनका तकब्बुर उन्हें दोबारा तबाही की तरफ ले गया? आज के एपिसोड में हजरत सालेह अलैहि सलाम और कौम समूद के इस सबक आमोज वाक्य को तफसील से समझते हैं। हजरत सोले अलैहि सलाम से पहले कौम समूद इस सरजमीन में आबाद थी जिसे अल्लाह ताला ने उन्हें अता फरमाया था। वो कौम मजबूत, खुशहाल और हुनरमंद थी। अल्लाह ताला ने उन्हें जमीन में इक्तदार और वसाइल अता किए थे। वो जमीन के मैदानों में इमारतें तमीर करते थे और पहाड़ों को तराश कर उनके अंदर घर बनाते थे। ये बात

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: हर नबी की जिंदगी एक सबक है, एक रोशनी जो हमें राह दिखाती है। उनकी कुर्बानियाँ, सब्र और अल्लाह पर यकीन हमें सिखाता है कि मुश्किलें आती हैं, मगर ईमान हमेशा जीतता है। स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स, जिसमें आप सुनेंगे

खुदा सुनने और जानने वाला है। और याद करो वो वक्त जबकि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा उनको तुम्हारे ख्वाब में थोड़ा दिखा रहा था, अगर कहीं वो तुम्हें उनकी तादाद ज्यादा दिखा देता तो जरूर तुम लोग हिम्मत हार जाते और लड़ाई के मामले में झगड़ा शुरू कर देते, लेकिन अल्लाह ही ने इससे तुम्हें बचाया, यकीनन वो सीनों का हाल तक जानता है। और याद करो जबकि मुकाबले के वक्त खुदा ने तुम लोगों की निगाहों में दुश्मनों को थोड़ा दिखाया और उनकी निगाहों में तुम्हें कम करके पेश किया, ताकि जो बात होनी थी उसे अल्लाह जहूर में ले आए, और आखिरकार सारे मामलात अल्लाह ही की तरफ रुजू होते हैं। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जब किसी ग्रोह से तुम्हारा मुकाबला हो तो साबित कदम रहो और अल्लाह को कसरत से याद करो, तवक्को है कि तुम्हें कामयाबी नसीब होगी। और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और आपस में झगड़ो नहीं, वरना तुम्हारे अंदर कमजोरी पैदा हो जाएगी और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। सब्र से काम लो, यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और उन लोगों के से रंग ढंग न इख्तियार करो जो अपने घरों से इतराते और लोगों को अपनी शान दिखाते हुए निकले और जिनकी रविश ये है कि अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, जो कुछ वो कर रहे हैं वो अल्लाह की गरिफ्त से बाहर नहीं है।

और ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर दुश्मन सुलह सलामती की तरफ माइल हो तो तुम भी उसके लिए आमादा हो जाओ और अल्लाह पर भरोसा करो, यकीनन वही सब कुछ सुनने और जानने वाला है। और अगर वो धोखे की नीयत रखते हो तो तुम्हारे लिए अल्लाह काफी है, वही तो है जिसने अपनी मदद से और मोमिनों के जरिए से तुम्हारी ताईद की, और मोमिनों के दिल एक दूसरे के साथ जोड़ दिए। तुम रूए जमीन की सारी दौलत भी खर्च कर डालते तो इन लोगों के दिल न जोड़ सकते थे, मगर वो अल्लाह है जिसने इन लोगों के दिल जोड़े, यकीनन वो बड़ा जबरदस्त और दाना है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे लिए और तुम्हारे पैरो अहले ईमान के लिए तो बस अल्लाह काफी है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिनों को जंग पर उभारो, अगर तुम में से 20 आदमी साबिर हों तो वो 200 पर गालिब आएंगे, और अगर 100 आदमी ऐसे हों तो मुनकिरीन हक में से 1000 आदमियों पर भारी रहेंगे, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जो समझ नहीं रखते। अच्छा, अब अल्लाह ने तुम्हारा बोझ हल्का किया और उसे मालूम हुआ कि अभी तुम में कमजोरी है, बस अगर तुम में से 100 आदमी साबिर हों तो वो 200 पर

लाए और हिजरत करके आ गए और तुम्हारे साथ मिलकर जिद्दोजहद करने लगे, वो भी तुम ही में शामिल हैं। मगर अल्लाह की किताब में खून के रिश्तेदार एक दूसरे के ज्यादा हकदार हैं। यकीनन अल्लाह हर चीज को जानता है।